सुप्रभात। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की तीसरी तिथि, तदनुसार दिनांक 24 जून वर्ष 2026। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:57 होने को है। आइए अब आरंभ करते हैं हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने टेलीफोन पर बातचीत की। कतर के रास लफान औद्योगिक क्षेत्र में हुई दुर्घटना में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर अमीर ने संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए कतर का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की और क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता के प्रयासों का समर्थन किया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि ये टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी प्रशासन ने निहत्ते नागरिकों के साथ बर्बर व्यवहार किया है। जरूरी सामान और दवाओं की आपूर्ति रोक दी गई है और इंटरनेट बंद है। खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमरीका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्द ही होर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर सकेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार अलनीनो के कारण मानसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही हैं। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
1: अलनीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है, और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
0: लखनऊ में हाल ही में हुई आग की दुर्घटना के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्यभर में कोचिंग संस्थानों का सर्वे और अग्नि सुरक्षा ऑडिट शुरू किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि सभी कोचिंग संस्थानों का सर्वे और अग्नि सुरक्षा ऑडिट जल्द से जल्द कराया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार आज बेंगलुरु में उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 के तहत निवेशक रोड शो का आयोजन करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। रोड शो में देश के प्रमुख उद्योगपति और निवेशक भाग लेंगे। कार्यक्रम में बुनियादी ढांचे, आईटी, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर और विदेशी निवेश से जुड़े विषयों पर चर्चा होगी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि जब तक ईरान समर्थित गुट आतंकी गतिविधियों में लिप्त है और हमले जारी रखे हुए हैं, तब तक पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता बहाल नहीं हो सकती। अबुधाबी में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि लेबनान में संघर्ष विराम को लेकर चर्चा ईरान के साथ चल रही वार्ता से अलग है। श्री रूबियो ने कहा कि उन्होंने अमरीका के उपराष्ट्रपति जेरी वेंस और लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ओन से बात की है और अमरीकी अधिकारी लेबनान में पहल कर रहे हैं। श्री रूबियो ने कहा कि कोई भी कूटनीतिक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि क्षेत्रीय सुरक्षा और ईरान समर्थित गुटों की गतिविधियों के मुद्दे पर कितनी प्रगति हो पाती है। पश्चिम एशिया में शांति बहाली को लेकर ईरान और अमरीका के बीच स्विट्जरलैंड में हाल ही में वार्ता हुई है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवा चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों तक असम, मेघालय, आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। वहीं विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तराखंड में भी तेज हवा के साथ आज बारिश की संभावना जताई है। फीफा विश्व कप में पुर्तगाल ने बड़ी जीत हासिल की है। अमेरिका के ह्यूस्टन में खेले गए ग्रुप के मुकाबले में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया। स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जब हम भारत की धरती पर अपने कदम रखें, तब हमें याद रखना चाहिए कि ये वही भूमि है जिसे हमारे वीर सपूतों ने अपने खून से सींचा है। ये वही भारत है जहां हर कण में बलिदान की कहानी छिपी है।

जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं जहां मनुष्य असहाय और कमजोर महसूस करता है। ऐसे समय में केवल भक्ति का मार्ग ही है जो मन को शांति प्रदान करता है। आइए प्रभु से प्रार्थना करें कि हे परमात्मा, अब मैं आपकी शरण में हूँ, कृपा करके मुझे हर संकट से बचाएं।

परमात्मा के समक्ष किसी भी प्रकार का पर्दा, संकोच, दिखावा या छलावा व्यर्थ है। भगवान से कुछ भी छुपाया नहीं जा सकता, क्योंकि वे अंतर्यामी हैं। प्रभु के सामने अपनी कमियों को स्वीकार करना ही सबसे बड़ी प्रार्थना है।

जब हमारा मन सभी प्रकार की ईर्ष्या, शत्रुता, बैर और घृणा से मुक्त होता है, तब हमारा हृदय शुद्ध और शांत हो जाता है। ऐसे शुद्ध मन में ही ईश्वर का वास माना जाता है। फिर व्यक्ति हर जीव में एक ही परमात्मा को देखने लगता है और मैं और तू का भेद धीरे धीरे कम हो जाता है।

प्रभु की महिमा का वर्णन क्या ही किया जा सकता है। उनके सामने हम सभी मनुष्य तुच्छ, तिनके के समान और शक्तिहीन हैं। संतों ने अक्सर कहा है कि ईश्वर की असीम सत्ता के सामने मनुष्य का अहंकार बिल्कुल व्यर्थ है। जब तक मन में अहंकार रहता है, तब तक ईश्वर की प्राप्ति असंभव है।

0: अभी सुन रहे थे आप भक्ति संगीत का प्रातःकालीन आयोजन वंदना। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुबह के 6:30 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है आज का चिंतन। आलेख है किशोर श्रीवास का और वाचक स्वर है मुकाम सिंह चौहान की।
1: एक बहुत पुरानी कहावत है कि किसी देश की महानता उसके ऊंचे भवनों से नहीं बल्कि उसके नागरिकों के आचरण से मापी जाती है। आज हम जिस विषय पर चिंतन करने जा रहे हैं वह हमारे व्यक्तित्व का आईना है, नागरिक बोध यानी सिविक सेंस। अक्सर हम अधिकारों की बात तो खूब करते हैं लेकिन क्या हम उन कर्तव्यों को याद रखते हैं जो हमें एक भीड़ से अलग एक सभ्य समाज का हिस्सा बनाते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि मेरे एक व्यक्ति के नियमों को मानने या न मानने से देश को क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन यही हम चूक कर जाते हैं। सिविक सेंस केवल शिष्टाचार नहीं, वह सीधे तौर पर हमारे देश की अर्थव्यवस्था और संसाधनों से जुड़ा है। जरा सोचिए, जब हम बिना जरूरत की बिजली का स्विच बंद करते हैं या सार्वजनिक नलों को कसकर बंद करते हैं तो हम केवल पानी या बिजली नहीं बचा रहे होते बल्कि हम राष्ट्र की उस संपत्ति को बचा रहे होते हैं जिसे बनाने में करोड़ों रुपये और भारी मानवीय श्रम लगा है। जब हम ट्रेन या बस की सीटों को नुकसान नहीं पहुंचाते तो हम उस पैसे को बचाते हैं जो मरम्मत में खर्च होना था और वही पैसा किसी नए अस्पताल या स्कूल को बनाने में काम आ सकता है। विकसित राष्ट्र और विकासशील राष्ट्र के बीच का सबसे बड़ा अंतर उनकी सड़कों की चौड़ाई नहीं बल्कि उनके नागरिकों का सिविक सेंस होता है। जब एक नागरिक टैक्स चोरी नहीं करता, जब वह सड़कों पर थूक कर गंदा नहीं फैलाता जिससे बीमारियां न फैले, तो वह परोक्ष रूप से देश की GDP में योगदान दे रहा होता है। हमारा हर वह कदम जो सार्वजनिक संसाधनों की रक्षा करता है देश की प्रगति की दौड़ में 2 कदम आगे ले जाता है। असली देशभक्ति केवल नारों में नहीं बल्कि इस बोध में है कि यह देश मेरा है, इसके संसाधन मेरे हैं और इन्हें सुरक्षित रखना मेरी जिम्मेदारी है। बहुत से लोग समझते हैं कि सिविक सेंस का मतलब केवल कचरा न फैलाना है, लेकिन यह इससे कहीं अधिक गहरा है। यह उस अनुशासन का नाम है जो हमारे भीतर तब भी होना चाहिए जब हमें कोई देख न रहा हो। जब हम सड़क पर चलते हुए अपनी लेन का पालन करते हैं तो वह सिविक सेंस है। जब हम किसी सार्वजनिक स्थान पर फोन पर धीरे बात करते हैं ताकि दूसरों को परेशानी ना हो तो वह सिविक सेंस है। यहाँ तक कि कतार में अपनी बारी का इंतजार करना और एम्बुलेंस के सायरन की आवाज सुनते ही उसे रास्ता देना, यह हमारे ऊंचे चरित्र और परिपक्व सिविक सेंस की ही पहचान है। यह वह अदृश्य धागा है जो समाज के हर व्यक्ति को सुरक्षा और सम्मान के साथ जोड़कर रखता है। मुझे एक प्रेरक प्रसंग याद आता है। एक बार एक विदेशी पर्यटक भारत आया, उसने देखा कि एक युवक ने अपनी कार रोकी, सड़क पर पड़ा एक पत्थर उठाया और उसे किनारे रख दिया ताकि किसी और की गाड़ी न टकराए। पर्यटक ने पूछा, क्या आप इस सड़क के अधिकारी हैं? उस युवक ने बहुत ही शालीनता से जवाब दिया, नहीं, मैं सिर्फ इस देश का एक नागरिक हूँ। यही वह भावना है जिसकी आज हमें सबसे ज्यादा जरूरत है। सिविक सेंस कोई किताबी ज्ञान नहीं है जिसे स्कूल में रटा जाए, यह तो वह संस्कार है जिसे हमें अपने आचरण में ढालना होता है। जब हम पार्क की बेंच पर बैठते हैं या किसी सरकारी दफ्तर में जाते हैं तो हमें याद रखना चाहिए यह संपत्ति सरकारी नहीं बल्कि हमारी है और अपनी चीजों का ख्याल हम वैसे ही रखते हैं जैसे हम अपने घर का रखते हैं। आज चिंतन में खुद से यह छोटा सा सवाल पूछे, क्या मेरे व्यवहार से समाज में किसी को असुविधा तो नहीं हो रही? अगर हम अपनी छोटी छोटी आदतों को सुधार लें तो हमारा पूरा समाज एक सुंदर और सुखद स्थान बन जाएगा। सिविक सेंस असल में प्रेम का ही एक रूप है, अपने देश के प्रति और अपने समाज के प्रति। आइए आज से हम एक जिम्मेदार नागरिक बनने का संकल्प लें।
0: अभी सुन रहे थे आप आज का चिंतन। आलेख था किशोर श्रीवास का और वाचक स्वर थे मुकाम सिंह चौहान के। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है खेती की बातें। आज जानिए सोयाबीन में FIR पद्धति से बीजोपचार के विषय में, जानकारी दे रही है मनीषा शर्मा।
2: भाई बहनों, खेती की बातें कार्यक्रम में फिर से आपको स्वागत है।

0: का बीजोपचार करने की एक वैज्ञानिक और प्रभावी विधि है। इन्हीं विधि को उपयोग करने से सोयाबीन में शुरुआती बीमारी होनी हुए, कीट होने से पौधा के सुरक्षा मिले और अपना उत्पादन में भी वृद्धि होवे। FIR पद्धति जो है वह बीजोपचार की एक प्रभावी पद्धति है। F मतलब फंगिसाइड फफूंद नाशक। सबसे पहला अपन बीज होन के फफूंद नाशक दवा से उपचारित करा ताकि मिट्टी और बीज जनित जो रोग हैं उनसे अपना पौधा को बचा हुई सके, किसी भी प्रकार की फंगस या फफूंद पौधा में नहीं लगे। जब अपन इन्हीं दवा की परत चढ़ावा, वह परत जब अच्छी तरह से सूखी जावे तो अपन दूसरी श्रेणी पे आवा जिके अपन आई के वहाँ इंसेक्टिसाइड जिके कीटनाशक अपन की सकता है। फफूंद नाशक दवा का बाद में कीटनाशक दवा की परत अपन अपना जो बीज है उन पे चढ़ावा। इन्हीं परत के चढ़ाने से शुरुआती चूसक कीट और तना मक्खी से फसल की रक्षा होवे और अपनो पौधों जो रहे उस स्वस्थ रहे। जिके पास तीसरी जो कड़ी है वह है आर। आर मतलब राइजोबियम या जैविक कल्चर। भाई बहनों, जब कीटनाशक की जो परत आपने चढ़ाई है वह अच्छी तरह से सूखी जावे तो उका बाद में राइजोबियम या PSB कल्चर को उपचार करियो जावे है। इका उपचार से जड़ में नाइट्रोजन की ग्रंथियों के बढ़ोतरी मिले जिससे कि पौधा के सही पोषण मिले। अपन दवा के यदि सही क्रम में उपयोग में लावांगा तो अपनो पौधों जो है वो बीमारियों से सुरक्षित रहेगो। बीजोपचार हमेशा अपने इनाज क्रम में करनो चाहिए, फफूंद नाशक, कीटनाशक और राइजोबियम कल्चर। यो ध्यान रखा कि जब एक दवाई पूरी तरह से सूखी जावे तबेज अपन दवाई की दूसरी परत बीजों पे चढ़ावा। राइजोबियम कल्चर हमेशा बुआई का दिन या एक दिन पहलाच करनो चाहिए। उपचारित बीज होन के कभी भी अपने धूप में नहीं सुखानो चाहिए। यदि बीज अपन धूप में सुखावांगा तो जो दवाई की जो क्षमता है वह कम हो जाएगी। सोयाबीन में FIR पद्धति को उपयोग करके अपन अच्छो उत्पादन पाई सकता है और इन्हीं पद्धति द्वारा अपना किसान भाई अपना बीज के और अपना पौधा होन के सुरक्षित कर सकता है। फफूंद कीट जैसा जो रोग उन्हें शुरुआती समय पे अपना पौधा उनमें लगे उनसे अपना पौधा के बच सकता है। तो भाई बहनों, अपनी कृषि में FIR पद्धति को प्रयोग करके बीज उनके उपचारित करो और अपने सोयाबीन को अच्छा उत्पादन पाओ। आज अपन बस इतनी बात करांगा। दोविदा, राम राम।
1: अभी सुन रहे थे आप खेती की बातें। आज हमने जाना सोयाबीन में FIR पद्धति से बीजोपचार के विषय में और इस विषय पर जानकारी दे रही थी मनीषा शर्मा। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। श्रोताओं, आपको याद दिला दें, आज सुबह 7:20 पर सुनना ना भूलिए कार्यक्रम आपका पत्र। इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आप भी हमें पत्र लिख सकते हैं मेल के द्वारा। हमारा मेल आईडी है aapkapatraindaur@gmail.com। आपका पत्र इंदौर का स्पेलिंग है aapkapatraindaur@gmail.com। इस मेल आईडी पर पत्र लिखिए, अपनी प्रतिक्रियाएं दीजिए और जुड़िए हमारे कार्यक्रम आपका पत्र से। और आइए अब आपको लेकर चलते हैं श्री रामचरितमानस गान के आज के प्रसंग की ओर, जिसे हम सुनेंगे ए हरिहरन के गायन स्वर में।

संभव हो सकेगा। पार्वती ने शिव को वर रूप में प्राप्त करने के लिए हजारों वर्ष तक घोर तपस्या की है, किंतु शिव अखंड समाधि में बैठे हैं। अतः ब्रह्मा ने कामदेव द्वारा शिव जी की समाधि भंग कराने का परामर्श दिया। देवताओं ने बड़े प्रेम से कामदेव की स्तुति की। तब जाकर विषम पांच वाणों और मछली के चिन्ह युक्त ध्वज वाला कामदेव प्रकट हुआ। देवगण की विपत्ति की कथा और अनुरोध सुनकर कामदेव को हंसी आई, क्योंकि वो जानता था कि शिव की समाधि भंग करके उसके प्राण नहीं बचेंगे। फिर भी परमार्थ के हित में अपनी बलि देने के लिए वह सहमत हो गया। पुष्प के अपने धनुष तथा वसंत आदि सहायकों की सहायता से कामदेव ने समस्त संसार में अपना प्रभाव फैलाकर स्त्री पुरुष संज्ञा वाले सभी चर अचर प्राणियों को काम के वश में कर दिया।

अभी सुन रहे थे आप श्री रामचरितमानस गान का आज का प्रसंग ए हरिहरन के गायन स्वर में। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

आपकी प्रतिक्रियाओं पर आधारित आपका पत्र कार्यक्रम लेकर हम आएंगे आज सुबह 7:20 से। फिल्म संगीत का आनंद लेना ना भूलेगा सुबह 8:30 से। सुबह 9:00 सुनिएगा लोक संगीत के कार्यक्रम में आज विष्णु प्रसाद मालवीय और साथियों के गाए कुछ मालवी लोकगीत। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे मोहम्मद रफी की गाय

कुछ रचनाएं और शास्त्रीय संगीत में सुनिए पंडित मांगीलाल नाग को। जिले की चिट्ठी, इस कार्यक्रम का समय होगा सुबह 10 बजे 10:05 से। सुना ना भूलिएगा आपके फरमाइशी फिल्मी गीतों का सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन। हमारे एक और अन्य फोन इन कार्यक्रम सुनेंगे आप, फोन करे गीत सुने सुबह 11 बजे से। दोपहर 12 बजे से एक बार फिर आनंद लीजिएगा फिल्म संगीत का और संग्रहालय से ये कार्यक्रम सुनिएगा दोपहर 12:30। महिला श्रोताओं का कार्यक्रम महिला कार्यक्रम आप सुनेंगे दोपहर 1 बजे से और 1:30 बजे सुनिएगा लोक संगीत। 1:45 पर समय होगा सुगम संगीत के कार्यक्रम का और दोपहर की सभा में फिल्म संगीत का आनंद लेंगे आप दोपहर 2 बजे से। आपके लिए चित्रपट संगीत लेकर आएंगे हम दोपहर 2:30। युवा साथियों के कार्यक्रम का समय होगा शाम 5 बजे युवाणी कार्यक्रम में और सुनिएगा साथ ही फिल्म संगीत शाम की सभा में 5:45 से। शाम 6 बजे सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम और शाम 6:30 सुगम संगीत में सुनिए मोहम्मद रफी की गाई कुछ और गैर फिल्मी रचनाएं। लोक संगीत के कार्यक्रम में विष्णु प्रसाद मालवीय और साथियों की गाई कुछ अन्य रचनाएं सुनवाई जाएगी आपको शाम 6:45 से।

शाम 7:20 पर ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम में आज सुने एक वार्ता, साथ ही घरेलू व्यंजन में सीखे बघारी इडली बनाने के बारे में, घरेलू नुस्खे में जाने सौंफ के फायदे, साथ ही कुछ लोक संगीत, मंडी के भाव और मौसम का हाल।

दिल ने फिर याद किया, ये कार्यक्रम आपके लिए लेकर आएंगे हम रात 8:15 से। चित्र गीत सुनना ना भूलिएगा रात 9:15 पर, और चर्चा का विषय है ये कार्यक्रम सुनिए रात 9:30। बहती रहे नदियां चंबल, ये रूपक सुनिए रात 10:00। आलेख होगा व्योमकेश राज पुरोहित का, प्रस्तुतकर्ता बीना पी शर्मा और संजीव मालवीय। और शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात 10:30 सुनिएगा पंडित भजन सोपोरी का संतूर वादन, राग होगा यमन।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्, प्रवाचकः डॉक्टर गणेश हेगड़े। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी उक्तवान् यत् परिवर्तनशील वैश्विक परिस्थितौ सुरक्षा सहकार्यं गभीरं कर्तुं तथा च आतंकवादात् अन्तर्जालीय सुरक्षायाः च

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों की दिल्ली बैठक में आतंकवाद, साइबर खतरों और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया है। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक

0: अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने की। बैठक में सदस्य देशों ने उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय के अनुसार ऐसे सुरक्षा खतरों पर खासतौर से चर्चा हुई जो अब वैश्विक रूप ले चुके हैं। प्रतिनिधियों ने ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और आतंकवादी संगठनों द्वारा नई तकनीक के दुरुपयोग पर चर्चा की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सर्गेई शोइगु के बीच नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के क्रम में द्विपक्षीय वार्ता हुई है। वार्ता में दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। श्री डोभाल ने सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर जोर दिया।
1: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
0: भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि ये टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहे हैं कि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमरीका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्द ही होर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ टेलीफोन पर बात की। कतर के अमीर ने रविवार को रास लाफान शहर में हुए हादसे में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर दुख जताया और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने पीड़ित परिवारों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने के लिए धन्यवाद किया और घायलों को तुरंत चिकित्सकीय मदद पहुंचाने के लिए श्री थानी की सराहना की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने, विकास की गति को तेज करने और समावेशी विकास के लिए सभी पक्षों से और अधिक सहयोग आवश्यक है। उन्होंने ये बात कल नई दिल्ली में ग्लोबल कन्वर्जेंस फॉर ग्रोथ सम्मेलन को ऑनलाइन संबोधन में कही। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि मौजूदा दुनिया में समृद्धि और चुनौतियां तो साझा हैं, लेकिन संघर्षों और अनिश्चितता का असर विकासशील और पिछड़े देशों पर अधिक पड़ता है। उन्होंने कहा कि चुनौतियों से निपटने के लिए साझा वैश्विक कार्रवाई जरूरी है। सरकार ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है और इसकी निरंतर निगरानी की जा रही है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर इस बारे में चल रही खबरें भ्रामक और निराधार हैं। सरकार ने कहा है कि E20 पेट्रोल की शुरुआत के बाद से एथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन की खराबी या वाहन में तकनीकी खराबी की कोई भी व्यापक शिकायत सामने नहीं आई है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया है। अमरीका के ह्यूस्टन में हुए मुकाबले में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागे और इसके साथ ही रोनाल्डो 6 विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी हो गए हैं। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आपको याद दिला दें, अब से कुछ ही देर में ने सुबह 7:20 से आप सुनेंगे कार्यक्रम आपका पत्र। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है aptra.indore@indore। यह आपको लिखना है बिना किसी स्पेस के, @

gmail.com। हमारा पूरा आईडी है आपका पत्र इंदौर @gmail.com। आप हमें मेल कर सकते हैं अपनी प्रतिक्रियाएं, कार्यक्रमों के विषय में आप अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने फीडबैक हमें दे सकते हैं। आप अपने सुझाव भी हम तक पहुंचा सकते हैं। कुछ श्रोताओं के मेल हम तक पहुंचे हैं जो इस कार्यक्रम के द्वारा गीत सुनना चाहते हैं। ये फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम नहीं है, तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप अपनी प्रतिक्रियाएं व सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं। आप मेल कर सकते हैं आपका पत्र इंदौर @gmail.com पे और अपनी प्रतिक्रियाओं के जवाब हमसे पा सकते हैं इस कार्यक्रम में। तो जुड़े रहिए, बने रहिए और हमें जल्द से जल्द मेल कीजिए, क्योंकि हम आपका ये मेल शामिल करेंगे हमारे 7:20 पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम आपका पत्र में।

0: ये धरती ये नदिया ये रैना
1: और
2: आकाशवाणी इंदौर सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
3: जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड रोटी और छेना पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह जीएसटी छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 सीसी तक की बाइक पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।

0: सवेरा बनारस का,
1: शाम अवध की,
0: वादियां हिमालय की,
1: क्या बात है।
0: और इन सब के साथ शान हो मालवा की,
1: तो यहाँ की सुबह और रातें किसी से कम नहीं।
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
2: जीएसटी काउंसिल ने कमर्शियल बिजनेस में टैक्स को और भी सरल बना दिया है। बसों, ट्रकों और एम्बुलेंसों पर अब एक समान 18% टैक्स कर दिया गया है, जो पहले 28% था। HS कोड क्लासिफिकेशन की परवाह किए बिना ऑटो पार्ट्स पर अब एक ही 18% टैक्स कर दिया गया है। इस कदम से मैन्युफैक्चरर्स और पार्ट सप्लायर्स की उलझन कम होने तथा सप्लाई चेन आसान होने की संभावना है। दिलचस्प बात यह है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं आया है। सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर और इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर 5% की रियायती जीएसटी दर का लाभ उठाते रहेंगे, जिससे वे सबसे कम टैक्स वाले व्हीकल ऑप्शन बने रहेंगे।
3: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे।
4: हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में सुनिए प्रादेशिक समाचार हमारे भोपाल केंद्र से।
5: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के बीच टेलीफोन पर बातचीत, रास लफान हादसे पर जताई संवेदना। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज भोपाल में करेंगे साइबर जागरूकता अभियान सेफ क्लिक 2.0 का शुभारंभ। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले, अलनीनो के असर से निपटने के लिए सरकार कर रही अग्रिम तैयारियां, 315 जिले हो सकते हैं प्रभावित। और प्रदेश में 2-3 दिन में दाखिल होगा मॉनसून, आज 42 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। कतर के अमीर ने कल कतर के रास लफान शहर में हुए हादसे में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर दुख जताया और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने पीड़ित परिजनों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने के लिए धन्यवाद किया और घायलों को तुरंत चिकित्सीय मदद पहुंचाने के लिए श्री थानी की सराहना की। नई दिल्ली में 16वीं ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बैठक के समापन पर कल ब्रिक्स देशों के सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि बदलते वैश्विक माहौल में ब्रिक्स की भूमिका अहम है और यह आतंकवाद, साइबर सुरक्षा जैसी साझा चुनौतियों से निपटने में मदद कर रहा है। 2 दिवसीय बैठक में ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, सप्लाई चेन और साइबर सुरक्षा जैसे गैर पारंपरिक सुरक्षा मुद्दों पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज भोपाल में राज्य स्तरीय साइबर जागरूकता अभियान सेफ क्लिक 2.0 का शुभारंभ करेंगे। प्रदेश पुलिस के इस अभियान का उद्देश्य आमजन, विद्यार्थियों, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को साइबर ठगी और ऑनलाइन धोखाधड़ी के प्रति जागरूक करना है। इस मौके पर पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना की मौजूदगी में इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और साइबर जागरूकता बुकलेट का विमोचन भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री देश भर में जन जागरूकता के लिए साइबर जागरूकता रथ को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार अलनीनो के कारण मॉनसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए खरीफ फसल के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। उन्होंने बताया कि देश में अब तक लगभग 43% कम वर्षा हुई है और लगभग 315 जिले सामान्य से कम वर्षा से प्रभावित हो सकते हैं, जिनमें 111 जिले उच्च प्राथमिकता वाले हैं। श्री चौहान ने कहा कि राज्यों को दलहन, मोटे अनाज और तिलहन जैसी कम पानी वाली फसलों को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कल हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में 5,960 करोड़ रुपए की योजनाओं को मंजूरी दी गई। बैठक में मुख्यमंत्री कन्या विवाह सहायता योजना को 1 अप्रैल 2026 से अगले 5 वर्षों तक जारी रखने के लिए करीब 1,740 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में 225 शासकीय माध्यमिक शालाओं को हाईस्कूल और 300 हाईस्कूलों को हायर सेकेंडरी में उन्नयन करने की योजना को सैद्धांतिक स्वीकृति मिली, जिस पर 635 करोड़ 24 लाख रुपए खर्च होंगे। इसके अलावा किसानों को 0% ब्याज दर पर अल्पावधि फसल ऋण देने की नई शर्तों को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल भोपाल के पास अचारपुरा में 5 दिवसीय शिल्पकार महोत्सव के समापन समारोह को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जनजाति संस्कृति के संरक्षण के साथ जनजाति समाज के विकास के लिए राज्य सरकार कार्य कर रही है। डॉ. यादव ने कहा कि कई पीढ़ियां प्रभावित करने वाली बीमारी सिकल सेल एनीमिया की स्क्रीनिंग, नियंत्रण और उपचार की दिशा में राज्य सरकार काम कर रही है।
1: सिकल सेल एनीमिया की असाध्य बीमारी जिसके कारण से पीढ़ियां बर्बाद हो जाती है, जो श्री प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 2022 में जो संकल्प लिया के सिकल सेल एनीमिया के न केवल स्क्रीनिंग कराएंगे लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को बीमार को पहचान करके उसकी दवाई, उसका इंतजाम और भावी इस प्रकार से जो पीढ़ी की पीढ़ी बर्बाद होती उसको बचाने का काम करेंगे। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर जनजाति परंपरा, कला और शिल्प के इस अनूठे मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक धरा से आज का ये शिल्पकार महोत्सव अपने आप में शोभायमान हो रहा है। ये समाचार

0: आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी UCC का ड्राफ्ट 5 जुलाई तक तैयार हो जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल कैबिनेट बैठक में बताया कि सरकार ने 3.5 करोड़ लोगों को ऑनलाइन लिंक भेजकर सुझाव मांगे थे, जिनमें से 9 लाख लोगों ने अपनी राय दी। मुख्यमंत्री के मुताबिक 90% से अधिक लोगों ने UCC लागू करने का समर्थन किया है, जिनमें अल्पसंख्यक समाज के लोग भी शामिल हैं। UCC पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए हाईकोर्ट के जज की अध्यक्षता में बनी कमेटी 5 जुलाई तक ड्राफ्ट सरकार को सौंपेगी, जिसके बाद में विधानसभा सत्र में पेश करने की तैयारी है। प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान ने वर्ष 2025-26 बोर्ड परीक्षा कक्षा 5वीं, 8वीं, 10वीं और 12वीं के परिणाम घोषित कर दिए हैं। प्रदेश में कक्षा 5वीं का परिणाम 53.80%, कक्षा 5वीं का 57.70%, कक्षा 10वीं का 66.80% और कक्षा 12वीं का 77.80% रहा है। कक्षा 10वीं में शासकीय आवासीय कन्या संस्कृत विद्यालय गार्गी भोपाल की छात्रा रौनक ने 90.50% अंक के साथ प्रावीण्य सूची में प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि कक्षा 12वीं में इसी विद्यालय की छात्रा सुजाता मीना ने 89.80% अंक हासिल कर पहला स्थान प्राप्त किया। राज्य वित्त आयोग आज भोपाल संभाग के दौरे पर रहेगा और नगरीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति को लेकर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से सुझाव लेगा। आयोग के अध्यक्ष जयभान सिंह पवैया सहित सदस्य VIP सर्किट हाउस में दोपहर 12 बजे से सांसद, विधायक और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। शिवपुरी जिला प्रशासन ने छात्र छात्राओं की सुरक्षा को लेकर कार्रवाई की है। प्रशासन ने कल 8 कोचिंग और शैक्षणिक संस्थानों को सील कर दिया है। कलेक्टर अर्पित वर्मा के निर्देश पर हुए निरीक्षण में कई संस्थानों में अग्निशमन यंत्र, फायर NOC और आपातकालीन सुरक्षा व्यवस्थाओं का अभाव पाया गया। कलेक्टर ने जिले के सभी SDM को अपने अपने क्षेत्र में व्यापक निरीक्षण कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। और अब बात मौसम की। प्रदेश में मॉनसून अगले 2 से 3 दिनों में बालाघाट, छिंदवाड़ा और पांडुना के रास्ते प्रदेश में दाखिल हो जाएगा। मौसम विभाग के मुताबिक आज प्रदेश के 42 जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश के आसार हैं। इसके अलावा नरसिंहपुर में हीट वेव का भी अलर्ट जारी किया गया है। वहीं ग्वालियर, भिंड, मुरैना सहित कई जिलों में गर्मी का असर बना रहेगा। महिला T20 वर्ल्ड कप में आज मेजबान इंग्लैंड का सामना वेस्टइंडीज से होगा और ये मुकाबला जीतने वाली टीम सेमीफाइनल में जगह पक्की कर लेगी। ग्रुप बी में शामिल दोनों टीमों के अब तक 6-6 अंक हैं, हालांकि बेहतर रन रेट के चलते इंग्लैंड टॉप पर है। दोनों टीमों ने अपने अपने सभी 3 मुकाबले जीते हैं। इंग्लैंड ने श्रीलंका, आयरलैंड और स्कॉटलैंड को हराया, जबकि वेस्टइंडीज ने न्यूजीलैंड और स्कॉटलैंड और श्रीलंका से जीत दर्ज की। शिवपुरी जिले में कलेक्टर की अध्यक्षता में नारकोटिक्स और नशीले पदार्थों की रोकथाम के लिए गठित समिति की बैठक आयोजित की गई। आगरमालवा में पशुपालन और डेयरी विभाग की कार्यशाला में विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा की गई। झाबुआ में जनजातीय कार्य विभाग और शिक्षा विभाग तथा जिला शिक्षा केंद्र के छात्रावासों की समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने सभी छात्रावासों में 100% प्रवेश करने संबंधी निर्देश दिए। छिंदवाड़ा में परिवहन विभाग ने शहरी क्षेत्र में विशेष जांच अभियान चलाकर लगभग 50 स्कूल वाहनों की जांच की। नर्मदापुरम में गौवंश को लेकर विकासखंड स्तरीय मैत्री गौ सेवक सम्मेलन में विस्तार से चर्चा की गई। खंडवा में कल आयोजित जनसुनवाई में कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने नागरिकों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। इंदौर शहर में कोचिंग सेंटर्स, रेस्टोरेंट्स और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में फायर सेफ्टी नियमों की सघन जांच की जा रही है। कटनी में ढीमरखेड़ा विकासखंड में वन अधिकार अधिनियम 2006 के उन्मुखीकरण के लिए ब्लॉक स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। राजगढ़ में जिला मुख्यालय पर आयोजित जनसुनवाई में कलेक्टर ने आमजन की समस्याओं के 140 आवेदन का निराकरण किया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आपका पत्र।

0: पत्र कहे या खत, सिर्फ दो अक्षर से बना ये शब्द खुद में संजोए है अनगिनत भावनाएं, जिसे हम लेकर आए हैं कार्यक्रम आपका पत्र में। तो सुनने वाले सभी श्रोताओं के स्वागत के साथ स्वीकार कीजिए मेरा यानी तृप्ति लटपटे
1: और राजेश पाठक का
0: नमस्कार।
1: तृप्ति जी, आज जो हमारे पास
0: जी
1: श्रोताओं के जो ढेर सारे खत आए हैं, पत्र आए हैं, मेल भी, हम समझते हैं कि कार्यक्रम शुरू होने के पहले उन्हें मेल बता देना चाहिए ताकि अधिक से अधिक मेल बने।
0: तो क्या जी, मेल जी। है तो हमारा मेल आईडी
1: लाइव पत्रोत्तर का जी
0: लाइव पत्रोत्तर का हमारा मेल आईडी है आपका पत्र इंदौर @gmail.com, जिसका स्पेलिंग है APKAPATRAINDORE@gmail.com।
1: और हमारे जो श्रोता भाई मेल नहीं कर पाते हैं वो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9993290063, एक बार पुनः सुन लें 9993290063। और पत्र भी आए हैं और जो छूट गए हैं मेल अवश्य करें। अब हम सिलसिला शुरू करते हैं। तो आज 24 जून है और 24 जून को मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय परी दिवस, तैराकी दिवस और सेंट जॉन डे के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा यह दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैट वर्ल्ड डोमिनेशन डे और नेशनल रिलेशनशिप इक्विटी डे के रूप में भी मनाया जाता है।
0: जी।
1: हम बात करते हैं जैसे अंतर्राष्ट्रीय परी दिवस, तो राष्ट्रीय दिवस कैलेंडर 24 जून को अंतर्राष्ट्रीय परी दिवस के उपलक्ष्य में कल्पना करना रचनात्मक और थोड़ी सी जादुई शक्ति का संगम होता है।
0: जी।
1: देखिए जैसे परी एकमात्र कल्पना है।
0: जी बिल्कुल।
1: और हमारे जो आज के युवा हैं उनके विचार भी जादुई शक्ति से कम नहीं है।
0: बिल्कुल। और एआई की जो जमाना चल रहा है, एआई भी बिल्कुल, वो बिल्कुल, उसी तरह से जादुई शक्ति ही है एक तरह की।
1: बिल्कुल। और जो बदलते परिवेश है
0: जी
1: उसमें ढलना चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: और अपने आप को समायोजित भी करना चाहिए, क्योंकि चार्ल्स डार्विन ने कहा था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो फिट होगा
0: वही सर्वाइव
1: करेगा।
0: जी।
1: और जैसा कि आपको पता है बारिश के पहले फुहारे शुरू हो गई है।
0: बिल्कुल।
1: और मन में ऐसा लगता है सुमित्रा नंदन पंत की जो कुछ पंक्तियां हैं, नौनों के प्रांगण में आकर घन घिरते हैं घूमर घूमर कर, छाई है घटा गगन में प्यारी बारिश मनभावन में।
0: बिल्कुल। साल का सबसे खूबसूरत मौसम होता है मॉनसून का,
1: चारों तरफ हरियाली होती है, रिमझिम बारिश होती है, रिमझिम रिमझिम बूंदे आई, हरियाली चारों ओर छाई, सूखी धरती को मिली राहत, क्या सुहानी है यह बरसात।
0: और ये दृश्य देखकर मन एकदम प्रफुल्लित हो जाता है। सुबह की ठंडी हवाएं, आसपास हरियाली, बहुत ही खूबसूरत मौसम है ये।
1: हमारे बीच अभी दया शंकर जी फोन कर रहे हैं, तो हम उनसे निवेदन करते हैं कि आप फोन ना करें, ये लाइव प्रोग्राम चल रहा है, आपको जो भी बोलना है आप मैसेज,
0: आप हमारे मेल के माध्यम से या फिर आप एसएमएस हमारे व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से
1: 3290063। कृपया सहयोग बनाएं और दूसरे श्रोताओं को भी अपने विचार साझा करने का मौका दें। और जहां तक बारिश की बात हुई, तो हमारे जो कृषि एवं मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर सौरभ गुप्ता जी हैं,

0: जी।
1: ये कृषि विज्ञान केंद्र खंडवा में है। उन्होंने कुछ सलाह दिया है किसानों के लिए कि वर्षा, हवा, ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली संबंधित जो मौसम का पूर्वानुमान है
0: जी,
1: इससे बिल्कुल सावधान रहें। मृदा परीक्षण और फसल के अनुसार उर्वरक अनुशंसा की गई है। सभी फसलों की प्रजातियां के बारे में भी सलाह समय समय पर किसानों को दी जाएगी और भूमि की तैयारी से लेकर कटाई तक जितने भी काम हैं उसकी अच्छे प्लानिंग में कर लें और कीट बीमारियों और खरपतवार प्रबंधन हेतु जो है समय समय पर सलाह दी जाएगी। और पिछले दिनों जैसा हमने देखो, हम लगातार सोयाबीन के बारे में हम अपने किसानों को जागरूक कर रहे हैं और सोयाबीन अनुसंधान संस्थान जो इंदौर में है उसके भी वैज्ञानिक लगातार पिछले खेती गृहस्थी कार्यक्रम में 7:20 से 8 तक उन्हें अपडेट करते रहते हैं, क्योंकि हमारा प्रदेश सोयाबीन प्रदेश है और हमारे क्षेत्र में सोयाबीन होती है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। तो, और मानसून जो है वो विशेषकर कृषि जो है वो मानसून पर बहुत ज्यादा डिपेंड होती है, तो ऐसे समय में कृषकों के लिए बहुत जरूरी है सही योजनाओं के साथ सही तरीके से काम करना।
1: अब शुरू करने के पहले एक बार जो लाइव कार्यक्रम है उसका मेल एक बार पढ़ दें
0: जी। एक बार फिर से मैं आप सभी श्रोताओं को मेल आईडी बताना चाहूंगी। आप अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने सुझाव हम तक भेज सकते हैं। हमारा मेल आईडी है aapkapatraindore@gmail.com। स्पेलिंग है aapkapatraindore@gmail.com। aapkapatraindore@gmail.com।
1: तो अब सिलसिला शुरू करते हैं। ये पहला मेल
0: हम तक पहुंचा है धर्मपुरी जिला धार से। शेख फहीम मोहम्मद, मोहम्मद तस्लीम शेख, मुजफ्फर अयान, फैजान, सुमेरा, कशिश, साइमा, हसनैन और खुशी का। इन्होंने लिखा है दिनांक 18 जून को योग जैसे वृहद विषय को महज 25 मिनट के समय में अपनी खूबसूरत और सशक्त पेशकश, चुनिंदा अल्फाजों और सुमधुर कर्णप्रिय गीतों के साथ रचित प्रोग्राम सुनहरा पल इन्हें बहुत अच्छा लगा। प्रस्तुतकर्ता पद्मश्री जी को योग जैसे विषय की गहराई में जाकर श्रोताओं, समाज और देश में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में योग की महत्ता, लाभ और उनके विविध आयामों और जागरूकता से परिपूर्ण जानकारी संप्रेषित कर एक जागरूक नागरिक होने का दायित्व भलीभांति निभाया, जिसके लिए वो उन्हें दिल से धन्यवाद और आभार देना चाहते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए इस दिन 21 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर ढेर सारे कार्यक्रम प्रसारित किए गए
0: जी। बिल्कुल,
1: राष्ट्रपति महोदय भी हमारे क्षेत्र में आई हुई थी, उनका भी हमने प्रसारण किया
0: जी।
1: माननीय प्रधानमंत्री जी की भी योग दिवस पर कार्यक्रम हुए।
0: बिल्कुल,
1: तो योग के प्रति जो है जागरूकता आनी चाहिए और जागरूकता लाने के उद्देश्य से ही इतने सारे ढेर सारे प्रोग्राम किए। हमारे संस्थान में भी योग मनाया गया, यहाँ भी हम लोगों ने योग किया। तो वास्तव में योग का जीवन में बहुत महत्व है
0: जी। बिल्कुल।
1: और दूसरा
0: साथ ही इन्होंने
1: जी आगे क्या लिखे हैं,
0: इन्होंने लिखा है 23 जून को FM विविध भारती में सांध्यकालीन प्रोग्राम चॉइस टाइम सुना, वो भी इन्हें बहुत पसंद आया। इनका कहना है कि इस प्रोग्राम में गीत जो सुनाए गए इसमें सारे गीत अलग अलग गायक, कलाकार, गीतकारों और संगीतकारों के थे, यानी किसी भी गायक, गीतकार, संगीतकार की पुनरावृत्ति नहीं हुई। ये अपने आप में एक विचित्र बात है। और उनका कहना है कि 40 साल से वो सुन रहे हैं और ऐसी प्रस्तुति उनको बहुत पसंद आई, जिसके लिए पद्मश्री जी का वो बहुत बहुत आभार करना चाहते हैं।
1: आपको भी बहुत बहुत आभार और आपका जो है हम जो धन्यवाद है उन तक पहुंचा रहे हैं
0: जी।
1: हमारे पास एक व्हाट्सएप संदेश आया है, व्हाट्सएप संदेश भी भेजना शुरू कर दिए हैं। खरगोन मध्य प्रदेश से रचना राजेश खेड़े जी लिखते हैं, तनु जी, अनु हनी जी लिख रहे हैं। ये लिखे हैं दोनों प्रस्तुतकर्ताओं को नमस्कार इन्होंने किया है और 17 जून का आपका कार्यक्रम सुना, इसमें आरती जाधव जी और राजेश पाठक जी की प्रस्तुति बहुत अच्छा लगा और दोनों का 27-28 पत्रों का स्थान दिया गया। इसके अलावा युवानी कार्यक्रम में जो है मोहरा फिल्म की स्टोरी काफ़ी अच्छी लगी, ईरा जी को उन्होंने धन्यवाद दिया है और आपका जो धन्यवाद है अनुभूति जी और ईरा जी दोनों सखियों को हम पहुंचा रहे हैं
0: जी। बिल्कुल।
1: और इसके अलावा जो है प्रांजलि।

0: किसी से कथक कलाकार से जो बातचीत सुनवाए गए ये काफ़ी अच्छे लगे। और खंडवा जिला के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस पर हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के आगमन पर मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई जी पटेल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी और राज्यपाल जी के सिकल सेल पर आधारित कार्यक्रम को सुना। सिकल सेल का पता हमें शादी के पूर्व ही लगा लेना चाहिए ताकि बच्चों में इस बीमारी से बचा जा सके। राष्ट्रपति महोदय जी के विचार बहुत ही मार्मिक और प्रेरणादायक लगे, उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं दिए हैं। और साथ ही आकाशवाणी इंदौर टीम को लाइव कवरेज के लिए भी इन्होंने बहुत धन्यवाद दिया है।
1: इसी
0: कार्यक्रम को लाइव इन्होंने सुना
1: जी।
0: और बंगाल की पावन धरती पर हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उद्बोधन के साथ साथ योग हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है जाना, विभिन्न चैनल पर प्रसारित किया गया
1: जी।
0: और हमारे यहाँ से राष्ट्रपति का भी महोदय जी ने जो योग में शरीक हुई प्रसारित किया
1: जी। इसी कार्यक्रम से जुड़ी एक और हमें
0: आगे भी लिखते हैं, सुन लीजिए। इस दिन अंतर्राष्ट्रीय संगीत दिवस भी था, इस पर भी विनोद उपाध्याय जी से सुषमा ब्यास जी की जो चर्चा लगी काफी अच्छी लगी। साथ ही मयंक जी जो अच्छे गायक हैं उनके भजन हैं उनके विचार भी बहुत अच्छे लगे। और किसी कार्यक्रम में हेमा जी राजस्थानी मामेरा और एक प्यार का नगमा है साथ ही गीतों का आनंद लिया, लाजवाब प्रस्तुति थी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने हमारे कार्यक्रमों को सहारा। 23 जून को सुनहरे पल में एक से बढ़कर एक गीत सुनाए गए, काफ़ी अच्छा लगा। और हमें सावन के रिमझिम और जो है हम लोग जो आनंद ले रहे हैं रिमझिम का, काफ़ी अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि हम बता दें कि राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 विश्व सिकल सेल दिवस 2026 के राज्य स्तरीय कार्यक्रम जो हमारे आकाशवाणी इंदौर केंद्र ने सीधा प्रसारण किया
1: जी सर,
0: कई लोगों ने लाभ लिया
1: जी बिल्कुल। और इसी कार्यक्रम के लिए एक मेल हमें मिला है घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया और संप्रीत पंचोलिया का। इनका कहना है विश्व सिकल सेल दिवस पर 19 जून को ओंकारेश्वर से माननीय राष्ट्रपति महोदय की उपस्थिति में हुए कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सुना। कार्यक्रम स्थल से बढ़िया रिपोर्टिंग चल रही थी जो हमने सुनी। घर बैठे ही ओमकार जी में चल रहे कार्यक्रमों का वो माँ नर्मदा जी के पावन सानिध्य का आंखों देखा हाल सुन रहे थे। मुकाम सिंह चौहान जी और पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई।
0: आपको भी बहुत बहुत बधाइयां पंचोलिया जी, हमारे जागरूक श्रोता हैं
1: जी।
0: और जो भी विशेष कार्यक्रम होता है निश्चित रूप से सुनते हैं
1: बिल्कुल।
0: और देखिए कितनी यातायात व्यवस्था और काफी रस थी, बहुत भीड़ था, लेकिन फिर भी हमने अपने श्रोताओं के लिए ये लाइव कार्यक्रम का जो व्यवस्था की और उनके लिए प्रसारित किया। वास्तव में हमारे माननीय जो राष्ट्रपति महोदय जी के जो विचार था लोगों को छू गया। वास्तव में सिकल सेल एनीमिया जो है एक अनुवांशिक वंशानुगत रक्त विकार है। इसमें लाल रक्त कोशिकाएं जो होता है सामान्य और लचीली गोल डिस्क के बजाय कठोर और हसिये के आकार का अर्ध चंद्राकार हो जाता है, जिससे रक्त वाहिनियों में रक्त का प्रवाह रुक जाता है
1: जी।
0: और यह बीमारी माता पिता से बच्चों में जीन के माध्यम से फैलता है और असामान्य हीमोग्लोबिन के कारण लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल जो है सामान्य यानी 120 दिन से घटकर 10 से 20 दिन रह जाता है। और जहां तक लक्षण की बात है, तीव्र दर्द, हड्डियों जोरों, छाती और पेट में अचानक गंभीर दर्द, थकान और कमजोरी, संक्रमण और शारीरिक विकास में रुकावट होता है। और सबसे बड़ा जो प्रिकॉशन है जांच जो है, जैसा हमारे श्रोताओं ने भी कहा शादी के पहले जो ब्लड पत्री जो हम लोग कई लोग जन्म कुंडली मिला के शादी विवाह करते हैं, तो ब्लड पत्री
1: भी मिलाना जरूरी है।
0: और इसको तो हमारे महामहिम राज्यपाल जी ने जहां भी उन्हें जनता को संबोधन करने का अवसर मिलता है बिल्कुल इस बात की जिक्र करते ही हैं। इस क्षेत्र में वे बहुत संवेदनशील है
1: जी,
0: बहुत बहुत धन्यवाद। अगला मेल
1: जी, अगला मेल हमें मिला है कवर कॉलोनी बड़वा से प्रवीण श्रीमाली जी का। उनका कहना है 19 जून को साहित्य के कार्यक्रम में नितिन राठौड़ की कहानी एक यात्रा

0: हवा की बह मीठी घूट है
1: जी,
0: जो गले के नीचे सहज ही उतरती है और बहुत सहज महसूस होती है।
1: बिल्कुल,
0: और लोगों को जो है बहुत सुगंध देती है।
1: जी सही कहा। संगीत की बात की जाए तो जन्म से लेकर मृत्यु तक हर चीज संगीत से ही जुड़ी है। हम धड़कन
0: बिल्कुल
1: की बात करें या फिर सांसों की लय की, सब कुछ तो संगीत में ही है।
0: बिल्कुल, भारतीय संगीत जो है एक विस्तृत कला है जिसमें गायन, वादन और नृत्य शामिल है। तो देखिये, वास्तव में जीवन में संगीत का काफी महत्व है।
1: बिल्कुल।
0: अगला मेल
1: है लाबरिया भेरू इंदौर से। अनिल बामनिया, प्रमिला बामनिया, नंदिनी, मुस्कान, नीलम और समस्त बामनिया परिवार का ये लिखते हैं, आपका पत्र प्रस्तुतकर्ताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
0: आपको भी नमस्कार।
1: एक सुझाव दे रहे हैं राजेश जी, इनका कहना है कि फोन इन कार्यक्रम सुबह के वक्त में बहुत अधिक प्रसारित किए जा रहे हैं, ये केवल मात्र घर में रहने वाले या व्यापारी तक ही सुनने के माध्यम उन्हें पहुंच पा रहा है। अगर आप शासकीय कर्मचारी है तो इन कार्यक्रमों को सुनने से वंचित रहते हैं और कार्यस्थल पर नहीं सुन पाते, इसलिए सप्ताह में एक बार शाम के समय फोन इन कार्यक्रम जरूर प्रसारित करें, जैसा कि पूर्व में आज हमारी बारी है फोन इन कार्यक्रम प्रसारित किया जाता था, लेकिन इसको बंद कर दिया गया। इस कार्यक्रम को शनिवार के दिन शाम के समय 9:30 बजे से प्रसारित करें। मैंने आपसे कुछ शिकायत की थी, उस शिकायत को आप अच्छे से समझे और उद्घोषिकाओं को इस संबंध में समझाइश दी, इसके कारण उन्होंने अपनी त्रुटियों को दूर किया। श्रोताओं के पत्रों को अच्छे से पढ़ा जा रहा है, इसके लिए धन्यवाद। मुझे विश्वास है कि मेरे द्वारा भेजे गए सुझाव को अवश्य अमल किया जाएगा।
0: और इन्होंने व्हाट्सएप भी किया है।
1: जी जी,
0: तो देखिए, हम अपने श्रोताओं, चाहे जिस माध्यम से हमारे पास अपने विचार साझा करते हैं, हमारी नजर रहती है।
1: बिल्कुल,
0: मेल भी किए हैं, इधर व्हाट्सएप भी कर दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: फोन इन कार्यक्रमों को काफी पसंद किया जाता है।
0: और बामनिया जी के साथ जो हैं, प्रमिला बामनिया जी हैं, नंदनी जी हैं, मुस्कान जी हैं, नीलम और समस्त बामनिया परिवार
1: जी, बिल्कुल
0: काफी सुधी श्रोता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम उम्मीद करते हैं कि आपके विचारों का सम्मान करते हुए अगले जो फिक्स पॉइंट चार्ट जो होगा उसमें हम शाम की सभा में भी हम
1: फोन इन कार्यक्रम को शामिल करने की,
0: जो श्रोताओं पर केंद्रित है
1: जी,
0: हम बिल्कुल उसको शुरू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी।
0: और अगला मेल
1: है सुहाना चौक ग्राम जसवाड़ी से, सूरज कुमार ढाक से, साक्षी, ऋतुराज, दुर्गेश नागनपुरे और पूर्णिमा पटेल जी का। इनका कहना है, हमें आकाशवाणी इंदौर के सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं। हमें दिनांक 22 जून 2026 को आकाशवाणी का मराठी कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। इस कार्यक्रम में चर्चा
0: लाजवाब प्रस्तुति थी हमारी, जो मराठी कार्यक्रम पेश किया गया
1: जी।
0: आगे क्या लिखते हैं?
1: इस कार्यक्रम में चर्चा के अंतर्गत केंद्र सरकार से लोक हितकारी निर्णय आणि उपक्रम विषय पर दी गई जानकारी बेहद लाभदायक लगी। इसी दिन सोमवार का गुड मॉर्निंग इंदौर कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। इस कार्यक्रम में विश्व संगीत दिवस 21 जून के अवसर पर हर एहसास का हम सफर संगीत विषय पर कार्यक्रम में आमंत्रित मेहमानों से सुषमा व्यास जी की बातचीत बहुत पसंद आई इन्हें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर श्री अखिल गौरे से की गई बातचीत भी इन्हें बहुत पसंद आई। कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता रेवती संत जी को हार्दिक बधाई दी है।
0: और आपकी बधाइयां हम उन तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, उस दिन विश्व योग दिवस के अलावा विश्व संगीत दिवस भी था
1: जी। बिल्कुल।
0: और हमें याद है कि पिछले बार जब खंडवा में मैं था तो ये दोनों ही कार्यक्रम एक साथ वहाँ किशोर सभा गृह में पेश किया गया था और काफ़ी ही बहुत ही अच्छे ढंग से इसे संयोज कर कार्यक्रम पेश किया गया
1: जी।
0: लखनदास बैरागी जी, लेकोड़ा अंजना जी, तहसील उन्हेल, जिला उज्जैन से लिखते हैं, 23 जून को खेती गृहस्थी कार्यक्रम में बीड़ी श्रमिक और खादान में काम करने वाले मजदूरों के बच्चों को सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्ति के संबंध में श्रम आयुक्त नवीन वैद्य जी से आपकी बातचीत सुनी, जानकारी ज्ञानवर्धक और सराहनीय लगी। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन वैद्य जी ने जो ये जानकारी हमारे श्रोताओं के लिए जो दी, वास्तव में
1: बहुत
0: उपयोगी जानकारी और लाभदायक जानकारी है हमारे उन वर्गों, जो हमारे जो बीड़ी मजदूर हैं, खादान में जो काम करते हैं, रेत खदान में काम करते हैं, उनके बच्चों के लिए क्या क्या है, क्या क्या सरकार सुविधा दे रही है
1: जी।
0: उनके माध्यम से श्रम आयुक्त हैं और पूरे मध्य प्रदेश में देखते भी हैं। जबलपुर में अभी

0: का पोस्टिंग है
1: जी,
0: तो वास्तव में ये जो जानकारियां हैं बहुत ही लाभदायक जानकारियां हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और श्रोताओं ने भी सराहा।
1: बिल्कुल
0: जी। अगला मेल
1: पढ़ने से पहले राजेश जी, मैं एक बार फिर से हमारे श्रोताओं को अपना मेल आईडी बताना चाहूंगी।
0: बिल्कुल, बिल्कुल, और अधिक से अधिक मेल भेजें
1: जी, अधिक से अधिक मेल भेजें, अपने दिल की बात कहें। और ये फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम नहीं है, तो फरमाइशी गीत की मेल ना लिखें, हमें अपने सुझाव आप हम तक पहुंचा सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं।
0: आपके पत्र में जो किया जाता है, जो मेल करें, जो सप्ताह भर की जो गतिविधियां, जो विभिन्न कार्यक्रम हमारे केंद्र से प्रसारित होती है, उस पर केंद्रित होती है।
1: बिल्कुल।
0: और फरमाइशी के लिए अलग चंक,
1: अलग कार्यक्रम,
0: अलग आप लिखें
1: जी। तो हमारा जीमेल आईडी है आपका पत्र इंदौर @gmail.com। इसकी स्पेलिंग है APKAPATRAINDORE@gmail.com। आपका पत्र indoor@gmail.com।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमारे पास मनोज दुबे जी ने व्हाट्सएप किया है, लिखे हैं, आदरणीय सर और मैडम
1: जी,
0: सादर प्रणाम। मेरा कार्यक्रम प्रसारित हो गया, सभी को बहुत पसंद आया। कुछ लोग नहीं सुन पाए तो उन्हें किस प्रकार सुनवाया जा सकता है? कोई लिंक या यूट्यूब पर पुरानी रिकॉर्डिंग किस तरह मिलेगी? मार्गदर्शन प्राप्त करने की कृपा करें। क्या आकाशवाणी केंद्र से प्राप्त हो सकती है? देखिए, कई चीजों में कॉपीराइट होता है, हम नहीं दे सकते हैं
1: जी।
0: और न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी ये प्रसारित हुई है
1: जी,
0: और इस ऐप पर तो पूरे विश्व में कहीं भी सुन सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: देखिए, जब कभी मौका मिलेगा, जब पुनः प्रसारण करेंगे तो आपको बता देंगे। हालांकि हमारे केंद्र से पुनः प्रसारण कम होता है
1: जी, बिल्कुल,
0: क्योंकि हम अपने जो श्रोताओं को तरोताजा रखते हैं।
1: बिल्कुल। और कोशिश रहती है कि नए नए जानकारियां, नए नए कार्यक्रम उनके लिए।
0: बिल्कुल। और खास करके जब बारिश के मौसम में नए नए पूरा नयापन आता है
1: जी,
0: तो विभिन्न श्रोताओं वार्ताकारों के विचारों में भी नयापन आनी चाहिए, और रिपीट का कम से कम हो तो ही अच्छा रहता
1: जी,
0: है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका हमने सुझाव नोट कर लिया है।
1: अगला मेल हमें मिला है ग्राम खेगांव तहसील महेश्वर से, प्रेमलाल वर्मा, निकेश धर्मेंद्र, ममताबाई वर्मा, रिंग रोड नर्मदा नगर मध्य प्रदेश से, सूरज वर्मा, ऋषभ कनक और भावना वर्मा का, नेपाल नगर मध्य प्रदेश से, प्रभुदयाल शिवदे, शिवा बसंतीबाई और गणेश शिवदे, खंडवा मध्य प्रदेश से, श्यामाबाई रायकवार और परिवार के सभी सदस्यों का कहना है कि हमें आकाशवाणी के सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं। हमारा आपसे एक निवेदन है कि आप युवाणी कार्यक्रम में अनुरोध गीत और बुधवारीय पत्र उत्तर क्रम को पुनः शुरू करें।
0: आपका सुझाव हमने नोट कर लिया है। अगला फिश पॉइंट जो चार्ट हम लोगों का बनेगा, जिसमें हम कार्यक्रमों में परिवर्तन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी,
0: आपने हमें अच्छा सुझाव दिए। DK 67 15 पटवारी कॉलोनी रतलाम से हमें व्हाट्सएप किए हैं। प्रथम तो विश्व संगीत दिवस पर इन्होंने हार्दिक शुभकामनाएं भेजी हैं। आपने बहुत सारे कार्यक्रम प्रसारित किए। इसके अलावा 22 जून को गुड मॉर्निंग इंदौर कार्यक्रम में विनोद उपाध्याय जी तथा मयंक उपाध्याय जी से संगीत पर की गई चर्चा मन को छू गई, और दोनों को संगीत की ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए शुभकामनाएं इन्होंने दी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला मेल
1: हमें मिला है ग्राम शेटे जिला सांगली से हनुमंत शिंदे और ऋषिकेश शिंदे जी का। उन्हें 22 जून को सुबह प्रसारित मराठी कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा, और ये जो अभी मेल लिख रहे हैं ये मराठी भाषा में लिख रहे हैं। वैसे इनका कहना है कि इन्हें योग दिवस का कार्यक्रम काफी पसंद आया, और विशेषकर योग दिवस के कार्यक्रम और मराठी कार्यक्रम, दोनों कार्यक्रमों की इन्होंने प्रशंसा की है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पास एक और व्हाट्सएप संदेश आया है। लिखने वाले हैं झमकलाल पाटीदार, शिक्षक हैं ये, PS पिपलौदी, संकुल सिमलावदा, जिला रतलाम मध्य प्रदेश से। लिखे हैं, मैं आकाशवाणी इंदौर का एक नियमित श्रोता हूं, और मेरा एक ही खास प्रश्न है कि फरमाइशी लोकगीत कब होता
1: जी?
0: तो फरमाइशी लोकगीत तो बराबर होता है, बता दें।
1: फरमाइशी लोकगीतों का कार्यक्रम लोक संगीत होता है। लोक संगीत रोज सुबह 9 बजे होता है,
0: और शाम में भी होता है और

0: खेती गृहस्थी कार्यक्रम में भी हैं
1: जी, बिल्कुल
0: लोकगीत होता है, लेकिन ये फरमाइशी नहीं होता, क्योंकि इसके जो गीत हैं बहुत कम हैं,
1: बिल्कुल
0: इस कारण ये इसमें समस्या।
1: तो आप लोकगीतों का आनंद ले सकते हैं सुबह 9 बजे, शाम को भी आप शाम की सभा में भी लोकगीतों का, और हम
0: क्योंकि लोकगीत जो होता है निमारी होता है, मालवी होता है, तो कई प्रकार के और कितने गीत हैं, इसकी अनलिमिट है,
1: बिल्कुल,
0: और गायक हमारे पास इसके लिमिट हैं। और तो देखिए कि फरमाइशी गीतों का लोकगीत का फरमाइश करना ये काफी एक कठिन काम पड़ता
1: है। बिल्कुल। एक अन्य मेल भी मिला है, थोड़ा सा हटके मेल है राजेश जी, ये सूरज कुमार ढाकसी जी का है, सुहाना चौक ग्राम जसवाड़ी से। इनका कहना है कि मैं सूरज कुमार ढाकसी दोनों आंखों से नेत्रहीन हूँ, मैं आकाशवाणी इंदौर का पुराना श्रोता हूँ और मुझे एक रेडियो की जरूरत है। आदरणीय राजेश पाठक जी, मेरे लिए इंदौर से एक अच्छा सा रेडियो सेट भेजने की कृपा करें, इनका कहना है।
0: देखिए, मैं इस केंद्र का कार्यक्रम प्रमुख हूँ
1: जी,
0: और कार्यक्रम प्रमुख आपके लिए रेडियो भेजे, आपके अलावा भी कई लोग हैं
1: जी,
0: तो ढेर सारे शासकीय कार्य करने पड़ते हैं
1: जी, बिल्कुल।
0: तो इस तरह से अगर ढेर सारे श्रोता हमारे लिए ये भेज दीजिए ये भेज लीजिए, तो यह कहाँ तक प्रासंगिक है, इसका उत्तर हम अपने श्रोताओं पर डाल देते हैं
1: जी, बिल्कुल। और इनफैक्ट
0: कोई फैसला करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए
1: रेडियो पर,
0: और इनका प्रश्न कहाँ तक प्रासंगिक है
1: जी, हम इन्हें बताना चाहेंगे कि जब फोन पर भी वो रेडियो सुन सकते हैं, आकाशवाणी सुन सकते हैं,
0: हमारी सरकार ने सुविधा कर दिया,
1: बिल्कुल।
0: आप व्हाट्सएप भी कर रहे हैं, मेल भी भेज रहे हैं
1: जी,
0: तो आप बिल्कुल न्यूज ऑन एआर
1: ऐप पर रेडियो भी सुन सकते हैं।
0: लोकेंद्र वर्मा नाना खेरा बस स्टैंड उज्जैन से हमें व्हाट्सएप किए हैं, आपके चैनल से जुड़े हुए करीब 40 वर्ष से ज्यादा हो चुके हैं, बचपन से ही मैं आकाशवाणी इंदौर को सुनता आ रहा हूँ, क्योंकि आकाशवाणी इंदौर पर बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक प्रोग्राम प्रस्तुत किए जाते हैं। आपके यहाँ से विविधा, उज्जैन दर्शन, एमएच हॉटलाइन, मनोभावन और युवानी कार्यक्रम हेलो फ्रेंड्स अच्छे लगते हैं। देखिए, उज्जैन दर्शन पहले जब आकाशवाणी उज्जैन का उद्घाटन नहीं हुआ था, उसके पहले हम लोग करते थे, अब चूंकि आकाशवाणी उज्जैन अब काम करने लगा है,
1: बिल्कुल,
0: अतः हम इंदौर के कार्यक्रम प्रसारित करते हैं, उज्जैन का कार्यक्रम जो उज्जैन दर्शन का कार्यक्रम होता है वो उज्जैन से प्रसारित होता है, और हेलो फ्रेंड्स जो हमारे यहाँ से युवानी कार्यक्रम में जाता है, काफ़ी अच्छा लगता है, बहुत बहुत धन्यवाद। और हेलो विविध भारती में मुकाम सिंह जिसे जो मैंने बातचीत सुनी बहुत अच्छी लगी, और आपका जो है धन्यवाद जो है उन तक पहुँचा रहा हूँ। आगे लिखा है, आकाशवाणी इंदौर को चाहने वाले बहुत सारे रेडियो दोस्त हैं, डिजिटल भारत का जमाना आ चुका है, आकाशवाणी इंदौर से मेरा अनुरोध है कि डिजिटल भारत को देखते हुए एक व्हाट्सएप चॉइस प्रोग्राम और ईमेल फरमाइश प्रोग्राम भी चालू करने की कोशिश करें, ताकि कुछ मित्र व्हाट्सएप के माध्यम से आपके यहाँ अपनी फरमाइश भेज सके और ईमेल के माध्यम से अपनी फरमाइश आपके यहाँ भेज सके, इससे देश के कोने कोने के श्रोता मित्र आपसे जुड़ेंगे। अब तो प्रसार भारती मोबाइल ऐप के ऊपर देश विदेश तक आकाशवाणी इंदौर और विविध भारती इंदौर को सुना जाता है, यह एक मेरा सुझाव है, प्रस्तुतकर्ता को बहुत बहुत धन्यवाद दें, आपका सुझाव बहुत उत्तम है,
1: बिल्कुल सही कहा,
0: हम आपके सुझाव पर अगले फिक्स पॉइंट चार्ट में हम बिल्कुल कोशिश करेंगे,
1: बिल्कुल
0: आपकी बात जो है मैं उच्च अधिकारियों तक पहुंचाएंगे,
1: देश डिजिटल हो रहा है,
0: बिल्कुल, जब देश डिजिटल हो रहा है, हमारा केंद्र डिजिटल हो रहा है, तो सभी प्रकार
1: कार्यक्रम डिजिटल हो सकता है,
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और रोचक बनाया जा सकता है। हमारा प्रयास ही रहता है कि हम अपने श्रोताओं के सुझाव सुने, नोट करें और
1: उन पर अमल करने की
0: सामंजस्य बनाकर प्रसारित करते हैं, तो ऐसे कार्यक्रम जो होते हैं काफी सफल होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी। अगला मेल है ताराचंद पटेल जी का, ग्राम जामनी जिला खंडवा से। उनका कहना है, महोदय 19 जून को माननीय राष्ट्रपति जी का सजीव कार्यक्रम ओंकारेश्वर से किया गया, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति थी, सिकल सेल की समस्या की जानकारी मिली, इस कार्यक्रम में हमारे असीम सर की प्रस्तुति में कार्यक्रम संपन्न हुआ, बहुत अच्छा लगा। आकाशवाणी खंडवा में रहते हुए असीम सर ने किसान वाणी कार्यक्रम और युवाणी में नए नए प्रयोग में कार्यक्रम को उच्च स्तर पर वो ले गए, सर आपसे आकाशवाणी इंदौर में भी ऐसे ही कार्यक्रमों को बनाए ताकि रेडियो कार्यक्रम में विविध

0: विविधता सुनने को मिले। मैं एक साल बाद आकाशवाणी सुन रहा हूँ, आकाशवाणी इंदौर सुन रहा हूँ। वो आकाशवाणी खंडवा से सुन रहे हैं और पहले उन्होंने असीम सर के वहाँ पर काफ़ी सारे कार्यक्रम सुने। उनका यही सुझाव है कि इंदौर में भी ऐसे विविध कार्यक्रम जो है वो बनाया जाए।
1: बिल्कुल, आपका सुझाव हमने नोट कर लिया है। वास्तव में असीम जी जो हैं युवा हैं और बहुत ही डायनेमिक अधिकारी हैं
0: जी,
1: और हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे किसानों के लिए जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हैं हम आप तक पहुंचाएं। और देखिए, पिछले दिनों सोयाबीन संस्थान के विभिन्न वैज्ञानिक आपको सोयाबीन की खेती के बारे में अपडेट कर रहे हैं।
0: बिल्कुल,
1: और लगातार अपडेट कर रहे हैं, खास करके दुपारे जी और उनके जो वैज्ञानिक गण हैं, विभिन्न वैज्ञानिक की मंडली जो है अपने अपने विषय के अपने अपने विषय से किसान भाइयों को अवगत करा रहे हैं। और देखिए, हमारे पास एक और व्हाट्सएप संदेश आया है, कमलेश सदाशिव जोशी जी 53 गिरिधर इंदौर से। आदरणीय महोदय, सप्रेम नमस्कार, और आपको भी नमस्कार। इन्होंने
0: नमस्कार
1: कहा, लोक रंग कार्यक्रम में आया था, मेरी दिली ख्वाहिश थी कि आकाशवाणी के अनाउंसर से मिलने का मौका मिल जाए, तो मैंने अपने स्टाफ के एक सज्जन से रिक्वेस्ट की कि मुझे 4 से 5 उद्घोषकों से मिलवाया जाए। सभी ने मुझे साधारण श्रोता से बहुत अच्छे से बात की और मैं जल्दबाजी में उनका परिचय और आभार नहीं कर पाया। मैं सभी को धन्यवाद करना चाहता हूँ। वास्तव में देखिए, हमारे यहाँ जो कार्यक्रम हुआ था लोकरंग कार्यक्रम,
0: जी जी,
1: काफी इसके प्रशंसा अभी तक आ रहे हैं।
0: बिल्कुल,
1: और
0: जिसमें श्रोता शामिल हुए।
1: और देखिए, 46 वर्षों में पहली बार इस परिसर में इस प्रकार के कार्यक्रम हुए।
0: बिल्कुल,
1: तो ये चूंकि संगीत की भूमि रहा है, केंद्र रहा है, इस आकाशवाणी केंद्र से लोगों के कानों तक संगीत की सुरलियां गूंजी है, चाहे लोक संगीत हो चाहे फिल्म संगीत हो, तो वास्तव में एक श्रोतागण में एक अंदर बिल्कुल ख्वाहिश रहती है। हालांकि बिल्कुल चूंकि हमारा कैंपस उतना बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी काफी लोग आए।
0: और राजेश जी, उस वक्त हमारी मुलाकात हुई थी कुछ श्रोताओं से, वो इसी की बात कर रहे हैं, इसी का जिक्र कर रहे हैं।
1: और आगे लिखा है कि वापस जाते समय अचानक मधु जी से मिलना हुआ था, उनकी सादगी के साथ विनम्रता ने अभिभूत कर दिया और एक बार फिर से आभार उन्होंने किया है। वास्तव में मधु जी की जो आवाज है, देवेंद्र गौर मधु जी की,
0: जी जी,
1: वास्तव में जब लोग उनसे मिले, पुराने लोग, तो अभिभूत हो गए।
0: बिल्कुल,
1: और हमारे लिखने के लिए भी मजबूर हो गए। ये मधु जी के जो गुण हैं, ये अपने जिस समय लोगों से रूबरू हुआ करती थी उद्घोषिका के रूप में, आज भी लोग याद करते हैं, बहुत बड़ी बात है।
0: और उनकी आवाज लोगों को, श्रोताओं को वशीभूत कर लेती थी।
1: बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा।
0: हमें एक और मेल मिला है
1: जी,
0: टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई नगर छत्तीसगढ़ से अशोक श्याम कुमार और प्रमिला श्याम कुंवर का। इनका कहना है, इन्होंने हम दोनों को नमस्ते कहा है, नमस्कार आपको। आज हम पहली बार लाइव प्रोग्राम सुन रहे हैं, अच्छा लग रहा है, बहुत सी जानकारी मिल रही है, दिल से धन्यवाद आप दोनों को।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्ण पाल सिंह चौहान, श्रीमती तारा देवी चौहान, नवोदित चौहान, वैभव पाल सिंह चौहान, ध्रुवी एवं प्रद्युम्न चौहान जी लिखते हैं, नसीहत नरम लहजे में ही अच्छी लगती है, नसीहत नरम लहजे में ही अच्छी लगती है, क्योंकि दस्तखत का मकसद दरवाजा खुलवाना होता है, तोड़ना नहीं।
0: क्या बात है।
1: 17 जून का आपका पत्र कार्यक्रम सुना, आरती यादव जी और राजेश पाठक जी की जो बातचीत थी बहुत लाजवाब थी, और 19 जून को ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस पर हमारे देश के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के आगमन पर श्री मुकाम सिंह चौहान जी ने इंदौर परिक्रमा में सिकल सेल पर आधारित कार्यक्रम को सुना। इस बीमारी का पता हमें शादी के पूर्व ही लगा लेना चाहिए ताकि इस बीमारी से बचा जा सके। राष्ट्रपति महोदय जी के हमारे मध्य प्रदेश में आगमन पर हम कृत कृत हो गए। आगे लिखते हैं, करें योग रहें निरोग, और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हमारे पूरे देश में, प्रदेश में, ग्रामीण क्षेत्रों में योग किया गया, योग हमारे जीवन को निरोग रखता। देखिए, प्रेरित होकर जो है गांव में भी लोग

0: लोगों ने योग किया, बहुत
1: क्या
0: बहुत
1: बात है,
0: धन्यवाद। आगे भेरूलाल बख्तरिया धाकर जी लिखते हैं उज्जैन जिला उन्हेल से। भारत की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के मध्य प्रदेश प्रवास के दौरान ओंकारेश्वर के थापना में आयोजित विश्व सिकल सेल एनीमिया दिवस पर कार्यक्रम का सजीव प्रसारण सुना आकाशवाणी इंदौर और आकाशवाणी खंडवा टीम की सराहनीय प्रस्तुति रही। 21 जून को योगा दिवस पर जबलपुर में महामहिम के समक्ष आयोजित कार्यक्रम का जीवंत प्रसारण भी सुना। संगठन मंत्र के साथ योगासन का आंखों देखा हाल जानने को मिला। 23 जून को खेती गृहस्थी कार्यक्रम में नवीन वैद्य श्रम आयुक्त से बीड़ी श्रमिक और खादान में काम करने वाले मजदूरों के बच्चे को प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्ति के संबंध में केंद्र प्रमुख राजेश पाठक की जो चर्चा सुनी काफी लाभदायक थी। और हमारे बीच भाटापारा से सोहन जोशी जी लिखते हैं, मोहन जोशी जी, अर्चना जोशी जी, हरमिंदर चावला, वानी चावला, लोकेश जोशी जी, पायल जोशी जी, बैवी बैदेही जोशी जी, बैवी हंसिका जोशी जी, कुमारी अंकिता जोशी जी, अनूपपुर मध्य प्रदेश से श्रीमती जय जयवंती कैबेट जी, खंडवा मध्य प्रदेश से अब्दुल गफार डाबर जी, सारे कार्यक्रम अच्छे लग रहे हैं। और आकाशवाणी इंदौर से आपका लाइव प्रसारण का हम आनंद ले रहे हैं और हमने जो कार्यक्रम सुना पिछले सप्ताह, बड़े बड़े कार्यक्रम कि क्या मैं जिक्र करूं, शब्द नहीं है, इन्होंने कार्यक्रमों की सराहना की, बहुत बहुत धन्यवाद जोशी जी। और ज्योति भदौरिया जी लिखे हैं, योग दिवस पर पद्म जी ने बहुत सुंदर शब्दों में योग की बातें साझा की और योग दिवस संगीत दिवस को ध्यान में रखते हुए सुमधुर गीत सुनाए गए। एमएच हॉटलाइन में के कार्यक्रम भी काफ़ी अच्छी लगी, बहुत बहुत धन्यवाद। हुकुम कटारिया जी ने कार्यक्रमों की भी तारीफ किया और लाइव प्रसारण की इन्होंने प्रशंसा की। आनंद जोशी जी खंडवा से भी कार्यक्रमों की तारीफ किए हैं। और आगे कई लोग हमारे पास लगातार व्हाट्सएप आ रहा है, देखिए अशोक मेहता जी, वंदना मेहता, डॉक्टर कृतिका बरून और मास्टर सामवे सिडनी ऑस्ट्रेलिया से तारीफ करते हुए लिखा है कि आपके कार्यक्रम यहाँ सिडनी ऑस्ट्रेलिया में भरपूर आनंद ले रहे
1: क्या
0: हैं,
1: क्या बात है,
0: और रोचक और ज्ञानप्रद लग रहा है, सभी को शुभकामनाएं प्रेषित दिया है। न्यूज ऑन एयर ऐप का बिल्कुल आनंद
1: ये सुनकर तो दिल एकदम खुश हो गया है,
0: बिल्कुल हमारा देश की सीमाओं को भी
1: लांग कर बाहर भी सुना
0: और
1: जा रहा है।
0: हमारे जो लोग हैं वहाँ रहते हैं, कार्यक्रम सुनते हैं तो उन्हें एक अपनापन महसूस होता है। और उधर बारिश की बरसात हो रही है और इधर हमारे व्हाट्सएप पे जो है
1: व्हाट्सएप और मेल दोनों जगह श्रोताओं की प्रतिक्रियाओं की पत्रों की
0: बरसात हो रही है और लेकिन घड़ी की सुई इजाजत नहीं दे रही है। तृप्ति जी, तो अब हम लेते हैं विदा,
1: नमस्कार।

0: हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। अभी आप सुन रहे थे आपका पत्र कार्यक्रम समाचार प्रभात, कुछ ही देर में दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद और साइबर खतरों समेत वैश्विक सुरक्षा की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए आपसी सहयोग को और मजबूत करने का आह्वान किया। कतर के अमीर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन पर रास लाफान गैस संयंत्र दुर्घटना में 12 भारतीयों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया। भारत ने पाक अधिकृत कश्मीर की स्थिति पर पाकिस्तान की टिप्पणी की कड़ी आलोचना की, कहा पाकिस्तान मानवाधिकारों के हनन से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते की समीक्षा के लिए नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक, और फीफा विश्व कप में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। इंग्लैंड और घाना के बीच मैच बगैर किसी गोल के बराबरी पर छूटा।

0: और अब समाचार विस्तार से। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों की दिल्ली बैठक में आतंकवाद, साइबर खतरों और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया है। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने की। बैठक में सदस्य देशों ने उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय के अनुसार ऐसे सुरक्षा खतरों पर खास तौर से चर्चा हुई जो अब वैश्विक रूप ले चुके हैं। प्रतिनिधियों ने ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और आतंकवादी संगठनों द्वारा नई तकनीक के दुरुपयोग पर भी चर्चा की। बैठक में आतंकवाद रोधी तथा सूचना और संचार तकनीक के उपयोग में सुरक्षा संबंधी कार्य समूहों के कार्यों और उनके परिणामों की भी समीक्षा की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ साझा कार्रवाई की प्रतिबद्धता दोहराई। बैठक के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सर्गेई शोइगु के बीच नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के क्रम में द्विपक्षीय वार्ता हुई है। इस वार्ता में दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। श्री डोभाल ने सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया।
1: We need to be cognizant of the new security threats and challenges.
2: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ टेलीफोन पर बात की। कतर के अमीर ने रविवार को रास लाफान शहर में हुए हादसे में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर दुख जताया और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने पीड़ित परिवारों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने के लिए धन्यवाद दिया और घायलों को तुरंत चिकित्सकीय मदद पहुंचाने के लिए श्री थानी की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया में शांति के प्रयासों में कतर की भूमिका की भी सराहना की। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इलाके में शांति और स्थिरता बहाल होगी। इस बीच विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कतर में हादसे पर बताया कि दुर्घटना में मृतकों के शव वापस लाने के प्रयास जारी हैं।
3: रास लाफान परियोजना में जब वहां एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहां के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
0: भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि ये टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहे हैं कि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी प्रशासन ने निहत्थे नागरिकों के साथ बर्बर व्यवहार किया, जरूरी सामान और दवाओं की आपूर्ति रोक दी गई है और इंटरनेट बंद है। श्री जायसवाल ने बांग्लादेश में देवी देवताओं की मूर्तियों के अपमान की खबरों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है।
3: हम लोगों ने देखा कि बांग्लादेश में से कुछ खबर आई कि वहां पर हिंदू भगवान के तस्वीरों के साथ अपवित्र हरकतें हुई, जिसके कारण वहां पर विरोध प्रदर्शन हुआ है। और हम लोग क्या ये उम्मीद है कि बांग्लादेश की सरकार जो वहां पर चरमपंथी लोग हैं उस पर अंकुश लगाएगी और जो वहां पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रह रहे हैं उसकी सुरक्षा को गारंटी करेगी।
0: खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमरीका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे हैं।
3: 11 जहाज जो भारत की तरफ आ रहे हैं, इसमें से 3 भारतीय जहाज हैं जो कि क्रूड ऑयल टैंकर

0: इनमें 2,85,000 मेट्रिक टन क्रूड ऑयल है। इसके अलावा एक विदेशी पताका के साथ एक एलपीजी टैंकर जो भारत की तरफ आ रहा है और एक विदेशी पताका के साथ फर्टिलाइजर कार्गो के साथ वो आ रहे हैं। और जो अन्य 10 हमारे जहाज हैं वो भी हमारी उम्मीद है कि जल्द ही वो हॉर्मुज पार करके भारत की तरफ आ जाएंगे।
1: अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन हॉर्मुज जलडमरू मध्य में फंसे 11,000 से ज्यादा नाविकों को निकालेगा। संगठन के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने कहा कि इस अभियान में मदद के लिए जरूरी सुरक्षा की गारंटी ली गई है। इस अभियान में ईरान, ओमान और क्षेत्र के अन्य देशों और समुद्री उद्योग जगत का सहयोग लिया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के जिनेवा कार्यालय में ईरान के राजदूत अली बहरीनी ने कहा कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य व्यावसायिक जहाजों के लिए बिना किसी टोल के पूरी तरह खुला है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत और अमरीका ने प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय वार्ता शुरू की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में अमरीका के व्यापार प्रतिनिधि जैमिसन ग्रीर और भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: दोनों पक्ष 24 जुलाई से पहले एक अंतरिम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसी तारीख को व्यापारिक साझेदारों से होने वाले आयात पर अमेरिका का अस्थायी 10% टैरिफ समाप्त होने वाला है। 20 फरवरी को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने व्यापक टैरिफ को रद्द कर दिया था। इसके बाद अमेरिकी प्रशासन ने सभी देशों पर 24 फरवरी से 150 दिनों के लिए 10% का अस्थायी टैरिफ लगाया था। द्विपक्षीय व्यापार तनाव कम होने के बाद अमेरिका ने ज्यादातर भारतीय सामानों पर जवाबी टैरिफ को घटाकर 18% कर दिया और पहले से लगे 25% पेनल्टी टैरिफ को हटा दिया। भारत ने भी अमेरिका के कई औद्योगिक और कृषि उत्पादों पर टैरिफ कम करने या समाप्त करने का प्रस्ताव दिया था, जिनमें सूखे डिस्टिलर अनाज, पशुओं के चारे के लिए लाल ज्वार, ट्री नट्स, फल, सोयाबीन तेल, वाइन और स्पिरिट्स आदि शामिल हैं। रिशु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने, विकास की गति को तेज करने और समावेशी विकास के लिए सभी पक्षों से और अधिक सहयोग आवश्यक है। उन्होंने ये बात कल नई दिल्ली में ग्लोबल कन्वर्जेंस फॉर ग्रोथ सम्मेलन को ऑनलाइन संबोधन में कही। एक रिपोर्ट।
3: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि मौजूदा दुनिया में समृद्धि और चुनौतियां तो साझा हैं, लेकिन संघर्षों और अनिश्चितता का असर विकासशील और पिछड़े देशों पर अधिक पड़ता है। उन्होंने कहा कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए साझा वैश्विक कार्रवाई जरूरी है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि सभी देशों की घरेलू जरूरतें अलग अलग होती हैं और लगातार बने रहने वाले वैश्विक असंतुलन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की विकास दर मुख्य रूप से घरेलू मांग के कारण है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ रही अर्थव्यवस्था है और मध्यम अवधि में इसके सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर लगभग 7% रहने का अनुमान है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में विकसित और उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों ने हिस्सा लिया। इनमें भारत, ब्राजील, चीन, केन्या, दक्षिण कोरिया जैसे G7 देशों और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रतिनिधि शामिल थे। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार अल नीनो के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने के लिए खरीफ फसल के लिए एहतियाती तैयारियां कर रही है। श्री चौहान ने नई दिल्ली में कहा कि जुलाई में भी मॉनसून के कमजोर रहने की आशंका है।
4: ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है हमारी खरीफ की फसल, उस पर इसका असर पड़ सकता है। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना है। इनमें से 111 जिले हमारी उच्च प्राथमिकता वाले जिले होंगे, क्योंकि इनमें सिंचाई 25% से कम है। मध्यम प्राथमिकता वाले, मतलब जहां 25 से 50% सिंचाई की व्यवस्थाएं हैं, ऐसे 76 जिले हैं। और 128 जिले निम्न प्राथमिकता वाले, इसलिए वहां सिंचाई के लिए डैम और बाकी चीजों की व्यवस्था है।
1: सरकार ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है और इसकी निरंतर निगरानी की जा रही है। निगरानी में तेल कंपनियां, वाहन निर्माता, ईंधन परीक्षण एजेंसियां और अन्य पक्ष शामिल हैं। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया

0: पर इस बारे में चल रही खबरें भ्रामक हैं, निराधार हैं। E20 पेट्रोल की शुरुआत के बाद से एथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन की खराबी या वाहन में किसी तकनीकी खराबी की कोई व्यापक शिकायत सामने नहीं आई है। लखनऊ में कोचिंग सेंटर में आग लगने की घटना को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के कोचिंग संस्थानों के नियमन को मजबूत करने और अवैध कोचिंग सेंटर्स के विरूद्व अभियान की शुरूआत की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पूरे राज्य में आग से बचाव के उपायों की जांच मिशन मोड में की जाएगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप के में पुर्तगाल ने उज़्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया है। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागे और इसके साथ ही रोनाल्डो 6 विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। ग्रुप एल के एक अन्य मैच में कनाडा के टोरंटो में क्रोएशिया और पनामा के बीच मैच चल रहा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद मनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों से पद्म सम्मान ग्रहण करने वाली हस्तियों की तस्वीरें और होर्मुज को पार कर भारत की ओर आगे बढ़ रहे 11 ईंधन वाहक जहाजों की खबरें सबसे ऊपर छाई हैं। दैनिक भास्कर ने CUET परीक्षा परिणाम में सर्वाधिक अंक पाने वाली देवीना गहलोत का चित्र प्रकाशित करते हुए खबर को शीर्षक दिया है 100% वाले 20% बढ़े, प्रीमियम संस्थानों में दाखिला कठिन होगा। नवभारत टाइम्स ने परीक्षा में सफल रहे कुछ छात्रों के चित्र के साथ इस समाचार को शीर्षक दिया है। दिल्ली विश्वविद्यालय के दाखिले में CUET के बाद भी 100% की रेस। देशबंधु ने मौसम के मिजाज को पहले पन्ने पर जगह दी है। खबर को शीर्षक दिया है दिल्ली NCR में मौसम ने ली करवट और 12 दिन की देरी से मुंबई पहुंचा मानसून, जबकि दैनिक भास्कर का कहना है मानसून 3 दिन देरी से मुंबई पहुंचा। पत्र ने दिल्ली NCR में अभी हफ्ते भर और गर्मी और उमस बने रहने का अनुमान प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने संकट के बीच शीर्षक से प्रकाशित संपादकीय में कहा है कि पश्चिम एशिया में हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाने की वजह से देश में बढ़ती महंगाई के बीच अब इसका असर औद्योगिक उत्पादन पर भी दिखने लगा है। पत्र की राय में मौजूदा संकट के लिए भले ही वैश्विक परिस्थितियां जिम्मेदार हों, लेकिन इसके समाधान के लिए कारगर कदम उठाने के बजाय इसका बोझ जनता पर डाल देने को उचित नहीं ठहराया जा सकता। वहीं राजस्थान पत्रिका ने कृषि क्षेत्र में भारत की उपलब्धि को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। वैज्ञानिकों की 7 साल की मेहनत रंग लाई, सुपरफूड ग्रेन ओट्स में भारत बन रहा आत्मनिर्भर।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद और साइबर खतरों समेत वैश्विक सुरक्षा की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए आपसी सहयोग को और मजबूत करने का आह्वान किया। कतर के अमीर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन पर रास लाफान गैस संयंत्र दुर्घटना में 12 भारतीयों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की स्थिति पर पाकिस्तान की टिप्पणी की कड़ी आलोचना की। कहा पाकिस्तान मानवाधिकारों के हनन से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। और फीफा विश्व कप में पुर्तगाल ने उज़्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। BRICS nations call for stronger cooperation to address widening range of global security challenges, including terrorism and cyber threats. Prime Minister Narendra Modi gets condolence call from Qatar's Emir after 12 Indians killed in Ras Laffan gas plant blast. India strongly criticizes Pakistan's remarks over situation in POK, says Islamabad deflects attention away from its human rights abuses. India and United States open high-level trade talks in New Delhi to recalibrate proposed bilateral trade agreement. And in FIFA World Cup, Portugal thrash Uzbekistan 5-0, match between England and Ghana draw goalless. And now the news in detail. National security advisers and senior security officials

गीता दत्त और साथियों के स्वर में सुन रहे थे अभी अभी गाना मिस्टर मिसेस 55 से। मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा था, ओपी नैयर का संगीत था। दोस्तों, मानसून में अगर प्रकृति को उसके सबसे खूबसूरत रूप में देखना है तो दक्षिण भारत की ओर रुख करना चाहिए। केरल का मुन्नार, जहां चाय के बागान बादलों से बातें करते नजर आते हैं, बारिश की बूंदें जब इन हरी भरी वादियों पर गिरती है तो ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने खुद को कोई पेंटिंग बना दिया हो। वहीं कर्नाटक का कुर्ग, जिसे भारत का स्कॉटलैंड भी कहते हैं, मानसून में और भी खूबसूरत हो जाता है। कॉफ़ी के बागान, झरने और ठंडी हवाएं सब मिलकर इसे एक परफेक्ट मानसूनी डेस्टिनेशन बना देते हैं।

0: मुकेश की आवाज़ में सुना अभी आपने ये गाना मधुपति फिल्म से। सली चौधरी का संगीत था, शैलेंद्र के बोल थे और आप इसे सुन रहे थे आकाशवाणी इंदौर से, जहां चल रहा है फिल्म संगीत। और भी गीतों और जानकारियों के साथ लौटेंगे इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: हेलो
2: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
1: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
1: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
1: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
1: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
1: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
1: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
1: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर के युगल स्वर में सुना भी आपने ये गाना फिल्म अजनबी से। राहुल देव बर्मन का संगीत था, आनंद बख्शी के बोल थे। श्रोता, आज हम बात कर रहे हैं कि मानसून में आप कहाँ कहाँ घूमने जा सकते हैं। भारत की वो सारे स्थान जो मानसून में बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाते हैं। तो बात करें अगर झरने की, तो बारिश का मौसम और झरनों की बात ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। कर्नाटक का जोग फॉल्स, जो भारत के सबसे ऊंचे झरनों में से एक है, मानसून में अपने पूरे शबाब पर होता है। इसकी गर्जना दूर दूर तक सुनाई देती है। वहीं गोवा का दूध सागर जलप्रपात अपने नाम की तरह दूध की धारा जैसा दिखाई देता है। चारों ओर इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए, चारों ओर हरियाली और बीच से गिरता हुआ सफेद पानी, नज़ारा किसी फिल्मी दृश्य जैसा लगता है। तो मानसून में प्लान कीजिए, कर्नाटक का जोग फॉल्स देखना हो या फिर गोवा का दूध सागर फॉल्स।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में सुन रहे थे लोफर फिल्म से आप ये गाना। लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का संगीत था, बोल थे, माफ़ कीजिए, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का संगीत था और फिल्म का नाम था लोफर। श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं मानसून और मानसून में घूमने जाने वाले प्लेसेस के बारे में कि कौन से स्थान हैं जहां हम इस मानसून में जा सकते हैं। और अगला जो नंबर आता है वो है महाबलेश्वर और लोनावला का। अगर आप कम समय में मानसून का भरपूर आनंद लेना चाहते हैं तो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर और लोनावला बेहतरीन विकल्प है। महाबलेश्वर की वादियाँ, धुंध से ढकी पहाड़ियाँ और बारिश के बीच गर्म चाय का मज़ा, क्या कहने। और लोनावला तो मानसून प्रेमियों की पहली पसंद है ही। यहाँ हर मोड़ पर, क्योंकि

आशा भोसले की आवाज़ थी, फिल्म का नाम था दो बदन, गीत को लिखा था शकील बदायूनी ने और संगीत था रवि का। दोस्तों, अगर मानसून की असली जादूगरी देखना है तो मेघालय ज़रूर जाइए। चेरापूंजी और माओसिनराम दुनिया की सबसे अधिक वर्षा वाले इलाकों में गिने जाते हैं, जहाँ की यहाँ के जीवित जड़ों से बने पुल यानी कि लिविंग रूट ब्रिज पूरी दुनिया में अनोखे माने जाते हैं। इसके अलावा नौकालिकाई जलप्रताप भी खूबसूरती भी मानसून में देखते ही बनती है। यहाँ बादल इतने करीब लगते हैं कि लगता है हाथ बढ़ाकर इन्हें छू सकते हैं। तो इस मानसून में याद रखिए, मेघालय जाने का प्लान और योजना जो भी है अपने मानसून में ज़रूर बनाने की कोशिश करें, ताकि यहाँ की खूबसूरती को, जो कि मानसून में दुगनी हो जाती है, उसे आप अपनी आँखों से देख पाए, महसूस कर पाए।

कार्यक्रम का अगला और अंतिम गीत सुना रहे हैं आपको कविता कृष्णमूर्ति और श्रद्धा की आवाज़ में, मजलू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा है, जतिन ललित का संगीत है, फिल्म का नाम है खामोशी द म्यूजिकल।

तो दोस्तों ये थी भारत की कुछ ऐसी जगहें जो मानसून में और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है। बारिश सिर्फ मौसम नहीं होता, ये प्रकृति का एक उत्सव है और इस उत्सव का आनंद लेने के लिए कभी कभी अपने रोज़मर्रा के जीवन से थोड़ा समय निकालकर इन खूबसूरत वादियों, झरनों और पहाड़ों के बीच ज़रूर जाना चाहिए। इसी खूबसूरत सोच के साथ अब आपसे विदा लेती हूँ। फिल्म संगीत में मुस्कुराते रहिए, सुरक्षित रहिए और बारिश की हर बूंद का आनंद लेते रहिए। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9 बजे हैं और ये समय है लोकगीतों के कार्यक्रम लोक संगीत का, और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं विष्णु प्रसाद मालवीय और साथियों के गाए कुछ लोकगीत। तो आइए शुरुआत करते हैं इनकी गाई इस रचना के साथ।

ये विवाह गीत अभी आप सुन रहे थे विष्णु प्रसाद मालवीय और साथियों की आवाज़ में। आज लोक संगीत के कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं विष्णु प्रसाद मालवीय और साथियों के गाए कुछ मालवीय लोकगीत। लीजिए प्रस्तुत है इन्हीं के स्वर में एक और लोक रचना।

ये मालवीय लोकगीत अभी सुना आपने विष्णु प्रसाद मालवीय और साथियों की आवाज़ में। आकाशवाणी इंदौर से चल रहा है लोकगीतों का कार्यक्रम लोक संगीत, जहां हम आपको सुनवा रहे हैं विष्णु प्रसाद मालवीय और साथियों के गाए कुछ मालवीय लोकगीत। आइए बढ़ते हैं आगे और सुनवाते हैं कार्यक्रम में आपको एक और लोकगीत इन्हीं के स्वर में।

विष्णु प्रसाद मालवीय और साथियों की आवाज में सुना आपने ये मालवी लोकगीत, और इसी के साथ लोक संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुबह के 9:15 होने वाले हैं और अब समय है सुगम संगीत के कार्यक्रम का। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मोहम्मद रफ़ी की गाई कुछ गैर फिल्मी रचनाएं। आइए पहले सुनते हैं मधुकर राजस्थानी की लिखी ये रचना, जिसे कंपोज किया है खय्यम ने। मोहम्मद रफ़ी का स्वर है।

ये भक्ति रचना अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, जिसे लिखा था मधुकर राजस्थानी ने और संगीत तैयार किया था खय्याम ने। सुगम संगीत में आज हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी की गाई कुछ गैर फिल्मी रचनाएं। आइए अब सुनते हैं उन्हीं के स्वर में एक और भक्ति रचना।

ये भक्ति गीत अभी सुन रहे थे आप मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। मधुकर राजस्थानी ने लिखा था, खयाम ने संगीत तैयार किया था और आप इसे सुन रहे थे सुगम संगीत के कार्यक्रम में। लीजिए अब प्रस्तुत है मोहम्मद रफ़ी की ही आवाज़ में अगला और सुगम संगीत का अंतिम गीत। ये भी भक्ति रचना है और इसे लिखा है मधुकर राजस्थानी ने ही।

ललिता शास्त्री का लिखा ये भक्ति गीत अभी सुना आपने, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। संगीत तैयार किया था चित्रगुप्त ने।

जीएसटी काउंसिल ने कमर्शियल बिजनेस में टैक्स को और भी सरल बना दिया है। बसों, ट्रकों और एम्बुलेंसों पर अब एक समान 18% टैक्स कर दिया गया है, जो पहले 28% था। एचएस कोड क्लासिफिकेशन की परवाह किए बिना ऑटो पार्ट्स पर अब एक ही 18% टैक्स कर दिया गया है। इस कदम से मैन्युफैक्चरर्स और पार्ट सप्लायर्स की उलझन कम होने तथा सप्लाई चेन आसान होने

की संभावना है। दिलचस्प बात यह है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं आया है। सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर और इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर 5% की रियायती GST दर का लाभ उठाते रहेंगे, जिससे वे सबसे कम टैक्स वाले व्हीकल ऑप्शन बने रहेंगे।

0: क्या?
1: ये धरती, ये नदिया, ये रहना।
0: और
2: आकाशवाणी इंदौर, सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
3: जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह जीएसटी छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 cc तक की बाइक पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।

0: सवेरा बनारस का,
1: शाम अवध की,
0: वादियां हिमालय की।
1: क्या बात है।
0: और इन सब के साथ शान हो मालवा की,
1: तो यहाँ की सुबह और रातें किसी से कम नहीं।
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
2: संदेश से पहले आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी के स्वर में सुगम संगीत की आज की भक्ति रचनाएं। इसी के साथ सुगम संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत, जिसमें आज हम आपके लाए हैं पंडित मांगीलाल नाग का सितार वादन, राग है मधुवंती।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित मांगीलाल नाग का सितार वादन, राग था मधुवंती। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। कुछ ही देर में सुनिए जिले की चिट्ठी हमारे भोपाल केंद्र से।

0: आकाशवाणी है, प्रस्तुत है जिले की चिट्ठी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है शिवपुरी जिले की चिट्ठी। आलेख रंजीत गुप्ता, वाचन स्वर दीपा सिंह। शिवपुरी जिले में इस समय लोगों को मानसून का इंतजार है। तेज धूप और उमस भरी गर्मी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। दूसरी तरफ किसान खरीफ सीजन की तैयारियों में जुटे हुए हैं, अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे हैं ताकि सोयाबीन, मूंगफली और उड़द जैसी फसलों की बोनी शुरू की जा सके। किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने खाद वितरण की व्यवस्था को और बेहतर बनाया है। खरीफ सीजन में बढ़ती मांग को देखते हुए जिले के डबल लॉक खाद भंडारण केंद्र अब शनिवार और रविवार को भी खुले रहेंगे। इससे किसानों को समय पर यूरिया, डीएपी और अन्य उर्वरक उपलब्ध हो सकेंगे और बोनी का काम प्रभावित नहीं होगा। जिले में अवैध कॉलोनियों और अनाधिकृत भूखंडों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए जिला स्तरीय कॉलोनी सेल का गठन किया गया है। ये सेल कॉलोनाइजर लाइसेंस, कॉलोनी विकास की अनुमति और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय का काम करेगी ताकि शहरों का विकास व्यवस्थित तरीके से हो सके। इस नई व्यवस्था की जिम्मेदारी अपर कलेक्टर को सौंपी गई है। सेल में राजस्व, नगरीय निकाय, पीएचई, बिजली वितरण कंपनी और पंजीयन विभाग के अधिकारियों को शामिल किया गया है। इसी बीच जिला मुख्यालय पर समान नागरिक संहिता यानी यूजीसी को लेकर जन परामर्श बैठक आयोजित की गई। बैठक में उच्च स्तरीय समिति की सदस्य डॉ. शोभा पैठड़कर ने यूजीसी के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की और लोगों से सुझाव आमंत्रित किए। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर से मिले सुझावों के आधार पर ही अंतिम प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। जन कल्याण की दिशा में खनियाधाना में आयोजित 3 दिवसीय शिविर भी चर्चा में रहा। इस दौरान विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 12,599 आवेदन प्राप्त हुए, जिनका निराकरण करते हुए लोगों को राहत प्रदान की गई। साथ ही आमजन को शासन की विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी दी गई। वहीं युवाओं और खिलाड़ियों के लिए एक बड़ी सौगात मिली है। शिवपुरी के माधवराव सिंधिया जिला खेल परिसर में प्रदेश का पहला जिला स्तरीय फिट इंडिया क्लब शुरू किया गया है। यहाँ आधुनिक जिम, कार्डियो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, एरोबिक्स, न्यूट्रिशन सपोर्ट जैसी सुविधाएं किफायती दरों पर उपलब्ध कराई जा रही है। मॉनसून की तैयारियों के बीच पोहरी में संभावित बाढ़ और वर्षाकालीन आपदाओं को लेकर अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। अधिकारियों को जर्जर भवनों में शैक्षणिक गतिविधियां न चलाने और नदी नालों तथा जल भराव वाले क्षेत्रों में

0: विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। विकास और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कलेक्टर अर्पित वर्मा ने जिले के उद्यमियों के साथ बैठक की। बैठक में एमएसएमई उद्योगों के विस्तार और उद्योगों को आने वाली समस्याओं पर चर्चा हुई। कलेक्टर ने भरोसा दिलाया कि उद्योगों के संचालन में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए प्रशासन हर संभव सहयोग करेगा। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना और अन्य आवासीय योजनाओं की समीक्षा भी की गई। कलेक्टर ने लंबित आवासों को जल्द पूरा करने वाली सभी किश्तों का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने और पंचायत स्तर पर पात्र हितग्राहियों की सूची सार्वजनिक करने के निर्देश दिए। सामाजिक सरोकारों की बात करें तो जिले में 35वीं एनसीसी बटालियन के शिविर में सीनियर कैडेट्स ने रक्तदान किया। इस दौरान कुल 15 यूनिट रक्त एकत्र किया गया। दूसरी ओर मंगलम परिसर में आयोजित 7 दिवसीय विशेष शिविर में 215 दिव्यांगजनों को जांच के बाद कृत्रिम हाथ पैर और अन्य सहायक उपकरण वितरित किए गए। युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए आईटीआई केंद्र में युवा संगम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 10 निजी कंपनियों ने हिस्सा लिया और 136 युवाओं ने पंजीयन कराया। इनमें से 96 युवाओं का चयन कर उन्हें मौके पर ही ऑफर लेटर प्रदान किए गए। जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए पीएम जनवन और धरती आभा अभियान के तहत विशेष शिविर लगाए गए। इन शिविरों के माध्यम से जनजातीय समुदाय के लोगों को शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने, उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया गया। जन समस्याओं के निराकरण के लिए जिले के प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने खोड़ में जन चौपाल लगाई। उन्होंने बिजली, राजस्व, कृषि, स्वास्थ्य, पेंशन और खाद्यान्न से जुड़ी समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। और आखिर में बात योग की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर शिवपुरी जिले में उत्साह का माहौल देखने को मिला। जिला मुख्यालय के पोलो ग्राउंड सहित विभिन्न स्थानों पर सामूहिक योग कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और लोगों ने भाग लेकर स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: अभी आप सुन रहे थे जिले की चिट्ठी। इसमें आज आपने सुनी शिवपुरी जिले की चिट्ठी। आलेख रंजीत गुप्ता का था, वाचन था दीपा सिंह का और इसका प्रसारण किया गया आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से।
2: हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन।
3: हेलो MH हॉटलाइन।

0: एमएच हॉटलाइन के सभी सुनने वालों को तृप्ति लटपटे का प्यार भरा नमस्कार। श्रोता, मानसून के रिमझिम फुहारों की तरह आ गए हैं हम भी लेकर आपके पसंदीदा गीत। और आइए पहले लेते हैं हमारा पहला कॉल कार्यक्रम का। हेलो एमएच हॉटलाइन। हेलो एमएच हॉटलाइन। नमस्ते जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किससे बात हो रही है? भाटिया जी, थोड़ा सा रेडियो से आप बस दूर हो जाइए। हाँ जी, कैसे हैं सर आप?
1: अच्छे हैं, बढ़िया।
0: बताइए क्या चल रहा है? मॉनसून की शुरुआत हो चुकी है, कैसा मन कैसा कर रहा है? पहली बारिश देखकर कितना अच्छा लग रहा है?
1: वैसे ही है, हमें तो दिखता नहीं, हम क्या
0: देखेंगे। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मॉनसून के कारण अभी तक जो गर्मी थी मुझे लगता है थोड़ा ठंडक का एहसास हो रहा है। और आगे भी बस जल्द से जल्द और बारिश हो, अच्छी बारिश हो, यही दिमाग में है। तो मॉनसून जैसे ही आता है अच्छे गाने सुनने का, गीत सुनने का भी दिल करने लगता है। जी बताइए, तो कौन सा गीत सुनवाया जाए?
1: राजा हिंदुस्तानी
0: फिल्म से कौन सा गीत सुनेंगे आप?
1: परदेसी गाना नहीं।
0: चलिए ये फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं। हमें कॉल करने के लिए धन्यवाद।

0: और MH Hotline में अभी हमने आपको सुनवाई पहले कॉलर की फरमाइश, और अब आइए लेते हैं हमारा अगला कॉल. हेलो MH Hotline.
1: नमस्कार.
0: नमस्कार, किससे बात हो रही है?
1: मैं विवेक व्यास बोल रहा हूँ, डॉक्टर अंबेडकर यूनिवर्सिटी डोंगरगांव मऊ से. आप कैसी हैं?
0: बिल्कुल ठीक हूँ. और आप कैसे हैं विवेक जी?
1: बस बढ़िया है, मौसम बड़ा सुहाना है और आपका स्वागत है तो बड़ा आनंद आ रहा है प्रोग्राम सुनने में.
0: जी जी, मौसम बहुत खूबसूरत हो गया है और मऊ के आसपास तो काफी सारे घूमने की जगह है, तो क्या प्लान है फिर?
1: आप देखिए, ऐसा है कि आज तो ऑफिस है, परसों है छुट्टी, तो परसों सोच रहे हैं
0: पाताल परिवार के साथ प्लान बनाया जाए. जी हाँ, पाताल पानी ही नहीं, आसपास महू तो इतना ब्लेस्ड है कि महू के आसपास काफी सारी जगह है घूमने की. आसपास शीतला माता फॉल्स है, पाताल पानी है, और मेरे ख्याल से और भी बहुत सारी छोटी मोटी जगह है जहाँ पर लोग छुट्टियों में जाना पसंद करते हैं, स्पेशली अभी बरसात में.
1: जी, जाम गेट है और
0: जाम गेट है जी,
1: माहेश्वर भी अपन जा सकते हैं, मांडू भी जा सकते हैं, वैसे तो बहुत है ना.
0: जी जी,
1: मतलब काफी अच्छा है. और मुझे आज सुनना है फिल्म निशान का गीत है, मोहम्मद रफी साहब की आवाज है और गाना है हाय तबस्सुम तेरा धूप खिल गई रात में या बिजली गिरी बरसात में, हाय तबस्सुम तेरा, हाय तबस्सुम तेरा. अच्छा तृप्ति जी, इस गाने के बारे में मैं एक बात बताना चाहूंगा
0: जी,
1: कि गीत की जो संगीत निर्देशिका है वो है उषा खन्ना
0: जी,
1: और हमारे यहाँ पे दो ही महिला संगीतकार हुई हैं, एक तो हुई थी बहुत पहले ये सरस्वती देवी
0: जी जी,
1: है ना
0: जी.
1: तो इनका एक गाना बड़ा मशहूर हुआ था, देविका रानी और अशोक कुमार की आवाज में, वो था ना मैं बन की चिड़िया बन के
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
1: है ना.
0: हाँ,
1: उसके बाद ये उषा खन्ना वैसे ये आई थी गायिका बनने, लेकिन गायिका ये नहीं बन पाई, उससे संगीतकार बन गई. और बड़ी खुशी की बात है कि ये संगीतकार बनी तो हमें इतनी अच्छी मौका मिला.
0: जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि और भी महिलाओं को संगीतकार बनना चाहिए, संगीत की दिशा में अपने कदम बढ़ाने चाहिए, क्योंकि हम खुद देख रहे हैं कि वो इतना अच्छा काम कर चुकी हैं दो महिलाएं इस इंडस्ट्री में आके, और भी हम चाहते हैं और भी महिलाएं आए तो हमें भी अच्छा संगीत सुनने को मिले. और वैसे आप बहुत सुंदर गाते हैं और आपकी पसंद भी बहुत अच्छी है, तो आइए आपकी पसंद पर आपको ये गीत सुनवाते हैं हमें कॉल करने के लिए. धन्यवाद.

0: आकाशवाणी इंदौर से चल रहा है सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन, और अगले श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं, देखते हैं कॉल पे कौन है। हेलो MH हॉटलाइन।
1: हाँ दीदी नमस्ते।
0: नमस्ते, किससे बात हो रही है?
1: आपके नियमित श्रोता भागचंद साहू जी, राजेंद्र नगर गंज वासोदा जिला विदिशा।
0: साहू जी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया है दीदी, आप ठीक हैं?
0: एकदम बढ़िया। बताइए कौन सा गीत सुनेंगे आप?
1: दीदी आज हमने कलम फिल्म देख रहे थे, फिल्म बहुत अच्छी लगी हमें
0: जी।
1: तो तिरंगा फिल्म है वो
0: जी,
1: तिरंगा में है पीले पीले वो मोरे राजा, ऐसे कुछ है गाने के बोल
0: जी। पर कोई और गीत बताइए, क्योंकि हम ऐसी चीजों को यहाँ पर मोटिवेट नहीं करते, हम शराब की बात नहीं कर सकते, तो आप बताइए कोई
1: नहीं,
0: और।
1: उसमें बोल हैं गाने के थोड़े।
0: जी जी जी, पर हम इस बोल के गीत हम नहीं सुनवा पाएंगे, तो आप बताइए कोई और गीत आपकी पसंद का जो हम यहाँ सुनवा सकते हैं।
1: वो फिल्म का नाम है जीत
0: जी, क्या नाम है फिल्म
1: का? मिल जाएगा वो गाने के बोले, धरती पे चाहे जहाँ भी रहे।
0: जी जी जी बिल्कुल। और बताइए अभी क्या कर रहे हैं आप? बारिश की शुरुआत हो चुकी है, करते क्या है वैसे?
1: बिल्कुल बिल्कुल, अरे हम पानीपुरी सेंटर का ठेला लगा रहे थे जी, आपको
0: जी
1: तो
0: जी जी जी। तो अभी तो पानीपुरी का, अभी बारिश में तो फिर दिक्कत नहीं होती इस समय पर?
1: नहीं नहीं, हम तो दुकान ले ली है, हमने दुकान वहीं लगाते
0: हैं। अच्छा, दुकान ले ली है। हाँ, और किस कहाँ पर दुकान लगाई है, किस क्षेत्र में?
1: हमने राजेंद्र नगर चौराहे पे।
0: जी राजेंद्र नगर चौराहा पे। चलिए आपके पसंद का गीत मिल गया है तो सुनवाते हैं जी, बोलिए।
1: और दीदी हमारे थोड़े से पत्र शामिल नहीं हो रहे, क्या हो रहा है?
0: देखिए कोशिश यही रहती है कि सबके पत्र और जितने ज्यादा से ज्यादा पत्र हो वो शामिल किए जाए कार्यक्रमों में, पर ऐसा हो जाता है कि काफी सारे पत्रों के बीच कोई ना कोई पत्र छूट जाता है, और ऐसा होना बहुत ही नॉर्मल सी बात है, पर कोशिश यही रहेगी आगे भी आपकी बात जो है वो हम दूसरे उद्घोषक तक पहुंचा देंगे कि आपके पत्र को जो है वो प्राथमिकता दी जाए।
1: बिल्कुल। और दीदी हम एक कार्यक्रम शुरू करने की बात कह रहे हैं
0: जी,
1: कि फोन करें लोग गीत सुने, क्या हो सकता है चालू आपकी आकाशवाणी इंदौर से?
0: देखिए इस बारे में आज अगर आपने आपका पत्र कार्यक्रम सुना होगा तो इस बारे में आज और भी हमारे पास एक सुझाव आया था कि लोकगीतों का फरमाइशी कार्यक्रम शुरू होना चाहिए, पर इस बारे में जो है विचार जो है ऊपर चल रहा है, हमारे अधिकारी इस विषय पर विचार करेंगे, और अगर ये सही हो पाएगा तो हम जरूर से जरूर स्टार्ट करेंगे।
1: बिल्कुल दीदी,
0: चलिए थैंक यू।
1: मौसम कैसा है दीदी इंदौर में?
0: मौसम बहुत खूबसूरत हो रहा है इंदौर में, एक बारिश हो चुकी है और अब अगली भी बारिशों का सभी को इंतजार है, पर अभी बादल
1: बिल्कुल,
0: है
1: बिल्कुल।
0: थोड़ी सी गर्मी बिल्कुल, रहेगी बिल्कुल। क्योंकि जब तक दो तीन बारिश नहीं होती तब तक तो गर्मी होना लाजमी है। बट
1: बिल्कुल दीदी, और एक बात और कहना चाहते हैं, अभी बच्चों के स्कूल खुल चुके हैं
0: जी,
1: तो ज्यादातर बच्चों को मोबाइल की लत से बिल्कुल दूर रखें
0: जी। बिल्कुल
1: मोबाइल बिल्कुल बहुत से बहुत कम दें
0: जी।

0: यहाँ बच्चे मोबाइल में लगे रहते हैं, माता पिता नहीं देखते हैं क्या चला रहे हैं क्या देख रहे हैं।
1: बिल्कुल सही कहा,
0: बिल्कुल ऐसा लापरवाही बिल्कुल न बरते।
1: ये सभी अभिभावकों को ध्यान रखना चाहिए कि अपने बच्चों को
0: बिल्कुल
1: मोबाइल की लत से दूर रख के उन्हें ज्यादा से ज्यादा ऐसी चीजों से जोड़े जहाँ से उनका ज्ञान अर्जन हो सके और उनको सही दिशा और मार्गदर्शन मिले।
0: बिल्कुल दीदी, यही कहना चाहती हूँ, हम सभी बच्चों से भी कहते हैं और सभी श्रोताओं से
1: जी,
0: कि अपने बच्चों को पढ़ाए लिखाए और देश में अपना नाम रोशन कराए।
1: बिल्कुल सही कहा। चलिए, हमें फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुनवा रहे हैं,
0: ठीक है दीदी, नमस्ते
1: नमस्ते।

0: आकाशवाणी इंदौर पे चल रहा है फरमाइशी फिल्मी गीतों का सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन। मैं हूँ आपके साथ तृप्ति, और हमें लगातार कॉल्स आ रहे हैं, हम जुड़ रहे हैं, श्रोताओं से बात कर रहे हैं। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर है 2710223 और 2710224। आइए देखते हैं अगला कॉल किसका है। हेलो MH हॉटलाइन।
1: हेलो, गुड मॉर्निंग मैम।
0: MH हॉटलाइन में आपका बहुत बहुत स्वागत है, किससे बात
1: जी,
0: हो रही है?
1: गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, मैं रानू गुप्ता बात कर रही हूँ।
0: रानू जी, कैसी हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ, और आपके क्या हालचाल?
0: एकदम बढ़िया आपकी तरह। बताइए कैसा मौसम हो रहा है देवास का अभी?
1: मौसम कल तो बारिश हुई थी
0: जी,
1: और अभी ठंडा है, मतलब अभी बारिश नहीं है।
0: जी बारिश नहीं है पर ठंडक है।
1: हाँ बिल्कुल, गर्मी से तो राहत मिली,
0: गर्मी से राहत, और अभी गर्मी से और राहत मिले ऐसी हमारी उम्मीद तो है कि और बारिश हो, बट ये मौसम जो है घूमने के लिए बहुत बढ़िया है रानू जी। तो मैं तो कहूंगी कि आपके पति देव को बोलिए कि छुट्टी लें और आपको कहीं घुमाने ले जाए।
1: प्रॉब्लम ये है हाँ? कि मेरी यहाँ ना फ्लाय फर्नीचर की शॉप है,
0: हाँ
1: तो
0: जी,
1: मतलब छुट्टी लेने की जरूरत है, लेकिन हम लोगों का जाना डिसाइड हुआ है अक्टूबर में।
0: जी जी, अक्टूबर तो देखिए वो जो होता है सर्दियों का मौसम, वो तो सबसे बेस्ट होता है घूमने के लिए।
1: और वो मुझे इसलिए जाना है क्योंकि मेरा एक सपना है बंजी जंपिंग का।
0: अच्छा, तो आप ऋषिकेश जाना चाहें?
1: हाँ बिल्कुल, मुझे बंजी जंपिंग करनी है इसलिए।
0: जी जी जी, चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, पहले ही आप जा रही है तो बेस्ट ऑफ लक। और
1: थैंक यू।
0: एडवेंचर पसंद है तो आप बंजी जंपिंग कहाँ करने वाली है? ऋषिकेश में करने वाली है?
1: ऋषिकेश, ऋषिकेश।
0: अच्छा,
1: और ज्यादा नहीं करूंगी, बट 111 या फिर 17 मीटर की, ज्यादा मतलब हाई लेवल की नहीं करना क्योंकि थोड़ा डर भी लगता है।
0: हाँ जी हाँ, बट डर के साथ एडवेंचर का अलग ही मजा है।
1: हाँ वो तो है, लेकिन फिर भी जैसे मेरे बेटे ने बुक कर दिया है।
0: हाँ जी
1: हाँ, क्योंकि मतलब मेरा सपना था, मैं जब दूसरों को देखती हूँ ना,
0: बिल्कुल,
1: तो ऐसा लगता है कुछ हटके करना चाहिए।
0: बिल्कुल, तो आप रिवर राफ्टिंग भी ट्राई कर सकती है, वहाँ रिवर राफ्टिंग भी होता है।
1: अच्छा ऐसा क्या?
0: जी
1: पहले ये सपना पूरा करूँ?
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, सपने सबको पूरे करने चाहिए, भले वो जिस भी समय पूरे हो। ये नहीं सोचना चाहिए कि अब बच्चे बड़े हो गए हैं तो अब हमारे सपने पीछे छोड़ दिए जाए, उनके सपनों को जिया जाए। सबको अपने सपने जीने का अधिकार है, और किसी भी समय जब मौका मिले तब वो सपने को पूरा कर लेना चाहिए।
1: मेरे बेटे को और मेरे को डर नहीं लगता, लेकिन मेरे हस्बैंड बोलते हैं भाई मैं नहीं कर सकता हूँ, मुझे
0: देखिए डर लगना लाजमी है, पर डर के साथ साथ मजा भी उतना ही दुगना होता है इसमें।
1: हाँ वो ठीक है, लेकिन उन जैसे अभी हम लोग भोपाल गए हुए थे,
0: हाँ जी,
1: तो लेक पर हम लोग जैसे कि घूम रहे थे बोट में, तो उनको पहले थोड़ा सा डर लग रहा था कि नहीं जाए नहीं जाए, फिर उनने एक बच्चे को देखा ना, मैं भी चल रहा हूँ।
0: हो सकता है कि आपको बंजी जंपिंग करते देख उनकी हिम्मत खुल जाए और उन्हें लगे कि मुझे भी ये ट्राई करना चाहिए।
1: नहीं करेंगे, नहीं करेंगे।
0: चलिए बेस्ट ऑफ लक जाने के लिए। और बताइए कि आकाशवाणी इंदौर कब से सुन रही हैं आप?
1: मेरे को मैम अभी 2-3 महीने ही हुए हैं।
0: और क्या
1: आकाशवाणी,
0: हाँ जी, क्या रीजन रहा आकाशवाणी इंदौर आने का?
1: आने का रीजन ये है कि हाँ, आपके जो लाइव फोन इन प्रोग्राम है
0: जी,
1: वो मुझे पसंद है, और जो कि भोपाल में रिकॉर्डेड आ रहा है प्रोग्राम
0: जी, जी
1: तो रिकॉर्डिंग प्रोग्राम मुझे ना थोड़े से नकली जैसे लगते हैं, तो इसलिए मैंने ना वहाँ पे कॉल करना बंद कर दिया
0: जी,
1: और आपके यहाँ लाइव आता है तो मैं लाइव फोन इन प्रोग्राम पसंद है मुझे।
0: जी बिल्कुल, हमें भी बहुत पसंद है जब आप लोग कॉल लगाते हैं, सीधे बात होती है और हमें पता होता है। वैसे क्या कर रही हैं अभी आप? बारिश का मौसम चल रहा है तो घर में पकौड़े वगैरह बन रहे हैं?
1: पकोड़े तो यार अभी तो नहीं बने हैं, लेकिन मुझे मूंग की दाल के चीले जरूर बनाऊंगी शाम को।
0: जी बिल्कुल, ये मौसम खाने पीने का है, एंजॉय करने का है, तो घूमो फिरो और साथ में म्यूजिक हो तो मजा ही आ जाता है, क्या कहती है आप?
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो बताइए कौन सा गाना सुनवाए आपको?
1: मूवी का नाम है फिदा
0: जी,
1: और गाने के बोल है इश्क है तो इश्क का इजहार कर, और ये सॉन्ग डेडिकेट आपको रहेगा

0: क्योंकि मुझे अच्छा लगा आपसे बात करके।
1: जी मुझे भी बहुत अच्छा लगा रानू जी, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब नए श्रोता जुड़ते हैं और अपने दिल की बात ऐसे खुल के करते हैं।
0: कल भी मेरी एक मैम से बात हुई थी ना
1: जी,
0: वो भी बहुत अच्छी थी, मतलब मुझे अच्छा लगा उनसे बात करके।
1: जी हमें भी बहुत अच्छा लगा, आप ऐसे ही कॉल करते रहिए। और जैसे आप कह रही थी अभी कॉल पे कि आप आकाशवाणी भोपाल को इतने सालों से सुन रही थी और वो आपका पसंदीदा था, अब आप इंदौर सुनिए, इंदौर भी आपका पसंदीदा हो जाएगा।
0: जी जी जी
1: जी चलिए, कॉल करने के लिए धन्यवाद, ऐसे ही हमसे बात करते रहिएगा।

0: श्रोता की फरमाइश पर हम उन्हें सुनवा रहे थे फिदा फिल्म से ये गाना। और नए श्रोता हमसे जुड़ते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। आप भी अगर सुन रहे हैं आकाशवाणी इंदौर तो हमें कॉल कीजिए, हमसे बात कीजिए, अपनी फरमाइश सुनिए आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से MH हॉटलाइन पर। और अभी हम जुड़ रहे हैं हमारे अगले श्रोता से। हेलो MH हॉटलाइन। हेलो, नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। किससे बात हो रही है मेरी? सर थोड़ा सा रेडियो सेट अगर आपके आसपास है तो। जी जी, तो राजस्थान कोटा से बात कर रहे हैं आप? जी सर, बताइए वहाँ मौसम कैसा चल रहा है अभी?
1: मौसम अभी तो गर्मी है, देखो आने
0: जी पानी की उम्मीद है, पर अभी एक भी बारिश नहीं हुई वहाँ? छोटी मोटी फुहारें आ चुकी है,
1: ठंडी
0: हवा आ जाती है, बाकी गर्मी तो दिन में तो बढ़िया धूप निकलती है, गर्मी नहीं। जी जी जी, अभी वैसे शुरुआत पूरी तरह मानसून की हुई नहीं है, तो शुरुआती दौर में तो गर्मी रहेगी।
1: लोगों को सब रूटीन है, चक्कर तो ये
0: है जी,
1: प्रकृति सब अपने आप।
0: हेलो हेलो जी, हमारे श्रोता से संपर्क टूट गया है, लेकिन उनका पसंदीदा गाना हमारे पास है, तो आइए सुनते हैं उनकी पसंद का, उनकी फरमाइश का ये गीत।

0: एक के बाद एक हम बात कर रहे हैं अपने श्रोताओं से और उन्हें सुनवा रहे हैं उनके फरमाइशी गीत। चल रहा है कार्यक्रम MH हॉटलाइन। आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं, हमें कॉल करके सुन सकते हैं अपने फरमाइशी गीत। लेकिन आइए अभी देखते हैं कौन जुड़ रहा है हमसे। हेलो MH हॉटलाइन।
1: नमस्कार सर जी।
0: नमस्ते, किससे बात हो रही है?
1: अनोखे सिंह।
0: अनोखे जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। कैसे हैं आप?
1: आपका भी धन्यवाद। हम तो नॉर्मल है सर जी।
0: जी बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: बाग जिला धार।
0: धार से बोल रहे हैं। कैसा मौसम हो रहा है वहाँ का?
1: ठंडा मौसम है
0: जी। और बहुत दिनों बाद ठंडा मौसम देख के मन खुश है या नहीं?
1: हम तो बिना बिजली के सर जी, तो हम तो 12 महीने खुश रहते, प्रकृति के साथ चलते, विज्ञान के साथ कम चलते।
0: अच्छा, कितनी अच्छी बात है कि आप प्रकृति को ज्यादा महत्व देते हैं और प्रकृति के साथ ही बैलेंस करके चलने में, संतुलन बना के चलने में ज्यादा यकीन करते हैं। तो फिर आप अभी मॉनसून का मौसम है, पेड़ वेड़ लगाने में क्या क्या सोचा है? पेड़ वगैरह लगाए हैं या लगाने वाले हैं या करते हैं आप वृक्षारोपण मॉनसून में?
1: हम तो 12 महीने करते हैं सर जी। हमारा खेड़ापति हनुमान जी है
0: जी,
1: बागनगर में।
0: जी जी जी।
1: तो वहाँ जाके घंटे दो घंटे कुछ न कुछ कराई करते हैं सर।
0: और आप अकेले ये काम करते हैं या आपके साथ कोई समूह है, आपके दोस्तों का या परिवार का कोई जो आपके साथ मिलके ये सब करते हैं?
1: हमारे गांव के है और भी है, जिसे देखो कहना गलत हो जाता
0: जी,
1: कोई सहयोग करता है कि आप ये कर रहे हो तो मैं भी कर देता हूँ
0: जी,
1: वो साथ में एक दूसरे का कारा कर
0: जी।
1: और ये गाना है
0: जी,
1: जब याद की बदली छाती है
0: जी जी।
1: और सर जी ये समरपीठ है, ये अभी लखनऊ अग्निकांड हुआ सर जी, तो इसके पहले भी बहुत से हुए
0: जी जी। चलिए आपकी पसंद पे सुनवाते हैं आपको ये गाना। धन्यवाद कॉल करने के लिए।

0: आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का सजीव फोन इन कार्यक्रम में एमएच हॉटलाइन मेरी यानी तृप्ति के साथ, और हमारे साथ अब जुड़ गए हैं अगले कॉलर। हेलो एमएच हॉटलाइन, हमारा संपर्क टूट गया है, कोई बात नहीं, हम लोग लेते हैं अगला कॉल। हेलो एमएच हॉटलाइन।
1: हेलो
0: हेलो, नमस्कार, किससे बात हो रही है?
1: जी मैं अरविंद अग्रवाल बोल रहा हूँ मैम।
0: अरविंद जी कैसे हैं आप?
1: एकदम मस्त है, बढ़िया है, आप कैसी हैं?
0: एकदम बढ़िया। बताइए कौन सा गीत सुनवाया जाए आपको?
1: जी फिल्म का नाम रहेगा साथी।
0: साथी फिल्म से कौन सा गीत सुनेंगे आप?
1: आज हम तुम ओ सनम मिलके वादा करें।
0: जी क्या करते हैं सर आप?
1: जी मेरी किराने की दुकान है, वहीं बैठ के आपको सुनता हूँ।
0: जी और कहाँ पर है किराने की दुकान, कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: जी श्रीनगर जिला महोबा उत्तर प्रदेश।
0: उत्तर प्रदेश से बात कर रहे हैं
1: जी।
0: और परिवार में कौन कौन है आपके?
1: सभी लोग हैं, माता जी हैं, हम दोनों हैं, बच्चे हैं।
0: जी और सभी लोग सुनते हैं आकाशवाणी?
1: नहीं केवल मैं ही।
0: केवल आप ही सुनते हैं, और दुकान आप ही संभालते हैं या घर के और भी लोग संभालते हैं?
1: हमें काम होता है तो बच्चे देख लेते हैं, थोड़ी बड़े बड़े हो गए हैं।
0: जी। साथी फिल्म से कौन सा गाना सुनेंगे आप?
1: आज हम तुम इस हम मिलके वादा करें।
0: जी चलिए आपकी पसंद पे सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये गीत।
1: आज मेरी 15-20 कॉल गई तब वो फोन उठा।
0: चलिए पर अच्छी बात है कि ये कार्यक्रम का अंतिम गीत है और आपका फोन लग गया है, तो चलिए अब देर नहीं करते और आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गाना। कॉल करने के लिए धन्यवाद।

0: और इसी फरमाइशी गीत के साथ संपन्न होता है फरमाइशी फिल्मी गीतों का सजीव फोन इन कार्यक्रम एमएच हॉटलाइन। तृप्ति को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: हेलो एमएच हॉटलाइन।
0: हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही देर में अगला प्रसारण आकाशवाणी मध्य प्रदेश से।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम, फोन करें गीत सुने।
1: श्रोताओं नमस्कार, फोन करें गीत सुने कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपका अपना ये कार्यक्रम जुड़ा होता है आपकी फरमाइश से और आप अपनी फरमाइश हम तक पहुंचाते हैं टेलीफोन के माध्यम से। हमारा नंबर 2660902-2660902 और भोपाल का स्टडी कोड 0755। हेलो।
2: हाँ नमस्ते मैडम जी।
1: जी नमस्कार, फोन करें गीत सुने कार्यक्रम में स्वागत है आपका।
2: हाँ ध्रुवाराम साहू बोल रहा हूँ, कन्या दमो विकासखंड बिरसा जिला बालाघाट मध्य प्रदेश से।
1: जी साहू जी कैसे हैं?
2: बहुत अच्छे हैं।
1: और क्या चल रहा है इस समय?
2: बात खेती किसानी तैयारी चल रही है अभी।
1: हाँ मौसम अब तैयारी वाला आ गया है।
2: हाँ बस बिल्कुल मौसम बादल वाला बना हुआ है और बूंदाबांदी हल्की बारिश हो रही है अभी। हाँ
1: तो ये बताइए कि कौन सा गीत आज के कार्यक्रम में आप सुनना चाहेंगे?
2: कार्यक्रम में फिल्म का नाम है तुमसे नहीं देखा और गीत के बोल है भीड़ में तरहाई में, ये वाला गीत सुनवा दीजिए। बहुत दिनों बाद आपसे बातचीत हो रही है।
1: जी हाँ,
2: कम डेढ़ साल के बाद।
1: बहुत लंबे समय के बाद बात हो रही है, पर ये कितनी अच्छी बात है कि बात हो रही है और हम आप तक पहुँचा रहे हैं आपकी पसंद का गीत। आनंद लीजिएगा।
2: धन्यवाद।

0: हेलो,
1: हेलो।
0: फोन करें गीत सुने कार्यक्रम।
1: हाँ, मेरा नमस्कार, मुबारक बुलावा सीबरी एमपी चंदनपुरा से। मुबारक
0: कौन बोल रहे हैं?
1: खान।
0: मुबारक खान, क्या बात है
1: हाँ,
0: खान साहब, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका।
1: 3 महीने के बाद है मैंने फोन लगाया।
0: 3 महीने के बाद लगा, तो ये बताइए कि इस बात की खुशी है कि 3 महीने

0: महीने बाद लगा, या ये नाराजगी है कि 3 महीने तक
1: अरे
0: लगा
1: खुशी
0: नहीं?
1: तो है मैडम, आप देखो लग जाता है तो खुशी हो रही है, नहीं लगा तो नाराजगी।
0: मतलब आज इतने दिन की नाराजगी दूर हो गई आपकी?
1: 3 महीने हो गए, 3 महीने बाद में ट्राई तो कर रहे थे,
0: जी,
1: 15 दिन के बाद में फिर वो नहीं लगा, मतलब अब लग जाता, नहीं लगा तो नहीं लगता, वो तो
0: बिल्कुल
1: क्या
0: सही बात है।
1: कोई दिक्कत नहीं। पता देखो मैडम, हजारों आदमी जुड़े हैं इससे, अपने मतलब खुशी के जा रहे में किसी का हो गया काम तो हो जाता है, उसमें नहीं होता, नहीं लग पा।
0: बिल्कुल सही बात है। तो बताइए, आज के इस कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: खुदा गवाह का सुनवा देना कोई सा गाना,
0: खुदा गवाह का कौन सा गाना?
1: वो गाना आना है उसमें, वो का नाम भूलिया मैं उसका, और
0: पूरे
1: वो उसमें पूरे गाने अच्छे हैं उसमें तो।
0: गाने अच्छे हैं, तो कोई सा भी गीत सुनवा दिया जाए।
1: हाँ
0: अपनी पसंद का गीत सुनिए और आनंद
1: हाँ ठीक
0: लीजिए।
1: है मैडम, नमस्कार।

0: हेलो,
1: जय माता जी।
0: नमस्कार। फोन
1: मेरा
0: करें?
1: नाम है पूरन वर्मा और मैं आपसे बात कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट जयपुर राजस्थान, गांव का नाम अंजमहल बुगला। बस
0: कैसे हैं आप?
1: मैडम बढ़िया हूँ, आप सुनाओ।
0: हम भी एकदम बढ़िया हैं। क्या चल रहा है इस समय?
1: बस मैडम आपका कार्यक्रम सुनते रहते हैं और अभी घर पे हैं, धूप है अच्छी खासी है। आपको उधर बताओ मौसम कैसा हो रहा है?
0: हमारे यहाँ तो धूप और बादल दोनों थोड़ी आंख में चोली खेल रहे हैं, और कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी बौछारें कह लीजिए या जरा सी बूंदाबांदी हो जाती है। बाकी तो मौसम अभी गर्म है।
1: हाँ जी, इधर भी ऐसा ही हो रहा मौसम, बूंदाबांदी कल परसों हुई थी, पर अचानक फिर बादल हो जाते, कभी धूप हो जाती है ज्यादा।
0: सही बात है। सब अपनी पूरी एक प्रक्रिया से गुजरकर ही परिणाम तक आते हैं, तो बादल भी लुका छिपी खेलेंगे थोड़ा सा।

0: बताएंगे, थोड़ा हैरान करेंगे, उसके बाद बरसेंगे।
1: जी मैडम।
0: बताइए कौन सा गीत सुनना चाहेंगे कार्यक्रम में?
1: जी मैडम, फिल्म का नाम रहेगा घर वाली और बाहर वाली।
0: गीत के बोल?
1: उसमें गीत के बोल है नेपाल की ठंडी हवा।
0: आपकी पसंद का गीत आप तक पहुंच रहा है, धन्यवाद।
1: थैंक यू मैडम।

0: जी नमस्कार बहन जी।
1: नमस्कार।
0: मांगीलाल चंदेल बोल रहा हूँ, ग्राम सनमतिया जिला गुना से।
1: जी मांगीलाल जी, कैसे हैं?
0: बस बहन जी, आपकी दुआ और भगवान की कृपा से मैं बढ़िया हूँ, और मैं इस वर्ष से आशा करता हूँ कि आप भी बढ़िया होंगे।
1: बिल्कुल, आपकी आशा एकदम शत प्रतिशत सही है। हम एकदम प्रसन्न
0: जी
1: हैं, बढ़िया हैं, और आपके
0: जी
1: साथ कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। तो
0: जी
1: मौसम क्या कह रहा है इस समय?
0: मौसम ये कह रहा है कि 19 तारीख में तो हमारे क्षेत्र में बढ़िया बारिश हुई,
1: अच्छा।
0: और 19 से आज तक नहीं है, और अब बदल आना शुरू हो गए, काले काले बदल आ जाते हैं 19 तारीख से और आज तक, और शाम को 6-7 बजे साफ मौसम हो जाता है,
1: अच्छा।
0: और बढ़िया अब बस बदल आना शुरू हो गए, ऐसा
1: हाँ,
0: होगी लेकिन शाम तक साफ हो जाता है।
1: साफ हो जाते। हाँ, वो भी
0: इंतजार
1: थोड़े से इठलाते हैं,
0: था।
1: थोड़े से तो वो माहौल
0: जी
1: बना रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि बस अब बारिश होने ही वाली है।
0: जी जी सही है बहन जी, इंतजार भी है, सभी लोगों का इंतजार है कि बारिश कब होए, कब हम फसल बोए,
1: बिल्कुल सही
0: सबको
1: बात है।
0: इंतजार है।
1: कौन सा गीत आज के कार्यक्रम में सुनना चाहेंगे आप?
0: बहन जी फिल्म का नाम है 9-2-11।
1: 9-2-11
0: जी।
1: और गीत के बोल?
0: आंखों में क्या है पहला बादल,

0: चल में क्या जी
1: अजब सी हलचल, आंखों में क्या जी
0: रुपहला बादल,

0: फोन करें, गीत सुने कार्यक्रम।
1: जी नमस्ते मैम।
0: जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। कौन बात कर रहे हैं?
1: जी अरविंद अग्रवाल।
0: जी अरविंद जी, कैसे हैं आप?
1: एकदम बढ़िया हैं, आप कैसी हैं दीदी?
0: हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो बताइए क्या चल रहा है इस समय?
1: बस दुकान में बैठे हैं, आपको याद किया, लगाया फोन, लग गया।
0: बहुत बढ़िया बात है, तो जल्दी से गीत भी बता दीजिए, कौन सा सुनना चाहेंगे?
1: जी फिल्म का नाम रहेगा मोहरा।
0: मोहरा, और गीत के बोल?
1: ना कजरे की धार।
0: तो आपकी पसंद का गीत आप तक पहुंच रहा
1: जी,
0: है।
1: आप इसी महीने आपको हो जाना है रिटायर क्या मैम?
0: बिल्कुल बिल्कुल, इसी महीने 30 तारीख को विदा लेंगे आप सबसे।
1: जी आखिरी बार बात हो रही हो आपसे, ना लगे अब।
0: वैसे भी 7 दिन 10 दिन का गैप रखना है आपको, तो यूं भी 30 के पहले बातचीत नहीं हो पाएगी। तो हम उम्मीद करेंगे कि जो कार्यक्रम के पैरामीटर्स हैं, जो बेहतर चीजें हैं, उनका ध्यान रखेंगे और कार्यक्रम से आकाशवाणी से जुड़े रहेंगे।

0: फोन करें गीत सुने कार्यक्रम।
1: गांधी पार्क मनपुरा जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश से बोला दीदी, मनोज नामदेव
0: जी। मनोज जी कैसे हैं आप?
1: बढ़िया हैं दीदी, बहुत अच्छे हैं।
0: बहुत अच्छे हैं, क्या चल रहा है?
1: बस दीदी कुछ नहीं, अपने शॉप पर काम कर रहे थे और रेगुलर आपका प्रोग्राम सुन रहे थे।
0: बहुत अच्छी बात है। तो आज के कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनवाना चाहेंगे सबको?
1: आज के कार्यक्रम में सुनवा दो, फिल्म का नाम रहेगा अनोखा अंदाज और उसमें गाना है तू दीवाना पागल मेरा हो गया।
0: तो आपकी पसंद का गीत आप तक पहुंच रहा है।
1: धन्यवाद दीदी।

0: हेलो,
1: हेलो हेलो,
0: फोन करें गीत सुने
1: नमस्ते
0: कार्यक्रम।
1: मैडम जी।
0: जी नमस्कार
1: हरदयाल जाटव, जिला क्षेत्रीय मध्य प्रदेश।
0: जी। जाटव जी, कैसे हैं आप?
1: हाँ बस बढ़िया मैडम जी, मजे में है।
0: क्या चल रहा है?
1: आज अभी तो खेती की तैयारी हो रही, जुताई हो रही है। बढ़िया
0: तो बताइए कौन।
1: गाना गाना सुना
0: जी
1: दीजिए।
0: कौन सा गीत सुनना है?
1: बाजीगर
0: बाजीगर का कौन सा?
1: गाने के बोल भी यही है, फिल्म का नाम भी यही है।

0: उनका रहे गीत सुने कार्यक्रम।
1: मैम नमस्कार
0: जी। नमस्ते,
1: मैं रमेश प्रजापति ग्राम बाया तहसील रहती जिला सीहोर एमपी से बोल रहा हूँ।
0: जी रमेश जी, कैसे हैं?
1: बढ़िया हूँ मैम।
0: और क्या हो रहा है इस समय?
1: मैं सिलाई कपड़े काट रहा था, सिलाई काम करता हूँ दुकान पे कपड़े।

0: काट रहा था।
1: और फोन लगा लिया।
0: मेरे याद आया मैंने कि 2-3 महीने हो गए जब से फोन नहीं लगाया, आज ट्राई करता हूँ तो लग भी गया।
1: अरे क्या बात है, आज ज्यादातर श्रोता 2-3 महीने बाद ही फोन लगा रहे हैं। बताएं कौन सा गीत आज के कार्यक्रम में सुनवाया जाए?
0: कण कण में भगवान,
1: उसका कौन सा
0: अपने
1: गीत
0: पिया की मैं तो बनी रहे जुगनिया।
1: अब एक काम कीजिएगा, आज आप हमारी बात मान के
0: जी जी
1: अपने पसंद के गीतों की एक लिस्ट तैयार कीजिए जिसमें कम से कम 25 गाने लिखे हों फिल्मों के साथ, कम से कम 25, ठीक है? और जो गाना आज आपने सुनना चाहा है या फरमाइश की है उसके ऊपर राइट का टिक लगाना जिससे कि आगे उस गाने को दोहराए नहीं
0: जी।
1: उससे दो बड़े फायदे होंगे, एक तो आपको अपनी ही पसंद का गीत सुनने को मिलेगा और दूसरा कार्यक्रम बेहतर बन पड़ेगा।
0: जी।

0: फोन करें गीत सुने कार्यक्रम।
1: जी मैम।
0: जी नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं?
1: सनी शर्मा, गंजवा सोदा से। सनी शर्मा।
0: सनी शर्मा, तो सनी क्या करते हैं?
1: डेयरी फार्म।
0: उसमें काम करते हैं? आपका है क्या है, कुछ पूरी बात बताइए।
1: हाँ, डेयरी फार्म है घर का।
0: घर का, तो उसमें क्या क्या काम कर लेते हैं आप?
1: उसमें भैंस और डोरों का
0: तो देखभाल करते हैं।
1: पानी बनाना, गाय भैंस को चराना।
0: हाँ, वही पूछ रहे हैं कि थोड़ा विस्तार में बताएं तो पता लगे क्या क्या काम होते हैं इस तरह की चीजों के। तो कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: की देखभाल करना, चारा रखना।
0: अच्छा, बताइए कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: दोस्ताना फिल्म का सॉन्ग।
0: कौन सा? दोस्ताना का।
1: दोस्त सलामत रहे, दोस्ताना हमारा।
0: बिल्कुल, तो ये गीत पसंद है इसलिए सुनना चाह रहे हैं या आपने किसी

0: दोस्त को सुनवाना चाह रहे हैं।
1: गीत पसंद है, दोस्तों को भी
0: पसंद,
1: सुनवाना चाहते हैं।
0: ठीक है, तो आपकी पसंद का गीत पहुंच रहा है आप तक, आनंद लीजिए।
1: जी जी जी जी जी

0: के साथ ही फोन कार्यक्रम फोन करें गीत सुनिए संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार प्रदान करेंगे। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज भोपाल में राज्य स्तरीय

0: साइबर जागरूकता अभियान सेफ क्लिक 2.0 का शुभारंभ करेंगे। प्रदेश पुलिस के इस अभियान का उद्देश्य आमजन, विद्यार्थियों, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को साइबर ठगी और ऑनलाइन धोखाधड़ी के प्रति जागरूक करना है। राज्य वित्त आयोग का दल आज भोपाल संभाग के दौरे के दौरान सांसद, विधायक और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद संभाग आयुक्त कार्यालय में समीक्षात्मक बैठक में निकायों की वित्तीय मजबूती, स्वच्छता, पेयजल और राजस्व स्रोतों में वृद्धि के उपायों पर चर्चा होगी। प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी का ड्राफ्ट 5 जुलाई तक तैयार हो जाएगा। यूसीसी पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए हाईकोर्ट के जज की अध्यक्षता में बनी कमेटी ये ड्राफ्ट सरकार को सौंपेगी, जिसके बाद विधानसभा सत्र में पेश करने की तैयारी है। प्रदेश में मॉनसून अगले 2 से 3 दिनों में बालाघाट, छिंदवाड़ा और पांडुना के रास्ते प्रदेश में दाखिल हो जाएगा। आज प्रदेश के 42 जिलों में तेज आंधी और बारिश की संभावना है। और महिला टी20 वर्ल्ड कप में आज मेजबान इंग्लैंड का सामना वेस्टइंडीज से होगा। ये मुकाबला जीतने वाली टीम सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश कार्यक्रम लेकर हम आपके सामने फिर हाजिर हैं। आइए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये नगमा। लिखने वाले हैं नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना, मोनिका, नूपुर, ऋषिका और रॉबिन। खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया। आप सभी ने सुनना चाहा है अनुराग फिल्म का नगमा, आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की। तो आइए आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं अनुराग फिल्म से ये नगमा।

राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती, पूजा, जैस्मीन और प्रयागराज भट्ट। इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह, सुनीता, संगीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया। आप सभी ने सुनना चाहा है लता मंगेशकर की आवाज़ में ये नगमा।

0: का नाम अनुराधा, गीत के बोल शैलेंद्र के, तर्ज रवि किशन की।
1: जाने कैसे

आपकी फरमाइश कार्यक्रम इस वक्त आप सुन रहे हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं आप सभी की फरमाइश। लिखने वाले हैं प्रमिलागंज और टोल जिला रतलाम से बलवंत कुमार वर्मा, राजू भाई वर्मा, माया, शोभा, राहुल, ज्योति, अतुल, प्रियांश और ऋषि वर्मा। धमनी किरवई से ममता धीवर, मुन्नी धीवर, समयलाल युवांश, कुणाल और गोविंद धीवर। आप सभी ने सुनना चाहा है तुमको ना भूल पाएंगे फिल्म का नगमा, जिसे आवाज दी है अलका याग्निक और सोनू निगम ने। तो आइए आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं ये नगमा।

आइए सुनते हैं आप सभी की फरमाइश। लिखने वाले हैं औरंगाबाद से राजेश साबले, शीतल, राजदीप और राशि। जबलपुर से सुमन पांडे, देवयानी, दिव्य, निक्की। भोपाल से राग रोही और प्रशांत दुबे। अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया, आसमा, सालिया, शोएब, मुज्तबा, रऊफ और शाहिद। अकोला से ही लिखने वाले हैं रमेश कटनकर और वैशाली। तो आप सभी ने सुनना चाहा है हसीना मान जाएगी फिल्म का नगमा, आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की। तो आइए आपकी फरमाइश पूरी करते हैं और सुनवाते हैं ये नगमा।

अयब सुनते हैं आप सभी की फरमाइश अमलेश्वर से, तुमन, सुमन, मिथलेश, तारनी, सूरज, ज्योति और रियांश, भाटरपाड़ा से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार, आदर्श नगर मचोल से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश और सौरभ शर्मा। आप सभी ने सुनना चाहा है कुमार सानू की आवाज़ में, आओ प्यार करें फिल्म का ये नगमा।

0: इस गीत के साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, कृपया अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।
1: हेलो
2: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
1: फिर से
3: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
4: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
1: सर इतने कहाँ से?
4: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
1: 2 लाख
5: क्या हुआ पापा?
1: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
3: अरे
1: काट दिया।
5: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
1: फ्रॉड?
5: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
1: तो पैसे गवाओगे,
6: RBI कहता है।
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
9: सुनते रहिए मालवा किसान, आकाशवाणी इंदौर।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं भुवन मोहिनी का छठवां भाग।

0: अब तक धारावाहिक भुवन मोहिनी में आपने सुना, राजकुमार विजय श्रवा से प्रेम करने के कारण धारा नगरी के राजा द्युम्न सेन ने नर्तकी भुवन मोहिनी को देश निकाला दे दिया था। निर्वासित भुवन मोहिनी ने इंद्रप्रस्थ नरेश आदित्य सेन के यहाँ आकर आश्रय लिया, परंतु कुछ ही महीनों के बाद राजकुमार भी राजमाता से नाराज होकर इंद्रप्रस्थ पहुंच गया। लोग उसे न पहचान सके इसलिए वो आश्रम में श्रेष्ठ पुत्र बनकर रहने लगा, परंतु वास्तविकता इंद्रप्रस्थ के राजा आदित्य सेन तक पहुंच ही गई और उन्होंने राजकुमार को राजकीय अतिथि बनाया और एक उत्सव आयोजित कर सम्मानित किया। इस सम्मान उत्सव में भुवन मोहिनी का गायन और नृत्य हुआ, जिसके माध्यम से भुवन मोहिनी अपनी पीड़ा को राजकुमार के हृदय तक पहुंचाने में सफल हुई। भुवन मोहिनी को दुखी पाकर राजकुमार भी बहुत दुखी हुआ, परंतु इसी बीच हुआ ये कि लौटते समय रास्ते में उसकी नजदीकी राजकुमारी चंद्रहासिनी से पड़ गई। राजकुमार भुवन मोहिनी को अपने आवास में बुलवाता है, परंतु चंद्रहासिनी भी आ जाती है। आगे क्या होता है ये सुनिए धारावाहिक भुवन मोहिनी की छठवीं कड़ी में।
1: सर्वप्रथम भावी सम्राट को वचनबद्ध होना पड़ेगा कि मैं जिस प्रकार चाहूंगी वो पालन करेंगे।

तो सुनिए। देव, राजकुमारी चंद्रहासिनी आपका आतिथ्य ग्रहण करने से पूर्व ये जानना चाहती हैं कि आपके जीवन में उन्हें कोई स्थान प्राप्त होगा या नहीं।

0: क्या इस प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है और वो भी इसी समय?
1: अवश्य देव।
0: किंतु मैं समझता हूं कि मेरे उत्तर देने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे प्रश्न प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में बड़े ही महत्वपूर्ण और गोपनीय होते हैं। फिर भी यदि तुम उत्तर चाहती ही हो तो स्वयं तुम्हें मेरे जीवन और जीवन की भावनाओं का अधिक ज्ञान है। तुम स्वयं राजकुमारी के साथ बैठकर वही उत्तर दे सकती हो जो मैं स्वयं देता।
1: देव, राजकुमारी चंद्रहासिनी ने अपनी ओर से निश्चय कर लिया है कि वो या तो अपने जीवन में आपको प्राप्त करेंगी, अन्यथा आजीवन कुंवारी रहकर निराश जीवन का पटाक्षेप कर देंगी।
0: ऐसे संकल्प का प्रत्यक्ष लाभ क्या है?
1: ना हो, किंतु ऐसे जीवन को स्वीकार करने की प्रेरणा भी तो आपने ही दी है। आप ही ने राजकुमारी के शून्य जीवन में अनेक सरस भावनाओं को अनुप्राणित किया है। आप ही के द्वारा प्रेमोपहार प्राप्त कर राजकुमारी पूर्ण रूप से कृतकृत्य हुई है। वो देखिए ना, आपका हृदय चूमने वाला मुक्तामणि माणिक हार आज चंद्रहासिनी के जीवन की अमूल्य निधि बन गया है। और अपनी कनिष्ठिका उंगली दिखाइए,
0: हाँ?
1: ये अमूल्य मणिजड़ित अंगूठी राजकुमारी ने प्रेमोपहार के रूप में प्रदान की है। इसकी लाज तो रखनी होगी ना।
0: आज तुम्हें क्या हो गया है भुवन मोहिनी? क्यों आत्मनाश करने पर तुली हो? जो हृदय तुम्हारी भेंट चढ़ गया उसे तुम अस्वीकार भले ही कर सकती हो, किंतु तुम्हारी ओर से ये प्रस्ताव शोभा नहीं देता कि एक बार समर्पित किया हुआ हृदय दोबारा समर्पण का व्यापार रचाए।
1: देव, बड़ी तत्परता, खोज और प्रयास के पश्चात मैंने राजकुमारी चंद्रहासिनी को आपके योग्य जीवन संगनी के रूप में चुना था। मैं जानती हूँ कि देव, यदि अपने स्नेहदान से मुझे भाग्यशाली बनाते तो मैं सारे साम्राज्य में अपने साथ आपके वंश की भी अपकीर्ति कराती। युगों की संचित आपकी कीर्ति और प्रतिष्ठा मेरे कारण नष्ट हो जाती और आपके पवित्र और यशस्वी कुल में कलंक की कालिमा पुत जाती। मैं अपने तुच्छ प्रेम के नाम पर आपका सर्वनाश नहीं चाहती थी देव। आपकी अपकीर्ति को मैं सहन नहीं कर सकती थी। मैं आपके चरण छूती हूँ, मेरे प्रेम के वरदायक देवता। यदि मुझे अपने चरणों के आश्रय से दूर न रखना चाहते हूँ तो राजकुमारी चंद्रहासिनी को अपने जीवन संगनी के रूप में अवश्य चुने। मैं राजकुमारी के माध्यम से इन चरणों की पावन पूजा का सुख लूटूंगी और अपने इस तुच्छ जीवन को सफल और सार्थक बना लूंगी।
0: तुम ये क्या कर रही हो भुवन मोहिनी? मेरे हृदय स्थल में अपनी प्रतिमा के स्थान पर चंद्रहासिनी की प्रतिमा स्थापित करना चाहती हो? तुम ये क्यों नहीं समझती हो कि प्रेम व्यवहार में विकल्प नहीं हुआ करते?
2: राजकुमार और भुवन मोहिनी के मध्य हो रहा ये पूरा वार्तालाप मेरा अपमान है या मेरा आदर, समझ नहीं पा रही हूं। मेरे लिए प्रेम की भीख मांगी जा रही है और वो भी एक नर्तकी के द्वारा जो इस प्रेम की सौमनी भी है, समझ नहीं पा रही हूं कि अपने जिस सौंदर्य के मद में चूर होकर मैं भुवन मोहिनी को कई बार अपमानित कर चुकी हूं, उसी सौंदर्य को भुवन मोहिनी के किस आकर्षण के वशीभूत होकर

कब तक प्रतीक्षा करूंगी? तो यही कहना चाहूंगी कि आपको प्राप्त करने की आशा मेरे जीवन में इतनी मूल्यवान है कि मैं एक नहीं अनंत जीवन तक आपकी प्रतीक्षा करूंगी। यदि मैंने जाना कि देव के जीवन का व्रत किसी महान उद्देश्य के लिए आत्मोत्सर्ग करना है, तो उस समय भी मैं आपकी ही पथ का अनुसरण करूंगी।

0: ये कैसी दुविधा है? भुवन मोहिनी और चंद्रहासिनी मेरे लिए प्रेममयी सरिता की दो दुकोल के समान हैं, जिनमें परस्पर विचार साम्य देखकर समझ नहीं आता कि अंततः मुझे किस किनारे का सहारा लेना होगा। यदि मैं एक किनारे में ठहरकर अपने भ्रमित और उत्तप्त जीवन की थकान मिटाने का प्रयास करूंगा, तो स्वाभाविक रूप से दूसरा किनारा शून्य, नीरव और निःसार बन जाएगा। एक ओर यदि मिलन की रागिनी गुंजरित होकर बसंत की मादकता भरेगी, तो दूसरी ओर दीर्घ वियोग की विहाग रागिनी करुणा और अनमनेपन की सृष्टि करेगी। अंततः क्या होगा? जीवन में अंतर्द्वंद पना रहेगा, जो पल भर भी शांत नहीं रहने देगा। भुवन मोहिनी कितनी आत्मत्यागनी है। उसने जाने अनजाने यौवन प्रभात में प्रेम के जिस कोमल वृक्ष को आरोपित किया था और उसे अपने स्नेह, ममता और त्याग के जल से सींच सींच कर पल्लवित और पुष्पित किया था, आज वो प्रेम वृक्ष अपनी उन्नत शाखाओं को चारों ओर फैलाए गर्व से उसको देख रहा है। अभी वो समय आ गया था जब वो प्रेम वृक्ष अपने मधुर फलों का रसा स्वादन कराकर चिर व्यथित और उत्तप्त जीवन को शांति प्रदान करता। तो भुवन मोहिनी एक दार्शनिक की भांति उस प्रेम वृक्ष की छाया और फल से अनासक्त हो रही है, और दूसरी ओर मैं एक निविड़ अंधकार से भरे आसक्त जीवन को लेकर मृग तृष्णा में ही जीवन व्यतीत करने की बात सोच रहा हूं। क्या ये धोखा नहीं है? आज राजकुमारी सर्वांतःकरण से अपना सर्वस्व उस व्यक्ति को सौंपने जा रही है जिसका हृदय अतीत काल से ही दूसरे की धरोहर बन चुका है। राजकुमारी, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे सुकुमार और पवित्र जीवन का सर्वनाश करूं। तनिक सोचो, ये महान मानव जीवन अनेक लुभावने आकर्षणों का केंद्र बिंदु बनने के लिए नहीं प्राप्त हुआ है, ये तो जन्म जन्मांतर के पुण्यों का उपहार है।
1: देव, मैं नारी हूं, स्वयं मायामयी, मुझे मुक्ति नहीं बंधन ही चाहिए। इसी में मेरे जीवन की सार्थकता है और आपकी सेवा में ही मेरे जीवन का जप तप और भोग निहित है। आप स्वयं ज्ञानाश्रय हैं, मैं इन चरणों को त्याग कर अन्यत्र कहां जाऊंगी? मैं चाहूंगी कि आत्मोद्धार पथ पर आप ही का अनुसरण करूं, किंतु मैं जो कुछ करूंगी वो अपने आप नहीं, आपसे प्रेरणा लेकर, आपके छाया बनकर। मैं ज्ञान प्रकरण की उपासिका नहीं, मेरा निश्चल ज्ञान यही है कि पग पग पर आपका अनुगमन करते हुए आपकी साधना की सिद्धि बनूं। दूसरा प्रश्न है भुवन मोहिनी का, तो मैं आपको उलझन में नहीं डालना चाहती। अंतःकरण से केवल यही कह सकती हूं कि उसका चरित्र उदात्त है, वो महान है। उसने मेरे लिए अपना सर्वस्व त्याग करने का व्रत लिया है। मैं अपने को उसकी चेरी समझूंगी, भले ही कहने को वो नर्तकी हो और मैं राजपुत्री। मैंने अपनी झोली उसके समक्ष फैलाई है, उसने उदारता पूर्वक मुझे वो सब कुछ दे डाला है जो एक नारी

0: दूसरी नारी को नहीं दे सकती। इसलिए देव, मैं सदैव उसकी कृतज्ञ रहूंगी, उसकी छोटी बहन बनकर उसके अतुलित प्यार की भागनी बनूंगी।
1: ज्ञात होता है कि राजकुमारी ने महानता के आदर्श भुवन मोहिनी से प्राप्त कर लिए हैं और भुवन मोहिनी को परखने की दृष्टि भी प्राप्त कर ली है। मुझे अब कोई आपत्ति नहीं, किंतु इतना फिर भी मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि भुवन मोहिनी की स्मृति को मेरे हृदय से उखाड़ फेंकने का प्रयास कभी नहीं होना चाहिए, अन्यथा मैं अपनी प्रियता प्रदान करने के स्थान पर केवल घृणा ही दे सकूंगा।
0: मुझे स्वीकार है, मैं बस आपके चरणों में स्थान पाना चाहती हूँ।
2: अरे उठिए उठिए राजकुमारी, आज से हम दोनों सगी बहन ही हैं, हम एक दूसरे के सुख दुख में समान भागीदार होंगी।
1: आज तो राजकुमारी का अतिथि सत्कार करना मेरा परम धर्म है। आज हम सब मिलकर एक प्रेममय सहभोज का आयोजन करें और कल इसी समय हम सब कुरुक्षेत्र के मेले की ओर प्रस्थान करेंगे।
3: मित्र, आज इस पर्णकुटी में कुबेर और सुरेश की राजसभा का सुख प्राप्त हो रहा है। देव, यदि आज्ञा हो तो मैं भी अपनी सेवा द्वारा कृतकृत्य हो लूं।
1: क्यों नहीं अरण्यक, देखो आज इंद्रप्रस्थ की राजकुमारी तुम्हारे निर्वासित युवराज की अतिथि हैं। उनकी अतिथि सेवा के लिए उत्तम से उत्तम राजसी भोजन बनवाओ और हां, जो भी भूखा प्यासा अतिथि इधर से गुजरे उन सबका भरपूर आतिथ्य करके दान दक्षिणा आदि देकर विदा कराओ।
3: जो आज्ञा युवराज।
4: अरण्यक, बोलो सारथी, हम लोग कब तक रहेंगे कुरुक्षेत्र के मेले में?
5: जब तक हमारे स्वामी चाहेंगे।
4: एक बात बताओ अरण्यक।
5: हाँ।
4: राजकुमार जी विवाह तो राजकुमारी जी के साथ ही करेंगे ना?
5: क्यों?
4: दो दो सौंदर्य स्वामिनियों के साथ हमारे स्वामी रमण कर रहे हैं। भुवन मोहिनी को लेकर राजकुमारी जी को कोई आपत्ति नहीं दिखती। समझ में नहीं आता कि युवराज के हृदय के समीप अधिक कौन है।
5: मैं बताता हूं, इस प्रश्न का उत्तर तो संभवतः राजकुमार के पास भी ना होगा।
4: आ?
5: परंतु एक बात मैं बता दूं।
4: क्या?
5: राजकुमार जी को तुम उतना नहीं जानते जितना मैं जानता हूं।
4: इसीलिए तो तुमसे पूछा।
5: तुम देखते होगे राजकुमार का मन इस धार्मिक मेले में आध्यात्मिक प्रवचनों को सुनने, साधु महात्माओं से विवेचना करने में अधिक लग रहा है।
4: हाँ, सही बात है।
5: इसका तात्पर्य क्या हुआ?
4: क्या हुआ?
5: ये कि राजकुमार जी भोग विलास के सरोवर में होते हुए भी इन सब से निर्लिप्त।
4: अरे हाँ, परंतु
5: वो देखो तीनों लोग तैयार हो गए हैं, अब शीघ्रता करो।
4: चलो चलो चलो।
5: रथ तैयार है श्रीमान।
1: तो फिर चलो। देवियों, आप लोग तैयार हैं ना?
2: हाँ स्वामी। राजकुमारी जी आइए, रथ पर विराजिए।
0: अवश्य भुवन मोहिनी, आओ, तुम भी आओ।
2: जो आज्ञा। आइए स्वामी।
5: चलो सारथी।
1: अरण्यक, तनिक पता तो लगाओ यहाँ भीड़भाड़ कैसी है।
5: युवराज और आपके साथ ये देवियां इस मेले में विशेष आकर्षण पहले ही बन चुके हैं। अब तो लोग मेला देखने की अपेक्षा आप लोगों के दर्शन के लिए अधिक इच्छुक हैं।
2: देव, आप चिंतित दिख रहे हैं।
1: कुछ विशेष बात नहीं है भुवन मोहिनी।
5: युवराज, इसी रास्ते से सम्राट यानी आपके पिताश्री निकल रहे हैं और माताश्री भी साथ में हैं।
2: अब क्या होगा?
1: धैर्य रखो, मैं देखता हूं।
2: राजकुमारी जी, आप क्यों चुप हैं?

0: ऐसा लगता है जैसे राजकुमार जी को मुझ में कोई रुचि ही ना हो।
1: ऐसा मत कहिए राजकुमारी, शीघ्र ही आप राजकुमार जी को समझ जाएंगी। उनके हृदयागार में आप ही सुशोभित हैं, विश्वास रखिए।
2: युवराज, पिता महाराज ने आपको देख लिया है, उन्होंने आपको बुलवाया है। उनके साथ महाराज आदित्य सेन भी हैं।
3: क्या करना चाहिए मुझे?
2: करना क्या चाहिए, वो देखिए, वो लोग स्वयं इधर आ रहे हैं।
4: पुत्र विजय शर्मा।
3: महाराज के चरणों में प्रणाम। प्रणाम महाराज आदित्य सेन।
5: चिरंजीवी भव, हमारी पुत्री कहाँ है?
2: वो रथ पर बैठी हैं, हम अभी उन्हें साथ सम्मान ले आते।
0: पुत्र,
3: माँ,
0: तुम क्यों हमें छोड़ के चले आए?
2: महाराज, आपकी भावी पुत्रवधू।
0: चरण स्पर्श पिताजी।
4: अरे आ पुत्री, मेरे हृदय से लग जा।
5: पुत्री, ये तुम्हारी भावी माँ है।
0: चरण स्पर्श माँ।
6: अति सुंदर महाराज आदित्य सेन, सचमुच आपकी पुत्री सर्वश्रेष्ठ सुंदरी है।
7: प्रणाम सम्राट, प्रणाम साम्राज्ञी।
4: तुम वही नर्तकी भुवन मोहिनी हो ना?
5: हाँ सम्राट, हमने इसे राजाश्रय दिया है, परंतु इसी ने भावी विवाह की पृष्ठभूमि तैयार की है।
4: युवराज, भावी सम्राट,
3: देव,
4: हम तुम्हें क्षमा करते हैं, अपनी धारा नगरी को लौटो। साम्राज्य की प्रजा अपने प्रिय युवराज और भावी सम्राट का कुशल क्षेम जानने के लिए उत्सुक है। और भुवन मोहिनी?
7: आज्ञा देव।
4: इन एकांत दिनों में तुमने अवश्य ही युवराज के प्रति अपनी सेवाएं समर्पित की होंगी, अतः तुम्हारा निर्वासन निषेध किया जाता है। चलो तुम भी अपनी मातृभूमि के दर्शन लो। अब मैं शीघ्र ही अपनी पुत्र वधू को बुलाने के लिए पुनः इंद्रप्रस्थ आऊंगा और महाराज आदित्य सेन की हार्दिक आकांक्षा को पूर्ण करूंगा।
6: आ पुत्री, आ एक बार फिर से मेरे हृदय से लग जा। अरे तुम्हारे गले में ये हार, अर्थात मेरे विजय श्रवा ने तुम्हें पहले ही अपना मधुर प्रेमोपहार समर्पित कर दिया है। बोलो, विजय श्रवा के प्रति कृतकृत्य हो ना?
0: आपके चरणों की वरदायनी सेवा का अधिकार मेरे लिए बना रहे माँ।
6: ऐसा ही होगा पुत्री। युवराज।
3: आज्ञा माँ।
6: समस्त देश पर हूण जाति का आक्रमण आसन्न है, देखना अपने दायित्वों को। मेरे दूध की लाज रखना पुत्र, क्षत्राणी का दूध राष्ट्र सम्मान के बलिदान में मूल्य की सदैव अपेक्षा करता आया है। तुम्हें भी आसक्ति से निवृत्ति प्राप्त कर राष्ट्र रक्षा के पवित्र दायित्व का निर्वाह करना होगा। तुम्हारी नसों और धमनियों में भी उष्ण रक्त का प्रवाह होना चाहिए, जिससे छत्राणी के दूध की गौरव गरिमा बनी रहे।
3: ऐसा ही होगा राजमाता। भारत साम्राज्य का दूध समस्त राष्ट्र के गौरव की रक्षा का भार वहन करेगा, हूणों को विजय श्रवा की शक्ति पराजित करेगी।
4: युवराज, आज मैं वृद्ध और अशक्त हो गया हूं, परंतु मैंने राष्ट्र को तुम जैसा प्रतिनिधि समर्पित किया है। आज वंश और कुल के सम्मान की रक्षा का दायित्व मुझसे अधिक तुम पर आ पड़ा है। साम्राज्य की सेना अपने भावी सम्राट के अधिनायकत्व में उन समस्त जातियों को पराजित करेगी जो भारतीय वैभव के सपनों द्वारा आक्रांत हैं। किंतु सुना है कि हूण जाति एक बर्बर जाति है, जो समृद्धि और वैभव की प्राप्ति के लिए रक्त सागर का मंथन करके विजयश्री के साथ लौटना चाहती है। मैं चाहता हूं युवराज का प्रेम त्रसित हृदय शीघ्र संतुष्ट होकर राष्ट्र रक्षा के प्रश्न पर गंभीरतम विचार करे। महाराज आदित्य सेन।
5: कहिए सम्राट।
4: आप यथाशीघ्र विवाह का आयोजन करें, ताकि संस्कार से निवृत्त होकर युवराज राष्ट्र रक्षा के लिए तत्पर हों। मेरी तीर्थ यात्रा का भी यही उद्देश्य है कि कुरुक्षेत्र की इस अति प्राचीन रणस्थली में देश भर की प्रजा और खंड राज्यों के नरेश एकत्र होंगे और राष्ट्र रक्षा पर एक मन से हम सब लोग मिलकर निर्णय

0: करेंगे।
1: सम्राट क्षमा करें, भारत का भावी सम्राट ये कभी नहीं चाहेगा कि जब राष्ट्र रक्षा की विकट घड़ी उपस्थित हो तब वो प्रणय बंधन में फंसकर विलासी कहलाए। सम्राट, मुझे माता के दूध की गौरवमयी परंपरा को राष्ट्र के प्रांगण में सदैव विकसित रखना है। मृत्युंजय के उपासक कभी भी विलास की तुच्छ वृत्ति को स्वीकार नहीं करेंगे। राष्ट्र की रक्षा के लिए मैं अगणित चंद्रहासिनी और राजकुमारियों के प्रेम संबंधों को बलिदान कर दूं।
2: पितृतुल्य सम्राट, मैं भी क्षत्राणी हूँ और चाहती हूँ कि अतीत काल की अन्य राज्य महिषियों की भांति मैं भी युद्ध क्षेत्र की ओर प्रयाण करूं और भैरवी बनकर शत्रु दल का संहार करूं।
3: बेटी, जब तक क्षत्रिय की नसों में एक भी बूंद उष्ण रक्त प्रवाहित होगा तब तक वो ये न चाहेगा कि राष्ट्र की वीरांगनाएं युद्ध स्थली में उपस्थित हों। तुम्हें ज्ञान नहीं होगा कि काम देवता अतुल रूप वैभव लिए ये हमारा पुत्र महान वीर और पराक्रमी भी है। विश्वास करो कि वो युद्ध में अवश्य ही हूणों को पराजित करेगा। फिर भी तुम जैसी वीरांगना पुत्र वधू पाकर मैं अवश्य गौरवान्वित होऊंगा।

0: रेडियो धारावाहिक भुवन मोहिनी की छठी कड़ी। इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब सुनते हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में रानी दुर्गावती के चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की और श्रद्धापूर्वक पुण्य स्मरण कर नमन किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने महान वीरांगना रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने एक पोस्ट पर कहा कि उनका शौर्य, अदम्य साहस और रणकौशल देश के गौरवशाली इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है, जो विशेष रूप से बेटियों के लिए प्रेरणादायक है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। प्रदेश में आज से साइबर जागरूकता अभियान सेफ क्लिक 2.0 चलाया जा रहा है। प्रदेश पुलिस के इस अभियान का उद्देश्य आमजन, विद्यार्थियों, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को साइबर ठगी और ऑनलाइन धोखाधड़ी के प्रति जागरूक करना है। प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी का ड्राफ्ट 5 जुलाई तक तैयार हो जाएगा। यूसीसी पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए हाईकोर्ट के जज की अध्यक्षता में बनी कमेटी यह ड्राफ्ट सरकार को सौंपेगी, जिसे बाद में विधानसभा सत्र में पेश करने की तैयारी है। प्रदेश में मानसून अगले 2 से 3 दिनों में बालाघाट, छिंदवाड़ा और पांडुना के रास्ते प्रदेश में दाखिल हो जाएगा। मौसम विभाग के अनुसार प्री मानसून के चलते आज प्रदेश के 42 जिलों में तेज आंधी और बारिश की संभावना है। और महिला T20 वर्ल्ड कप में आज मेजबान इंग्लैंड का सामना वेस्टइंडीज से है। ये मुकाबला जीतने वाली टीम सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी। बेहतर रन रेट के चलते इंग्लैंड टॉप पर बना हुआ है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र के योगदान से लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम महिला कार्यक्रम।

महिला सभा सुनने वाली आप सब सखियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके साथ है आपकी दोस्त धम्ममित्रा। स्वीकार कीजिए प्यार भरा नमस्कार। बहनों, पहले हम महिलाओं के लिए समाज में ये सोच होती थी कि महिलाएं नरम दिल और बेहद संवेदनशील होती हैं, और ये सत्य भी है। इसीलिए उनके कार्य क्षेत्र सीमित रखे गए। पर अब सोच में बदलाव आया है कि महिलाएं अगर अंदर से नरम दिल और संवेदनशील हैं, साथ ही मजबूत इरादे भी रखती हैं, हौसला रखती हैं, आत्मविश्वास भी, इसी के बल पर आज कोई भी क्षेत्र महिलाओं से अछूता नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और कूटनीति में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र हर साल 24 जून को कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाता है। किसी ने सही कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय हित का कोई लिंग नहीं होता। आज कई देशों में महिलाएं राजदूत हैं, कूटनीतिज्ञ हैं। उनके योगदान ने विश्व भर में शांति, सुरक्षा, विकास और मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के प्रयासों को मजबूत किया है। इसके साथ ही दो देशों के बीच मध्यस्थता, संघर्ष समाधान में भी महिलाओं की भागीदारी अधिक समावेशी और स्थायी परिणामों में योगदान दे रही है। इनमें भारत की भी महिलाओं का योगदान कुछ कम नहीं है, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को आकार देने और दुनिया के सबसे कठिन मुद्दों को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विजय लक्ष्मी पंडित, स्वतंत्र भारत की प्रमुख राजनयिक, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष 1953 में चुनी गई। इस शीर्ष पद पर पहुंचने वाली वह दुनिया की पहली महिला थी जिन्होंने सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत की राजदूत के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की। ब्रिटेन में 1954 से 1961 तक भारत की उच्चायुक्त रहीं। इस कार्यकाल में इन्होंने भारत ब्रिटेन संबंधों को मजबूत करने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अपनी कूटनीति का लोहा मनवाया। एलेनोर रूजवेल्ट, ये संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी

प्रतिनिधि थी। इन्होंने विश्व प्रसिद्ध मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के मसौदे को तैयार करने में अहम कूटनीतिक भूमिका निभाई। आंग सान सू की, म्यांमार की सबसे प्रसिद्ध राजनेता व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त कूटनीतिज्ञ हस्ती हैं। मेडेलिन अल्ब्राइट, अमेरिका की पहली विदेश मंत्री और कूटनीतिज्ञ। सी बी मुथम्मा, 1948 में संघ लोक सेवा आयोग की विदेश सेवा परीक्षा पास कर इतिहास रचने वाली मुथम्मा ने हंगरी और नीदरलैंड जैसे देशों में भारतीय राजदूत के रूप में कार्य किया। रुचिरा कंबोज, संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि। इन्होंने 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष पद की भी कमान संभाली थी। चोकिला अय्यर, भारत की पहली महिला विदेश सचिव रहीं। निरुपमा राव, भारत की विदेश सचिव बनने वाली दूसरी महिला थीं जिन्होंने अमेरिका और चीन जैसे महत्वपूर्ण देशों में भारतीय राजदूत के रूप में शानदार कार्य कर संबंधों को और मजबूत किया। मीरा शंकर, अमेरिका में भारत की राजदूत रहीं। स्नेहा दुबे, संयुक्त राष्ट्र में भारत की प्रथम सचिव के रूप में तैनात रहीं। वहां कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान को दिए गए उनके करारे और सटीक जवाब के लिए उन्हें जाना जाता है। इनम गंभीर, संयुक्त राष्ट्र महासभा में आतंकवाद के मुद्दे को बड़ी ही चतुराई से दुनिया के सामने रखने वाली प्रमुख भारतीय राजनयिक रहीं। डायना अबगर, 20वीं सदी की शुरुआत में विश्व की पहली महिला राजदूत नियुक्त होने वाली हस्तियों में से एक थीं। मार्गरेट थैचर, ब्रिटेन की पहली महिला प्रधानमंत्री जिन्हें आयरन लेडी के रूप जाना जाता है। शीत युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में उनका बहुत बड़ा प्रभाव था। हंसा मेहता, एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनयिक जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग में भारत का प्रतिनिधित्व किया और अधिकारों की भाषा को सभी पुरुष से बदल कर सभी मानव करवाने में महत्वपूर्ण कूटनीतिक जीत हासिल की। सखियों, ये कुछ प्रमुख प्रसिद्ध महिला कूटनीतिज्ञ रहीं जिन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता और रणनीतिक फैसलों से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के साथ साथ विश्व राजनीति को भी नई दिशा दी। अब आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: सखियों, आज आपके लिए लेकर आए हैं एक कहानी, अधिकार। कहानीकार हैं कुंदा जोगलेकर। तो आइए सुनते हैं ये कहानी, अधिकार।
1: माँ को गुजरे लगभग 20-22 दिन होने जा रहे थे। बेहद तकलीफ दे होते हैं घर के बड़े बुजुर्गों के जाने के बाद के कुछ दिन। तो यहाँ तो माँ ही थी जन्मदात्री, और मेहमान भी थे वहाँ सभी। बहुत भयानक होता है सब कुछ होते हुए भी भरे पूरे घर का ये विचित्र सा खालीपन। बहुत कुछ खो गया सा लगता है। बचपन से अब तक उसके साथ बिताए युवावस्था के दिन, फिर शादी के बाद बेटी के मायके के लिहाज से सारी परंपराएं, लेन देन माँ सब कुछ मुझसे पूछ कर ही करती रही। मैं ही अपने कर्तव्य में कम पड़ी शायद, क्योंकि अपने परिवार की व्यस्तताओं में जाने अनजाने बहुत कुछ छूट जाता है बेटियों से। वही मेरे साथ भी हुआ, लेकिन उनकी ओर से मुझे सब कुछ माफ था। वैसे मन की तैयारी तो बीमार की शारीरिक मानसिक अवस्था को देखते हो ही जाती है, मेरी भी हो चुकी थी। लेकिन मेरे यहाँ आने से लेकर उनके जाने के बीच जो कुछ मैंने देखा समझा, उसे देखते हुए मैं इतनी आसानी से घर छोड़ने का मानस तो नहीं बना पा रही थी। रुकने के कारण एक ये भी था कि यूनिवर्सिटी से कुछ जानकारी भी लेना थी। 2 माह पहले माँ के बीमार होने की सूचना देकर ही भैया ने मुझे बुला भेजा। आने के बाद लगा मुझे तो कब का आ जाना चाहिए था। वैसे भी माँ का अब कोई भरोसा नहीं लग रहा था। गंगा पूजन के 2 दिन बाद अचानक ही दूसरे दिन बड़े भैया ने ये बताकर इच्छा पूर्ति कर दी कि शालिनी, तुम अभी यहाँ हो तो तुम्हारी भाभी कह रही थी हम दोनों, मतलब बच्चे भी 4-5 दिन उनके मायके हुए, उसकी माँ जो बीमार है मिलाएंगे, वो नहीं आ पाई ना इसलिए। मन मांगी मुराद पा मैंने फौरन हाँ कर दिया। ये तो अच्छा हुआ कि बीमारी में स्वास्थ्य की दृष्टि से भले ही माँ हड्डियों का ढांचा रही, लेकिन उनकी वाणी और बुद्धि अंतिम समय तक एकदम सही रही। तभी तो भैया भाभी के इधर उधर होते ही वो धीमी धीमी आवाज में कुछ न कुछ बताती रही। ऐसे वक्त हमेशा उनकी नजर दरवाजे की ओर लगी रहती। देख बेटा शालू, तुझे बता तो रही हूं, लेकिन कहना मत उन लोगों से, कुछ भी मत कहना, फालतू में किटकिट करेंगे। और अब मेरा क्या बेटा, आज हूं कल नहीं, बाद में तेरे रिश्ते खराब ना हो, बस इतनी इच्छा है। मैं पिछले 6 माह से वृद्धाश्रम में थी, और ज्यादा स्वास्थ्य खराब होने पर उन्हें लाना पड़ा, ये भी माँ से पता चला। लेकिन मेरे आने से उसे बहुत अच्छा लगा, बार बार कहती रहती, जितनी देर उसके पास बैठती हाथ पकड़े बतियाती ही रहती। सुनकर रोना आ जाता और गुस्सा 7वें आसमान पर, वो अलग से। मुझे क्यों नहीं बताया, पूछने पर भड़बड़ा कर रो पड़ी। बेटा कहावत है ना कि जरूरतमंदों को अकल मान सम्मान कुछ नहीं होता, बस इसलिए सह लिया चुपचाप। मेरी इच्छा बिल्कुल भी नहीं थी वहां जाने की, वो तो तेरे पिताजी के दोस्त थे ना शंकर भाई जी, सर्वे सर्वा हैं उस आश्रम के, उनका नाम सुनकर मैंने हाँ कह दिया। सच कहूं बेटा, उन्होंने बहुत रिश्ता निभाया, ध्यान रखा मेरा। सुनकर मन का सैला सा हो गया था। वो ठीक है माँ, लेकिन घर तो घर होता है ना, यहाँ कौन सा घर था, सबके मुंह हमेशा फूले, अनचाहा मेहमान हो गई थी मैं, अब भी वही है। वहां समय से खाना सोना, और इसके अलावा शंकर भैया का बेटा बेटी कभी कभी पूछताछ करने भी आ जाते थे समय निकालकर। बाकी आसपास भी लोग थे बतियाने के लिए, सभी किसी न किसी कारण से दुखी, अपनी अपनी बात कह लेते थे। यहाँ तो मुंह में ताला लगाए रखना पड़ता है, जो भी मुंह से निकले बुरा ही लगता है दोनों को। मेरी तबीयत ज्यादा खराब हो गई, नहीं तो मैं तो मरते दम तक रहती वहां। घर आने पर मैंने ही कहा था रघु से तुम्हें बुलाने को, उसने फौरन बुला भेजा। किस्मत मेरी, अब तुम्हें देखकर आंखें मूंदू यही इच्छा है, हो सके तो रह लेना बेटा कुछ दिन। कहते कहते गला भराया और खांसी भी, मैंने उठकर पानी पिलाया। ठीक है अब मैं हूं ना, रहूंगी अभी, और थोड़ा ठीक हो जाऊंगी तो ले भी जाऊंगी अपने साथ, फिर ठीक है अब आराम करो। आशीर्वाद का उठा हुआ हाथ और थकान भरे चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई थी उनके। बस उस आखिरी मुस्कान के बाद सुबह नहीं उठ पाई माँ, चली गई थी हमेशा के लिए। मायके जाने की बात पर मेरे हामी भरने के बाद भैया भाभी दोनों को बच्चों को साथ ले उनके मायके चले गए। घर पर कामवाली बाइयाँ थी तो उद्देश्य की पूर्ति के लिए मेरे पास भरपूर समय भी था। मैंने एक बार पूरे घर का मुआयना किया, अपने कमरे को बाकायदा ताला लगा कर गए थे। खैर मुझे उससे कोई काम था भी नहीं, लेकिन इस मानसिकता पर आश्चर्य होने लायक कुछ भी था नहीं। बाहर आंगन, बड़ी सी बैठक, 4-6 कमरों वाला शानदार घर, पुश्तैनी छोटे से घर को छोड़कर पिताजी ने ही बनवाया था। पिछली ओर था एक छोटा सा कमरा। हाँ, कबाड़ तो नहीं, लेकिन लोहे के पुराने बड़े बड़े ट्रंक, तांबे पीतल के पराते, कढ़ाइयाँ, थालियाँ, डब्बे, ढेर सारे पुराने ग्रंथ, किताबें जो दीवारों में बनी अलमारियों में ठूस ठूस कर भरे गए थे। जमीन पर भी फैलावा कुछ कम नहीं था। और यहीं कोने में थी माँ की खाट भी। ये भी माँ से ही पता चला। वो तो मेरे आने के पहले दोनों बच्चों को एक ही कमरा देकर दूसरे कमरे में माँ को शिफ्ट कर दिया था। मुझे याद आया, दादी और माँ हर दीपावली पर सारे तांबे पीतल के बर्तन नींबू आमचूर राख से साफ करती तो चमचमा जाते थे और हमारा संयुक्त परिवार का रसोई घर जैसे खिल उठता था। शालू बेटा, देख, इन सबको कोई कदर नहीं है किसी चीज की। मेरे जाने के बाद सब बेच खाएंगे। तुझे चाहिए कुछ तो ले जा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। सब कबाड़ है मेरी तरह। माँ के शब्द घर कर गए थे कानों में। अगले ही पर शंकर चाचा को फोन लगा, अपनी बात कह दी और अपना काम शुरू कर दिया। पुरानी पुस्तकों से भरे ट्रंकों को छोड़कर सारा सामान साफ कर दिया, सारा कमरा साफ कर दिया। माँ पिताजी का एकमात्र फोटो कपड़े में लपेट सूटकेस में रख लिया। दो दिन बाद ही भैया भाभी के लौटने से पहले मेरा सूटकेस वापसी के लिए तैयार था। लौटते ही सूटकेस देख भैया ने पूछा, जा रही हो? तुम्हारा काम हो गया कॉलेज का? अभी रुक जाओ कुछ दिन, तब तो वक्त ही नहीं मिला बोलने का, बैठने का। हाँ, हो गया, रिजर्वेशन भी हो गया, 2 घंटे बाद निकलूंगे। और हाँ भाभी, खाली थी तो माँ का पीछे वाला कमरा साफ कर दिया मैंने, अब आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अरे काहे को परेशान हुई शालू, हम कर लेते बाद में, कहती वे फौरन पहुंच गए उस कमरे का मुआयना करने। अगले ही पल जोर से भैया को आवाज देते ही वो भी पहुंचे, पीछे पीछे मैं भी। ये कमरा इतना खाली खाली कैसे है शालू? हाँ, कुछ दिन तो लगेंगे ना भैया, माँ यहाँ काफी समय तक थी ना इसी कोने में। नहीं, माँ की बात नहीं है, यहाँ का भरा पूरा सामान कहाँ गया? अब उसका क्या भैया, वो तो पूरा का पूरा कबाड़ था, कुछ भी तो उपयोग नहीं था, तो बेच दिया। कैसी बातें करती हो भाभी, बेचूंगी क्यों, पागल हूं क्या? सही जगह दे दिया। लेकिन क्यों, किसे दिया और हमसे पूछे बिना क्यों? तांबा पीतल आज मार्केट में क्या भाव है पता भी है? कितना कीमती सामान था, अपने बुजुर्गों की पूंजी थी वो। अरे वाह, लेकिन इसमें चिल्लाने की क्या बात है भाभी, सब कुछ शंकर चाचा जी के वृद्धाश्रम को ही तो दिया है और आध्यात्मिक पुस्तकें उनकी लाइब्रेरी को, उन्हें जरूरत भी थी। अब आप जैसे बहू बेटों के चलते काफी लोगों को रहना पड़ता है वृद्धाश्रम में, माँ को भी तो रखा ही था ना आपने। अब रही सामान की कीमत की बात, तो माँ से ज्यादा कीमती तो नहीं था ना वो। शंकर चाचा जी कह रहे थे वृद्धाश्रम को ये संपन्नता माँ के आशीर्वाद से मिली, अब इससे ज्यादा क्या खुशी व्यक्त करते वो, बोलो ना भैया। लेकिन तुम्हें ये मनमानी करने का अधिकार दिया किसने? भाभी का पारा चढ़ गया था। माँ मेरी भी थी, आपने बताया मुझे माँ को वृद्धाश्रम भेजने से पहले, भाली थी तो मुझसे कहते एक बार, ले जाती मैं, अब चिल्लाने की जरूरत नहीं है। जब 4 कमरों के होते माँ को कबाड़ मानकर वृद्धाश्रम में रखा जा सकता है तो घर के सचमुच के कबाड़ को क्यों नहीं? और रही अधिकारों की बात, तो भाभी आप तो करो ही मत, क्योंकि अधिकार तो आपसे पहले के हैं और आपसे ज्यादा हैं। आखिर इस घर की बेटी हूँ, जन्मी हूँ यहाँ, आप बाद में आई हो, मेरे अधिकार तो अभी बहुत है इस घर पर भी और घर में भी, और उन्हें लेने में व्यवस्थित कायदे से आऊंगी। समर्थ होते हुए भी माँ की बेकदरी की सजा भुगतनी पड़ेगी आपको, चलती हूँ। और आप दोनों चाहो तो मेरे सूटकेस की तलाशी ले सकते हो, केवल माँ और पिताजी की फोटो मैंने शादी कार्ड रख ली है, क्योंकि उसकी आपको जरूरत हरगिज नहीं है। चलती हूँ, जल्दी ही आऊंगी अपने अधिकारों के कागजातों के साथ, तब तक इंतजार कीजिएगा, लौटूंगी।
0: सखियों, अभी आप सुन रही थी ये कहानी अधिकार, कहानीकार थी कुंदा जोगलेकर। सखियों, हमारा संविधान हमें बहुत सारे अधिकार देता है, उसी में से एक है आत्मरक्षा का अधिकार। भारतीय न्याय संहिता की धारा 34 और 35 के अंतर्गत हर नागरिक को अपनी आत्मरक्षा का कानूनी अधिकार प्राप्त है। आत्मरक्षा एक ऐसा प्रति उपाय जिसमें व्यक्ति अपने स्वास्थ्य और कल्याण को नुकसान से बचाता है। महिलाओं के लिए आत्मरक्षा केवल शारीरिक सुरक्षा का माध्यम नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और सशक्तिकरण का प्रतीक है। आजकल महिलाओं और बच्चियों को भी काम करने व शिक्षा पाने के लिए घर से दूर या कभी कभी रात में भी निकलना पड़ता है। ऐसे में स्वयं की रक्षा की चिंता तो रहती ही है। सखियों, हमें चाहिए कि हम जब भी घर से बाहर निकलें पूरे आत्मविश्वास से निकलें, चौकन्ने और सतर्क रहें, साथ ही कुछ गैजेट भी रखें तो बेहतर होगा। आत्मरक्षा के लिए उपयोग होने वाले गैजेट छोटे पोर्टेबल और आधुनिक तकनीकी उपकरण होते हैं, जिन्हें आसानी से आपातकाल की स्थिति में उपयोग करने के लिए उन्हें डिज़ाइन किया जाता है। उदाहरण के लिए पेपर स्प्रे और जेल, इसे आत्मरक्षा के लिए सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। इससे जब अचानक स्प्रे किया जाता है तब आँखों व चेहरे पर अस्थायी रूप से जलन और धुंधलापन होता है, जिससे हमें भागने का समय मिल जाता है। पर्सनल अलार्म, यह एक छोटा की चेन जैसा डिवाइस होता है। बटन खींचने या दबाने पर यह बहुत तेज सायरन बजता है, जिससे हमलावर घबरा जाता है और आसपास के लोग सतर्क हो जाते हैं। टेजर या स्टन गन, यह बैटरी संचालित होता है। हमलावर को छूने पर यह तेज इलेक्ट्रिक शॉक देता है, जिससे मांसपेशियां सुन्न हो जाती हैं। टैक्टिकल फ्लैशलाइट, इसकी फ्लैशलाइट काफ़ी तेज चमकदार होती है। इसे आँखों पर करने से दिखना भी बंद हो जाता है। सेल्फ डिफेंस कीचेन, नुकीली छड़ वाली मजबूत मेटल कीचेन होती है। इसका उपयोग दबाव बिंदुओं पर प्रहार करने के लिए किया जा सकता है। सखियों, अगर हम कुछ गैजेट्स का उपयोग आत्मरक्षा के लिए सावधानी पूर्वक करें तो हम निश्चित तौर पर सेफ रहेंगे और आत्मविश्वास से भरे भी।

सखियों, हम सब अक्सर लोगों को ये कहते सुनते हैं कि मेरे घुटनों में दर्द रहता है, कमजोरी महसूस होती है, जबकि हम तो सब कुछ खाते हैं। आजकल केमिकल वाली खाद से फसलें उगाई और बड़ी की जाती हैं। हर खाने पीने वाली चीज़ों में केमिकल प्रिजर्वेटिव के रूप में मिला होता है, जिसके चलते खाद्य सामग्री की गुणवत्ता प्रभावित होती है। ऐसे में हमें उतने पोषक तत्व नहीं मिलते जितने मिलने चाहिए। सखियों, मोरिंगा, जिसे हम सहजन भी कहते हैं, हमारे लिए एक सुपर फूड है। इससे मिलने वाली लंबी सी फली को हम अपने सांभर में ज़रूर डालते हैं, पर सखियों, इसकी पत्तियों और फूलों में भी बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, इसीलिए इसे सुपर फूड की श्रेणी में रखा गया है। सखियों, इसकी फलियां हमेशा नहीं मिलती, पर अगर हम इसकी पत्तियों को तोड़कर छांव में सुखाकर रख लें तो इसे हम साल भर उपयोग कर सकते हैं। सूखी हुई पत्तियों का पाउडर बनाकर एयर टाइट डिब्बे में रख लें। इस पाउडर को आटे में मिलाकर पराठा या रोटी बनाई जा सकती है। इसका सूप भी बनाया जा सकता है और लड्डू भी आटे में मिलाकर बना सकते हैं। इसके फूलों की सब्जी भी सखियों बहुत स्वादिष्ट लगती है। अक्सर रोड किनारे मिलने वाले मोरिंगा के पेड़ से पत्तियां, फल व फलियां तोड़कर लाएं व अपने हिसाब से इसे ज़रूर उपयोग करें। सखियों, मोरिंगा की पत्तियों में प्रचुर मात्रा में कैल्शियम, आयरन, विटामिन ए और सी, साथ ही अमीनो एसिड्स भी पाए जाते हैं। शोधों से ये भी पता चला है कि दूध से ज़्यादा कैल्शियम इन पत्तियों में पाया जाता है। आयरन भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए ये हड्डियों को मजबूत करते हैं। साथ ही आयरन हमारे हीमोग्लोबिन को भी बढ़ाता है। विटामिन ए और सी त्वचा और प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। साथ ही इसमें पाए जाने वाले अमीनो एसिड्स प्रोटीन को बनाने में सहायक होते हैं। तो सखियों, मोरिंगा या सहजन इसीलिए सुपर फूड माना गया है। आप भी प्राकृतिक रूप से, शुद्ध रूप से, प्रकृति के उपहार इस सुपर फूड का सेवन जरूर करें और अपने आप को चुस्त और दुरुस्त रखें। इसी के साथ अपनी दोस्त धम्म मित्रा को जाने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र के योगदान से अभी आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। समय है एक अंतराल का।
1: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
2: इस समय आप हैं हमारे साथ।
3: जी हाँ, मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर के साथ।
1: सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम लोक संगीत। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र की भेंट है। आज इसमें आप सुनेंगे मेहरबान सिंह कुशवाहा के गाए चौकड़िया गीत।

मेहरबान सिंह कुशवाहा के गाए चौघड़िया लोकगीत अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत। प्रस्तुति आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र की थी। प्रसारण आकाशवाणी मध्य प्रदेश से किया गया। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम सुगम संगीत। आज इसमें आप सुनेंगे हरजिंदर सिंह तेजा के गाए भजन। प्रस्तुति आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र की है।

0: चलो दीदी झूला झूलते हैं।
1: हाँ हाँ क्यों नहीं। और झूलते झूलते सुनते हैं
0: मालवा की शान आकाशवाणी
2: इंदौर।
0: अरे दीदी धीरे धीरे।
3: युवाओं के जोश उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
4: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
3: तो सुनते रहिए मालवा की शान
2: आकाशवाणी इंदौर।
4: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
5: इस समय आप हैं हमारे साथ।
6: जी हाँ, मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर के साथ।
7: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। श्रोताओ दोपहर के 2 बज रहे हैं। लीजिए प्रस्तुति कार्यक्रम फिल्म संगीत। सबसे पहले सुनते हैं लव स्टोरी फिल्म का गीत। आशा भोसले और अमित कुमार की आवाजें हैं। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और इसकी धुन बनाई है राहुल देव बर्मन ने।

0: लगता है लड़की का कोई मॉडल पुराना लगता है,
1: लड़की जरा सी दीवानी लगती है।
2: कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है तेरी कसम फिल्म से, आवाजें अमित कुमार के साथ लता मंगेशकर की है, गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत आर डी बर्मन का है।

0: तेरी कसम फिल्म का गीत अभी आपने सुना अमित कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में, और इसी के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त करते हैं। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। प्रादेशिक समाचारों के लिए कृपया इंतज़ार कीजिए।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने महान वीरांगना रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। राज्यपाल पटेल ने लोकभवन में आयोजित कार्यक्रम में रानी दुर्गावती के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। वहीं मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की मौजूदगी में जबलपुर के पास रानी दुर्गावती की समाधि स्थल नरईनाना में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने संबोधित किया।
1: मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी पहली कैबिनेट अगर कहीं हुई है तो जबलपुर में रानी दुर्गावती को समर्पित करके हुई है। उनकी एक राजधानी संग्रामपुर भी थी, हमने दूसरी कैबिनेट संग्रामपुर में भी की और अभी मदन महल के आसपास पूरा रानी का अपना 100 करोड़ की लागत से उनका वो गौरवशाली इतिहास को जीवंत करते हुए उनके जीवन के विविध पक्षों को दिखाने के लिए 100 करोड़ की लागत से वो एक नया संस्थान बन रहा, बहुत जल्दी भी उसका लोकार्पण होने वाला।
0: मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज शाम भोपाल स्थित रविन्द्र भवन में राज्य स्तरीय साइबर जागरूकता अभियान सेफ क्लिक 2.0 का शुभारंभ करेंगे। मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा संचालित इस विशेष अभियान का उद्देश्य नागरिकों को साइबर अपराधों से सुरक्षित रखना तथा जिम्मेदार डिजिटल व्यवहार को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम में पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना भी उपस्थित रहेंगे। अभियान के तहत आमजन, विद्यार्थियों, युवाओं, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को साइबर ठगी, ऑनलाइन धोखाधड़ी और डिजिटल सुरक्षा से जुड़े विभिन्न पहलुओं के प्रति जागरूक किया जाएगा। राज्य वित्त आयोग के सदस्य आज भोपाल संभाग के दौरे पर हैं। आयोग नगरीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति को लेकर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से सुझाव ले रहा है। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष जयवान सिंह पवैया सहित वीआईपी सर्किट हाउस में सांसद, विधायक और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर रहे हैं। आयोग की टीम संभाग आयुक्त कार्यालय में अधिकारियों के साथ वृहद समीक्षात्मक बैठक भी करेगी। बैठक में निकायों की वित्तीय मजबूती, स्वच्छता, पेयजल और राजस्व स्रोतों में वृद्धि के उपायों पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में रोजगार के क्षेत्र में सतत रूप से नवाचारों की आवश्यकता है। प्रदेश में धार्मिक, प्राकृतिक, पुरा धरोहर से संबंधित पर्यटन क्षेत्र समृद्ध हैं। कल मंत्रालय में कौशल विकास और रोजगार विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटकों को आवश्यक मार्गदर्शन के लिए गाइड की व्यवस्था को सशक्त बनाने और विभिन्न व्यंजनों का आनंद दिलवाने के लिए कार्य की व्यापक संभावनाएं मौजूद हैं। युवाओं को बड़ी संख्या में इन कार्यों से रोजगार मिलेगा। कौशल विकास और रोजगार विभाग का पर्यटन विभाग से तालमेल स्थापित कर यह कार्य संभव है। देश के युवा नेतृत्व वाले 6 स्टार्टअप्स ने यूथ को लैब नेशनल इनोवेशन चैलेंज 2026 के 8वें संस्करण में जीत हासिल की है। यह पहल संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी इंडिया और सिटी फाउंडेशन द्वारा अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग के सहयोग से चलाई जा रही है और टी हब फाउंडेशन द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। इस वर्ष चैलेंज के लिए 28 राज्यों के स्टार्टअप से 350 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए। अब रुख करते हैं खेलों की खबर का। हॉकी इंडिया ने 5 से 14 जुलाई तक ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा कर दी है। भारतीय टीम के नए कोच टिम व्हाइट के नेतृत्व में जूनियर एशिया कप सहित आगामी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी के सिलसिले में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में 7 मैच खेलेगी। खैदेम शिलेमा चानू युवा टीम की कप्तान संभालेंगी, जबकि निधि और एंगिल हर्षारानी मिंज गोलकीपर की जिम्मेदारी संभालेंगी। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में मानसून की आहट शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों में बालाघाट, छिंदवाड़ा और पांडुना के रास्ते प्रदेश में मानसून दाखिल हो सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक आज प्रदेश के 42 जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश के आसार हैं। ग्वालियर, भिंड और मुरैना सहित कई जिलों में गर्मी का असर बना रहेगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नर्मदापुरम जिले में उमरिया स्थित आश्रम परिसर में पौधरोपण कार्यक्रम में 1100 पौधे लगाने का सामूहिक संकल्प लिया गया। आगरमालवा के बड़ौद में दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिकों के लिए सहायक उपकरण शिविर में हितग्राहियों को मौके पर ही कृत्रिम अंग और कैलिपर्स वितरित किए गए। शिवपुरी में जिला प्रशासन ने कोचिंग और शैक्षणिक संस्थानों के निरीक्षण के दौरान फायर सेफ्टी नियमों में लापरवाही बरतने पर 8 संस्थानों को सील कर दिया है। और गुना कलेक्टर के आदेश के मुताबिक आगामी 23 अगस्त तक रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर और ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दोपहर समाचार थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। पाकिस्तान पर सहअध्यक्ष के तौर पर अपनी स्थिति का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। ईरान में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी कर गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी। कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश और अचानक बाढ़ के बाद असम में हाई अलर्ट। हॉकी इंडिया ने अगले महीने ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सहअध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने सहअध्यक्ष के तौर पर पाकिस्तान के आचरण की आलोचना की। पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद के टिप्पणियों के जवाब में पी हरीश ने जम्मू कश्मीर पर भारत के लंबे समय से चले आ रहे रुख को दोहराया। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है।
1: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। ये हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है ऐसी बातें कही गईं। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
0: ईरान के तेहरान में भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार को देखते हुए भारतीय नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी किया है। एक रिपोर्ट।
2: भारतीय दूतावास ने कहा कि बदलते घटनाक्रमों के बावजूद भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचना चाहिए। बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने तथा स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। विश्वसनीय स्रोतों के जरिए स्थानीय घटनाक्रमों पर बारीकी से नजर रखने और स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने को भी कहा गया है। लोगों से दूतावास को अपने बारे में जानकारी देने की सलाह दी गई है। ताजा जानकारी और आगामी परामर्श के लिए दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार नजर बनाए रखने को कहा गया है। किसी भी तरह की सहायता के लिए दूतावास ने आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। ये नंबर हैं +98912810915। दूसरा नंबर है +98912810909। तीसरा नंबर +98912810902 और चौथा नंबर है +98993217935। इसके अलावा भारतीय नागरिक cons.tehran@mea.gov.in पर ईमेल के जरिए भी दूतावास से संपर्क कर सकते हैं। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिवेश के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि समान मूल्यों और आपसी विश्वास वाले देशों को और अधिक निकटता से मिलकर काम करना चाहिए। सियोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक के दौरान उन्होंने ये बात कही।
1: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बैठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूंगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 3 दिन की खाड़ी क्षेत्र की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसका उद्देश्य ईरान के साथ हुए नए संवाद और समझौते के बाद प्रमुख अरब सहयोगियों को विश्वास दिलाना है।
1: चार महीने से जारी पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिका ने ईरान के साथ नया समझौता किया है। श्री रूबियो कल देर रात अबुधाबी पहुंचे। उनका संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और बहरीन में बातचीत का कार्यक्रम है। इस सप्ताह के अंत में वे गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के अधिकारियों से मिलेंगे। इस दौरान वे क्षेत्रीय सहयोगियों को अमरीका और ईरान के बीच लागू अंतरिम शांति समझौते और संभावित अंतिम समझौते के ढांचे के बारे में जानकारी देंगे। यात्रा से पहले श्री रूबियो ने कहा कि उनकी यात्रा का उद्देश्य ईरान और अमेरिका की बातचीत में खाड़ी देशों की राय को महत्व देना है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते के अंतर्गत ईरान को होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने टोल वसूली को अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया। सप्ताहांत में स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत सकारात्मक रही। हालांकि दोनों पक्षों ने बैठक के बारे में अलग अलग राय व्यक्त की है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय मुंद्रा बंदरगाह से 3000 किलोग्राम मादक पदार्थ आयात मामले से जुड़े धनशोधन मामले में दिल्ली के 5 स्थानों पर तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय के अधिकारियों ने बताया कि ये तलाशी हरप्रीत सिंह तलवार, शम शुदुरुन और उनके सहयोगियों से जुड़े परिसरों पर की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि मादक पदार्थ से प्राप्त धन का कथित तौर पर दिल्ली के नाइट क्लबों में निवेश किया गया था। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर कर्नाटक में उनके परिवार द्वारा संचालित एक ट्रस्ट को भूमि आवंटन से जुड़े कथित घोटाले में संलिप्त होने का आरोप लगाया है। पार्टी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने आज नई दिल्ली में कहा कि वर्ष 2024 में कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड ने एयरोस्पेस और रक्षा क्षेत्रों में अनुसंधान तथा विकास के लिए ट्रस्ट को लगभग 5 एकड़ औद्योगिक भूमि आवंटित की थी। श्री भंडारी ने आरोप लगाया कि इन क्षेत्रों में कोई पूर्व अनुभव न होने के बावजूद ट्रस्ट को लगभग 100 करोड़ रूपये की अनुमानित कीमत की भूमि आवंटित की गई। भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमार स्वामी ने इस्पात उद्योग से भविष्य के विकास के लिए डिजिटलीकरण अपनाने को कहा है। आज नई दिल्ली में इस्पात क्षेत्र में डिजिटलीकरण पर आयोजित चिंतन शिविर में उन्होंने ये बात कही। इस्पात क्षेत्र के मजबूत प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए श्री कुमार स्वामी ने कहा कि देश वर्ष 2018 से विश्व के दूसरे सबसे बड़े इस्पात उत्पादक के रूप में अपनी मजबूत स्थिति बनाए हुए है। आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर के लिए केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने इस क्षण को ऐतिहासिक बताया और कहा कि ये परियोजना आवागमन को सुगम बनाएगी।
3: बहुत ही ऐतिहासिक मूवमेंट है जब देश की राजधानी जहां से पूरी सरकार चलनी है सेंट्रल विस्टा और यहां के कर्मचारी और यहां के जितने भी कार्यालयों में काम करने वाले सब लोग उनको एक ऐसी सुविधा प्रदान करने के लिए आज भूमि पूजन अथवा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आज ये की गई है और ये जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद दिल्ली के बहुत से छोर आपस में जहां जहां मेट्रो लाइन चलती हैं उनको ये जोड़ेगी। अब ये जो लाइन है ये आर के आश्रम से लेकर के और इंद्रप्रस्थ तक जिसके अंदर 9 स्टेशन्स हैं।
0: केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। श्री मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार प्रदान करेंगे। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के ताराताला के पास निर्माणाधीन गोदाम के छत गिरने से 5 लोगों के मारे जाने की आशंका है। मलबे में कुछ और लोग फंसे हुए हैं। अग्निशमन और आपातकालीन सेवा कर्मी तथा पुलिस बल मौके पर पहुंच चुके हैं। बचाव अभियान जारी है। आज पासपोर्ट सेवा दिवस है। ये दिन 24 जून 1967 को पासपोर्ट अधिनियम के लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा कि पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण का क्रियान्वयन चिप आधारित ई पासपोर्ट की शुरुआत, नए पासपोर्ट सुरक्षा केंद्रों और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना तथा रिकॉर्ड स्तर पर पासपोर्ट जारी करने से यात्रा सुगम हो रही है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सेवा, सुशासन और नागरिक सुविधा के संकल्प के साथ इंडिया पोस्ट द्वारा संचालित डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र के माध्यम से पासपोर्ट सेवाएं देश के सुदूर क्षेत्रों तक भी पहुंच रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज रानी दुर्गावती को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल

0: पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि रानी दुर्गावती एक वीर रानी और नारी शक्ति का प्रतीक थी। रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रानी दुर्गावती ने अपनी मातृभूमि और संस्कृति की रक्षा में अद्वितीय साहस और वीरता का परिचय दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में भी अगले दो दिन इसी तरह का मौसम रह सकता है। असम, मेघालय, कर्नाटक के भीतरी भाग, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 29 तारीख तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया गया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में शनिवार तक तेज हवा के साथ वर्षा का अनुमान है। अरुणाचल प्रदेश के निचले सुबनसिरी जिले में तेज बारिश से असम के विभिन्न सीमावर्ती जिले के निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि असम में सभी संबंधित विभाग हाई अलर्ट पर हैं।
1: अरुणाचल प्रदेश में हुई भारी बारिश के बाद असम में संभावित बाढ़ की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी संभावित एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा है। इसके परिणाम स्वरूप असम में धेमाजी, लखीमपुर, विश्वनाथ और सोनितपुर सहित निचले क्षेत्रों में नदियों के जलस्तर और प्रवाह की गति में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है। अगले एक से दो दिनों में बाढ़ का पानी और आगे के क्षेत्रों की ओर बढ़ सकता है। SDRF, NDRF और अन्य इमरजेंसी रेस्पॉन्स दलों को तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। जिला प्रशासन को संवेदनशील क्षेत्रों पर कड़ी निगरानी रखने और आवश्यक एहतियाती उपाय सुनिश्चित करने को कहा गया है। निचले तथा बाढ़ संभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने, प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देश पालन करने, जलमग्न क्षेत्रों से दूर रहने तथा छोटी नावों से यात्रा न करने की सलाह दी गई है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: हॉकी इंडिया ने 5 से 14 जुलाई तक ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा कर दी है। भारतीय टीम नए कोच टिम वाइट के नेतृत्व में जूनियर एशिया कप सहित आगामी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी के सिलसिले में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में 7 मैच खेलेगी। खैदेम शिलेमा जानू टीम की कमान संभालेंगी, जबकि निधि और एंगल हर्षारानी मिंज गोलकीपर की जिम्मेवारी संभालेंगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज मैक्सिको में खेले गए ग्रुप के मैच में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बना ली। डैनियल मुनोज के दूसरे हाफ में किए गए गोल की मदद से कोलंबिया ने लगातार दूसरी जीत हासिल करते हुए अगले दौर में प्रवेश किया। इससे पहले पुर्तगाल ने ह्यूस्टन में इसी ग्रुप के एक मैच में उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। 41 वर्षीय क्रिस्टियानो रोनाल्डो के 2 शानदार गोल की बदौलत पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान पर 5-0 से जीत दर्ज की। रोनाल्डो अब 6 अलग अलग विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 1% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 908 अंक की उछाल के साथ 77,109 पर, जबकि निफ्टी 241 अंक बढ़कर 24,065 पर कारोबार कर रहा था। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह में स्थित ऐतिहासिक हेमिस मठ में आज उत्साह और श्रद्धा के साथ हेमिस उत्सव की शुरुआत हुई। 2 दिन के उत्सव में देश विदेश के हजारों श्रद्धालु, पर्यटक, संस्कृति प्रेमी और बौद्ध विद्वान शामिल हो रहे हैं। प्रत्येक वर्ष मनाया जाने वाला हेमिस उत्सव लद्दाख के सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों में से एक है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। पाकिस्तान पर सहअध्यक्ष के तौर पर अपनी स्थिति का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। ईरान में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी कर गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी। कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश और अचानक बाढ़ के बाद असम में हाई अलर्ट। हॉकी इंडिया ने अगले महीने ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुति कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम में सबसे पहले सुनते हैं हम आपके हैं कौन। इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर, एसपी बाला सुब्रमण्यम और साथियों की आवाज में। गीत लिखा है रविंद्र रावल ने, संगीत राम लक्ष्मण का है। इस गीत को पसंद किया है बिलहरी बड़खेरा कटनी से संतोष सिंह ठाकुर, अवधेश कुमार दुबे, सुमेर पटेल, सुदामा सेन, बारेलाल बढ़ई, मुन्ना खान एवं ग्राम पहरुआ से रामकुमार लोधी, गोविंद यादव और संजय पुरी। इसी गीत को सुनना चाहा है छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा और साथ ही साथ ये फरमाइश हमारे हाथ में है डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजबिये, राधिका गजबिये, बेबी अन्ना अनिष्का और तन्मय गजबिये की। इन सभी की पसंद पर सुनते हैं ये गीत।
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's start the fun.

आपकी फरमाइश कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं उपाध्याय नगर देवास से मुरारी लाल वर्मा, मनीष वर्मा, शिवम वर्मा, राजा रामनगर देवास से ही ये फरमाइश है। राजू अग्रवाल, शांति महाजन, मुकेश महाजन, चीकू सानू, नागू सिंह कुमावत, राजकुमार कुमावत और अभिषेक कुमावत के साथ ही साथ जो गीत इनकी पसंद पर हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उसी के लिए फरमाइश हमें मिली है सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन, तानिया, शिवाजी चौक राजीम से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव, साथ ही साथ अमरपुरा पेंड्रा से ये हमारे श्रोता ने पत्र लिख भेजा है दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंसीलाल, रेखा देवी, श्वेता, सुरुचि, दिशा और लवी श्रीवास्तव ने ये हमारे सभी श्रोता सुनना चाहते हैं। कृष फिल्म का गीत सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजों में, गीत लिखा है इब्राहिम अश्क ने और संगीत राजेश रोशन का है।

कहो ना प्यार है इस फिल्म का गीत अब आप सुनेंगे, जिसके बोल लिखे हैं इब्राहिम अश्क ने, संगीत राजेश रोशन का है और आवाज़ें बाबुल सुप्रियो और साथियों की है। इस गीत को सुनना चाहा है बेमे तरह से सुरेश सारथी, पूर्णिमा सारथी, नवागढ़ कटई से। ये हमारे श्रोता है नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा और दामिनी वर्मा। साथ ही साथ इसी गीत को सुनना चाहा है शाहूनगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल तथा चेतन मनवर, रोशनी मनवर, बेबी प्रियांशी और महादेव घाट अमलेश्वर से। ये खत हमें भेजा है डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी, सूरज, ज्योति, रेयांश ठाकुर और गुड़िया ठाकुर ने। हमारे इन सभी श्रोताओं की पसंद पर सुनते हैं कहो ना प्यार है फिल्म का ये गीत।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में अब आपको सुनवाने जा रहे हैं अलका याग्निक और मोहम्मद अजीज की आवाजों में खुदा गवाह फिल्म का गीत, जिसके बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और पसंद हमारे इन श्रोताओं की है। गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंधड़े, आरती जोंधड़े, नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका और रॉबिन, पटेल नगर मलोट पंजाब से इस गीत को पसंद किया है डॉक्टर रमेश कुमार जाजूरिया, गीता रानी जाजूरिया, गगनदीप जाजूरिया और बीबी आरजू जाजूरिया ने।

और कार्यक्रम के अंत में हमारे इन श्रोताओं की पसंद आप तक पहुंचाते हैं। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से ये हैं टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, नवनीत राय, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा, कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज, साहिल और हुलासराम कटरे, नानेश्वरी कटरे, ये हमारे श्रोता है करियागंड जिला बालाघाट से, और रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा, इन्होंने सुनना चाहा है खुदगर्ज फिल्म का गीत मोहम्मद अजीज और साधना सरगम की आवाज़ों में। गीत इंदिवर का है, संगीत राजेश रोशन का।

0: खुदगर्ज फिल्म के इस गीत के साथ ही श्रोताओं, आपकी फरमाइश कार्यक्रम अब यहीं समाप्त करते हैं। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज रानी दुर्गावती को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि रानी दुर्गावती एक वीर रानी और नारी शक्ति का प्रतीक थीं, जिन्होंने संप्रभुता और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए मुगल आक्रमणकारियों के खिलाफ वीरतापूर्ण संघर्ष में अपने प्राणों का बलिदान दिया। रानी दुर्गावती के समाधि स्थल जबलपुर के नरईनाला में आयोजित विशेष कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मातृभूमि की रक्षा के लिए उनका शौर्य, अदम्य साहस और रणकौशल देश के गौरवशाली इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है, जो विशेष रूप से बेटियों के लिए प्रेरणादायक है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने लोकभवन में आयोजित कार्यक्रम में रानी दुर्गावती के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। देश के युवा नेतृत्व वाले 6 स्टार्टअप्स ने यूथ को लैब नेशनल इनोवेशन चैलेंज 2026 के 8वें संस्करण में जीत हासिल की है। ये पहल संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP इंडिया और सिटी फाउंडेशन द्वारा अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग के सहयोग से चलाई जा रही है और टी हब फाउंडेशन द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। राज्य वित्त आयोग के सदस्य आज भोपाल संभाग के दौरे पर हैं। आयोग नगरीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति को लेकर जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों से सुझाव ले रहा है। और हॉकी इंडिया ने 5 से 14 जुलाई तक ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा कर दी है। भारतीय टीम नए कोच टिम व्हाइट के नेतृत्व में जूनियर एशिया कप सहित आगामी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी के सिलसिले में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में 7 मैच खेलेगी। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। श्रोताओं, मीडिया में पर सभा समाप्त करने से पूर्व लीजिए सुनिए हमारी सांध्यकालीन सभा में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। मीडिया में पर सांध्यकालीन सभा आरंभ की जाएगी शाम 5 बजे। 5:02 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम युवावाणी, प्रस्तुति आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र की होगी।

सांध्यकालीन सभा के अंतर्गत फिल्म संगीत आप सुन सकते हैं 5:33 पर, 6:30 पर और रात 8:15 पर। इस बीच शाम 6:00 सुनिएगा NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम। सात बजकर 21 पर ग्राम सभा प्रस्तुति आकाशवाणी के भोपाल केंद्र की होगी। रात 8:00 आकाशवाणी मध्य प्रदेश से पुनः जुड़कर सुन सकते हैं कार्यक्रम सुर्खियों में। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से 9:30 पर अनुप्रसारित करेंगे चर्चा का विषय है। रात 10:00 हम आपको सुनवाएंगे नाटक हतक, जिसके लेखक है सआदत हसन मंटो, प्रस्तुतकर्ता राकेश ढोंडियाल। दस बजकर 30 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी होगा, जिसमें आप सुनेंगे संगीता गोस्वामी का ख्याल गायन, राग होगा यमन। ये थी जानकारी सांध्यकालीन सभा में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की। ये मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्स, DTH के ऑडियो चैनल, न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन और वेव्स OTT पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। दोपहर के 3:02:40 हुए हैं। मीडिया वे पर अब हमारी ये सभा यहीं समाप्त करते हैं। शाम 5:00 इन्हीं मीटर्स पर आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। इस दौरान DTH के ऑडियो चैनल पर कार्यक्रम जारी रहेंगे।

मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। संध्या के 5 बजे हैं, आरंभ होती है हमारी सांध्यकालीन प्रसारण सभा। सभा की शुरुआत में प्रस्तुत है युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

0: नमस्कार दोस्तों, मैं अपर्णा
1: और मैं तनुषा। स्वागत है आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में।
0: तो दोस्तों, आज है दिन बुधवार का, यानी कि हम जानते हैं कि हर बुधवार की तरह आज भी आप बेसब्र होंगे ये जानने के लिए कि आज के स्पेशल सेगमेंट एक ही फिल्म से में हम आपके लिए कौन सी मूवी लेकर आए हैं।
1: बिल्कुल, और श्रोताओं, आप देख ही रहे होंगे कि अभी आज का वेदर और कुछ दिनों से काफी ठंडक हो चुकी है वर्षा की वजह से।
0: बिल्कुल तनुषा, बहुत ही अच्छा हुआ है कि बारिश आ चुकी है, यानी कि कड़ाके की गर्मी अब कुछ कम हो चुकी है। हाँ, थोड़ी माहौल में कभी कभी उमस बनी रहती है, लेकिन ठीक है, बारिश आ जाती है तो उतनी ही मन को और वातावरण को ठंडक मिलती है। और तुम्हें पता है तनुषा, आज मैं मानसून के बारे में ही एक कुछ स्पेशल इन्फॉर्मेशन हमारे श्रोताओं के लिए ढूंढ कर लाई हूँ। दोस्तों, हम उस पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज के प्रश्नों की बारी आती है। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, दुनिया का सबसे लंबा बांध कौन सा है?
1: और दूसरा प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है?
0: तो दोस्तों, फटाफट आप इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढ कर रखिएगा और अंत में वेट कीजिएगा, जब हम इनका उत्तर देंगे तो

0: तो दोस्तों आज हम बात करेंगे मॉनसून की, एक ऐसा मौसम जिसका इंतज़ार शायद हम सभी को साल भर रहता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि मॉनसून का संबंध हमारे पुराणों, शास्त्रों और आधुनिक विज्ञान से कैसे जुड़ता है?
1: बिल्कुल अपर्णा, भारत में मॉनसून केवल एक मौसम नहीं बल्कि जीवन का आधार माना गया है। कृषि प्रधान देश होने के कारण वर्षा का हमारे जीवन में विशेष महत्व रहा है।
0: बिल्कुल, और पुराणों में वर्षा के देवता के रूप में इंद्र का उल्लेख मिलता है। मान्यता ये थी कि इंद्र की कृपा से समय पर वर्षा होती है और धरती पर हरियाली और समृद्धि बनी रहती है।
1: इसीलिए प्राचीन समय में अच्छी वर्षा की कामना के लिए बहुत से धार्मिक अनुष्ठान भी किए जाते थे।
0: यानी हमारे पूर्वज बारिश को प्रकृति के एक अमूल्य उपहार के रूप में देखते थे, और शायद यही कारण है कि भारतीय लोक गीतों में, लोक कथाओं में और त्योहारों में भी बारिश का विशेष स्थान है।
1: अब हम बात करते हैं शास्त्रों और साहित्य की। वैदिक ग्रंथों में वर्षा का अनेक स्थानों पर वर्णन मिलता है अपर्णा, वही संस्कृत साहित्य में भी वर्षा ऋतु को बेहद सुंदर चित्रण में दिया गया है।
0: बिल्कुल तनुषा, महाकवि कालिदास का एक बहुत प्रसिद्ध काव्य है मेघदूत, नाम तो हमारे श्रोताओं ने सुना ही होगा। इसमें मेघों को संदेशवाहक बनाकर वर्षा ऋतु की सुंदरता और भावनाओं का अद्भुत वर्णन किया गया है।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने, भारतीय साहित्य में वर्षा को प्रेम, सौंदर्य, नव जीवन और आशा का प्रतीक माना गया है। आयुर्वेद में भी वर्षा के दौरान स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए विशेष सुझाव दिए गए हैं।
0: दोस्तों अब जरा आधुनिक विज्ञान की ओर चलते हैं। आज हम जानते हैं कि मॉनसून भूमि और समुद्र के तापमान में अंतर के कारण उत्पन्न होने वाली एक मौसमीय प्रक्रिया है।
1: बिल्कुल सही, भारत की बड़ी आबादी और कृषि मॉनसून पर निर्भर करती है। मौसम वैज्ञानिक उपग्रहों, रेडार और आधुनिक तकनीकों की मदद से मॉनसून की निगरानी और फॉरकास्ट करते हैं।
0: हालांकि जलवायु परिवर्तन के कारण मॉनसून के स्वरूप में बदलाव भी देखने को मिलते रहे हैं, जैसे कहीं आवश्यकता से अधिक बारिश हो जाती है तो कहीं इतना सूखा पड़ जाता है जैसे सूखे जैसी स्थिति आ गई हो।
1: बिल्कुल, और ऐसे में जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है, तुम्हें नहीं लगता अपर्णा?
0: बिल्कुल सही, और तनुषा मॉनसून केवल खेती या मौसम तक ही सीमित नहीं है ना, ये आनंद और उत्साह का भी मौसम है, नहीं?
1: बिल्कुल सही कहा तुमने, हल्की फुहारों में प्रकृति की हरियाली का आनंद लेना, परिवार और मित्रों के साथ गर्म चाय और पकौड़ों का स्वाद लेना या बारिश के बाद ताजी हवा में सैर करना मॉनसून को और भी खास बना देता है।
0: बिल्कुल ठीक, लेकिन बारिश का आनंद लेते समय थोड़ी सावधानी भी बरतना जरूरी है दोस्तों। जैसे आप हमेशा स्वच्छ पानी का उपयोग करें, जल भराव वाले क्षेत्रों से थोड़ा बच कर रहे और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखे।
1: तो श्रोताओं, पुराणों की आस्था, शास्त्रों की ज्ञान परंपरा और आधुनिक विज्ञान तीनों ही हमें मॉनसून के महत्व को समझाते हैं।
0: और दोस्तों मॉनसून आ चुका है, इसलिए आज हमने सोचा कि आपसे मॉनसून रिलेटेड ये कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी हम आपसे साझा करें। इसी के साथ आप मौसम का भी मजा लेते रहिए और साथ ही सुनते रहिए कार्यक्रम युवाणी, जिसमें हम सुनते हैं और बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर।

0: अपर्णा, हम अक्सर देश की व्यवस्था, साफ सफाई, ट्रैफिक, सार्वजनिक सुविधाओं और प्रशासन को लेकर शिकायत करते रहते हैं, लेकिन क्या कभी हमने खुद से पूछा है कि एक नागरिक के रूप में हम इस व्यवस्था को बेहतर बनाने में कितना योगदान देते हैं?
1: तनुषा, तुमने बहुत ही अच्छा और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। दरअसल यहीं से सिविक सेंस की शुरुआत होती है। सिविक सेंस केवल नियमों का पालन करने का नाम नहीं है, बल्कि वो समझ भी है जो हमें बताती है कि हम अकेले नहीं बल्कि समाज का हिस्सा है।
0: बिल्कुल सही कहा तुमने अपर्णा। सोचिए, यदि कोई व्यक्ति सड़क पर कचरा फेंकता है, ट्रैफिक सिग्नल तोड़ता है या फिर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, तो उसका प्रभाव केवल उसी तक सीमित नहीं रहता, वो पूरे समाज पर और हम पर भी पड़ता है।
1: बिल्कुल, और यही बात युवाओं के संदर्भ में और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है।
0: आज का युवा केवल भविष्य का नागरिक नहीं बल्कि वर्तमान का सक्रिय नागरिक भी तो है। वो सोशल मीडिया पर अपनी राय रखते हैं, सामाजिक मुद्दों पर चर्चाएं करते हैं और बदलाव की मांग भी करते हैं।
1: लेकिन तनुषा, क्या बदलाव केवल मांगने से मिल जाता है या आ जाता है?
0: शायद नहीं आता अपर्णा, क्योंकि बदलाव तब आता है जब हम अपने व्यवहार में वही जिम्मेदारियां दिखाएं जिसकी अपेक्षा हम दूसरों से करते हैं।
1: बिल्कुल, और साथ ही मुझे लगता है कि सिविक सेंस का सबसे बड़ा पहलू है सार्वजनिक और निजी जीवन के बीच का अंतर समझना। यानी कि हम घर की सफाई का ध्यान तो रखते हैं, लेकिन कई बार सार्वजनिक स्थानों को उतना अपना नहीं मानते।
0: सही कहा तुमने। जबकि सड़कें, पार्क, पुस्तकालय, बस स्टॉप या सरकारी संस्थान भी उतने ही हमारे हैं जितना हमारा अपना घर।
1: और विकसित समाजों की पहचान केवल उनकी इमारतों से नहीं होती शायद तनुषा, ना अपनी आदतों से भी होती है।
0: बिल्कुल सही।
1: और आज डिजिटल युग में सिविक सेंस का एक नया रूप भी सामने आया है दोस्तों। सोशल मीडिया पर गलत जानकारी फैलाना, बिना पुष्टि के संदेश साझा करना या ऑनलाइन

0: स्वीकार करना भी तो नागरिक जिम्मेदारी की कमी है।
1: बिल्कुल, डिजिटल नागरिकता भी आज सिविक सेंस का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। जिम्मेदार नागरिक वही है जो वास्तविक और असाभी दुनिया में अपने कर्तव्य को समझे।
0: बिल्कुल, और तनुषा मुझे लगता है कि आज का यूथ, उसके पास एक ऐसी अलग शक्ति है, और वो शक्ति है उदाहरण बनने की, यानी कि एग्जाम्पल सेट करने की। जब युवा स्वयं नियमों का पालन करते हैं, पर्यावरण के प्रति जागरूक रहते हैं, मतदान को महत्व देते हैं और सामाजिक कार्यों में भाग लेते हैं, तो वो कहीं ना कहीं दूसरों को भी प्रेरित कर रहे होते हैं।
1: बिल्कुल, और कई बार लोग सोचते भी हैं अपर्णा कि देश बदलने के लिए हमें बड़े बड़े कदम उठाने पड़ेंगे, पर ये सच नहीं है कि बस आप इतना ही कर लें कि कतार का सम्मान करें, सार्वजनिक स्थान पर संयमित व्यवहार करें, पानी और बिजली की ही बचत करें और दूसरों की सुविधा का ध्यान रखें। ये राष्ट्र निर्माण का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है।
0: यानी तनुषा, सिविक सेंस कोई अलग विषय नहीं है बल्कि हमारी रोजमर्रा की ही जीवन शैली हुई, नहीं?
1: बिल्कुल सही अपर्णा। और दोस्तों, अधिकारों के साथ साथ अपनी जिम्मेदारी को भी समझे, क्योंकि एक जागरूक युवा भी एक जिम्मेदार समाज और सशक्त राष्ट्र की नींव रखता है।
0: बिल्कुल दोस्तों, तो आशा करते हैं आपको ये बात अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, कुछ युवाओं के मन में कहीं ना कहीं कुछ बदलाव आया हो। इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर।

तो हाँ दोस्तों, हम जानते हैं कि आप बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं ये जानने के लिए कि आज के स्पेशल सेगमेंट में हम कौन सी फिल्म शामिल करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड की एक ऐसी सुपर हीरो फिल्म की जिसने भारतीय सिनेमा

0: में सुपर हीरो शैली को एक नई पहचान दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिल्म क्रिश की।
1: वर्ष 2006 में रिलीज हुई क्रिश का निर्देशन प्रसिद्ध फिल्मकार राकेश रोशन ने किया था। ये फिल्म वर्ष 2003 में आई कोई मिल गया की एक अगली कड़ी थी। फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में ऋतिक रोशन, प्रियंका चोपड़ा जोनस, रेखा और नसीरुद्दीन शाह नजर आए थे।
0: दोस्तों, क्रिश केवल एक सुपरहीरो फिल्म नहीं थी, बल्कि इसमें भावनाएं, पारिवारिक रिश्ते, रोमांच और विज्ञान का भी अनोखा संगम देखने को मिला। फिल्म का संगीत राजेश रोशन ने दिया था और इसके गीत आज भी लोगों की जुबान पर है।
1: फिल्म की कहानी कृष्णा नाम के एक युवक के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपनी दादी के साथ पहाड़ों में रहता है। उसे बचपन से ही असाधारण शक्तियां प्राप्त होती हैं। वो बेहद तेज दौड़ सकता है, ऊंची छलांग लगा सकता है और उसकी ताकत सामान्य इंसानों से कहीं अधिक होती है।
0: फिल्म की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि इसने भारतीय दर्शकों को अपना पहला आधुनिक सुपरहीरो दिया। इससे पहले सुपरहीरो की अवधारणा मुख्य रूप से हॉलीवुड फिल्मों तक ही सीमित थी, लेकिन क्रिश ने यह साबित किया कि भारत भी अपने सुपरहीरो की कहानी दुनिया के सामने ला सकता है।
1: बिल्कुल सही अपर्णा। और इस मूवी से रिलेटेड एक बहुत रोचक तथ्य है कि ये फिल्म कई खतरनाक स्टंट में थी और ये सारे स्टंट्स ऋतिक रोशन ने खुद करे थे और इसके लिए उन्होंने विशेष प्रशिक्षण भी लिया था।
0: क्या बात है। और श्रोताओं, ये थी क्रिश की एक संक्षिप्त झलक। हम क्रिश के बारे में और भी बात करेंगे, लेकिन उसके पहले हम सुनते हैं इसी फिल्म का ये गीत।

0: दोस्तों अब जानते हैं कृष फिल्म की कहानी। तो कहानी की शुरुआत होती है कृष्णा से, जो हिमालय के सुंदर पहाड़ी क्षेत्र में अपनी दादी के साथ रहता है। उसकी दादी उसे दुनिया से दूर रखती है क्योंकि उन्हें डर है कि उसकी असाधारण शक्तियां लोगों का ध्यान आकर्षित न कर ले।
1: कृष का जीवन शांतिपूर्ण चल रहा होता है तभी उसकी मुलाकात होती है प्रिया नाम की एक युवती से, जो सिंगापुर से आई होती है। दोनों के बीच दोस्ती होती है और धीरे धीरे ये दोस्ती प्रेम में बदल जाती है।
0: प्रिया के वापस सिंगापुर जाने के बाद कृष्णा उससे मिलने की इच्छा रखता है। कुछ परिस्थितियां ऐसी बनती है कि वो सिंगापुर पहुंच भी जाता है और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है।
1: सिंगापुर में कृष्णा को पता चलता है कि वैज्ञानिक डॉक्टर आर्य ने एक ऐसी मशीन बनाई है जो भविष्य देख सकती है, लेकिन ये मशीन मानवता के लिए खतरा बन सकती है। डॉक्टर आर्य अपने स्वार्थ के लिए इसका उपयोग करना चाहते हैं।
0: इसी दौरान कृष्णा को अपने पिता रोहित मेहरा के बारे में भी बहुत जरूरी जानकारी मिलती है। उसे पता चलता है कि उसके पिता की मृत्यु किसी दुर्घटना में नहीं हुई थी बल्कि उसके पीछे एक बड़ी साजिश थी।
1: अब कृष्णा के सामने दो चुनौतियां थी, एक और उसके पिता के बारे में सच्चाई जानना और दूसरी और दुनिया को एक बड़े खतरे से बचाना।
0: अपनी पहचान छिपाने के लिए कृष्णा एक विशेष काले रंग का मुखौटा पहनता है और यहीं से जन्म होता है सुपर हीरो कृष का।
1: सड़कों पर लोगों की मदद करना, अपराधियों को रोकना और अपनी शक्तियों का सही उपयोग करना, इन सबके कारण कृष धीरे धीरे लोगों के बीच एक आशा का प्रतीक बन जाता है।
0: और एक दिलचस्प तथ्य ये भी है दोस्तों कि फिल्म के कई दृश्य सिंगापुर में फिल्माए गए थे, जिससे फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्वरूप मिला।
1: अब कहानी अपने सबसे रोमांचक पड़ाव पर पहुंच चुकी है श्रोताओं। अगले खंड में हम जानेंगे फिल्म का क्लाइमैक्स और इसके पीछे छिपा संदेश, पर तब तक के लिए हम सुनते हैं ये गीत।

0: श्रोताओं, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप क्रिश मूवी के क्लाइमेक्स के लिए हमारे साथ अभी तक बने हुए हैं। तो जब क्रिश को पता चलता है कि डॉक्टर आर्य की भविष्य देखने वाली ये मशीन मानवता के लिए विनाशकारी साबित हो सकती है, तब वो उसे रोकने के निर्णय लेता है। डॉक्टर आर्य को भविष्य में होने वाली घटनाओं की जानकारी तो मिल ही जाती है और वो उनका लाभ उठाकर शक्ति और धन को प्राप्त करना चाहते हैं।
1: क्रिश अपने साहस, बुद्धिमत्ता और अद्भुत शक्तियों का उपयोग करते हुए डॉक्टर आर्य के विरुद्ध संघर्ष करता है। कई रोमांचक एक्शन सीन्स होते हैं और उनके बाद वो मशीन को नष्ट कर देता है ताकि उसका दुरुपयोग न हो सके।
0: क्लाइमेक्स में ये संदेश मिलता है कि विज्ञान तभी लाभदायक है जब उसका उपयोग मानव कल्याण के लिए किया जाए। यदि विज्ञान का उपयोग स्वार्थ और लालच के लिए किया जाए तो वही मानवता के लिए खतरा बन जाता है।
1: फिल्म हमें ये भी सिखाती है कि असली नायक वो नहीं जो केवल शक्तिशाली हो, बल्कि वो है जो अपनी शक्ति का उपयोग दूसरों की रक्षा के लिए करे।
0: बिल्कुल सही। और फिल्म को दर्शकों ने खूब पसंद किया और ये उस समय की सबसे सफल भारतीय फिल्मों में से एक बनी। इसकी सफलता के बाद क्रिश एक पूरी सुपर हीरो फ्रेंचाइजी में बदल गया, जिसके बाद क्रिश 3 भी रिलीज हुई।
1: और एक और रोचक तथ्य ये भी है दोस्तों कि क्रिश का प्रसिद्ध काला मुखौटा और पोशाक बच्चों के बीच इतनी फेमस हुई कि कई वर्षों तक सुपर हीरो कॉस्ट्यूम में ये पहली पसंद बनी रही।
0: बिल्कुल सही है पढ़ना, मुझे तो आज तक मेरा बचपन याद है कि हम ये मुखौटा देखकर इतना खुश होते थे। आज भी क्रिश को भारतीय सुपर हीरो सिनेमा की सबसे महत्वपूर्ण फिल्मों में से गिना जाता है। ये फिल्म मनोरंजन के साथ साथ साहस, जिम्मेदारी और मानवता का भी संदेश देती है।
1: तो दोस्तों, आज के हमारे स्पेशल

0: तो दोस्तों, उम्मीद होगी कि आपको आज का कार्यक्रम अच्छा लगा।
1: और अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले तनुषा, अब हम हमारे दोस्तों को हमारे प्रश्नों के उत्तर बता देते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो श्रोताओं, आज का पहला प्रश्न था, दुनिया का सबसे लंबा बांध कौन सा है? इसका उत्तर है हीराकुंड बांध, जो है ओडिशा में।
0: दूसरा प्रश्न था कि भारत में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? अगर किसी ने इसका जवाब चेरापूंजी सोचा है तो आप वहीं सही हैं, पर वो मेघालय में है, पर असली जवाब है मौसिनरम, जो वहां का एक विलेज है।
1: बिल्कुल दोस्तों, तो इसी के साथ अब हम अनुमति चाहेंगे, मैं अपर्णा
0: और मैं तनुषा
1: आपसे आज्ञा लेते हैं। नमस्कार।

अभी युववाणी का प्रसारण किया गया। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम में सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं दो बदन फिल्म का गीत आशा भोसले के स्वर में। शकील बदायूनी के बोल हैं, संगीत रवि का।

लीजिए अब सुनिए वक्त फिल्म का गीत आशा भोसले महेंद्र कपूर के स्वर में। गीत लिखा है साहिर लुधियानवी ने, संगीतबद्ध किया रवि ने।

फिल्म संगीत इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से। कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं आप आए बहार आई फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी के स्वर में। आनंद बख्शी के लिखे गीत को संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

आप आए बहार आई इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। इसी के साथ फिल्म संगीत अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग।

0: शब्दांग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: आप सभी श्रोताओं को आपके साथी अजीत का नमस्कार, जय जोहार, जय हिंद। श्रोताओ आइए सबसे पहले सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने। लिखते हैं, शांत रहना कमजोरी नहीं, ये समझदारी की निशानी है, क्योंकि हर जवाब शब्दों से ही नहीं लेकिन व्यवहार से भी दिया जाता है। इतने सुंदर विचार के लिए आप सबको उमंग कार्यक्रम की ओर से हमारा आभार। और आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है मगरपारा बिलासपुर से वसीम जाटव, अकरम जाटव, आफताब जाटव, महताब जाटव, मिराज जाटव और अल्ताफ जाटव। भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, पंकज, आयुषी और मीहू। जेल रोड कानपुर से सरफुद्दीन फातिमा थापा, वसीम अकरम बेलदार और डब्ल्यू सोनम कुटरिया। भदोही उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार विद्यार्थी और उनकी छोटी बहन कोमल। तो श्रोताओ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। जैसा कि हम हर बार कहते हैं, इस बार भी कहेंगे कि जुड़े रहिए आपके प्रिय कार्यक्रम उमंग से। और आइए अब चलते हैं आज की श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में। श्रोताओ जहां तक गुफाओं की बात है, लगभग सभी अजंता और एलोरा की गुफाओं से परिचित हैं, लेकिन उमंग कार्यक्रम में हमारा उद्देश्य है उन जानकारियों को उपलब्ध कराना जो लोक संज्ञान में कम है लेकिन पुरातत्व और इतिहास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जी तो श्रोताओ कल हमने बात की थी भीम बैठका की गुफाओं के बारे में, आज हम बात करेंगे कुटुम्बसर की गुफाओं के बारे में। कुटुम्बसर की गुफाओं को भारत की सबसे लंबी प्राकृतिक गुफाओं में गिना जाता है। तो आइए जानते हैं कि ये गुफाएं कहाँ स्थित हैं। श्रोताओ ये गुफाएं स्थित हैं छत्तीसगढ़ राज्य के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में, जगदलपुर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर। ये गुफाएं भूमि से लगभग 35 से 40 मीटर नीचे हैं। ये अत्यंत प्राचीन गुफाएं हैं, लेकिन श्रोताओ जब भी हम ऐसे स्थानों की बात करते हैं तो ये जिज्ञासा जरूर मन में आती है कि इनकी खोज कैसे हुई। तो आपको बता दें कि कुटुम्बसर गुफा का जनजातीय नाम गोपनसर था। सन 1951 की बात है, कुछ स्थानीय चरवाहे एक साही का पीछा कर रहे थे।

0: पीछा करते करते वे एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां ढेर सारी झाड़ियां थीं, पत्थर भी थे। जब उन्होंने झाड़ियों को थोड़ा हटाया तो क्या देखते हैं कि वहां एक बहुत बड़ी गुफा का प्रवेश द्वार है। जी, चरवाहे उस गुफा की बनावट देखकर हैरान रह गए, क्योंकि वहां चट्टानों के आकार विचित्र थे। वे अद्भुत आकार के थे, जैसे किसी ने उन्हें तराश कर बनाया हो। तो आइए जानते हैं कि उन पत्थरों को तराशने वाला कौन था। श्रोताओं, यही तो खास और बड़ी अनोखी बात है कुटुम्बसर की गुफाओं के बारे में। जब विशेषज्ञ यहाँ पर आए तो उन्होंने पता लगाया कि चट्टानों को तराशने वाली प्रकृति ही थी। यहाँ पानी हमेशा टपकता रहता है। पानी के लाखों वर्षों से टपकते रहने के कारण इन चट्टानों को आकार मिला। यहाँ की चट्टानें चूना पत्थर से बनी है। श्रोताओं, इन गुफाओं में कुछ आकृतियां तो ऐसी हैं जो किसी पशु, मुख्य रूप से हाथी, बाघ, विशाल मानव आकृति और शिवलिंग की तरह भी दिखाई देती हैं। जरा सोचिए श्रोताओं, कैसे इन आकृतियों को प्रकृति ने लाखों वर्षों से पानी की बूंदे टपकाकर बनाया। अद्भुत है ना? जी, किसी ने लिखा है कि यदि प्रकृति को शिल्पकार के रूप में देखना है तो कुटुम्बसर की गुफाओं में जरूर जाइए। इन गुफाओं के ऊपर भूमि में कई भूमिगत जल के झरने हैं, जहां से निरंतर पानी की बूंदें गिरती रहती हैं। वैज्ञानिकों ने इन गुफाओं में अनेक दुर्लभ जीवों के जीवाश्म भी ढूंढे हैं। एक बात और आपको बता दें श्रोताओं, कि इन गुफाओं के अंदर हमेशा घुप अंधेरा रहता है। वहां जाने के लिए पर्यटक गाइड्स और शक्तिशाली बैटरियों वाले लैंप्स लेकर ही जाते हैं। अंदर पानी बहता रहता है, लेकिन एक बड़ी रोचक बात है इन गुफाओं की। आपको बताएं क्या है वो? वो ये कि यहाँ के पानी में जो मछलियां पाई जाती हैं वे अंधी होती हैं, देख नहीं पाती। यहाँ के अन्य जलज प्राणी भी देख नहीं सकते। लेकिन एक सवाल है श्रोताओं कि भला ऐसा क्यों है? ना ये बड़ी अजीब बात। जी हाँ श्रोताओं, वैज्ञानिकों के अनुसार यहाँ हमेशा अंधकार रहता है। इससे संभवतः मछलियों और जलज जीवों की आंखें तो हैं, लेकिन उनमें देखने की क्षमता का विकास नहीं हुआ, या फिर धीरे धीरे देखने की क्षमता समाप्त हो गई। एक सिद्धांत ये भी है कि पीढ़ी दर पीढ़ी अंधकार में रहने के कारण उनकी आंखें पूर्ण विकसित नहीं हुई, लेकिन दूसरी इंद्रियां अधिक विकसित हो गई। मछलियां पानी में कंपन, स्पर्श और रासायनिक संकेतों जैसे गंध इत्यादि के माध्यम से रास्ता और भोजन तुरंत पहचान लेती हैं। इसलिए श्रोताओं, कुटुम्बसर की मछलियों को दुनिया भर में ब्लाइंड केव फिशेस के नाम से भी जाना जाता है। और हाँ, इन गुफाओं की एक और बड़ी खास बात है, यहाँ के कुछ भागों में यदि फुसफुसा करके भी कुछ कहा जाए तो बड़ी दूर तक ये आवाज सुनाई पड़ती है। श्रोताओं, यहाँ पर कार्यकर्ता इको या गूंज का सिद्धांत। श्रोताओं, ये कहा जा सकता है कि ये गुफाएं वैज्ञानिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ के जंतु विकासवाद और भूविज्ञान के अध्ययन में महत्वपूर्ण है। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी भारत की एक और रहस्यपूर्ण और अनोखी गुफा कुटुम्बसर के बारे में। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा आज का प्रश्न है, कुटुम्बसर की गुफाओं में फुसफुसाकर बोलने पर भी आवाजें साफ साफ क्यों सुनाई देती हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। कुटुम्बसर की गुफाओं में फुसफुसाकर बोलने पर भी आवाजें साफ साफ क्यों सुनाई देती हैं? आप हमें हमारे IVRS नंबर 8804405559 पर या ईमेल पर यानी audio@ciet.nic.in पर इस प्रश्न का उत्तर भेज सकते हैं। और हाँ, एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और आइए अब सुनते हैं आज के हमारे ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर शैक्षिक कार्यक्रम। तो सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम लीव्स ऑन द ट्री आर फॉलिंग। श्रोताओं, अंग्रेजी का ये सुंदर गीत पतझड़ और वसंत के मौसमों के बीच की प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करता है और विशेषकर संदेश देता है कि हमें प्रकृति का अवलोकन करके उनके सौंदर्य की प्रशंसा करनी चाहिए। ऐसा करके हम प्रकृति से बहुत कुछ सीख सकते हैं। द लीव्स ऑन द ट्रीज।
1: चिल्ड्रन, हैव यू एवर सीन द लीव्स ग्रोइंग इन द ट्री? द न्यू टेंडर लीव्स स्पर्टिंग आउट फ्रॉम द ब्रांचेस लाइक द फ्लावर्स ब्लॉसमिंग? Yes, we want to see them as the flowers blossom and leaves grow. But we never see them growing closely. Here is a song which makes you feel that you notice the growing of leaves and blossoming of flowers.

इस खूबसूरत गीत के बाद आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है फादर डॉक्टर कामिल बुल्के। ये कार्यक्रम हिंदी साहित्य के प्रकांड विद्वान डॉक्टर कामिल बुल्के के जीवन और उनके द्वारा हिंदी साहित्य को दिए गए योगदान के बारे में, विशेषकर तुलसी

0: साहित्य में उनके द्वारा लिखे गए शोध की विस्तार से जानकारी देता है।
1: यूरोप के पश्चिमी भाग में एक छोटा लेकिन खूबसूरत देश है बेल्जियम। बेल्जियम में एक प्रांत है फ्लेंडर्स। इस प्रांत में एक छोटा सा शांत और सुंदर शहर है रम्स कपेला। 1 सितंबर 1909 को अडोल्फ और मारिया बुल्के के घर में एक बालक का जन्म हुआ। माता पिता ने बड़े प्रेम से उसका नाम रखा कामिल बुल्के।
2: कामिल का अर्थ होता है पूजा की वेदी और बुल्के का अर्थ है सुगंधित पुष्प। और सच में जैसा कि नाम था, उन्होंने अपने नाम को 100% चरितार्थ किया। बचपन से ही उनकी गहरी रुचि अध्यात्म और साहित्य में दिखाई देने लगी थी। माता पिता अक्सर उनके बारे में बातचीत किया करते।
3: मारिया, क्या तुम्हें नहीं लगता कि कामिल का अध्यात्म की ओर कुछ ज्यादा ही झुकाव है?
2: मुझे तो अब ये लगने लगा है कि यदि ऐसा ही रहा तो एक दिन वो चर्च में सन्यासी बन जाएगा।
3: मुझे भी ऐसा ही लगता है।
2: स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने ल्यूवेन विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में बीएससी डिग्री प्राप्त की और 1930 में स्पष्ट दिव्य अनुभूति प्राप्त होने पर शिक्षक और पुरोहित बनाने वाले जेसुइट समाज में शामिल हो गए।
1: 6 नवंबर 1935 को 17 दिनों की समुद्री यात्रा के बाद वो बंबई आ गए, जो अब मुंबई है। उन्होंने भारत को अपनी कर्मस्थली के रूप में चुना।
2: उन्होंने भारत भूमि को नमन किया। ये गोस्वामी तुलसीदास जी की भूमि है। दरअसल अपनी पढ़ने की आदत के कारण बेल्जियम में ही उन्होंने तुलसीदास जी की कई चौपाइयों का जर्मन अनुवाद पढ़ा था।
1: उनमें से एक चौपाई से वो बहुत प्रभावित हुए। चौपाई थी, धन्य जन्मु जग तीतल तासु, पितहि प्रमोद चरित सुनि जासु।
2: अर्थात उस बेटे का जीवन धन्य है जिसका यश और कीर्ति सुनकर पिता आनंदित होता है। इन पंक्तियों से वे इतने प्रभावित हुए कि कवि तुलसीदास जी के अनन्य भक्त बन गए। उन्होंने लिखा था,
4: विश्व साहित्य में माता और पुत्र के संबंधों की बहुत सारी चर्चा मिल जाएगी, लेकिन पिता पुत्र के संबंधों की ऐसी व्याख्या और ऐसा ऊंचा आदर्श मुझे सिर्फ भक्त कवि तुलसीदास जी की रामायण में ही मिला।
2: भारत आने पर उन्होंने जो देखा उसने उनके संपूर्ण जीवन के चिंतन और दर्शन को एक नया आयाम दे दिया। उन्होंने अपने भारत आगमन के समय को याद करते हुए अपनी एक पुस्तक एक ईसाई की आस्था राम कथा और हिंदी में लिखा है,
4: 1935 में मैं जब भारत पहुंचा, मुझे ये देखकर आश्चर्य बड़ा आश्चर्य हुआ कि रास्ते में सभी संकेत पट्टों पर सूचनाएं और स्थानों के नाम अंग्रेजी में थे। मैंने ये जाना कि अनेक शिक्षित लोग अपनी सांस्कृतिक परंपराओं से अनजान थे और इंग्लिश में बोलना गर्व की बात समझते थे। मैंने विचार किया कि मैं हिंदी भाषा में सिद्धता को प्राप्त करने का पूरा प्रयास करूंगा। हिंदी स्थानीय और जनजातीय भाषाओं में जो ज्ञान प्रणाली और सीखने की सामग्री अंतर्निहित है, उनके संरक्षण और पुनरुत्थान से ही हमारा विकास संभव है।
2: मुंबई से वे दार्जिलिंग गए और अल्प प्रवास के बाद अंततः गुमला आ गए, जो आज के झारखंड राज्य में है। उन्होंने गुमला के सेंट इग्नेसियस विद्यालय में 3 साल तक गणित और भौतिकी पढ़ाया और हिंदी की कक्षा में अपने ही विद्यार्थियों को सहपाठी बनाकर हिंदी सीखने लगे। गणित पढ़ाने के बाद वे हिंदी की कक्षा में सबसे पीछे बैठ जाते थे और पूरी तन्मयता से हिंदी सीखते थे।
1: हिंदी के मूल रूप को समझने के लिए धीरे धीरे उन्होंने ब्रजभाषा और अवधी भी सीखी।
2: रांची आकर वे कुछ समय के लिए सन 1938 में झारखंड के ही एक शहर हजारीबाग गए और सेंट कोलंबस कॉलेज में पंडित बद्रीदत्त शास्त्री के निर्देशन में संस्कृत और स्वामी तुलसीदास की 2 प्रमुख रचनाओं रामचरितमानस और विनय पत्रिका का गहन अध्ययन करने लगे।
1: फिर उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्वतंत्र परीक्षार्थी के रूप में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और उच्च अध्ययन के अभिप्राय से वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय पहुंचे और वहां के हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा से मिले।
5: आइए आइए फादर बुलके, आपका स्वागत है।
4: जी डॉक्टर धीरेंद्र, आपके स्वागत से मैं अनुग्रहित और कृतार्थ हुआ। मेरी हार्दिक अभिलाषा है कि मैं हिंदी में अपना स्नातकोत्तर अध्ययन इलाहाबाद विश्वविद्यालय से करूं।
5: ठीक है, लेकिन उम्मीदवार की कुछ परीक्षा तो लेनी ही होगी।
4: जी मैं प्रस्तुत हूं।
5: तो फादर, मैं चाहता हूं कि आप तुलसीदास जी की विनय पत्रिका के 2 पदों की इसी समय सप्रसंग व्याख्या करें। ये लीजिए।
4: जी अवश्य।
2: फादर कामिल बुलके ने कुछ ही देर में उन पदों की लिखित व्याख्या कर दी। इस यूरोपीय श्वेत वर्णीय ईसाई पुरोहित को डॉक्टर वर्मा ने प्रारंभ में नौसिखिया समझा था, लेकिन जब उन्होंने व्याख्या पढ़ी तो
6: ओह अद्भुत। तो फादर, अब विलंब कैसा? आप इसी समय से विश्वविद्यालय के हिंदी संकाय में अध्ययन के लिए आमंत्रित हैं।
4: धन्यवाद डॉक्टर धीरेंद्र, ये मेरा सौभाग्य होगा।
6: जी।
2: स्नातकोत्तर अध्ययन के बाद फादर कामिल बुलके ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा की प्रेरणा से डॉक्टर माता प्रसाद के निरीक्षण में शोध कार्य किया।
1: इससे जुड़ी एक बड़ी रोचक घटना है। फादर कामिल बुलके चाहते थे कि उनका शोध हिंदी में प्रकाशित हो, लेकिन उन दिनों सभी शोध अंग्रेजी में ही हुआ करते थे।
2: उन दिनों इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अमरनाथ झा थे। फादर कामिल बुलके ने इसके लिए विश्वविद्यालय के कुलपति से मिलने का समय मांगा।
4: क्या मैं अंदर आ सकता हूँ कुलपति महोदय?
3: आइए आइए फादर बुलके। मुझे बताया गया है कि राम कथा पर आपका शोध बहुत अच्छा बन पड़ा है। आपने इसमें बहुत से नए आयाम भी जोड़े हैं।
4: जी कुलपति महोदय, मैं अपने शोध पत्र को प्रकाशित करने के बारे में ही आपसे विमर्श करने आया हूँ।
3: जी जी,
4: मैं चाहता हूँ कि मुझे अपने शोध पत्र को देवनागरी में प्रकाशित करने की अनुमति दी जाए।
3: मगर फादर, आप जानते हैं कि विश्वविद्यालय के नियमानुसार शोध पत्र सिर्फ अंग्रेजी में ही प्रकाशित किए जा सकते हैं।
4: कुलपति महोदय, जैसा कि आपको ज्ञात है, मेरा शोध का विषय ही राम कथा की उत्पत्ति और विकास है।
3: जी,
4: मैं दृढ़ता से विश्वास करता हूं राम कथा और तुलसी की आत्मा के विराट सौंदर्य के दर्शन केवल और केवल उनकी मातृभाषा में ही हो सकते हैं।
3: जी, मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं फादर बुलके।
4: तो मैं आपकी इस प्रतिक्रिया को एक सकारात्मक उत्तर के रूप में देखने की अपेक्षा करता हूं।
3: जी
2: तो फिर क्या था?

0: विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद की सभा बुलाई गई और लंबे विचार विमर्श के बाद नियमावली में विधिवत परिवर्तन किया गया। फादर का ये अनुरोध मान लिया गया। भारत के शोध परिदृश्य में ये एक महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि इसके द्वारा देवनागरी में शोध प्रबंध लिखने का रास्ता सबके लिए साफ हो गया और आदिवासी भाषाओं में भी पीएचडी स्तर तक पढ़ाई होनी शुरू हो गई।
1: उन्होंने राम और राम कथा के बारे में अपने शोध ग्रंथ में लिखा है,
2: देखिए, राम वाल्मीकि कथा के मिथकीय पात्र नहीं हैं, बल्कि वे तो इतिहास पुरुष हैं, जिनकी व्याप्ति सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। रामायण सिर्फ धार्मिक साहित्य ही नहीं है बल्कि जीवन जीने के तरीके का दस्तावेज है।
0: उनके शोध की विशेषता ये है कि उन्होंने रामायण से संबंधित किसी भी विषय को छोड़ा नहीं है। हिंदी के अतिरिक्त उन्होंने तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बांग्ला, कश्मीरी, सिहली आदि भाषाओं के साहित्य में भी उपलब्ध राम कथा की गहन छानबीन की है।
1: उन्होंने तेलुगु में रचित श्री रंगनाथ रामायण और महर्षि कम्बन द्वारा तमिल में रचित कम्ब रामायण को भी संदर्भित किया। चार भागों में विभक्त 600 पृष्ठों में छपी उनकी ये थीसिस एक प्रतिनिधि शोध ग्रंथ साबित हुई और भारत सहित पूरे विश्व में विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित हुई। इसके बाद सारी दुनिया फादर बुल्के को जानने लगी।
0: अब जहां भी राम कथा होती, फादर कामिल बुल्के का नाम वक्ताओं की सूची में सबसे ऊपर होता। उन्होंने देश भर में राम कथा पर व्याख्यान दिए। वे कहा करते थे,
2: सब हैं नचावत राम गोसाई, मोहे नचावत तुलसी गोसाई।
0: सन 1950 में उन्हें बहुत सम्मान पूर्वक भारत की नागरिकता प्रदान की गई। इसी वर्ष वे रांची के सेंट जेवियर कॉलेज के हिंदी और संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बना दिए गए और आजीवन उसी पद पर रहे। वे हमेशा अपने विद्यार्थियों को उनकी अपनी भाषा में ही बातचीत करने हेतु प्रोत्साहित करते थे।
1: सबसे मशहूर अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश लिखने वाले फादर कामिल बुल्के ही हैं। 30 वर्षों की उनकी हिंदी साधना का जीवंत दस्तावेज उनका शब्दकोश माना जाता है।
0: उन्होंने इसमें 40,000 शब्द जोड़े और उसे प्रशासनिक, वैज्ञानिक और तकनीकी दृष्टि से अद्यतन करते रहे। फादर कामिल बुल्के बहुभाषाविद थे। वो अपनी मातृभाषा फ्लेमिश के अतिरिक्त अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, लैटिन, ग्रीक, संस्कृत और हिंदी पर भी संपूर्ण अधिकार रखते थे। इन भाषाओं के ज्ञान के कारण ही उन्हें शब्दकोश बनाने में बहुत सहायता मिली। उन्होंने लिखा था,
2: जब मैं अपने जीवन पर विचार करता हूं तो मुझे लगता है ईसा मसीह, हिंदी और तुलसीदास ये वास्तव में मेरी आध्यात्मिक साधना के 3 प्रमुख घटक हैं, और मेरे लिए इन 3 तत्वों में कोई विरोध नहीं है बल्कि गहरा संबंध है। मैं ईसा मसीह का परम भक्त हूं, हिंदी मेरा अनुराग है और गोस्वामी तुलसीदास मेरी प्रेरणा।
0: कामिल बुल्के की हिंदी सेवाओं के लिए 1974 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। जब लोग उन्हें फादर कहते तो वे किंचित संकोच से बोल उठते,
2: फादर अंग्रेजी शब्द है, यदि मुझे कामिल बाबा कहो तो सचमुच मुझे बहुत अच्छा लगेगा।
0: 17 अगस्त 1982 को दिल्ली में इस अद्भुत शोध शिल्पी राम कथा अनुरागी, बहु भाषा विद और हिंदी भाषा के अनन्य सेवक का निधन हो गया। उनकी मृत्यु शैया पर मात्र दो पुस्तकें थीं, बाइबल और गोस्वामी तुलसीदास जी की विनय पत्रिका। उन्हें दिल्ली में ही दफनाया गया।
1: 36 साल बाद वर्ष 2018 में पद्म भूषण फादर कामिल बुल्के का पार्थिव अवशेष दिल्ली से उनकी कर्मभूमि रांची लाया गया। उनके अवशेष को पूरे सम्मान के साथ रांची सेंट जेवियर कॉलेज में दफनाया गया।
0: महान शब्द शिल्पी और हिंदी साहित्य के इस पुरोधा फादर कामिल बुल्के बाबा को हमारा आभार सहित शत शत नमन।
3: डॉक्टर कामिल बुल्के, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने साथी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग। ये आकाशवाणी इंदौर है। अब प्रस्तुत है सुगम संगीत। इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी के गाए भजन। सबसे पहले सुनते हैं मधुकर राजस्थानी का लिखा ये भजन, खयाम के संगीत निर्देशन में।

सुगम संगीत इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से। आज के कलाकार हैं मोहम्मद रफ़ी। आइए इनसे सुनते हैं ये भजन।

आकाशवाणी इंदौर से इस वक्त आप सुन रहे हैं सुगम संगीत। आज के कलाकार हैं मोहम्मद रफ़ी। आइए इनसे सुनते हैं ये अगली रचना।

सुगम संगीत के अंतर्गत आज आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी के गाए भजन। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे लोक संगीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। इस गुरुवार दिनांक श्रोताओं, गुरुवार दिनांक 25 जून को सुबह 10:32 से 11:02 तक प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर का विषय है बारिश के दिनों में होने वाली बीमारियां और बचाव। श्रोता इस विषय से संबंधित अपनी जिज्ञासाएं और प्रश्न स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ डॉक्टर सलिल भार्गव से पूछ सकते हैं। आप हमारे ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर के विविध भारती चैनल FM 101.6 MHz पर सुन सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर भी ये कार्यक्रम सुना जा सकता है। प्रश्न पूछने के लिए दिन और समय नोट कर लीजिए। गुरुवार दिनांक 25 जून को समय सुबह 10:32 से 11:02 तक। फ़ोन करने के लिए नंबर्स हैं 2710223 और 2710224। इंदौर का एसटीडी कोड है 0731। तो फ़ोन करना ना भूलें। कल गुरुवार दिनांक 25 जून को समय सुबह 10:32 से विविध भारती इंदौर से FM 101.6 MHz और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर भी आप ये कार्यक्रम सुन सकते हैं। आकाशवाणी इंदौर से अब प्रस्तुत है लोक संगीत। लोक संगीत में आज हम आपको सुनवा रहे हैं विष्णु प्रसाद मालवीय और साथियों के गाए मालवी लोकगीत।

अभी आप सुन रहे थे विष्णु प्रसाद मालवीय और साथियों के गाए मालवीय लोकगीत। इसी के साथ लोक संगीत अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। थोड़ी ही देर में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: ये आकाशवाणी है। अब आप मुकेश कुमार से समाचार सुनिए। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला में आज निर्माणाधीन गोदाम ढहने से 3 लोगों की मौत हो गई और 5 अन्य घायल हो गए। घायलों का SSKM अस्पताल में इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी स्थिति का जायजा लेने के लिए दुर्घटना स्थल पर पहुंच गए हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, पुलिस, अग्निशमन और आपातकालीन सेवा तथा स्थानीय लोग बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा है कि सह अध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वत नैनी ने पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिकार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में जम्मू कश्मीर पर भारत का रुख दोहराया।
1: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। यह हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है, ऐसी बातें कही गईं। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
0: ईरान के तेहरान में भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार के बावजूद भारतीय नागरिकों को जारी नए परामर्श में अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचने को कहा है। बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सतर्कता बरतने तथा स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने को भी कहा गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि राजदूत सैमीसन ग्रीन और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठकें की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी और मजबूत करने के अवसरों पर चर्चा की। उन्होंने वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की प्रशंसा की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक की। बैठक की अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमार जुकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा आयोजित इस बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों से संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयास

0: घटनाओं की समीक्षा करने के लिए एक साथ आएंगे। श्री शाह इस अवसर पर मादक पदार्थ नियंत्रण के लिए वर्ष 2026 से 29 के लिए दृष्टि पत्र जारी करेंगे। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत त्रिपुरा में 96 सड़क परियोजनाओं के निर्माण के लिए 211 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की है। इस परियोजना से राज्य में 160 किलोमीटर से अधिक लंबी सड़कों का निर्माण होगा। इन परियोजनाओं से राज्य की 96 बस्तियों को पहली बार हर मौसम में सुगम सड़क संपर्क प्राप्त होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने देश भर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध पार्किंग और अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान तेज कर दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि कार्रवाई सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार की जा रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने बेंगलुरु और मुंबई में राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड से जुड़े 9 ठिकानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई कल शुरू की गई। ये जांच राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड और उससे जुड़े लोगों के खिलाफ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा के कथित उल्लंघन के मामले में की जा रही है। यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद्र ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने स्पेन की पाउला लोपेज और लूसिया रोड्रिगेज को हराया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप बी मुकाबले में देर रात स्विट्जरलैंड का मुकाबला कनाडा से होगा। वहीं इसी ग्रुप में कतर और बोस्निया हर्जेगोवना आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले कल रात 12:30 बजे से खेले जाएंगे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 462.96 मीटर पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। कार्यक्रम विवरण में जानकारी लीजिए इस सभा के शेष और कल की तीनों सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 7:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम ग्राम लक्ष्मी। इसमें आज हम आपको सुनवाएंगे स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित कार्यक्रम आकाशवाणी गाँव में। प्रस्तुति राजेश की रहेगी। सुर्खियों में ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 8:00 बजे। इसे हम अपने भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया आप सुन सकते हैं रात 8:15 बजे। और सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रगीत प्रसारित किया जाएगा रात 9:15 बजे। आज रात 9:30 बजे कार्यक्रम चर्चा का विषय है। इसे हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। रात 10:00 बजे सुनिएगा रूपक बहती रहे नदिया चंबल। आलेख व्योमकेश राजपुरोहित का है और प्रस्तुतकर्ता बीना पी शर्मा और संजीव मालवीय।

अब एक नज़र कल की तीनों सभाओं में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों पर। कल सुबह 6:05 पर आप सुनेंगे वंदना। सुबह 6:30 प्रसारित किया जाएगा चिंतन। 6:35 पर कार्यक्रम खेती की बातें में कल जानकारी देंगी तुलसा दरगैया। विषय होगा सोयाबीन की अधिक पैदावार किस प्रकार करें। श्री रामचरित मानस गान का प्रसारण समय रहेगा सुबह 6:40 पर। कल सुबह 7:20 पर आप सुनेंगे संस्कृत कार्यक्रम। इसमें कल हम आपको सुनवाएंगे वार्ता भारतीय सांस्कृतिक विरासतस्य संरक्षणे संस्कृतस्य भूमिका। इस विषय पर वार्ताकार होंगी निरुपमा त्रिवेदी। सुबह 7:35 पर सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुनहरे पल प्रसारित किया जाएगा। प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग अनुप्रसारित किया जाएगा भोपाल केंद्र से सुबह 8:30। लोक संगीत में 9:00 कलाकार होंगे प्रीतम मालवीय और साथी, और सुगम संगीत में 9:15 सुनिएगा शुभा मुद्गल को। कल शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में 9:30 आपको सुनवाएंगे उस्ताद अमजद अली खां का सरोद वादन। राग होगा शुद्ध सारंग। 10:00 जिले की चिट्ठी का अनुप्रसारण भोपाल केंद्र से किया जाएगा। 10:05 से आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम।

कार्यक्रम मन भावन। दिन में 11 बजे से कार्यक्रमों का अनुप्रसारण भोपाल केंद्र से किया जाएगा। इसमें दिन में 11 बजे आप सुनेंगे बात आपकी गीत हमारे, फिल्म संगीत दिन में 12 बजे, 12:30 बजे आप सुनेंगे संग्रहालय से, लोक संगीत 1:30 बजे और सुगम संगीत 1:45 पर। आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से महिला कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा दिन में 1:00 बजे। इसमें कल आप सुनेंगे वार्ता भारतीय लोक परंपराओं को सहेजने में महिलाओं की भूमिका, वार्ताकार होंगी पूजा चौरसिया। साथ ही रूप लावण्य सुनेंगे फैमिली फिटनेस और आपकी सुरक्षा आपके हाथ। हमारी शाम की सभा आरंभ होगी 5:00 बजे कार्यक्रम युववाणी के साथ। इसमें कल का आकर्षण रहेगा क्रम गीतों भरी कहानी। 6:00 बजे NCERT का प्रसारण किया जाएगा और 6:30 बजे से आप सुनेंगे ICC वुमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जाने वाले मैच की कमेंट्री का सीधा प्रसारण। इसे हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे मैच की समाप्ति तक। ये थे इस सभा के शेष और कल की तीनों सभाओं के मुख्य कार्यक्रम। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। देश भर में राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध पार्किंग और अतिक्रमण हटाने का अभियान तेज। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्य स्तरीय साइबर जागरूकता अभियान सेफ क्लिक 2.0 का किया शुभारंभ। वीरांगना रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर जबलपुर में हुआ विशेष कार्यक्रम। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। और प्रदेश में अगले 48 घंटों में मानसून की दस्तक के आसार। आज शाम राजधानी भोपाल सहित आसपास के जिलों में तेज बारिश। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने देश भर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध पार्किंग और अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान तेज कर दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि ये कार्रवाई सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार की जा रही है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों को अधिक सुरक्षित, सुगम और यात्रियों के लिए सुविधाजनक बनाना है। मंत्रालय के अनुसार प्राधिकरण ने विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध पार्किंग के 595 संवेदनशील स्थानों की पहचान की है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह शुक्रवार को नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। गृह मंत्रालय ने आज बताया कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB द्वारा आयोजित इस बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों से संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों की समीक्षा करने के लिए एक साथ आएंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज सुबह अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि राजदूत जेमिसन ग्रीर और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठकें की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उन्होंने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों की खोज की। उन्होंने राजदूत ग्रीर के नेतृत्व और दोनों दलों के रचनात्मक और प्रगतिशील तरीके से वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की भी सराहना की। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज भोपाल के रविन्द्र भवन में राज्य स्तरीय साइबर जागरूकता अभियान सेफ क्लिक 2.0 का शुभारंभ किया। मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा संचालित इस विशेष अभियान का मुख्य नारा रुके, सोचे और फिर क्लिक करें रखा गया है। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने साइबर जागरूकता बुकलेट और वीडियो का विमोचन भी किया। इसके साथ ही पूरे प्रदेश में सतर्कता का संदेश फैलाने के लिए साइबर जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
1: आज ये 15 दिन का विशेष अभियान 10 संभाग 55 जिलों में 50,000 से अधिक गांव में एक साथ चले। साइबर का खतरा, ये वास्तव में डिजिटल राक्षस है जो बिना दस्तक दिए स्मार्टफोन

0: कंप्यूटर के रास्ते से अपने घर के अंदर सेंधमारी करता है, डकैती करता है। और आजकल डिजिटल अजीजे भी रास्ते कितने आ गए, डीप फेक, फेक प्रोफाइल, हैकिंग, पता नहीं कितने प्रकार से। लेकिन सबका एक ही उत्तर, सावधान ही सुरक्षा है और ये जानकर ही बचाव।
1: ये प्रदेशव्यापी साइबर जनजागरूकता 15 दिवसीय अभियान 8 जुलाई तक चलेगा। सुरक्षित डिजिटल व्यवहार इसका प्राथमिक उद्देश्य है, जिसके तहत आम जनता, विद्यार्थियों, युवाओं, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को साइबर ठगी व ऑनलाइन धोखाधड़ी के प्रति जागरूक किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर 27 जून को सशक्त उद्यमी समृद्ध मध्य प्रदेश समिट राजधानी भोपाल के रविन्द्र भवन में आयोजित की जाएगी। समिट में 3 विशेष सत्र होंगे। 2000 से अधिक प्रतिभागियों वाले इस समिट में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल होंगे। उद्योग आयुक्त दिलीप कुमार ने आज बताया कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा आयोजित किए जाने वाले इस समिट में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य कुमार कश्यप और मुख्य सचिव अनुराग जैन विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। उद्योग आयुक्त दिलीप कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भूमि आवंटन, भूमि पूजन, लोकार्पण तथा एमएसएमई, स्टार्टअप एवं स्वरोजगार लाभार्थियों को चेक भी प्रदान करेंगे। इस समिट में खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र तथा परिधान, अभियांत्रिकी क्षेत्रों के लिए एमएसएमई के लिए बायर सेलर्स मीट का आयोजन भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एमएसएमई प्रदर्शनी व ईज ऑफ डूइंग क्लिनिक का उद्घाटन भी करेंगे। इस प्रदर्शनी में लगभग 50 स्टॉल लगाए जाएंगे। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
0: आज ये 15
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज वीरांगना रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर जबलपुर के नरई नाला में उनकी समाधि पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने रानी दुर्गावती का स्मरण करते हुए कहा कि प्रदेशवासी रानी दुर्गावती के बलिदान को सदैव याद रखेंगे। इससे पहले राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने राजधानी भोपाल में लोकभवन में आयोजित कार्यक्रम में रानी दुर्गावती के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी रानी दुर्गावती को श्रद्धांजलि दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि रानी दुर्गावती एक वीर रानी और नारी शक्ति का प्रतीक थी, जिन्होंने संप्रभुता और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए मुगल आक्रमणकारियों के खिलाफ वीरतापूर्ण संघर्ष में अपने प्राणों का बलिदान किया। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने आज लोकभवन में जनजातीय विकास कार्य विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता का मूल्यांकन मुख्यतः तकनीकी विषय है, इसलिए हितग्राहियों की प्रतिक्रिया पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। निर्माण सामग्री एवं कार्य की गुणवत्ता की निगरानी के मानक मापदंड निर्धारित किए जाएं। राज्यपाल पटेल ने प्रदेश में सिकल सेल उन्मूलन अभियान की तीव्र गति से क्रियान्वयन पर हर्ष व्यक्त किया। बैठक में राज्यपाल को पीएम जनमन योजना के अंतर्गत 9 विभागों की 11 अधोसंरचनात्मक, 7 हितग्राही मूलक योजनाओं और धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत 17 विभागों की 25 योजनाओं की प्रगति की जानकारी भी दी गई। प्रदेश को विकास के पथ पर तेजी से आगे ले जाने और आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प के साथ राजधानी भोपाल में विकसित मध्य प्रदेश विषय पर उच्च स्तरीय कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पारंपरिक रूप से किया। इस कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि राज्य सरकार मध्य प्रदेश के समग्र और समावेशी विकास के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। केंद्र सरकार के विकसित भारत 2047 के विजन को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश ने भी अपनी दीर्घकालिक विकास योजनाओं पर काम शुरू कर दिया है। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में अगले 48 घंटों में मानसून के दस्तक देने के आसार हैं। राजधानी भोपाल समेत आसपास के जिलों में आज शाम अचानक बादल घिरने के साथ ही तेज बारिश शुरू हुई। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में मानसून की दस्तक बालाघाट, छिंदवाड़ा और पांडुना के रास्ते होने के आसार हैं। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान नर्मदापुरम, इंदौर, उज्जैन और जबलपुर संभागों के अधिकांश जिलों में कहीं कहीं बारिश हुई है। अब रुख करते हैं खेलों की खबर का। यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने स्पेन की पाउला लोपेज और लुसिया रोड्रिगेज को हराया। प्री क्वार्टर फाइनल में उनका मुकाबला जापान की सुमिरे नाकाडे और मियू ताकाहाशी से होगा। वहीं हॉकी इंडिया ने 5 से 14 जुलाई तक ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा कर दी है। भारतीय टीम नए कोच टिम व्हाइट के नेतृत्व में जूनियर एशिया कप सहित आगामी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी के सिलसिले में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में 7 मैच खेलेगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। कटनी निगम कार्यालय में पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत 30 जून तक विशेष लोक कल्याण मेले का आयोजन किया जा रहा है। आगरमालवा जिले में 28 जून से 30 जून तक 3 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान चलाया जाएगा। खंडवा के शहरी क्षेत्रों के विभिन्न वार्डों में कल से 30 जून तक रक्तदान शिविर लगाए जा रहे हैं। झाबुआ के शासकीय शहीद चंद्रशेखर आजाद महाविद्यालय में 1 जुलाई को जिला स्तरीय युवा संगम रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। शिवपुरी जिले में पल्स पोलियो अभियान को सफल बनाने के लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में आज जिला टास्क फोर्स की बैठक का आयोजन किया गया। नीमच के शासकीय आईटीआई रामपुरा में आज जिला रोजगार कार्यालय द्वारा युवा संगम रोजगार एवं स्वरोजगार मेले का आयोजन किया गया। भारतीय स्टेट बैंक की एसीबी शाखा सीहोर ने एसबीआई स्मार्ट एग्री कस्टमर्स मीट का आयोजन किया, जिसमें करीब 75 प्रगतिशील किसान और कृषि उद्यमी शामिल हुए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध पार्किंग और अतिक्रमण हटाने का अभियान तेज। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्य स्तरीय साइबर जागरूकता अभियान सेफ क्लिक 2.0 का किया शुभारंभ। वीरांगना रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर जबलपुर में हुआ विशेष कार्यक्रम, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। और प्रदेश में अगले 48 घंटों में मानसून की दस्तक के आसार, आज शाम राजधानी भोपाल सहित आसपास के जिलों में तेज बारिश। इस बुलेटिन में बस इतना ही, अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार। आकाशवाणी।
1: मीडियम वेव 462.96 मीटर पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम लक्ष्मी।

0: ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम सुनवा वाली अपनी सगली बहन होन न साथेज अपना सगला भाई होन खे भारती की राम राम। भाई बहन होन बात करा अन्नपूर्णा योजना की, तो अन्नपूर्णा योजना की जो खास करीने जो यह योजना है या बूढ़ा मना कमजोर आय वर्ग की बहन होन ने किसान भाई होन सारू चले गई योजना है। अलग अलग राज्य में गरीब ने जरूरतमंद परिवार के खाद्य सुरक्षा ने आर्थिक सहायता देने सरू या चलाई जा रही एक प्रमुख कल्याणकारी योजना है और इको लाभ लेने सारू अपना भयोन इको आवेदन करीने इको लाभ ली सके हैं। साथेज मौसम विभाग से मिली जानकारी का अनुसार किसान भयोन अभी जो पानी पड़ियों नहीं वो बुआई सारू चाहिए वसो पानी नहीं पड़ियो है। एका सारू तम अपना बहन से योज के वांगा कि बुवाई की जल्दी नहीं करे, ठीक ठाक जद बरसात हुई जावे ने उमस जद कम हुई जावे उका बाद ही बुवाई करे। ने भाई बहनों आज सुना यो कार्यक्रम स्थल रिकॉर्डिंग पर केंद्रित कार्यक्रम आकाशवाणी गांव में। गांव है नलखेड़ा, जिला आगर, मालवा, तिकोन और पानखेड़ी। एमे जो भाग ले रिया है वे मुख्य गायन कलाकार है सप्तमंगल मांगीलाल कुलश्रेष्ठ, सह गायक है महेश कुलश्रेष्ठ, हारमोनियम जो बजेरिया है वे है गंगाराम भगत, वायलिन बजेरिया वे है रईस भाई, ढोलक जो बजेरिया है वे है प्रवीण मालवीय, सातेज सचिन मालवीय ने करताल जो बजेरिया है वे सुनील मालवीय और साथ में गोकुल प्रसाद कुलश्रेष्ठ। और इखे प्रस्तुत कर रिया है कार्यक्रम प्रमुख राजेश। तो सुना आकाशवाणी गांव में
1: किसान भाइयों राम राम। प्रस्तुत है दिनांक 13 जून 2020।

0: 2026 को आगर मालवा जिले के ग्राम नलखेरा एवं आसपास के गांवों में की गई स्थल रिकॉर्डिंग पर केंद्रित कार्यक्रम आकाशवाणी गांव में। प्रस्तुत करता है कार्यक्रम प्रमुख राजेश पाठक। किसान भाइयों, आज हम आपको सुनवा रहे हैं नलखेरा एवं आसपास के गांवों में की गई स्थल रिकॉर्डिंग पर केंद्रित कार्यक्रम आकाशवाणी गांव में। आकाशवाणी समय समय पर गांव का दौरा करती है एवं ग्रामीण एवं कृषि विकास पर चर्चा करती रहती है। इसी तारतम्य में आकाशवाणी की टीम 13 जून 2026 को ग्राम नलखेरा पहुंची। जैसा सर्वविदित है, नलखेरा में बगलामुखी के मंदिर है। माँ बगलामुखी हिंदू धर्म की 10 महाविधाओं में 8वीं महाविधा है, जिन्हें स्तंभन और शत्रुओं की विनाशक देवी माना जाता है। माता का मंदिर मुख्य रूप से शत्रुओं पर विजय, कानून विवादों में सफलता और बुरी नजर व तंत्र मंत्र के निवारण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। बगला का अर्थ है लगाम और मुखी का अर्थ है मुख, अर्थात यह देवी शत्रुओं की वाणी और बुद्धि को स्तंभ पर रख देती है। इसलिए जीवन में गुप्त प्रकट शत्रुओं और विरोधियों पर विजय पाने के लिए इनकी पूजा की जाती है। कोर्ट कचहरी के मामलों में कानूनी लड़ाइयों और व्यावसायिक या व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के लिए सफलता के लिए इनकी साधना अचूक मानी जाती है। माँ बगलामुखी को पीला रंग अत्यंत प्रिय है। मंदिरों में माता की प्रतिमा, श्रृंगार वस्त्र और प्रसाद जैसे बेसन के लड्डू सब पीले होते हैं। यहाँ पर पीले वस्त्र पहनकर हवन और मंत्र जाप करने का विशेष विधान है। कुछ स्थानों पर माता बगलामुखी के साथ माँ लक्ष्मी और माता सरस्वती की त्रिशक्ति भी विराजमान है, जिसे भक्तों को बुद्धि बल और धन की प्राप्ति होती है।
1: हमारे साथ इस मंदिर के बारे में विशेष रूप से जानकारी देने के लिए मांगीलाल कुलश्रेष्ठ जी उपस्थित हैं। आप हाई स्कूल टिकोन में शिक्षक भी हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं कि नलखेरा का धार्मिक महत्व है माँ बगलामुखी मंदिर के कारण है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। सबसे पहले माँ पीताम्बरा बगलामुखी का हार्दिक उनके चरणों में नतमस्तक प्रणाम करते हुए, माँ बगलामुखी का इतिहास की अगर बात करें तो पांडवकालीन माँ बगलामुखी, जहाँ पर पांडवों ने अपना उस समय का उनका जो समय था उस समय को बिताने के लिए उन्होंने माँ बगलामुखी के इस स्थान को चुना था। कहा जाता है कि माँ बगलामुखी उनकी कुल देवी भी कहलाती है पांडवों। साथ ही माँ लक्ष्मणा, जिसे लखुंदर नदी कहते हैं, उसके तट पर आप विराजमान हैं। 10 महाविद्याओं में से आप एक श्रेष्ठ महाविद्या माँ बगलामुखी पीताम्बरा शक्तिपीठ के रूप में जानी जाती हैं। सकल विश्व के लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। तीनों नवरात्रियों में यहाँ पर इतनी भीड़ लगती है कि पांव रखने की जगह नहीं होती है। क्यों? क्योंकि माँ सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। ऐसा भी कहा जाता है कि वो शत्रुओं का नाश करने और बुरी शक्तियों को निष्क्रिय करने में भी हमारी माँ हमारी मनोकामना पूर्ण करती है। यहाँ जो ओगड़ी विद्या वाले लोग आते हैं और वो यहाँ पे सिद्धि प्राप्त करते हैं, वो पूरी नवरात्रि में लक्ष्मणा के तट पर जो पीछे का भाग है वहाँ पर छोटे छोटे चबूतरे बने हुए हैं ओगड़ियों के, और वहाँ पर साधना करते हैं और वहाँ से तांत्रिक विद्याएं सीख करके सारे देश को सुख शांति प्रदान करने में।
1: ये तो धार्मिक महत्व,
2: ये धार्मिक महत्व।
1: हम जानना चाहेंगे कि ये जो नदी है
2: जी,
1: ये नदी कहाँ मिलती है?
2: जी जी जी जी बिल्कुल।
1: और आसपास के कृषि की क्या स्थिति है?
2: जी जी जी जी बिल्कुल ठीक है। माँ बगलामुखी के पीछे लक्ष्मणा, जिसे लखुंदर नदी कहते हैं, और यह नदी यहाँ से 20 किलोमीटर के लगभग चलकर आगे हमारा बहुत अच्छा मंदिर है, तारकेश्वर महादेव मंदिर
1: जी।
2: एक कोने पे तारकेश्वर, एक कोने पर देवनारायण, और वहाँ पर त्रिवेणी का संगम हुआ है। उधर से कालीसिंध आती है, इधर से लक्ष्मणा जाती है, और पायली तरफ से गुप्त सरस्वती आती है, और तीनों का वहाँ पर मिलान होता है। वहीं पे हमारी माँ लक्ष्मणा लखुंदर मिल जाती है। अब रहा सवाल, यदि इस माँ के कारण हमारा ये नलखेड़ा क्षेत्र साजापुर जिले तक पूरा हरा भरा रहता है और यहाँ के किसान इतने उन्नत हुए हैं क्योंकि माँ लक्ष्मणा में 12 ही महीना पर्याप्त पानी होता है, साथ ही अभी पूर्व दिशा की ओर जहाँ पे काली सिंध बहती है और काली सिंध में सर अभी अटल सागर बांध बना हुआ है
3: जी,
2: तो उसके पानी को इससे अटैच कर दिया तो इसमें कभी भी पानी की अब कमी नहीं आती है। 12 ही महीना यहाँ पर तीनों फसलें हमारे किसान भाई पैदा करते हैं।
3: इस समय सोयाबीन की फसल
2: हाँ
3: काफी मात्रा में ले रहे
2: काफी मात्रा में वो सोयाबीन की लेते हैं।
3: संतरा की भी,
2: संतरा तो यहाँ के मतलब शाजापुर जिले और आगर जिले के संतरा पूरे भारत में प्रसिद्ध हैं। इतने मीठे संतरे यहाँ की इसी उपजाऊ जमीन है, वो संतरे के लिए बहुत ही उपयुक्त है, पूरे भारत में वो मानी गई है। और यहाँ पर धनिया
3: जी,
2: धनिया भी यहाँ पर बहुत ही अच्छे पैदा करते हैं क्योंकि पाटीदार बाहुल्य एरिया है जहाँ पर धनिया करते हैं। और जैविक खेती की अगर बात करें तो हमारा ये क्षेत्र जैविक खेती में बहुत आगे आने लगा। मैं खुद ये जो मेरा संगीत जन कल्याण शोध संस्थान समिति है इसके माध्यम से मैं नवांकुर भी हूँ मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद का, और मेरे पास में करीब 500 किसान जुड़े हुए हैं। 17 गांव है मेरे ग्राम प्रस्फुटन के और उसमें 500 किसान को मैं जैविक कृषि की ओर मैंने इंगित किया है और हमारे क्षेत्र में हम स्वयं खाद और दवाई भी जैविक बनाने का काम हम कर रहे हैं
3: जी।
2: जी
3: तो वर्तमान में सरकार जो है हमारी
2: जी जी
3: जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है
2: जी,
3: तो कई लोगों का सोचना है कि जैविक खेती से उत्पादन कम बढ़ता है
2: जी जी जी,
3: इसके बारे में क्या कहना चाहिए?
2: हाँ बिल्कुल ये बात सही है सर, शुरू शुरू में एक दो साल ऐसा लगेगा कि उत्पादन कम हुआ, परंतु हम कहते हैं कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दो तरह से लाभ होते हैं। प्रत्यक्ष लाभ आपने पैसे का देख लिया कि ठीक है हमें पैदावार ज़्यादा हुई, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से जो पैदावार जैविक कृषि की होगी उसको यदि हम खाने के उपयोग में लेंगे तो हमारे घर में कोई बीमारी नहीं होगी सर,
3: स्वाद ज़्यादा रहता है,
2: स्वाद भी ज़्यादा रहता है,
3: कीटनाशकों का उपयोग कम होता है
2: जी बिल्कुल बिल्कुल, और
3: गुणवत्ता बनी रहती है,
2: गुणवत्ता बनी रहती है।
3: और इसके अलावा खरीफ तैयारी जो हमारे किसान भाई हैं वो किस प्रकार कर रहे हैं?
2: खरीफ की तैयारी अब बहुत ही अच्छा है क्योंकि अब बोने का लगभग समय आया है। 26 जून जो माना जाता है भारत के लिए, 26 जून को हमारी बोनी हो ही जाती है, प्रकृति पूरी तरह से तत्पर है, तैयार है और हमारे किसान भाइयों ने पूरी तरह से पहले प्लव करवा लिया, कल्टीवेटर करवा लिया, अब रोटावेटर मेरे खुद के खेत में आज रोटावेटर चल रहे हैं।
3: इस बार आप कौन सी फसल लेने को?
2: बिल्कुल सर, मैंने 4 क्वालिटियों की सोयाबीन अलग अलग में लाया हूँ।
3: कौन कौन सी है?
2: मेरे पास GS52 है, मेरे पास 1135 है, मेरे पास में एक छोटी मटकू तोर आई है, कद में छोटी पर उसका दाना बड़ा है
3: जी जी।
2: ऐसी में अलग अलग क्वालिटी की 4 खेतों में मक्का संकर मक्का के रूप में लेकर आया हूँ, इस बार मैं उसको भी लगाऊंगा। और कुछ नामी मूंग है जिसको गंगा 45 बोलते हैं,
3: इसको भी लगाएंगे,
2: उसको भी मैं लगाऊंगा और सभी लगाते हैं मेरे एरिया में लगभग।
3: वर्तमान में खेती को लाभ का धंधा हम कैसे बना सकते हैं?
2: हाँ बिल्कुल बना सकते हैं सर, वर्तमान में खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए हमारे पास में बहुत अच्छे 2 तरीके हैं। पहला ये है कि किसान को केवल खेती पे ही निर्भर नहीं रहना चाहिए, साथ साथ उसको पशुपालन भी करना चाहिए, क्योंकि जब पर्याप्त पानी है हमारे पास में तो बढ़िया सी हम जर्सी गायें रखें, बुर्रा भैंसे रखें, उससे हमारे डेयरी विकास चलेगा। साथ ही जो हमने अनाज
3: बायोगैस प्लांट
2: भी करें, और दूसरी बात ये है कि सर जो हम अनाज पैदा करते हैं उसको डायरेक्ट नहीं बेचते हुए इनडायरेक्ट रूप में, जैसे मान लो गेहूं है तो गेहूं का हम दलिया बना के, बिस्किट बना के,
3: मूल्य संवर्धित करके
2: उसको बेचे, तभी वो लाभ का धंधा बन पाएगा।
3: और पीएम सोलर एनर्जी का जो है आजकल चल रहा है घर घर मुफ्त बिजली योजना,
2: हाँ
3: इसमें सरकार की सब्सिडी भी है इधर भी
2: चल रहा
3: है लोग,
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सोलर ऊर्जा के तो लिए आगर फेमस हो गया, यहाँ पर लगभग कम से कम 50,000 हेक्टेयर क्षेत्र में अपने ही पास में देहरीपाल करके गांव है, देहरीपाल से पूरा बुरला एरिया, तो उसमें हजारों किलोमीटर तक हमने ये जो सोलर
3: और विंड मिल भी काफी है इधर,
2: खूब मिल रही है और किसानों को सोलर प्लांट के लिए हमारे मकान पे हम

0: जब उसको लगाते हैं 1 लाख रुपए की उसकी लागत है, परंतु उसमें से 50% तो हमारे सब्सिडी में चले जाते हैं, वो 50% है वो भी हमको किस्तों में जमा करना है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच एक और प्रगतिशील कृषक मौजूद हैं। आपका शुभ नाम?
2: बबलू मालवी सर।
1: मालवीय जी, आपकी खेती किस गांव में है?
2: पानकेड़ी गांव।
1: इस बार आप खरीफ में किन किन फसलों की खेती करने के लिए सोचे हैं?
2: सर अभी सोयाबीन लगाऊंगा, उसके बाद उसके साथ ही मक्का और अपने ये उड़द
1: जी
2: और तिल
1: ये लगाएंगे।
2: हाँ जी सर।
1: तो सोयाबीन की बीज की व्यवस्था कहाँ से की है?
2: सर सोयाबीन के बीज की व्यवस्था तो कुछ तो घर से हो जाती है और कुछ अपने जो अपने कृषि विभाग से होती है
1: जी।
2: सर वहाँ से बीज मिलता है, कुछ सब्सिडी के आधार पर।
1: कब तक कर देंगे
2: सर? 27 जून को हो जाती है
1: जी। और चूंकि ये क्षेत्र में नदी भी है
2: जी,
1: तो इसके कारण भी कुछ जल स्तर ठीक रहता है?
2: जी सर, जल स्तर काफ़ी अच्छा रहा हमारे इधर, और अब कुंडालिया परियोजना के अंतर्गत बांध भी बन गया, तो उससे भी
1: सिंचाई की व्यवस्था
2: पर्याप्त मात्रा हो गई सर।
1: तो सोयाबीन की खेती के लिए खेत की तैयारी तो आपने कर लिया हो?
2: जी सर
1: कैसे
2: बिल्कुल।
1: थोड़ा हमें भी बता।
2: सर पहले तो वो कल्टीवेटर के द्वारा हमने जुताई की, उसके बाद अब उसके ऊपर रोटावेटर जो आता है मिट्टी को बारीक करने के लिए
1: जी,
2: मुलायम करने के लिए, उसकी तैयारी की अब कंप्लीट पड़ा है। उसके बाद अब जैसे बोवनी आएगा, टाइम आएगा, वो बोवनी कर देंगे,
1: बीज उपचार भी करेंगे
2: ना सर
1: जी। इसके अलावा आपने मक्का की खेती बताया
2: जी,
1: तो कैसे करेंगे? मक्का कौन सी किस्म है?
2: सर मक्का तो अपने ये देशी मक्का ही लगाते हैं
1: जी। कैसे लगाएंगे?
2: सर हाथ से, चौपाई होगी उसकी,
1: चौपाई करेंगे।
2: हाँ, और कुछ हल से भी करते हैं सर।
1: यहाँ कृषि लेबर की क्या व्यवस्था है?
2: सर कृषि लेबर की बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे,
1: मिल जाती है। प्रतिदिन कितनी मजदूरी देते हैं?
2: प्रतिदिन सर 250, 300, 400 जैसे अलग अलग हिसाब से मिलते हैं।
1: आप एक युवा किसान हैं
2: जी सर,
1: खेती को लाभ का धंधा कैसे बनाएंगे?
2: सर खेती को लाभ का धंधा हम अलग तरह की कुछ ऐसी नई किस्म लाएंगे, मतलब जैसे कि अलग ये क्या बोलते हैं इसको,
1: मूल्य संवर्धन करेंगे। जो कृषि विज्ञान केंद्र आपके आगर मालवा में भी
2: जी,
1: है, यहाँ से भी प्रशिक्षण लेके आप नवाचार कर सकते हैं।
2: जी सर कर सकते हैं।
1: और अच्छा करेंगे। संतरा की भी आपके पास खेती है
2: कि? नहीं है सर,
1: संतरा का बागान
2: नहीं है।
1: तो इस क्षेत्र में संतरा तो बहुत होता है
2: जी सर, और इसके साथ हम वो फूलों का भी करते हैं सर, फूलों की खेती भी करते हैं।
1: इसके बारे में कुछ बताएं, फूलों की खेती?
2: जी सर, फूलों की खेती सर अब
1: चूंकि बगलामुखी का मंदिर है, यहां पर फूल का व्यवसाय काफी अच्छा हो सकता है।
2: जी जी सर, तो उसके लिए हम अभी तैयार कर दिया बीज।
1: कौन सी फूल बोते हैं
2: सर? वो गेंदा
1: और
2: एक वो अपने इंग्लिश गुलाब भी लगाते हैं
1: जी। और जो भी प्रचलित यहाँ फूल है,
2: गेंदे के फूल की अच्छी खेती होती है सर, और वो हमारे माता रानी के यहाँ पे हमारा व्यवसाय वहाँ चल जाता है सर
1: जी।
2: अगर हम जैविक खेती अगर जो करना चाहते हैं तो सर उसमें काफ़ी अच्छा लाभ मिलता है हमें, जैसे कि उर्वरक की हमें वहीं पे पूर्ति हो जाती है, जैसे गाय भैंस ढोर रखते हैं तो उसके उससे भी हमें मिल जाता है। और जैविक जो अभी जो मार्केट में जो सर खाद मिल रहा है उर्वरक, वो बहुत महंगा है, और जैविक अगर हम अपनाना चाहते हैं तो जैविक बहुत सस्ता मिलता है सर।
1: हम आपने कहा हम तिल की खेती करें
2: जी सर,
1: तो कैसे करते हैं?
2: दुकान से लेके आते हैं जो अच्छी किस्म, जो वैरायटी देते हैं हमारे यहाँ पे, और कुछ हमारे कृषि विज्ञान केंद्र से भी संपर्क करते हैं, वहाँ से पूछते हैं उनसे कि वो बताते हैं, हमें प्रशिक्षण देते हैं कि कौन सी किस्म लगाओ आप, ये किस्म कैसी अच्छी रहती है।
1: ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद
2: जी सर। बहुत
1: हमारे बीच नलखेड़ा ग्राम के पंचायत सचिव हैं। आपका शुभ नाम?
3: सनत कुमार द्विवेदी।
1: द्विवेदी जी, आप ये बताएं,
3: हाँ,
1: पंचायत सचिव होने के कारण जो है इस क्षेत्र की, इस पंचायत की विकास किस प्रकार हुई है, थोड़ा विस्तार से बतलाइए।
3: सिद्धपीठ है, 10 विद्या में से एक विद्या है माँ बगलामुखी। दूर दूर से सभी यात्री, दर्शनार्थी सभी पधार रहे हैं। जो अधिकतर यहाँ महत्व है हवन का, दतिया भी बगलामुखी है, यहाँ भी बगलामुखी है, पर यह जब से हवन प्रारंभ हुआ
1: महत्व और बढ़ गया।
3: और यज्ञ शास्त्र में भी लिखा है कि यज्ञ से देवता प्रसन्न होते हैं। तो भले ही अब कलयुग चल रहा है, भाव कुभाव अन्न कलशाऊ नाम जपत मंगल दिश, कैसे भी करो पर हवन चल रहा है तो उससे प्रभाव ज़्यादा पड़ रहा है और उससे लोगों का कार्य हो रहा है, मनोकामना पूर्ण हो रही है। तो ग्राम पंचायत में अधिकतर जल कल्याण योजना भी हमारे पास रहती है, जैसे लाडली बहना और पेंशन, इसके बाद निर्माण कार्य, सीसी रोड बनाना,
1: ये सारे काम चल
3: रहे हैं। सारे चल रहे हैं।
1: हमारे जो निशक्त जन हैं,
3: हाँ,
1: जो नहीं ले पाते हैं योजना का लाभ, सरकारी योजना का लाभ,
3: हाँ,
1: उनको उन तक पहुंचाने के लिए, जो वास्तविक हितग्राही हैं,
3: हाँ,
1: उन तक पहुंचने के लिए आपके क्या सार्थक प्रयास चल रहे हैं?
3: उसके लिए हम, हमारी पूरी टीम होती है
1: जी,
3: हमारे सरपंच महोदय, हमारे जो सहायक सचिव है, गांव के मेंबर है, हम जाकर उनसे मिलते हैं कि का खाता नहीं खुलवाता है तो खुलवाते हैं, आधार कार्ड नहीं बनवाता है तो आधार कार्ड वालों को वहीं ले जाते हैं, क्योंकि आजकल ऑनलाइन काम हो गया सब,
1: बिल्कुल सभी का खाता खुलवाते हैं,
3: हाँ,
1: आधार कार्ड पैन कार्ड जितना भी हो सकता है,
3: उसके कारण आजकल की योजना रह जाती है
1: जी।
3: मेन तो आधार कार्ड के कारण, किसी का अंगूठा नहीं आ रहा है, किसी की खाता नहीं खुल रहा है, तो उसके लिए प्रयास करते हैं हम कि अधिकारी कर्मचारी को वहीं ले जाते हैं,
1: बिल्कुल,
3: ताकि उनका डाक, कोई का प्रमाण पत्र नहीं है तो उनका डॉक्टर को वहीं ले जाते हैं, सामाजिक
1: काम,
3: मुख्यमंत्री कन्या विवाह का कार्य चलता है,
1: क्योंकि शादी ब्याह का भी समय आ रहा है,
3: हाँ,
1: तो इसमें भी शासन की जो योजनाएं,
3: हाँ, हाँ,
1: कन्या विवाह योजना,
3: कन्या विवाह, उसमें
1: इसको भी जानकारी देते हैं और लाभ दिलवाते हैं,
3: लाभ दिलवाते हैं उनको,
1: बहुत बहुत,
3: हाँ।
1: आपका शुभ नाम?
4: राजेंद्र कुमार।
1: राजेंद्र कुमार जी, आप समाज के अध्यक्ष भी हैं
4: जी,
1: अध्यक्ष होने के नाते जो है कौन कौन से विकास कार्य कर रहे हैं नलखेरा में?
4: समाज के भी धर्मशाला का भी, धर्मशाला का निर्माण कराया
1: जी,
4: इसमें सब सुरक्षा सुविधा युक्त कराया, इसको 30 साल से ऐसे वीरान पड़ी थी जगह, तो इसका निर्माण करवाया, सब समाज के सभी सहयोग से हुआ है, तो
1: सभी वर्ग के लोग इसका लाभ भी लेते हैं,
4: सभी वर्ग के लिए बनाया है ये
1: जी,
4: समाज के लिए तो यही सही, दूसरे भी उपयोग कर सकते हैं इसको, जल की सुविधा के लिए तो अभी नल जल योजना में तो अभी तो नल ट्यूबवेल है सरकारी नगर पालिका की
1: जी,
4: उसमें हर घर पर पानी जा रहा है,
1: हर घर पर
4: पानी जा रहा है, अभी हमारे इस अगले वाली गली में रहता हूँ मैं
1: जी,
4: वहाँ पर ट्यूबवेल है, उसमें 35 कनेक्शन है, एक बोर में 35 घर में पानी जा रहा है,
1: पानी की कमी नहीं है,
4: कोई कमी नहीं,
1: खेतों में भी पानी की कमी
4: नहीं, 35 ही घरों में डिब्बी भी लेकर नहीं जाना पड़ रहा है
1: जी। आपका शुभ नाम?
5: गंगाराम मालवीय
1: जी, आप इस क्षेत्र के विकास के लिए किस प्रकार सेवा करते हैं, थोड़ा विस्तार से बताएं।
5: नशा मुक्ति
1: अभियान चलाया,
5: हाँ चलाया मैंने, उसमें काफ़ी लोगों को राहत मिली, संगीत के माध्यम से भी उनको गांव-गांव जाकर साइकिल से सिखाए,
1: कैसे सिखाएं थोड़ा हमें, हाँ, भी बतलाएं, संगीत के माध्यम से नशा मुक्ति अभियान।
5: अब मारी बैगी सुन लो पुकार, कर लो पर्यावरण में सुधार,
1: क्या बात,
5: कर लो पर्यावरण में सुधार, वृक्ष लगाओ।

0: में सुधार। दूसरा है
1: आपके जो ये संदेश है, हाँ, खास करके वर्तमान समय में जो हमारे युवा हैं,
0: हाँ युवा पढ़ रहा है
1: और खेती किसानी में भी लगे हुए हैं,
0: लगे ना,
1: और नवाचार कर रहे हैं कई प्रकार के,
0: हाँ,
1: उनको नशा मुक्त करना बहुत बड़ी जवाबदारी होती है, आप इस क्षेत्र में सक्रिय हैं,
0: है ना,
1: क्या सफलता मिली, लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, आप इस तरह से जो नशा मुक्ति
0: बच्चे युवा लोग बच्चे मेरे पास आते भी सीखने भी आते हैं
1: जी।
0: मैं फ्री में संगीत कोचिंग चलाता हूँ, जैसे में नौकरी है और पुलिस थाने में भी रहता हूँ, वो मैं फ्री ये विद्या है इसको मैं सिखाता हूँ,
1: सुरक्षा व्यवस्था में भी लगे हुए,
0: सुरक्षा पूरी, सुरक्षा पूरी, लोकेशन पूरा, जनरल नॉलेज मेरे को पूरा है क्षेत्र का, कोई भी अधिकारी पूछ ले तो अपन किसी का बुरा भी नहीं करते पर सही काम करते हैं अधिकारी को पूरा विश्वास, पूरे मध्य प्रदेश में लोग जानते हैं मेरे,
1: नलखेड़ा में बगलामुखी का मंदिर है,
0: है ना,
1: यहाँ पर पूरा देश विदेश के लोग आते हैं,
0: आते हैं
1: अपनी मनोकामना लेकर
0: आते हैं,
1: उनकी सुरक्षा की व्यवस्था के लिए किस प्रकार,
0: वो हमारी ड्यूटी भी लगती है यहाँ पर, पुलिस की भी लगती है, ग्राम समिति बनी है
1: जी,
0: सभी की लगती है,
1: ग्राम समिति के माध्यम से कैसे सुरक्षा व्यवस्था करते हैं
0: वो, मैंने
1: बाहर से जो आगंतुक लोग आते हैं,
0: हाँ उनके लिए वो मार्गदर्शन देना सही
1: जी,
0: मंदिर तक पहुँचाना और उनको रहने की व्यवस्था पूरा करना, ये ग्राम रक्षा समिति है गाँव की और कोटवार भी है,
1: बिल्कुल बिल्कुल, हमारे बीच कृषि उपज मंडी

0: जी, और ग्रेडिंग वगैरह की व्यवस्था?
1: ग्रेडिंग की व्यवस्था नहीं है, किसानों को शासकीय व्यवस्था नहीं है, व्यापारियों की तरफ से ग्रेडिंग व्यवस्था है। जो भी मंडी के लाइसेंसधारी होते हैं वो छोटे हो या बड़े हो समान सभी प्रकार के अनाज विशेषकर सोयाबीन गेहूँ
0: ये लेके आते हैं और उनकी बिक्री की व्यवस्था वगैरह है। और तील वगैरह भी होता है?
1: तील वगैरह भी होता है।
0: तो और मूल्य की जानकारी कैसे मिलती है किसानों को कि मंडी भाव क्या रहेगा?
1: मंडी का ऐप भी है और हम व्हाट्सएप पे और ग्रुप भी है जिसमें किसानों को ऐड कर रखा है
0: जी,
1: उनको हम समय पर भाव।
0: कितने किसान ऐड हैं ग्रुप में? करीब करीब
1: करीब 500 किसान होंगे
0: जी। आसपास के क्षेत्र के किसान हाँ। आते हैं और यानी उनके लिए मंडी की अच्छी व्यवस्था है
1: हाँ।
0: और किसानों को उपज का मूल्य जो है ठीक तरह से मिल जाता है, भुगतान भी सही तरीके से
1: हाँ, समय पर भुगतान हो जाता है।
2: और किसान भाइयों अब हम सुने मुख्य गायक हैं सत्यमंगल मांगीलाल कुलश्रेष्ठ अमन, इनके साथ हारमोनियम पर हैं गंगाराम भगत, ढोलक पर हैं परवीर मालवीय, मजीरा पर महेश कुलश्रेष्ठ और सुनील मालवीय, डिमकी पर हैं सचिन मालवीय, सहगायिका के रूप में हैं शारदा देवी कुलश्रेष्ठ और सहगायक के रूप में महेश कुलश्रेष्ठ, करताल पर हैं गोकुल कुलश्रेष्ठ। तो अब हम आनंद लें मांगीलाल कुलश्रेष्ठ अमन और उनके इन साथियों से गाए गए लोकगीतों का।

आज हम हमारी नवदुर्गा, पूरी विश्व में नवदुर्गा के नाम से विख्यात, उसी में से माँ बगुलामुखी पीताम्बरा जो कि दसवीं महाशक्ति के रूप में प्रचलित है, समस्त श्रोता बंधुओं के चरणों में नतमस्तक प्रणाम करते हुए माँ जगदम्बे का यह पावन भजन।

विविध तरह की संस्कृति, भारतीय संस्कृति जहाँ विभिन्न धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं और उनकी सभी का संस्कृतियाँ, जिसमें चाहे शादी हो, सगाई हो, और उनमें यदि लोकगीत नहीं गाए जाए तो वो सब फीके फीके लगते हैं। हाँ, तो हमारे मालवा में जहाँ शादी होती है तो उसका भाई बहन के लिए मामेरा लेके जाता है, और उस बहन के अंतर हृदय में जो उल्लास होता है उसका वर्णन कोई कवि कर ही नहीं पाता, परंतु तो फिर भी हमारे मालवा के कुछ कवियों ने यहाँ पर इस प्रकार से इस गीत को लिखा है।

मालवा की लोक परंपरा में हमारे यहाँ की जो तीज त्योहार है उनमें विशेषकर एक सबसे अच्छा सा त्यौहार मालवा में जो मनाया जाता है उसको कहते हैं होली। और होली की रंग वर्षा के साथ साथ जब हमारी प्रकृति भी मदमस्त हो जाती है तो सारा संसार ही मदमस्त होता है। उस मदमस्त अवस्था में हमारी जो पत्नी होती है वो अपने पीव को, अपने खसम को, अपने मालिक को, अपने पिया को जो कि हार जाता है, तो कहती है साहिबा आप हार से मेरे लिए करण फूल झुमका जरूर लेके आना। उस समय चूंकि प्रकृति की फसलें भी आ जाती है तो साहिबा के पास पैसे भी होते हैं तो वो करण फूल झुमका लेके आता है, और जब लेके आता है तो उसको पत्नी को देता है और पत्नी उसे देख कर खुश हो जाती है और वो भूल जाती है कि ये करणपुर झुमका मुझे दूसरे को नहीं बताना चाहिए, नहीं तो वो चिढ़ेंगे। परंतु फिर भी वो सास के पास जाती है और जैसे ही सास उस झुमके को देखती है तो वो उसका मुंह पे थोड़ा सा तीखापन आ जाता है।

भौतिक कृषि के साथ साथ अपनी आध्यात्मिक कृषि भी करना है और उस कृषि को किस प्रकार से करना चाहिए वो कवियों ने इस प्रकार से वर्णन किया। जामे होवेगा लाभ खेत

0: इसी के साथ दिनांक 13 जून को आगर मालवा जिले के ग्राम नलखेरा एवं आसपास के गांव में की गई स्थल रिकॉर्डिंग पर केंद्रित कार्यक्रम आकाशवाणी गांव में कार्यक्रम संपन्न होता है। प्रस्तुतकर्ता थे कार्यक्रम प्रमुख राजेश पाठक।
1: बेणुन अभी अपन ने स्थल रिकॉर्डिंग पर केंद्रित कार्यक्रम आकाशवाणी गांव में सुनियो। इकी प्रस्तुति दे रहा था कार्यक्रम प्रमुख राजेश ने। बात करा सौंफ खाने की, तो सौंफ बेणुन अपना जो घर की रसोई है ओमे मिली जावे है। इका फायदा की बात होवे तो खाना खाने का बाद सौंफ चबाने से पाचन रस सक्रिय हुई जावे है और जीका से खानो जल्दी जल्दी पची जावे है। साथेज पेट फूलने की समस्या जो होवे नी मनक है वह भी दूर हो जावे है। सौंफ खाने से मुँह में आने वाली दुर्गंध दूर होवे है ने इखे मुख शुद्धि का नाम से भी उपयोग में लाया जावे है। इमें विटामिन ई होवे है जो आँख की रोशनी बढ़ाने ने स्वास्थ्य के अच्छो रखने सारू काम में आवे है। शरीर में खून में जो शक्कर की बीमारी होवे नी ओखे नियंत्रण करने में भी सौंफ को घणो उपयोग होवे है। देखो अगर अपन इखे खानो चावा तो कैसे खावा, तब इखे अपना के कई करनो है दिन में दो बार सुबह खाना खाने का बाद ने राते खाना खाने का बाद आधा चम्मच सौंफ अपन चबई सका। हाँ साथे साथ अगर चावा तो राते एक चम्मच सौंफ एक गिलास पानी में गलाई ने राखी देवा ने सुबह खाली पेट इको पानी पीना घणोज फायदेमंद होवे है। या तो ही गई सौंफ का बारे में बात ने अब सुनी लेवा बैंड गीता पराग को गायो यो लोक की।

0: बेणों अभी अपन ने गीता पराग को गायो यो लोकगीत सुनियो ने चलते चलते अपना किसान भाई उनके यह सलाह दीदा कि सोयाबीन की बुआई करने वाला किसान भाइयों के ही यही सलाह है कि जून महीना का आखिरी सप्ताह या जुलाई महीना का पहला सप्ताह बुआई सारू घणो अच्छो मान्यो जावे है। पर अभी जो यह पानी पड़ियो है यो बुआई का सारू इतना अच्छो नहीं है। एका सारू कम से कम जब तक 100 मिलीमीटर बरसात नहीं हुई जावे तब तक बुवाई नहीं करे। ने आप घड़ी की सुई कह रही है कि कार्यक्रम को बखत हुई चलियो है तो अपना किसान भाई बहन उनसे ना विदा ने केवा राम राम।
1: अभी ग्राम लक्ष्मी का प्रसारण किया गया। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। थोड़ी ही देर में अगला प्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया जाएगा।
2: सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए आतंकवाद, साइबर खतरों और वैश्विक संकट पर केंद्रित 16वीं ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बैठक पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत जितेंद्र कुमार त्रिपाठी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं अम्बरीश सक्सेना।
3: आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक और आतंकवाद, साइबर सुरक्षा और वैश्विक चुनौतियों पर। और इस विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं श्री जितेंद्र कुमार त्रिपाठी जी, जो कि पूर्व राजदूत हैं। ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक में तमाम विषयों पर चर्चा हुई और ब्रिक्स के जो भी सदस्य देश हैं उनके बीच में कैसे सहयोग बढ़ाया जाए और खास तौर से जो सुरक्षा के मसले हैं, जिस तरह से वैश्विक स्थितियां बदल रही हैं आज के जमाने में, ऐसे हर राष्ट्र के सामने सुरक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा हो गया है। तो ब्रिक्स के जितने भी देश हैं उनके बीच में किस तरह से सहयोग बढ़ाया जाए जिससे कि आतंकवाद पर काबू पाया जा सके, साइबर सुरक्षा की चुनौतियों का सामना किया जा सके और अन्य क्षेत्रों में वैश्विक स्तर पर जो भी समस्याएं हैं उनका निदान ढूंढा जा सके। तो सबसे पहले मैं त्रिपाठी जी आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो सुरक्षा सलाहकारों की बैठक हुई और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके साथ जो विचार विमर्श किया उसके मुख्य बिंदु आपके अनुसार क्या है?
4: देखिए, ये पहली बार था ब्रिक्स के इतिहास में जबकि ब्रिक्स के सुरक्षा अधिकारियों की बैठक में सुरक्षा का आयाम बढ़ा दिया गया, विस्तार दिया गया, इसका स्कोप बढ़ा दिया गया। पहले जब सिक्योरिटी की बात होती थी तो सिर्फ यही होता था कि सिक्योरिटी का मतलब कि टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, तो एक देश की सेना दूसरे पे हमला न करे, उनसे सुरक्षा, या ज्यादा से ज्यादा टेररिज्म से या टेररिस्ट एक्टिविटीज से जो कि बाहर से स्पॉन्सर होती है, पोषित होती है बाहर से, उनके खिलाफ। लेकिन इस मीटिंग में इसका स्कोप बढ़ा करके काफी कुछ कर दिया है, क्योंकि इसमें ये सिक्योरिटी चैलेंज जो है जिस पे ये बहस की गई, जिस पे वार्तालाप किया गया, विचार विमर्श हुआ, वो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंज, ट्रेडिशनल पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों के अलावा वो एनर्जी सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, सप्लाई चेन सिक्योरिटी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जो अभी टेररिस्ट नेटवर्क इस्तेमाल कर रहे हैं उससे सुरक्षा, साइबर सिक्योरिटी और क्लाइमेट इंड्यूस्ड इंस्टेबिलिटी, मतलब जो मौसम में चेंज आ रहा है, पर्यावरण में जो परिवर्तन हो रहा है उससे जो असुरक्षा की भावना या अस्थिरता की भावना आ रही है, उससे एनर्जी सिक्योरिटी सब लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, सारे देशों के लिए, पूरे विश्व के लिए। खासतौर से जब ये देखा कि ईरान और अमेरिका के युद्ध में ऊर्जा का आवागमन कितनी बुरी तरह से प्रभावित हुआ, ऊर्जा का आयात निर्यात, और उससे कई देशों में बहुत बड़ी समस्याएं हैं, तो एक तो ये। दूसरा, फूड सिक्योरिटी। आज जहां कुछ तथाकथित धनी देश अधिक उत्पादन को सिर्फ दाम पे कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए दूध नदियों नालियों में बहा दिया जाता है या फसलें जला दी जाती है, वहीं दूसरी ओर अफ्रीका के कई देशों में और जगहों पे लोग अभी भी खाने बिना कई जगह भुखमरी की स्थिति। तो ये जो इम्बैलेंस है, जो असंतुलन है, इसको दूर करने का यही एक उपाय है कि हम फूड सिक्योरिटी के बारे में कुछ करें, सप्लाई चेन सिक्योरिटी, इन दोनों ही मामले में। फिर जो टेररिस्ट नेटवर्क अब इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल कर, UAV का इस्तेमाल कर रहे हैं, ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, AI का इस्तेमाल कर रहे हैं, गलत इंफॉर्मेशन फैला रहे हैं, इनके खिलाफ लड़ने की भी आवश्यकता है। साइबर सिक्योरिटी, जो साइबर स्पेस का गलत उपयोग हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है, साइबर स्पेस में आप जाके उनकी सीधी खबरें आप प्रसारित करा रहे हैं, जिससे और ऐसे भी कंटेंट आप करा रहे हैं ताकि लोग टेररिस्ट एक्टिविटीज के प्रति ज्यादा झुकाव या रुझाव हो। ये सब चीजें इसमें अभी सम्मिलित की गई है एक बार, और इस तरह से इसका सिक्योरिटी चैलेंजेस का दायरा बढ़
3: जी। यहाँ पे त्रिपाठी जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपने जिक्र भी किया सप्लाई चेन का, क्योंकि जो भी युद्ध की स्थिति बनती है, और जैसे आपने कहा भी ईरान और अमरीका का जो युद्ध हुआ वो हमारे सामने है, कि किस तरह से जो देश किसी भी रूप में इस युद्ध में शामिल नहीं थे, प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से, लेकिन सब पे प्रभाव पड़ा, हमारी जितनी भी सप्लाई थी ऊर्जा की वो सारी बाधित हो गई। तो जब हम ब्रिक्स के देशों के बीच में सहयोग की बात करते हैं, तो ये जो सप्लाई चेन की समस्या है उसका ब्रिक्स के सहयोग से किस तरह से उसका समाधान ढूंढा जा सकता है?
4: देखिए, मेरे विचार से ब्रिक्स के सहयोगी देशों या ब्रिक्स के सदस्य देशों को ये चाहिए कि वो ऐसा तरीका ढूंढे कि अगर कहीं पर इंस्टेबिलिटी हो, अस्थिरता हो, या फ्लैश पॉइंट्स हो, जहां पर युद्ध होने की संभावना हो या युद्ध हो रहा हो, वहां से गुजरने वाले जहाजों या वहां से गुजरने वाली सप्लाई को किस तरह से सुरक्षित रखा जाए। देखिए, ये प्यास लगने पर कुआं खोदने वाली बात नहीं, ज्ञान युद्ध समाप्त हो गया है जहां तक हमें उम्मीद, लेकिन फिर भी हमें इसके लिए तैयारी करनी चाहिए कि अगर भविष्य में कहीं कुछ ऐसा होता है तो हम अल्टरनेट सप्लाई चेन की व्यवस्था करें, ताकि ऐसा होते ही हम दूसरे रास्तों से सामान का, गुड्स का, एनर्जी का, ऊर्जा का आवागमन करा सकें।
3: इसके अलावा त्रिपाठी जी, जैसे सुरक्षा की हम बात करते हैं और सारे जो ब्रिक्स के सहयोगी देश हैं उनके बीच में आपसी तालमेल की बात करते हैं सुरक्षा को लेकर, लेकिन मैं फिर से ईरान को संदर्भ के रूप में प्रस्तुत करके मैं ये सवाल पूछना चाहूंगा कि जैसे भारत के या ब्रिक्स के अन्य देशों के जो शिप्स हैं या उनपे जो हमारे नाविक तैनात है, इस तरह के मामलों में ब्रिक्स के देश किस तरह से आपस में ऐसा तंत्र विकसित कर सकते हैं कि वहां पर हमारे शिप्स को या उनमें सवार नाविकों को सुरक्षा प्रदान की जा सके?
4: देखिए, इसमें एक वो बिंदु जिस पर सुरक्षा अधिकारियों की मीटिंग में विचार विमर्श किया है, वो इस मामले में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उन्होंने ये कहा है कि ब्रिक्स की लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी, जो कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने वाली जो एजेंसी, उनको आपस में कोऑर्डिनेट करना चाहिए, समन्वय करना चाहिए, ताकि वो टेररिज्म को काउंटर कर सके, टेररिज्म को, साइबर रिस्क को, इसको एक सम्मिलित रूप से, एक संयुक्त रूप से मिल करके इसका सामना किया जा सके। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी, और इसी के संदर्भ ये है कि ये अब हमें देखा जाना चाहिए कि जब भी कभी ऐसी समस्या है, जब भी किसी देश पर साइबर अटैक हो, टेररिस्ट अटैक हो, या यूएवी का अटैक हो, या सप्लाई चेन बाधित हो, उस वक्त के लिए हमें ये कोशिश करते रहना था, एक कोई संगठन बनाए या कोई ऐसे एजेंसीज का एक कोऑर्डिनेटिंग पॉइंट बनाए, कॉन्टेक्ट पॉइंट, जहां की ऐसी स्थिति में तुरंत सारे देशों को खबर दी जा सके और तुरंत उनकी एजेंसी जो है वो चालू हो जाए, वो एक्टिव हो जाए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि वो किसी भी क्षेत्र में हो रहे आतंकवाद को खत्म करने के लिए, उनका सामना करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को पुनर्स्थापित करते हैं कि हम प्रतिबद्ध हैं कि किसी भी स्थिति में, किसी भी स्वरूप में अगर आतंकवाद हो तो उसका हम सामना करेंगे। ये सब बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। उन्होंने ये भी कहा है, ब्रिक्स के जो ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई थी 21-22 मई में, और जो एक मीटिंग हुई थी इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर 8 और 9 जून को दिल्ली में इसी साल, उस पर भी विचार किया है। तो अब ये आगे अपरिहार्य हो जाता है कि इन चीजों पे जो विचार हुआ है इसका तत्काल ही कुछ रिजल्ट आना चाहिए, कुछ परिणाम आना चाहिए। और जैसा कि प्रधानमंत्री ने भी इंगित किया है कि हमें अब प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस पे ज्यादा जोर देना चाहिए, हो सकने योग्य है ऐसे समाधानों पर ज्यादा जोर देना चाहिए, ताकि हम इसमें काम जल्दी से कर सकें।
3: जहाँ तक त्रिपाठी जी साइबर सुरक्षा की अगर हम बात करें, क्योंकि साइबर के खतरे काफी ज्यादा हैं, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वैसे वैसे खतरे भी बढ़ते जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि हमें किस तरह का एक डिजिटल नेटवर्क तैयार करने की जरूरत है जिसमें आसानी से कोई सेंध न लगा पाए, और ये ऐसा फूल प्रूफ सिस्टम हो जहां पर हम किसी भी तरह के साइबर हमले को रोक सकें, और सूचनाओं के आदान प्रदान से बाकी जितने भी सदस्य देश हैं ब्रिक्स के, उनको इस साइबर खतरों से हम बचा सकें

0: इसके लिए क्या और अतिरिक्त करने की जरूरत है आपके अनुसार?
1: जी देखिए, इसके लिए ये भी कहा गया है कि हमें AI ह्यूमन सेंट्रिक बनाने और AI के गिवन सिक्योरिटी रिस्क जो है उसको खत्म करने के लिए तुरंत ही हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा, हम यूनिफाइड एफर्ट करेंगे, मतलब एक संयुक्त प्रयास सम्मिलित रूप से हम करें, ताकि जैसे ही किसी देश के ऊपर कोई अटैक हो, साइबर अटैक हो, वो अन्य सभी सदस्य देशों को तुरंत ही सावधान कर सके कि देखिए ऐसी समस्या आई है और अपने नागरिकों से कह दीजिए कि ये प्लेटफॉर्म न खोले या ये चीज न खोले इंटरनेट पे, नहीं तो इससे सिक्योरिटी को, सुरक्षा को ये समझौता हो सकता है। जैसे नेवी में होता अर्ली वार्निंग सिस्टम, नेवी में सुनामी में, यहाँ पर हमारे यहाँ कुछ ऐसा अर्ली वार्निंग सिस्टम होना चाहिए। हालांकि वार्निंग तो यहाँ हम अर्ली तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन जैसे ही कहीं किसी भी देश में ऐसे खतरे को महसूस किया जाता है, तुरंत समय देशों में इसको प्रचारित कर देना चाहिए ताकि खतरा कम से कम हो सके।
0: त्रिपाठी जी, प्रधानमंत्री ने जो ब्रिक्स के सलाहकार आए हुए हैं उनसे बातचीत में इस बात का जिक्र भी किया कि कैसे ग्लोबल साउथ के बीच में एक सामंजस्य बनाने की स्थिति है, जिससे कि पूरी दुनिया में समावेशी माहौल तैयार किया जा सके और जिसमें पूरी दुनिया के जो नागरिक हैं उनको हर तरह की सुविधा और सुरक्षा मुहैया कराई जा सके और सभी लोग मिलकर विकास के रास्ते पर आगे बढ़े। तो यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जब हम ग्लोबल साउथ की बात करते हैं तो मुख्य रूप से ग्लोबल साउथ के सामने कौन सी ऐसी चुनौतियां हैं जिनका हमें मिलकर सामना करना है, और इस दिशा में खास तौर पर ब्रिक्स के देश क्या कर सकते हैं?
1: देखिए, सबसे बड़ी चुनौती तो मेरे विचार से ग्लोबल साउथ के सामने जो है वो ये है कि ग्लोबल नॉर्थ की दादागिरी। दूसरी चुनौती ये है कि ग्लोबल साउथ की बात विश्व के प्लेटफॉर्म पर जनरली आमतौर पर नहीं सुनी जाती। इसलिए इसी के संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि भारत जो है अब एक तरह से ग्लोबल साउथ का अघोषित प्रवक्ता बन चुका है, और ये उसके लिए एक बड़ी अच्छी स्थिति है कि वो एक पुल के तौर पे ग्लोबल नॉर्थ को ग्लोबल साउथ की बातें, उनके कंसर्न, उनकी चिंताएं वहां तक प्रेषित करने में समर्थ है, क्योंकि भारत पिछले 9 साल से G7 की समिट में भी बुलाया जाता रहा है। तो अपनी इस स्थिति का उपयोग करके भारत ये काम कर सकता है। तीसरी चीज ये है कि ग्लोबल साउथ की जो समस्या है ये वातावरण से संबंधित है, वातावरण में जो परिवर्तन हो रहा है उसके लिए जो भी तरीके या जो भी तकनीक अपनाई जाएगी उस तकनीक को फ्री में लोगों को मुहैया कराया जाए। इसके साथ ही साथ ये कि नई टेक्नोलॉजी, नई तकनीक कृषि के क्षेत्र में हो, एनर्जी के क्षेत्र में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो, नई तकनीक भी जल्दी से जल्दी मुहैया कराया जाना चाहिए। विश्व अभी अभूतपूर्व जल संकट से जूझ रहा है, ये हालांकि सस्टेनेबल गोल में है लेकिन इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जहाँ विश्व जो है वो बहुतायत से पीड़ित है वहाँ हमारे यहाँ अभाव से।
0: अंत में मैं त्रिपाठी जी एक सवाल फिर से सुरक्षा से संबंधित आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि इस विषय में भी चर्चा हुई कि कैसे हम लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो है ब्रिक्स के देशों की, जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो कानून का अनुपालन कराएं, और जो सूचनाओं का आदान प्रदान है कानून को लागू करने से संबंधित या इंटेलिजेंस से संबंधित, इसमें आदान प्रदान को कैसे और हम प्रगाढ़ और सुदृढ़ कर सकते हैं?
1: देखिए, मेरे विचार से तो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज का अपना एक छोटा ग्रुप होना चाहिए, वर्किंग ग्रुप, जिसकी रेगुलर मीटिंग हो और ऐसी व्यवस्था हो कि कहीं भी अगर ऐसी कोई बात हो तो तुरंत ही उनको सूचित किया जाए, वो और लोगों को सूचित करें कि आप यहाँ ऐसा अटैक होने वाला है या हमने ऐसी इमेजरी देखी है कि आपके यहाँ कुछ जहाज या किसी उससे होगा, या हमने ये देखा है कि सुनामी आने वाला है, हमने देखा है कि बाढ़ आने वाली है, ये चीजें भी जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाती, या ये देखते करें कि कहीं टेररिस्ट अटैक की योजना तो नहीं बन रही है, या कहीं अगर किसी सदस्य देश की लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी में ये उसको पता लगा कि हाँ हमारे यहाँ से कुछ लोग दूसरे देश में आतंकी कार्रवाई करने की योजना बना रहे हैं, तो तुरंत और देशों को सावधान करना बहुत जरूरी है। इसी की वजह से ये जरूरी है कि एक लगातार निर्बाध और सेफ, पूरी तरह से सुरक्षित चैनल इन देशों की सुरक्षा एजेंसियों के बीच में हो, हॉटलाइन की तरह जैसे कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच में होती है, ताकि निर्बाध तुरंत ही वो जानकारी प्रेषित की जाए।
0: जी त्रिपाठी जी, चलते हैं अब कार्यक्रम की समाप्ति की ओर। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी, और जैसा कि ब्रिक्स की जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की

0: टक है, उसमें जो मुख्य बातें हुई आतंकवाद से संबंधित और साइबर सुरक्षा और अन्य वैश्विक चुनौतियों से संबंधित, आपने उसके बारे में न सिर्फ महत्वपूर्ण जानकारी दी बल्कि उन विषयों की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित कराया, जैसा कि आपने कृषि की बात की, जल संकट की बात की और किस तरह से ब्रिक्स के बीच में सहयोग को बढ़ाकर इन समस्याओं का सामना किया जा सकता है जिससे कि हम एक बेहतर विश्व बना सकें। आपका इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे आतंकवाद, साइबर खतरों और वैश्विक संकट पर केंद्रित 16वीं ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बैठक पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत जितेंद्र कुमार त्रिपाठी, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे अम्बरीश सक्सेना।
2: सुर्खियों में
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर्खियों में।
4: मेरी वेव 462.96 मीटर पर, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया।
3: फिल्म संगीत।

श्रोताओ, कभी कभी दिल की बेचैनी भी बड़ी हसीन लगती है, खासकर तब जब उसके पीछे किसी अपने का प्यार छुपा हो। उम्मीदों और अरमानों से भरा ये गीत दिल के तारों को छू जाता है। ऐसा ही गीत हम आपको सुनाने जा रहे हैं। मोहब्बत की दुनिया में कुछ एहसास ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों में बयां करना आसान नहीं होता। दिल की हल्की हल्की धड़कनें किसी के आने की आहट दे जाती हैं।

प्यार हमेशा शब्दों का मोहताज नहीं होता। कभी किसी की खामोश निगाहें, कभी किसी की मुस्कान, तो कभी किसी की मौजूदगी ही दिल की बात कह जाती है। कुछ भावनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें न देखा जा सकता है, न छुआ जा सकता है, लेकिन उन्हें पूरे दिल से महसूस किया जा सकता है। मोहब्बत भी एक ऐसा ही एहसास है।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी इंदौर और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। श्रोताओं, प्रेम जब अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचता है तब वह केवल एक भावना नहीं रह जाता बल्कि जीवन का आधार बन जाता है। किसी अपने की मौजूदगी से ही हर खुशी मुकम्मल होती है और उसकी जुदाई का ख्याल भी दिल को बेचैन कर देता है।

आकाशवाणी इंदौर से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। इस कार्यक्रम के बाकी गीत इस अंतराल के बाद।

श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। गुरुवार दिनांक 25 जून को सुबह 10:32 से 11:02 तक प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर का विषय है बारिश के दिनों में होने वाली बीमारियां और बचाव। श्रोता इस विषय से संबंधित अपनी जिज्ञासाएं और प्रश्न स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ डॉक्टर सलिल भार्गव से पूछ सकते हैं। आप हमारा ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर के विविध भारती चैनल FM 101.6 MHz पर सुन सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी ये कार्यक्रम सुना जा सकता है। प्रश्न पूछने के लिए दिन और समय नोट कर लीजिए। गुरुवार दिनांक 25 जून को समय सुबह 10:32 से 11:02 तक। प्रश्न पूछने के लिए हमारे फोन नंबर्स हैं 2710223 और 2710224। इंदौर का STD कोड है 0731। तो फोन करना ना भूलें गुरुवार दिनांक 25 जून को समय सुबह 10:32 पर। विविध भारती इंदौर से FM 101.6 MHz और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। सूचना समाप्त हुई।

अंतराल के बाद एक बार फिर बाकी गीत कार्यक्रम है दिल ने फिर याद किया। जीवन की राहों में कभी कभी ऐसे मोड़ भी आते हैं जहां दिल की चाहत और परिस्थितियां की मजबूरियों के कारण एक दूसरे के सामने वो खड़ी हो जाती हैं। मन किसी और के लिए धड़कता है लेकिन किस्मत की कहानी कुछ और ही लिखी होती है।

प्रेम की सबसे खूबसूरत बात यह है कि दूरी चाहे कितनी भी हो, यादों का सिलसिला कभी थमता नहीं है। दिल बार बार उसी शख्स की ओर लौटता है जिसकी यादें धड़कनों में बसी हों। कभी एक ख्याल, कभी एक मुस्कान, तो कभी किसी का नाम ही मन में अनगिनत भाव जगा देता है।

मोहब्बत वो एहसास है जो हर दीवार को पार कर जाता है, न समाज की परवाह न दुनिया का डर, बस दिल की आवाज़ और प्यार पर अटूट विश्वास।

श्रोताओं, इस गुरुवार दिनांक 25 जून को सुबह 10:32 से 11:02 तक प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर का विषय है, बारिश के दिनों में होने वाली बीमारियां और बचाव। श्रोता इस विषय से संबंधित अपनी जिज्ञासाएं और प्रश्न स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ डॉक्टर सलिल भार्गव से पूछ सकते हैं। आप हमारा ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर के विविध भारती चैनल FM 101.6 MHz पर सुन सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी ये कार्यक्रम सुना जा सकता है। प्रश्न पूछने के लिए दिन और समय नोट करिए। समय सुबह 10:32 से 11:02 तक, गुरुवार दिनांक 25 जून को।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमरीका के व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर के साथ व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून से सोल में मुलाकात की। वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को मजबूत करने का आह्वान किया। ओमान ने होर्मूज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में निर्माणाधीन गोदाम गिरने से 3 लोगों की मौत, बचाव अभियान जारी। अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा से अचानक बाढ़ आई, असम में चेतावनी जारी की गई। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कनाडा आज रात स्विट्जरलैंड से खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ नई दिल्ली में बैठकें की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों की खोज की। उन्होंने राजदूत ग्रीर के नेतृत्व और दोनों पक्षों के रचनात्मक तथा प्रगतिशील तरीके से वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की भी सराहना की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक आयोजित की। बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमारजूकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉ जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
1: It is really our responsibility.
2: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूंगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
1: रिलेशनशिप इन अ मोर डिफिकल्ट वर्ल्ड।
0: ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा है कि अगली सूचना तक भारतीय नागरिक जब तक आवश्यक ना हो ईरान की यात्रा न करें। एक रिपोर्ट।
3: जो भारतीय नागरिक वर्तमान में ईरान में रह रहे हैं या किसी आवश्यक कारण से वहां यात्रा करने जा रहे हैं, उन्हें विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से कहा है कि वे अपने आसपास की स्थिति पर लगातार नजर रखें और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। दूतावास ने ईरान में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों और वहां पहुंचने वाले लोगों से जल्द अपना विवरण भारतीय दूतावास में पंजीकृत कराने की अपील की है। भारतीय नागरिकों को दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया मंचों पर जारी होने वाले अपडेट तथा सलाह पर नियमित रूप से नजर रखने की भी सलाह दी गई है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: इस बीच ओमान ने होर्मूज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की है। ये वाणिज्यिक जलमार्ग को बहाल करने और खाड़ी में फंसे हजारों नाविकों के संकट को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ओमान सरकार ने कहा है कि ये पहल संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के समन्वय से की गई है। इससे क्षेत्रीय संघर्ष से जुड़ी महीनों के व्यवधान के बाद जलमार्ग से जहाजों की सुरक्षित आवाजाही को सुगम बनाया जा सकेगा। संगठन के अनुसार क्षेत्र में 11,000 से अधिक नाविक फंसे हुए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में

0: वीआईपी कल्चर इन इंडिया, पावर, प्रिविलेज एंड डिस्टेंस फ्रॉम डेमोक्रेसी नामक पुस्तक का विमोचन किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये पुस्तक सत्ता संस्थानों और लोगों के बीच मौजूद दूरी को जन केंद्रित शासन के माध्यम से इस दूरी को कम करने की आवश्यकता पर बल देती है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये पुस्तक दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत की पहचान का उल्लेख करती है।
1: That Bharat is the world's largest democracy and is also called the mother of democracy. Our constitution envisions a society based on justice, equality, liberty and fraternity.
0: उपराष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उदाहरण देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने नीट परीक्षा देने वाले छात्रों को यातायात असुविधा से बचाने के लिए हवाई अड्डे से अपनी उड़ान लगभग 45 मिनट तक विलंबित की थी। रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह ने आज पंजाब के जालंधर में दो महत्वपूर्ण रोड ओवरब्रिज आरओबी परियोजनाओं की आधारशिला रखी। उन्होंने बताया कि जालंधर शहर जालंधर कैंट खंड पर गुरु नानकपुरा आरओबी का निर्माण 48 करोड़ 95 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा, जबकि दूसरा बस स्टैंड गढ़ा रोड आरओबी 63 करोड़ 98 लाख रुपए की लागत से बनेगा। दोनों परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता रेलवे देगी। गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा आयोजित इस बैठक में केंद्रीय मंत्रालय, राज्य सरकारें और मादक पदार्थों से संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरूपयोग से निपटने के प्रयासों की समीक्षा करेंगे। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रमुखों की 2026 की बैठक आज बेंगलुरु में संपन्न हुई। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह समापन सत्र में शामिल हुए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि दो दिन की बैठक में आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन निगरानी सहित कई विषयों पर चर्चा हुई।
2: We had 26 delegates from
3: इस बैठक में 10 देशों के 26 प्रतिनिधियों के साथ साथ इसरो, इन स्पेस और अंतरिक्ष विभाग के लोग भी शामिल हुए। इसमें ब्रिक्स देशों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए रिमोट सेंसिंग उपग्रह समूहों के इस्तेमाल पर काफी चर्चा हुई, जिसमें आपदा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन और दूसरे पहलू शामिल थे। हमने मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन प्रबंधन तथा अंतरिक्ष अभियानों के सतत संचालन पर भी विचार विमर्श किया।
0: विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने 14वें पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर सभी पासपोर्ट अधिकारियों की उनकी समर्पित सेवा और नागरिकों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए सराहना की। श्री सिंह ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत की पासपोर्ट सेवाओं में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि वर्ष 2025 में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों, पासपोर्ट सेवा केंद्रों और विदेशों में भारतीय दूतावासों के माध्यम से भारतीय नागरिकों को लगभग 1.5 करोड़ पासपोर्ट और संबंधित सेवाएं प्रदान की गई हैं। देशभर में पासपोर्ट सेवा केंद्रों और डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्रों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है। वर्तमान में देश में ऐसे 545 केंद्र कार्यरत हैं। पिछले वर्ष 10 नए डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र खोले गए थे और इस वर्ष भी 10 नए केंद्र खोले जाने की योजना है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी योजना ग्रामीण के मसौदा समन्वय ढांचे पर आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालय बैठक का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसल ने की। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया है कि ये बैठक अगले महीने की पहली तारीख से लागू होने वाले विकसित भारत जी राम जी योजना की तैयारियों के अंतर्गत आयोजित की गई। स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन ने राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान के सहयोग से गंगा नदी के तट पर शहरी नदी प्रबंधन योजनाओं का विस्तार किया है। ये प्रबंधन योजनाएं नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत हैं। अब तक 13 शहरों के लिए शहरी नदी प्रबंधन योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। इस योजना के प्रथम चरण में 27 शहरों और दूसरे चरण में 33 शहरों के लिए योजनाएं तैयार की जा रही हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना के बाद राहत और बचाव अभियान जारी है। हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत की खबर है। एक रिपोर्ट।
4: बचाव काम युद्धकालीन तत्परता से जारी है। अब तक 18 श्रमिकों को मलबे की ढेर से जिंदा निकाला गया है। करीब 15 और घायल लोग

0: वहां फंसे रहने का संभावना है। घायलों की इलाज SSKM अस्पताल में हो रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है उससे भी ज्यादा लोग फंसे हो सकते हैं। सेना, NDRF, सिविल डिफेंस, फायर ब्रिगेड और कोलकाता पुलिस मिलकर बचाव अभियान चला रहे हैं। दुर्घटना के कारण पर उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक निर्माण के नक्शे में त्रुटि थी, लेकिन जिम्मेदारी किसकी है ये अभी स्पष्ट नहीं है। काल विधानसभा में इसी विषय पर बयान दिया जाएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य।
1: अरुणाचल प्रदेश के की पन्योर जिले के याजागी स्थित पोसा में मूसलाधार बारिश और अचानक आई बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है। ताजा खबरों के अनुसार 4 लोग लापता हैं, 17 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 3 की हालत गंभीर है। प्रशासन नुकसान का आकलन कर रहा है। भूस्खलन के कारण प्रभावित क्षेत्र याजाली और होजपोटिन दोनों तरफ से अब भी संपर्क से बाहर हैं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि वे स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने लोगों से सभी सुरक्षा निर्देशों का पालन करने को कहा है। इस बीच अरुणाचल प्रदेश में तेज वर्षा के बाद असम में निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा है। SDRF, NDRF और अन्य आपातकालीन बचाव दलों को तैयार रखा गया है। मौसम विभाग ने कल देश के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। पूर्वोत्तर क्षेत्र, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा में तेज वर्षा हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल तक तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की स्थिति बनी रह सकती है। बिहार में भी अगले 2 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। दिल्ली में कल बारिश की संभावना है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान द्वारा कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सह अध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में जम्मू कश्मीर पर भारत का रुख दोहराया।
2: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। ये हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है ऐसी बातें कही गईं। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
1: भारतीय नौसेना के जहाज उदयगिरी और कवरत्ती दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत वियतनाम के हो चिन मिन शहर से दौरा पूरा करने के बाद रवाना हो गए हैं। इस दौरे पर पूर्वी बेड़े के फ्लैग ऑफिसर रियर एडमिरल आलोक आनंद ने हो चिन मिन शहर की पीपल्स कमेटी और वियतनाम पीपल्स नेवी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समुद्री सहयोग, आपसी समन्वय और क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा पर चर्चा की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में INS कवरत्ती पर एक संयुक्त योग सत्र भी आयोजित किया गया। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है अम्बरीश सक्सेना।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 791 अंक बढ़कर 76,991 अंकों पर बंद हुआ। निफ्टी भी 198 अंक बढ़कर 24,022 अंकों पर जा पहुंचा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के व्यापक बाजार में मिड कैप 100 सूचकांक 0.1% और स्मॉल कैप सूचकांक 0.4% तक बढ़ा। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 की तुलना में 8 पैसे मजबूत होकर ₹94.66 पर बंद हुआ।
1: फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप बी मुकाबले में देर रात स्विट्जरलैंड का मुकाबला कनाडा से होगा। इसी ग्रुप में कतर और बोस्निया एंड हर्जोगोविना आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 12:30 बजे से खेले जाएंगे। US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने स्पेन की पाउला लोपेज और लूसिया रॉड्रिक्स को हराया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमरीका के व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर के साथ व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून से सोल में मुलाकात की। वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को मजबूत करने का आह्वान किया। ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में निर्माणाधीन गोदाम गिरने से 5 लोगों की मौत, बचाव अभियान जारी। अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा से

अचानक बाढ़ आई, असम में चेतावनी जारी की गई और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कनाडा आज रात स्विट्जरलैंड से खेलेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

कार्यक्रम का पहला गीत आप सुन रहे थे मन्ना डे और लता मंगेशकर के स्वर में चोरी चोरी फिल्म से। शैलेंद्र के बोल थे, शंकर जयकिशन का संगीत था।

सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रगीत इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से। लीजिए अब सुनिए मेरे महबूब फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। गीत लिखा है शकील बदायूनी ने और संगीतबद्ध किया नौशाद ने।

अभी आप सुन रहे थे चित्रगीत, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। थोड़ी ही देर में अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: चर्चा का विषय है।
1: ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है, कार्यक्रम में प्रस्तुत है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, देश के प्रतिभावान बच्चों का सम्मान विषय पर महिला और बाल विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव अजीत कुमार के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत।
2: नमस्कार श्रोताओं, हर साल देश में कुछ ऐसी प्रतिभाओं और ऐसे प्रेरणादायी बच्चों को आप राष्ट्रीय बाल पुरस्कार हासिल करते हुए देख पाते हैं, जिन्होंने देश में अपनी वीरता से, अपने समाज सेवा से और तमाम क्षेत्रों में अपने प्रेरणादायी कामों से देश को प्रेरित किया है। तो इस वर्ष भी राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के जो नामांकन की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। तो आज हम कार्यक्रम में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के महत्व, इसकी नामांकन की प्रक्रिया पर हम विस्तार से जानकारी हासिल करेंगे और बातचीत करेंगे, और साथ ही हम पिछले साल के राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं और जो नामांकित होकर जिन्हें पुरस्कार प्राप्त हुआ था उन बच्चों से भी उनकी कहानियां सुनेंगे। तो आप सभी का मैं स्वागत करना चाहूंगा कार्यक्रम में। हम सबसे पहले तो स्वागत करेंगे महिला और बाल विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव अजीत कुमार सर का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका।
3: सबसे पहले मुझे आपने इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसी प्रेरणादायक पहल के बारे में बात करने के लिए यहाँ मेरा आना अत्यंत में मेरे लिए बहुत खुशी की बात है।
2: जी, इस बार का जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है उसके नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। थोड़ा सा हमारे जो देश भर के सुनने वाले परिवार हैं, बच्चे हैं, उनको जानकारी दें और बताएं कि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का मकसद क्या है, किस तरह से इस बार का ये राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का जो पूरी प्रक्रिया है ये इस बार भी विशेष है।
3: जी, तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, जिसको हम लोग शॉर्ट में PMRBP भी बोल सकते हैं, 5 से 8 वर्ष के जो बच्चे होते हैं इस आयु के, उनके लिए भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और यह पुरस्कार 6 श्रेणियों में दी जाती हैं। ये श्रेणियां हैं बहादुरी, सामाजिक सेवा, पर्यावरण, खेल, कला एवं संस्कृति और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो इन 6 श्रेणियों में जो बच्चे उत्कृष्ट उपलब्धियां प्राप्त करते हैं उनको हम लोग इस पुरस्कार के माध्यम से सम्मानित करते हैं। और यह पुरस्कार हमारे युवा नागरिकों के साहस, प्रतिभा और योगदान को मान्यता देने के लिए स्थापित किया गया है।
2: जी, हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि इस बार की जो प्रक्रिया है नामांकन की वो किस तरह से, हमारे आप सुनने वालों को बताना चाहेंगे उसके बारे में, और क्या क्या योग्यताएं या क्या क्राइटेरिया है पूरा।
3: जो हमने आपको पूर्व में बताया कि 6 श्रेणियां आइडेंटिफाई की गई हैं, तो इसमें जो एक्सीलेंट अचीवमेंट्स होते हैं, इन 6 फील्ड्स में से कोई भी फील्ड में अगर किसी बच्चे का एक अत्यंत ही उत्कृष्ट उन्होंने अगर कोई कार्य किया हो, काम किया हो, तो वो उसको दर्शाते हुए हमारी जो आवेदन की प्रक्रिया है उसके माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
2: जी, तो हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जैसे ये 6 श्रेणियां रखी गई हैं, इन श्रेणियों को हमने देखा है कि जो अब इन श्रेणियों के होने से एक विविध तरह के प्रतिभाएं हमारे सामने पेश होती हैं हर साल। तो इन श्रेणियों को जिस तरह से अब 6 किया गया है और अलग अलग श्रेणियां हैं, तो उनके बारे में भी हमारे सुनने वालों को हम चाहेंगे कि आप विस्तार से बताएं कि कौन कौन सी श्रेणी है और किस तरह से इन श्रेणियों से अलग अलग प्रतिभाओं के जो बच्चे हैं वो हमारे सामने प्रस्तुत हो पाते हैं।
3: देखिए, जैसे पहली जो श्रेणी है बहादुरी, बहादुरी का मतलब अंग्रेजी में ब्रेवरी शब्द यूज करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चे अपनी जान की बाजी लगा के दूसरों को बचाते हैं। ऐसे हमारे सामने कई ऐसे उदाहरण हैं और पिछले वर्ष भी उत्तर प्रदेश से और अन्य राज्यों से भी कई ऐसे उदाहरण आए थे जिसमें 2 बच्चे तो पोस्टह्यूमस जिनका देहांत हो गया था और उनको मरणोपरांत अवार्ड दिया गया था, तो उन बच्चों ने अपनी जान की परवाह किए बिना अन्य बच्चों को बचाया था। एक

0: यूपी का बच्चा था जिसने जो है उसके पिताजी को एक मगरमच्छ ने पकड़ रखा था। वो एक पानी के स्रोत में अपने पिताजी को उन्होंने जो है बचाया था। ये तो मैंने बहादुरी की बात की। सामाजिक सेवा की बात करें तो पिछले वर्ष एक केस आया था जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक हमारा बच्चा वो हमारे जवानों को अपनी सेवाएं दे रहा था। तो सामाजिक सेवा का ये बहुत ही अत्यंत ही उत्कृष्ट उदाहरण है। ऐसे ही एनवायरनमेंट के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में भी लोगों ने कई सारे ऐसे उत्कृष्ट कार्य किए हैं, और आज आपने जिन बच्चों को शामिल किया है वो भी इसके बारे में और आपको उदाहरण स्वरूप बताएंगे। खेल की अगर हम बात करें, स्पोर्ट्स की, तो वैभव सूर्यवंशी का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा,
1: जी जी
0: और वो नित्य नए नए रिकॉर्ड्स बना रहे हैं। पिछले साल हम लोगों ने वैभव सूर्यवंशी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया था। पांचवी
1: जी
0: जो कैटेगरी है, कला एवं संस्कृति। कला एवं संस्कृति मतलब आर्ट एंड कल्चर। इसमें भी पूर्व के वर्षों में हम लोग कई बच्चों को सम्मानित कर चुके हैं, और इसमें किसी भी प्रकार की प्रतिभा हो सकती है आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड। इसी प्रकार जो लास्ट कैटेगरी होती है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी हमारे बच्चे बहुत आगे जाके काम कर रहे हैं। इवन AI से रिलेटेड और इस
1: जी
0: प्रकार की भी एंट्रीज आ रही हैं। तो कुल मिला के इन छह एंट्रीज में, छह जो मतलब श्रेणियां रखी गई हैं, इसमें काफी बड़ी संख्या में बढ़ चढ़ के बच्चे आ रहे हैं और उनकी हमारे पास नॉमिनेशंस आ रही हैं।
1: जी आपसे सर हम ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का ये भी एक बड़ा फोकस रहता है कि जो प्रतिभावान बच्चे हैं वो देश के कोने कोने से आए, दूर दराज गांवों से आए और ऐसे वर्गों से आए जो वंचित हैं, हाशिए पर हैं, दिव्यांग हैं। तो इस बार भी क्या इन्हीं बातों पर फोकस होगा नॉमिनेशन के वक्त कि देश के अलग अलग कोनों से, दूर दराज के इलाकों से भी जो प्रतिभावान बच्चे हैं उनको राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जाए?
0: अवश्य। देखिए, हम लोगों का एक प्रयास ये भी रहता है कि हम भारत के हर कोने से, चाहे वो नॉर्थ हो, साउथ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, नॉर्थ ईस्ट हो, सारे रीजन से हम लोगों का तो ये भी प्रयास रहता है कि यथासंभव मतलब हर जोन और हर राज्य से भी हम बच्चों को शामिल कर सकें। हम लोग हर साल 20 से 25 बच्चों को सम्मानित करते हैं। तो प्रयास यही रहता है कि एक तो भारत के हर एक कोने से बच्चे आए, दूसरा ये भी है कि जो बच्चे आर्थिक परिस्थितियों से, जिनके पेरेंट्स उतने वेल टू डू नहीं हैं, मतलब जो गरीबी से जूझ रहे हैं, जो कठिन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, तो प्रयास ये रहता है कि हर प्रकार के, हर वर्ग के, और विशेषकर वैसे बच्चे जो कठिन परिस्थितियों में कार्य कर रहे हैं, उनके योगदान को हम लोग जो है उनको सराहा जाए और उनको ज्यादा से ज्यादा, बड़ी से बड़ी संख्या में सम्मानित किया जाए।
1: बिल्कुल। और हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जैसे बहुत सारे परिवार वालों और बच्चों के मन में ये प्रश्न होगा कि जब बच्चे नॉमिनेशन के लिए खुद का आवेदन करेंगे तो इसमें हम देख रहे थे कि दो प्रक्रिया है कि एक थर्ड पार्टी नॉमिनेशन और सेल्फ नॉमिनेशन। तो इसके बारे में भी आप कुछ हमारे सुनने वालों को बताना चाहेंगे कि इन दोनों प्रक्रियाओं को रखने का मकसद क्या है, क्योंकि इसमें ये भी है कि बच्चा खुद से भी आवेदन कर सकता है या किसी संस्था या परिवार या कहीं और से भी उसकी प्रतिभा का आवेदन किया जा सकता है।
0: जी, नॉमिनेशन के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि
1: जी
0: नॉमिनेशन ऑलरेडी 1 अप्रैल से प्रारंभ हो चुका है और 31 जुलाई तक नॉमिनेशंस होंगे। और इसके लिए एक राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल https://awards.gov.in,
1: जी
0: इसके माध्यम से आवेदन किया जा सकता है, और यह प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है। जो आपने मूल प्रश्न पूछा था कि कैसे नामांकन किया जा सकता है, कैसे नॉमिनेशंस किए जा सकते हैं, तो बच्चा स्वयं भी अपना नामांकन कर सकता है, लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसे होती है कि बच्चे को उतनी जानकारी नहीं होती, तो कोई संस्था भी उनके बिहाफ पे, उनके पेरेंट्स या कोई भी रिश्तेदार या कोई भी संस्था उनके बिहाफ पे भी नॉमिनेशंस कर सकती हैं।
1: जी जो ये प्रतिभावान बच्चे हैं इनकी निश्चित रूप से अलग अलग क्षेत्रों में प्रतिभाओं को हम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के जरिए समझ पाते हैं। तो मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा कि आवेदन के बाद की प्रक्रिया क्या रहती है, जब उनका चयन हो जाता है इस पुरस्कार के लिए, उसके बाद की प्रक्रिया के बारे में भी आप अगर हमारे सुनने वालों को बता सकें।
0: देखिए, जब बच्चे का चयन हो जाता है तो एक बात ये रहती है कि थोड़ी सी गोपनीयता का भी ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम
1: बिल्कुल
0: किसी बच्चे को जिस दिन पुरस्कार देने का दिवस होता है उससे पहले ही उनके नाम सार्वजनिक ना हो जाएं। तो थोड़ा सा हमको ये ध्यान रखना होता है। तो जिन बच्चों का चयन होता है 2 से 3 दिन या 4 दिन पूर्व, हम संबंधित जिले के कलेक्टर साहब को बताते हैं और वहां के जो कंसर्न कलेक्टर साहब होते हैं वो फिर उस बच्चे से, उस बच्चे के परिवार से संपर्क करते हैं और उन बच्चों को वो जहां भी हो, देश के जिस भी कोने में हो, उनको हम बकायदा हवाई जहाज के माध्यम से, या आसपास के बच्चे हों तो मतलब बाय रोड भी वो आ सकते हैं, तो उनके आने, उनके लाने, ले जाने, ठहराने वो सारी व्यवस्थाएं करते हैं और उनके साथ उनके पेरेंट्स या परिवार का कोई एक सदस्य भी आ सकता है, तो उनको बकायदा हम जहां भी पुरस्कार दिया जाता है, मोस्टली दिल्ली में ही होता है, तो हम उनके लिए पूरी व्यवस्था करते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो उनका चयन होने के पश्चात उनको इन्फॉर्म करने, उनको कम्युनिकेट करने के साथ साथ उनको उस स्थान से दिल्ली लाने और दिल्ली से वापस छोड़ने और यहाँ पे ठहरने और कार्यक्रम जहां भी हो, चाहे राष्ट्रपति भवन में हो या विज्ञान भवन में हो या अन्य किसी स्थल पे हो, हम पूरी व्यवस्था करते हैं ताकि उनको किसी प्रकार से कोई कठिनाई ना हो और वो उस पुरस्कार को ग्रहण कर सके।
1: बिल्कुल सर, क्योंकि इस राष्ट्रीय बाल पुरस्कार में हम सभी जानते हैं कि बच्चों के साथ साथ उनके अभिभावक, स्कूलों, संस्थाओं की भी बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि वो अपने आसपास असाधारण बच्चों को तलाश सकते हैं। तो अंत में हम आपसे उन स्कूलों, अध्यापकों और जो शिक्षक हैं या परिवार हैं, अभिभावक हैं या पूरा समाज है, उसके लिए आप कुछ अपील करना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे कि वो अपने आसपास किस तरह से बच्चों को तलाश सकते हैं और उसके लिए नामांकन कर सकते हैं 31 जुलाई से पहले पहले, जिससे कि ऐसे बच्चे जो असाधारण हैं, जिन 6 श्रेणियों की हमने बात की, उन 6 श्रेणियों में अगर किसी भी तरह की उनमें ऐसी असाधारण प्रतिभा दिखाई देती है जो इस पुरस्कार के लिए बहुत जरूरी है या इस पुरस्कार के लिए खरी उतरती है, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे और कुछ आप बताना चाहेंगे अंत में?
0: देखिए, इस पुरस्कार के बारे में इसका पर्याप्त प्रचार प्रसार हो, इसके लिए हम लोग न्यूज़पेपर्स में एडवर्टीजमेंट्स देते हैं, इसके अलावा रेलवेज पे भी हमारी एक पट्टी चलती है ताकि उसका प्रचार प्रसार हो सके। इस बार भारतवर्ष के समस्त कलेक्टर्स को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को मैंने स्वयं डीओ लेटर लिखा है और उनसे निवेदन किया है कि जो भी बच्चे उनके जिले में हो, आसपास में हो, उनके बारे में नॉमिनेशंस भेजें। इसी के साथ साथ हमने ऑनरेबल गवर्नर्स, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर्स, जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं, इसके अलावा माननीय जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, इसके अलावा जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमारी जो महिला एवं बाल विकास की संस्थाएं हैं, जैसे आंगनबाड़ी हैं और अन्य संस्थाएं हैं, सारे स्कूल्स में, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के माध्यम से सारे स्कूल्स में और अन्य सारे विभाग, जो भी महत्वपूर्ण विभाग हैं जहां से हमें एंट्रीज प्राप्त हो सकती हैं, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय संगठन हो, नवोदय विद्यालय संगठन हो, समिति हो, तो हमने इस बार प्रयास ये किया है कि हमारी इस योजना या इस पुरस्कार के बारे में पूरे भारतवर्ष में इसका प्रचार प्रसार हो ताकि ज्यादा से ज्यादा एंट्रीज आ सके। तो मैं समस्त भारतवर्ष के समस्त नागरिकों से और बच्चों के अभिभावकों से, उनके जो टीचर्स हैं स्कूल के, उन सबसे यही आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि आपको कोई भी बच्चा ऐसा अगर आपके ध्यान में आता है, आपके संपर्क में आता है, जिसमें प्रतिभा है, और मैं कहना चाहूंगा यहाँ कि भारतवर्ष में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, बात सिर्फ इतनी है कि उस प्रतिभा को तराशने की जरूरत है, तो हम यही निवेदन करना चाहेंगे कि आपको कोई भी ऐसा बच्चा जो उत्कृष्ट कार्य करता हुआ दिखे, मिले या आपके संपर्क में आए, उनके जो नॉमिनेशंस हैं आप जरूर उनके नॉमिनेशंस करें ताकि बड़ी से बड़ी संख्या में हमारे पास नॉमिनेशंस आएं ताकि हम इन बच्चों को पुरस्कृत कर सकें।
1: बिल्कुल, बहुत धन्यवाद सर, आपके जो भी बातें हैं निश्चित रूप से हमारे देश भर के विभिन्न श्रोताओं तक पहुंची होंगी और इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारे ऐसे परिवार या बच्चे जरूर आगे आएंगे जो नामांकन करना चाहते हैं राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के इस संस्करण के लिए। आप हमारे साथ जुड़े कार्यक्रम में सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे आगे भी, आगे आने वाले अवसरों पर जरूर बातचीत करना चाहेंगे और जानकारी लेना चाहेंगे विभिन्न गतिविधियों पर महिला और बाल विकास मंत्रालय की। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
0: थैंक यू सो मच।
1: अब हम कार्यक्रम के दूसरे हिस्से में उन प्रेरणादायी कहानियों को सुनते हैं जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा को दिखाया है, देश के लिए बहुत बड़ा अमूल्य योगदान दिया है, समाज को अपनी कारनामों से प्रेरित किया है। हमारे साथ सबसे पहले जुड़ी है शिवानी हसुरु, जो एक 17 वर्षीय एक पैरा एथलीट है और दिव्यांग होना उनके लिए कोई बाधा नहीं है। जैवलिन, शॉर्टफुट थ्रो, इन सभी में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने मेडल्स जीते हैं। तो शिवानी बताएं अपनी कहानी हमारे सुनने वालों को, आप कहां से आती हैं और किस

0: वैसा। तो मम्मी पापा ने एक ही बात बोला है कि हम तो बड़े करेंगे, तुम कुछ भी मत बोलो, हम है इसके साथ, ऐसा बोल के मेरे को साथ दिया है। ऐसे मेरे को बचपन से हॉस्टल में भेजा है कि मेरे को लाइक आदत पढ़ने के लिए, विदाउट हैंड करने के लिए जो भी। फिर मैं नवोदय स्कूल में गई हूँ 6th से लेकर 12th तक। फिर
1: जी जी
0: एक हैदराबाद में आदित्य मेहता फाउंडेशन है, इसमें ओनली पैरा एथलीट्स को सपोर्ट करते हैं। उसमें मेरा डिफरेंट डिफरेंट गेम्स में मेरा बेस्ट लिया था, तो मेरा शॉट पुट जावलिन में अच्छा था, तो मेरे को ट्रेनिंग देते हैं, साथ में कंपटीशन भी भेजते हैं। वैसे मैं शॉट पुट जावलिन में स्टेट नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक गई हूँ, इंडिया के लिए 4 गोल्ड मेडल लाई हूँ। और ऐसे मेरे पास अभी अभी तक 19 मेडल्स है, उसमें से 16 गोल्ड, एक सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज है। और मैं उसके लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ, ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट करना
1: बिल्कुल
0: चाहती हूँ आगे से।
1: बिल्कुल, हमारी बहुत शुभकामनाएं शिवानी आपके साथ। जिस तरह से आपने अपनी छोटी सी उम्र में पैरा एथलीट होने का एक बड़ा अवसर हासिल किया और साथ में आपने बहुत सारे मेडल्स जीते, तो ये मेडल्स की झड़ी आपके लिए लगातार बनी रहे। और आपसे बस ये भी मैं जानना चाहूंगा कि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिलने का आपका एक्सपीरियंस कैसा था, क्या क्या कैसा मन में उत्साह था, इसके बारे में भी हमारे सुनने वालों को बताएं।
0: कभी भी मैं टीवी में देखती थी नरेंद्र मोदी जी को और मैम को, द्रौपदी मुर्मू मैम को, मैं सोचती थी इतना बड़े लोग ऐसे मैं कब मिलूंगी, ऐसा सोचती थी। फिर सोचा भी है कि मैं कभी नहीं मिल पाऊंगी, ऐसा मैं सोची थी। पर मैं लाइक बहुत खुश हूँ ये अवार्ड मिला है। उधर जाके सर से, पीएम नरेंद्र मोदी जी से बात करना, उनसे इंटरेक्ट करना, ये सब कुछ मेरे को सपना जैसा लगा, पर वो सच था, बहुत अच्छा लगा।
1: जी बहुत धन्यवाद शिवानी, बहुत शुभकामनाएं आगे के आपके फ्यूचर के लिए। थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए। अब हम जुड़ रहे हैं एक और प्रेरणादायी व्यक्तित्व से, और हम सभी जानते हैं कि ये सभी बच्चे हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। आयशी प्रिशा बोरा, इन्होंने छोटी सी 14 साल की उम्र में एक यंग इनोवेटर होने का गौरव हासिल किया। साइंस और इनोवेशन की कैटेगरी में इन्हें ये राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का सम्मान मिला, और इन्होंने खासतौर पर सस्टेनेबल फार्मिंग और वेस्ट रिसाइकलिंग के नए नए तरीके खोजे हैं। तो चलिए इनसे ही जानते हैं कि कैसे ये एक यंग इनोवेटर होते हुए सस्टेनेबल फार्मिंग और जो रिसाइकलिंग है और जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको लेकर काम कर रही हैं। बहुत स्वागत है आयशी आपका।
2: नमस्कार सर, थैंक यू सर।
1: जी तो बताएं अपने बारे में, आपको सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आपकी प्रोफाइल से ही लग रहा है कि एनवायरनमेंट से बहुत प्यार है और हम सभी को होना भी चाहिए, तो बताएं कि किस तरह से आपके मन में इस तरह की बातें आती हैं। जैसा कि हम आपने सुनने वालों को बता भी रहे थे कि जो सस्टेनेबल खेती है या जो वेस्ट रिसाइकलिंग है, ऐसे इस इन सब चीजों पर काम करने को लेकर कैसे प्रेरणा आती है।
2: मेरा मेन मोटिव यही होता है कि मैं जितना हो सके उतना अपनी मदर अर्थ को प्रोटेक्ट कर
1: बिल्कुल
2: सकूं। सस्टेनेबिलिटी मेरे हिसाब से एक जरूरत बन चुकी है आज के समय में, सो दैट्स व्हाई आई वर्क ऑन दीज स्टफ एंड या आई वांट टू वर्क फर्दर ऑन इट, मेकिंग मोर सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स एंड व्हाटएवर आई कैन डू।
1: जी, तो बहुत इंटरेस्टिंग आपके इनोवेशन है आयशी। ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि आगे कोई ऐसा आपका कोई सपना है कि अपना स्टार्टअप हो, आगे आपकी कोई कंपनी हो, आपके प्रोडक्ट्स राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह के जो वेस्ट मटेरियल के प्रोडक्ट्स हैं वो बिकें, तो कुछ ऐसा सोचा है आपने।
2: राइट नाउ आई विल बी कम्प्लीटली ऑनेस्ट, आई डोंट नो अबाउट स्टार्टअप्स एंड ऑल, बट एज ऑफ टूडे
1: हाँ
2: व्हाट आई एम ट्राइंग टू फोकस ऑन इज टू कम अप विद द मोस्ट सस्टेनेबल सोल्यूशन टू
1: सॉल्यूशंस।
2: ऑल दी सोसाइटल प्रॉब्लम्स, एंड इफ फ्यूचर आई गेट द चांस टू इम्प्लीमेंट देम इन रियल लाइफ, डेफिनेटली आई एम वेरी ईगर टू डू दैट, बट राइट नाउ आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन बिल्डिंग द सोल्यूशंस, एंड एज ऑफ नाउ आई एम ट्राइंग टू फोकस ऑन माई स्टडीज ऑल्सो एज आई एम अ 10th ग्रेडर दिस ईयर।
1: साथ में आपसे भी वही सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा कि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिलने का आपका अनुभव कैसा था, एक्सपीरियंस कैसा था, क्या आपके मन में एक्साइटमेंट था, उसके बारे में भी आप बताएं।
2: इट वॉज समथिंग दैट आई नेवर ड्रीम्ड ऑफ, एंड इवन टूडे आज भी मैं शब्द नहीं ढूंढ पा रही हूँ मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ। बहुत अच्छा लगा, लाइक इट्स समथिंग द लिटिल आयशी इनसाइड मी वॉज वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड फॉर, एंड आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट टू बी ऑनेस्ट।
1: थैंक यू सो मच आयशी, आप हमारे साथ जुड़ी और आपने अपने एक्सपीरियंस, अपने इनोवेशंस के बारे में हमारे

0: सुनने वालों को बहुत डिटेल में बताया। थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू सर।
0: अब हमारे साथ एक और प्रेरणादायी व्यक्तित्व है, एक और हमारे साथ राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के विजेता पिछले साल के जुड़ रहे हैं, वंश दयाल। वंश दयाल ने अपने जीवन में किसी भी तरह के मिसिंग को, किसी भी तरह के लॉस को लॉस नहीं समझा और आज वो एक बहुत बड़े यूथ लीडर है और एक केयर गिवर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उन्हें सराहना मिली है, तो वंश को हम जोड़ना चाहेंगे। वंश, अपने बारे में बताएं थोड़ा सा। हम सभी जानते हैं कि आपका परिवार नहीं है, माता पिता नहीं है, लेकिन इसके बावजूद आपने अपने जीवन में किसी भी तरह की रुकावट को महसूस नहीं किया और आज आपने इस लॉस को उबारते हुए एक बहुत बड़े यूथ लीडर के तौर पर उभर कर सामने आने का खुद को मौका दिया। बताएं अपने बारे में कुछ।
2: तो ये मौका मेरे लिए बहुत एक कठिन समय रहा, जब तक मेरे माता पिता नहीं थे, लेकिन बहुत रिश्तेदारों का सपोर्ट नहीं था, बहुत कठिन समय रहा मेरे लिए। बहुत ही आगे मूव ऑन कैसे करना है, कैसे खड़ा होना अपने पैरों पे, बहुत मुश्किल था लाइफ में, है ना। कि अब तो हिम्मत हार गई थी कि क्या ही करेंगे, कहाँ जाएंगे, अकेला हूँ, क्या करूंगा, ऐसी रह जाऊंगा। वहां मुझे रिश्तेदारों ने भी सपोर्ट नहीं किया बिल्कुल भी, कुछ नहीं बना। फिर थोड़ा होप हुई, एक फिर होम में आया मैं, चिल्ड्रन होम में आया चंडीगढ़ में। फिर देखा वहां पर एनवायरमेंट, देखा लगा ना, कुछ 4-5 महीने लगे, हुआ थोड़ा सा बैकअप आया, धीरे धीरे सपोर्ट आया, वहां के स्टाफ ने काफी सपोर्ट किया मुझे इस बात के लिए। उसके बाद फिर एक छोटा सा बच्चा आया, मतलब बहुत छोटा बच्चा था, स्पेशल बच्चा, लाइक साइबर पॉलिसी थी उसको, मतलब वो चल नहीं पाता था, बोल नहीं पाता था। तो उससे काफी इंस्पायर हुआ, काफी मोटिवेट हुआ उस बच्चे से मैं, कि हाँ चलो बहुत छोटा है और उसको, बच्चे को उनके माँ बाप ने छोड़ दिया, उसको भी हाँ उसकी हालत ऐसी है, मतलब फिर भी मैं रिलायबल हूँ, सेल्फ इंडिपेंडेंट हूँ, कि कुछ भी कर सकता हूँ। तो आई वॉज वेरी इंस्पायर फ्रॉम हिम कि हाँ यू कैन डू, यू कैन सर्वाइव। तो मैं तो क्या ही हूँ, मैं तो फिर भी अपने काफी बड़ा हूँ, 12-13 साल का था उस टाइम। तो काफी अच्छा मौका था, इसलिए मैंने फिर काफी इंस्पायर होके मैंने सोचा कि इसको वॉलंटियर सर्विस दूंगा। और काफी जिस होम में मैं रहता था तो काफी स्पेशल बच्चे भी रहते थे वहाँ पे, तो उन सबकी हेल्प करना, हेल्प आउट करके, मतलब उन सबकी मदद करके, और उस बच्चे को मैंने काफी नाइक टूडे की वो चल भी सकता है, खा भी सकता है, बोल भी पा रहा है आराम से। तो काफी था ये समय, फिर धीरे धीरे नॉमिनेशन का पता लगा कि हाँ राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का भी नॉमिनेशन बन जाता है सोशल वर्क में। तो मेरे सुपरिटेंडेंट सर थे मिस्टर ललित अरोड़ा, उन्होंने भी काफी इंस्पायर किया, काउंसलर मिस्टर प्रदीप ठाकुर थे, उन्होंने भी काफी इंस्पायर किया कि हाँ करो करो। तो फिर उन्होंने दोनों ने इकट्ठे मिलकर फॉर्म वगैरह भरा मेरा।
0: बिल्कुल निश्चित तौर पर आपने इतनी छोटी सी उम्र में अपने जीवन के अनुभव से जो समाज सेवा का एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है, ये बहुत सच में सराहनीय बात है। हम आपसे और जानना चाहेंगे कि फ्यूचर में जिस तरह से हम भी जानते हैं कि देश भर में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके परिवार नहीं है, उनके लिए आप कुछ करना चाहते हैं, क्या आपने सोचा है फ्यूचर में कि आप कैसे अपने इस समाज सेवा के काम को आगे बढ़ाना चाहेंगे?
2: जैसे कि मेरा एक स्कोप है इन फ्यूचर में कि मैं एक अच्छा पढ़ाई करके साइकोलॉजिस्ट बनूं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, और जितनी करीबी से मैंने मुसीबतों को देखा वो मैं चाहता हूँ कि वो लोग ना देख पाए, कि वो युवा पीढ़ी ना देख पाए, जो बच्चे हैं वो ना देख पाए, उनका साथ ही अपनी सोशल सर्विस कंटिन्यू रखना चाहता हूँ और सबकी हेल्प आउट करना चाहता हूँ, जितनी मेरे से हो सके, मतलब सेल्फ होके उन्हें हेल्प करना चाहूंगा उनकी।
0: बिल्कुल, बहुत शुभकामनाएं वंश आपके लिए हमारी, कि आप इस तरह से अपने समाज सेवा के काम को आगे बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम जुड़ते हैं सुमन सरकार से। सुमन सरकार एक तबला वादक है, छोटी सी उम्र में इन्होंने बहुत सारे मंचों पर अपने तबला वादन का परफॉर्मेंस दिया है और साथ में इनका एक और काम है कि ये जो ऐसे बच्चे जो म्यूजिक के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ट्रेनिंग, उनको फ्री ट्रेनिंग की भी इन्होंने कोशिश की है, तो ऐसे भी समाज सेवा का ये काम कर रही है। बहुत स्वागत है सुमन आपका।
3: सर आपको बहुत धन्यवाद।
0: तो सुमन बताएं कि कैसे आपके मन में म्यूजिक को लेकर ये इंटरेस्ट आया था, क्योंकि आपको कला के क्षेत्र में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो आप अपनी प्रतिभा के बारे में हमारे सुनने वालों को बताएं।
3: तो सर देखिए, मेरा जर्नी जो शुरू हुआ था 3 साल की उम्र में शुरू हो गया था, जब मैं एकदम छोटा था, तो तभी मैं ये तबला को, मतलब आसपास के जगह कुछ चीजों को बजाने की कोशिश करता था। मेरे फादर का जो बहुत सपना था वो थोड़े शास्त्रीय संगीत का चर्चा करेंगे, मेरे परदादा जो थे वो श्रीखोल बजाते थे, तो मेरे फादर का फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए ये सपना पूरा नहीं हो पाया, तो उसी हिसाब से उन्होंने मेरे अंदर ये सपना देखना शुरू किया। तो जब मैं 3 साल का उम्र का था तभी मेरे पापा ने ये नोटिस किया कि बच्चे के अंदर ताल का कुछ ज्ञान है, तो मेरे फादर ने शिक्षा चालू कर दिया था मेरे गाँव में। मेरे प्रथम गुरु का नाम है श्री कोबेर कुमार सरकार, उनसे मैं सीखना चालू किया, तो वहां से जानने शुरू हुआ। तो फिर चलते चलते जब मेरा उम्र 7

0: साल का हुआ तो मेरा फर्स्ट स्टेज प्रोग्राम था, कंपटीशन था, तो मैं बहुत डरता था तब स्टेज पे सबके सामने बजाने के टाइम। तो मेरे पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मम्मी ने भी बहुत सपोर्ट किया, गुरु का आशीर्वाद तो रहता ही है।
1: बिल्कुल।
0: तो इसी हिसाब से लाइफ में फर्स्ट जब कंपटीशन दिया तो उसमें मैं फर्स्ट हुआ। मेरा उम्र तब 7 साल का था, मैं तब फर्स्ट हुआ। तो जो जजमेंट में था उन्होंने बोला कि मेरे फादर को उन्होंने एडवाइस दिया कि बच्चे को और ऊपर ले जाओ और अच्छे गुरु के पास ले जाओ। तभी से मैं कोलकाता के गुरु से सीखने लगा, श्री उज्जवल भारती से। तभी से मेरा जर्नी, ये जो शास्त्रीय संगीत का जर्नी है, तभी शुरू हुआ। धीरे धीरे ये बढ़ता रहा, मैंने रियाज करता, हमारा तो पूरा ही रियाज पे चलता है ये शास्त्रीय संगीत। मैं पढ़ाई लिखाई के साथ साथ ये शास्त्रीय संगीत का जो प्यार मेरे अंदर बढ़ता रहा
1: जी। और ये भी हम आपसे समझना चाहेंगे, जो आपकी कोशिश है कि आप फ्री ट्रेनिंग दें जो संगीत सीखने वाले बच्चे हैं उनको, उसके बारे में भी बताएं किस तरह का ये आप काम कर रहे हैं।
0: आज का जो जनरेशन है वो सिर्फ एडुकेशन पे भागता है, तो मेरा एक ही कहना है कि एडुकेशन के साथ साथ ये जो शास्त्रीय संगीत व हमारा कला संस्कृति जो है, इसमें भी बहुत बड़े बड़े सम्मान पा सकते हैं। यही मेरा वार्ता रहेगा समाज के अंदर, जो पद्मश्री पद्मभूषण बड़े बड़े जो सम्मान है वो शास्त्रीय संगीत में भी मिल सकते हैं।
1: बहुत धन्यवाद, और आपको बहुत बहुत बधाई भी कि पिछले साल आपने जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का ये सम्मान हासिल किया। थैंक यू सो मच सुमन।
0: थैंक यू सर।
1: अब हम जुड़ रहे हैं अर्णव अनुप्रिया महर्षि से। इनका जो एक एआई पावर्ड रिहैबिलिटेशन सॉल्यूशन है दिव्यांग लोगों के लिए, वो बहुत चर्चा में है, उसने इंटरनेशनल लेवल पर रिकग्निशन हासिल की है। तो आइए उनके इस सॉल्यूशन के बारे में उनसे जानते हैं, और साथ में जो पिछले साल राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का जो सम्मान मिला है उसके बारे में भी उससे हम बातचीत करते हैं। अर्णव, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे श्रोताओं को सबसे पहले अपनी इनोवेशन के बारे में बताएं कि किस तरह से आपने एआई के जरिए एक सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की।
2: मेरा जो AI सॉल्यूशन है उसका नाम फेयर चांस है, जिसका फुल फॉर्म है फाइन मोटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेड रिहैबिलिटेशन चांस। ये उन दिव्यांग लोगों के लिए बना है जिनके उंगलियों की जो ताकत रहती है वो बहुत कमजोर रहती है, उसके रिहैबिलिटेशन के लिए बना है, जैसे पैरालिसिस पेशेंट्स, सेरिब्रल पॉल्सी पेशेंट्स। ये जो AI इनोवेशन है, ये एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो कोई भी साधारण लैपटॉप या स्मार्टफोन पे चल जाता है, और इस एप्लीकेशन के थ्रू आपको एक लाइव असेसमेंट मिलता है, एक लाइव आउटपुट मिलता है कि आप कितना अच्छा आपके उंगलियों के मूवमेंट्स कर रहे हो।
1: आपसे आखिर में मैं ये भी जानना चाहूंगा कि जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का सम्मान है उसको हासिल करके आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या मन में था, उसके बारे में भी अपना एक्सपीरियंस बताएं।
2: यही पुरस्कार के माध्यम से मेरे जो ये काम है इसको एक क्रेडिबिलिटी मिली है कि सचमुच का ये असली, मतलब सचमुच का काम कर रहा हूँ जो एक्चुअली दूसरे दिव्यांग लोग और दूसरे पेशेंट्स के काम में आ सकता है।
1: जी, आपके लिए बधाइयां भी इस पुरस्कार के लिए। धन्यवाद आप जुड़े हमारे साथ इस कार्यक्रम में। श्रोताओं, जिस तरह से इस पूरे कार्यक्रम में हमने महिला और बाल विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव अजित कुमार जी से चर्चा की राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के बारे में, हमारे श्रोताओं को बहुत सी जानकारियां नामांकन से लेकर इस पुरस्कार के मकसद के बारे में जरूर हासिल हुई होंगी। और साथ में कार्यक्रम के दूसरे हिस्से में हमने पिछले साल के राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित कुछ प्रेरणादायी बच्चों से बात की, तो उनके अलग अलग कहानियों को सुनकर भी बहुत सारे सुनने वाले जो बच्चे हैं, परिवार हैं, वो प्रेरित हुए होंगे कि जो 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक इस साल के राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन की प्रक्रिया चल रही है, अगर किसी श्रेणी में उन्होंने कोई ऐसा कारनामा किया है, कोई छुपी हुई प्रतिभा है, तो जरूर वो सामने आएंगे और नामांकन करेंगे। आप सभी का कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार देश के प्रतिभावान बच्चों का सम्मान विषय पर महिला और बाल विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव अजीत कुमार के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
4: चर्चा का विषय है।

0: सुनिए रूपक, राला मंडल अभ्यारण्य इंदौर। वाचक सर सुधा शर्मा और उदित तिवारी के हैं। प्रस्तुति ब्रह्म प्रकाश चतुर्वेदी की।
1: हमारा प्रदेश मध्य प्रदेश अप्रतिम सौंदर्य से समृद्ध राज्य है। इसके मालवा और निमाड़ अंचल तो सर्वाधिक सम्मोहित करने वाले हैं। मालवा निमाड़ अंचलों में कण कण में सौंदर्य व्याप्त है। धार्मिक और पर्यटन स्थल ऐसे हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करने की क्षमता रखते हैं। मालवा और निमाड़ को ये सौभाग्य प्राप्त है कि यहाँ दो ज्योतिर्लिंग सुस्थापित हैं। एक है उज्जैनी के महाकालेश्वर और दूसरे मानधाता की नगरी में ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वरम अमलेश्वरम। यहाँ तो पर्यटन ने उद्योग का रूप ले लिया है। जहाँ तेजी से विस्तार हो रहे अनेक पर्यटन स्थल मांडू, ओंकारेश्वर, सैलानी टापू, महाकालेश्वर, महाकाल लोक, पशुपतिनाथ लोक, अनेक देवी लोक, जिनका वैश्विक स्तर पर सम्मान बढ़ा है, इन धार्मिक और पर्यटन स्थलों की विशेषता है कि ये अत्यंत समृद्ध और विविधता से संपन्न है। प्राकृतिक पर्यटन हो या सांस्कृतिक पर्यटन, आध्यात्मिक पर्यटन हो या वन्य जीव पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन हो या रोमांचकारी पर्यटन, कृषि पर्यटन हो या फिल्म पर्यटन, इन सभी स्वरूपों के साथ मालवा निमाड़ की पहचान बहुआयामी पर्यटन के रूप में हो रही है। नैसर्गिक सौंदर्य, वन्य प्राणी, धार्मिक स्थल, आकर्षक ऐतिहासिक विरासतें और हरे भरे वन हमारी विशेषता है। एक ओर जहां आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन समृद्ध हो रहा है, वहीं फिल्म पर्यटन हेतु फिल्म निर्माताओं को आकर्षक सुविधाएं मिल रही हैं। इसी के साथ ग्रामीण संस्कृति को देखने समझने में होम स्टे अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। राला मंडल अभयारण्य इंदौर पर केंद्रित ये रूपकात्मक कार्यक्रम।
2: राला मंडल अभयारण्य, ये अभयारण्य कक्ष क्रमांक 260 में बनाया गया, जिसका क्षेत्रफल 262 हेक्टेयर है। राला मंडल क्षेत्र होलकर महाराज के समय प्रसिद्ध आखेट स्थल था तथा पहाड़ी पर वर्ष 1905 में निर्मित इमारत का उपयोग शिकार कैंप के रूप में किया जाता था। राला मंडल पहाड़ी इंदौर शहर से 12 किलोमीटर की दूरी पर इंदौर तिल्लौर मार्ग पर स्थित है। ये पहाड़ी समुद्र तल से लगभग 2608 फीट यानी कि 782 मीटर एवं स्थानीय भू सतह से 627 फीट ऊंचाई पर स्थित है। राला मंडल पहाड़ी वर्ष 1954 में आरक्षित वन घोषित की गई थी।
3: मेरा नाम योगेश कुमार यादव है और मैं राला मंडल अभयारण्य में वन परिक्षेत्र अधिकारी के पद पर पदस्थ हूँ। सर, राला मंडल अभयारण्य इको पर्यटन की दृष्टि से एक अति महत्वपूर्ण केंद्र है। यह मध्य प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य है, जो मात्र 234 किलोमीटर हेक्टेयर में फैला हुआ है। यह न केवल मालवा निमाड़ अपितु संपूर्ण मध्य प्रदेश में वन एवं वन्य जीव जैव विविधता एवं अन्य प्रकार की प्राकृतिक संपदाओं हेतु अति महत्वपूर्ण केंद्र है।
2: मॉनसून आरंभ हो चुका है, बूंदाबांदी चल रही, मौसम बड़ा ही सुहाना बन पड़ा है और अब हमारी टीम राला मंडल पहुंच चुकी है और पर्यटकों का यहां पर आना निरंतर बना हुआ है। छोटे बड़े सभी यहां पर पहुंच रहे हैं। चूंकि बूंदाबांदी हो रही है तो हाथों में छतरियां हैं, बरसाती भी है और ये जो पर्यटक हमारे सामने हैं, आपका नाम?
4: जी, मेरा नाम खुशाल जोशी है। मेरी उम्र तकरीबन अभी 24 साल है और मुझे बचपन से ही मालूम है कि ये जगह मतलब इंदौर में है और काफी अच्छी है। बारिश में यहाँ का मौसम अच्छा हो जाता है, कुछ जानवर वगैरह भी दिखते हैं, तो मैं बचपन से ही अपने परिवार वालों के साथ यहाँ पे आना पसंद करता हूँ।
2: आज आप किन किन लोगों के साथ हैं?
4: दीज आर माई ऑफिस कलीग्स। सैटरडे है, छुट्टी है आईटी में, इसीलिए मौसम एंजॉय करने हैं।
2: तो क्या ट्रैकिंग करने का भी विचार है?
4: यस, फॉर ट्रैकिंग ओनली।
2: इस ट्रैकिंग में कितना वक्त ले लेते हैं आप?
4: सो राला मंडल में तकरीबन 40 मिनट्स में आप ऊपर से नीचे जा सकते हैं। अगर आप कच्चे रास्ते से जा रहे हैं तो भी इट विल टेक ओनली 40 मिनट्स और अगर रोड से जा रहे हैं तो भी 40 मिनट में आप ऊपर से नीचे कवर होकर आ सकते हैं।
2: आपके जो कलीग्स आपके साथ आए हैं वो पहली बार आए हैं?
4: हाँ, सो इसमें से सारे कलीग्स इंदौर के नहीं है, सो ही इज फ्रॉम झारखंड जो हमारे साथ एक और हैं, एंड ये दो इसमें से पहली बार हैं एंड

0: बाकी हम लोग बचपन से आ रहे हैं।
1: आपने उनको कहा कि वहाँ चलो, एक बार में ही वो राजी हुए या काफी जिज्ञासा के साथ बहुत खोजबीन की?
0: तो हम लोगों का ऑफिस क्रिस्टल आईटी पार्क है, वहाँ पे है। सो ऑफिस में से पहाड़ी दिखती है एंड जो इंदौर के बाहर के लोग हैं उन्हें ये पहाड़ी पे जाना पसंद है। उन्हें दिख रहा था कि हमें एक बार जाके और इन्जॉय करना चाहिए, तो उन लोगों ने बोला इसलिए हम लोग आज यहाँ आए हैं।
1: बहुत खूब। सच में वैसे राला मंडल बहुत खूबसूरत है, अच्छी जगह है, और चूंकि शुरुआती मानसून है तो स्वाभाविक रूप से चढ़ने में ट्रैकिंग में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। और यंग है आप और उत्साह और जोश के साथ आए, और साथ ही है जो पहली बार आए तो आपको आनंद ही आना है, मजा ही आना है।
0: बिल्कुल आनंद आएगा, आनंद के साथ ऊपर चढ़ेंगे और नीचे आएंगे।
2: मैं दीपक परमार, राला मंडल कैफे टू व्हीला, यहाँ पे मैं कैफे टू व्हीला चलाता हूँ। यहाँ पे मैं सुबह 9 बजे से कैफे खोलता हूँ तो शाम को 5 बजे तक कैफे चालू रहता है। गेट पर टिकट 5 तक मिलते हैं, फिर 5 के बाद जो भी पर्यटक रहते हैं वो निकलने का काम स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। यहाँ पे आपको चाय है, कॉफी है, सैंडविच है, पिज्जा है, पास्ता है, बर्गर है, जूसेस मिल जाएंगे फ्रेश। यहाँ आने वाले पर्यटकों का व्यवहार बहुत ठीक रहता है, वातावरण भी अच्छा है, यहाँ पे बैठने की जगह भी अच्छी है, पार्क भी है यहाँ पे घूमने के लिए, ट्रैकिंग सुविधा है, ट्रैकिंग करते हैं, ऊपर म्यूजियम है देखने लायक, वहाँ पे देखते हैं लोग। यहाँ जो भी आएगा वो खुश होके ही जाएगा। लगभग यहाँ पे 1 से 1.5 हजार पर्यटक आ ही जाते हैं। हमारा कैफे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे अलाउड किया जाता है। मेरा कैफे 3 साल से है यहाँ पर। हम जो भी कस्टमर आते हैं उनको खुश करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, और जो भी इसकी प्रोसेस रहती है उसको पूरा करके ही यहाँ पे कैफे पे आ सकते हैं।
3: मेरा नाम सलोनी काले है।
1: पहली बार राला मंडल आ रही हैं आप?
3: नहीं, मैं इसके पहले भी काफी बार आ चुकी हूँ। तो जैसे कि पहले मेरा कॉलेज यहीं पे था, तो कॉलेज के टाइम में मानसून में काफी जगह एक्सप्लोर करने निकलते इंदौर के आसपास, तो उसमें से एक राला मंडल भी बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है, तो उधर मतलब ट्रैकिंग वगैरह का रहता है। तो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो मेरा मंडे टू फ्राइडे ऑफिस रहता है, देन सैटरडे संडे फ्री रहते हैं, एंड अगर मौसम भी अच्छा रहा तो फिर ऐसा लगता है कि आके नई नई चीजें एक्सप्लोर करो, जो नेचर है उसके क्लोज जाओ, यही एक टाइम रहता है। मतलब बहुत अच्छा घना जंगल है राला मंडल का, और जब भी अगर अपन ऊपर हाइट पे जाके बैठते हैं तो बहुत अच्छा पूरे इंदौर का व्यू दिखता है, तो बहुत शांति और बहुत क्लोज फील होता है नेचर के। यहाँ के हिरण एक्चुअल में बहुत प्यारे हैं, मुझे 2-3 बार दिखे भी है जब मैं ट्रैक कर रही थी तब, और एक बार तो नीलगाय भी दिखी थी। हाँ, काफी ब्यूटीफुल है।
4: मेरा नाम पूजा है, बट हम लोग राला मंडल आए, हमें आज ऐसा लगा जैसे हम हिमाचल में। बहुत से भी प्यारा मौसम था, रिमझिम बारिश थी और बादल एकदम नीचे थे। मतलब आज का जो अनुभव है, मतलब व्यक्त करना, मतलब बिल्कुल पता ही नहीं है, मतलब किस वर्ड में बताऊं, मतलब बहुत सुपर था। मतलब बारिश के मौसम में आना मतलब बहुत अच्छी जगह है, मतलब हिमाचल जैसा फील है, बिल्कुल मजा आ गया। मतलब आप सब भी आए और बहुत इंजॉय करें।
5: जी, मेरा नाम हितेंद्र पाटीदार है।
6: मेरा नाम मीनाक्षी पाटीदार है।
5: कि हम जब यहाँ से शुरू किया था तो थोड़ी धूप थी, फिर गए तो थोड़ी छांव होने लगी, बादल होने लगे, मौसम अच्छा होने लगा, ठंडा होने लगा, तो चढ़ाई में हमको बिल्कुल भी थकान नहीं लगी। चढ़ाई अच्छी थी, बीच बीच में ज्यादा चढ़ाई महसूस हुई, फिर बारिश आ गई तो और भी अच्छा लगा। फिर ऊपर जाके फॉग आ गया है, बादल भी थे ऊपर, तो ऊपर जाके बहुत अच्छा लगा, बहुत रिलैक्सिंग लगा। म्यूजियम भी अच्छा था, उसमें काफी चीजें देखने को मिली।
6: सेम थिंग, बहुत मजा आया, दोनों घूमने गए, साथ में टाइम स्पेंड किया, नई नई चीजें देखी, हरा भरा मौसम था, अच्छा सुहाना लगा।
5: पहली बार आए हम लोग, बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे जाना है, आज मौका मिल गया, आज आए तो अच्छा लगा।
4: आज मौसम बहुत से भी ज्यादा अच्छा है, और आज राला मंडल में मतलब चांद चांद लगा दिया, इतनी प्यारी बारिश हो रही थी, रिमझिम बारिश थी, बादल बिल्कुल सिर के ऊपर, मतलब बहुत ही प्यारा मौसम था, जैसे एक हिमाचल के मौसम हम जैसे देखते हैं सेम वैसा ही वाइब था, और बहुत ही प्यारा मौसम था।
7: मेरा नाम पीयूष, आज का जो माहौल है बहुत अच्छा है, आज अगर आप आओ तो यहाँ पे आके विजिट कर सकते हो, बहुत प्यारा इन्वायरमेंट है, आज एंजॉयमेंट करिए, बहुत मजा आएगा, बहुत ट्रैकिंग होगी, मस्ती होगी, मजाक होगा, बहुत बढ़िया मोमेंट है आज। और थोड़ा सा नेचर भी अच्छा है, जिन लोगों को नेचर से बहुत प्यार है वो यहाँ पे विजिट कर सकते हैं, बहुत बढ़िया प्लेस है यहाँ पे। अपने पार्टनर्स को लेके आइए, अपने फ्रेंड्स को लेके आइए, बहुत बढ़िया मोमेंट रहेगा आज का। फैमिलीज को लेके आइए, ट्रैकिंग करिए और इन्जॉयमेंट करिए, बहुत बढ़िया मोमेंट है यहाँ पे आज। हमने जैसे यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे पेड़ पौधे देखे हैं, बहुत सारे जानवर देखे, जैसे स्नेक्स हो गए और नील गाय हो गया है, मोर हो गए।
8: इस
1: क्षेत्र

0: को वर्ष 1989 में वन्य प्राणी अभयारण्य घोषित किया गया। माह अक्टूबर 1998 में इस अभयारण्य में शाकाहारी वन्य प्राणियों को बाहर से लाकर छोड़ा गया। 191 प्रजाति की वनस्पतियां इस अभयारण्य में पहचान की गई हैं। 62 प्रकार के विभिन्न पक्षियों की पहचान भी की जा चुकी है, जिनका आवागमन अभयारण्य में होता रहता है। मेन गेट से शिकारगाह मुख्य मार्ग से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। मुख्य द्वार से प्रवेश कर आर्च के पास पीने का पानी उपलब्ध है। अभयारण्य में घुसते समय ही 300 मीटर की दूरी पर विश्राम हेतु पेगोड़ा है। पहाड़ी के चढ़ाव के प्रथम पठार पर विश्राम हेतु 2 पेगोड़े हैं। शिकारगाह पर पीने का पानी उपलब्ध है। पूरे अभयारण्य क्षेत्र को एनिमल जोन तथा पर्यटक जोन में चैनलिंग फेसिंग से विभाजित किया गया है। अभयारण्य में प्रतिवर्ष लगभग 90,000 पर्यटक आते हैं।
1: राला मंडल अभयारण्य में शिकारगाह सफारी, सर्कुलर रोड सफारी, डियर सफारी, जीवाश्म संग्रहालय, शिकारगाह संग्रहालय, नेचुरल ट्रेल पर ट्रैकिंग, बटरफ्लाई पार्क आदि प्रमुख आकर्षण के केंद्र हैं। अभी आगामी कुछ समय में राला मंडल अभयारण्य में मालवा, निमाड़ एवं मध्य प्रदेश के क्षेत्रीय व्यंजनों को परोसे जाने हेतु मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड के तत्वाधान में एक किचन सेट का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें इको विकास समिति के माध्यम से इस क्षेत्र के जो परंपरागत व्यंजन है, क्षेत्रीय व्यंजन है, जिनको राला मंडल में आने वाले पर्यटकों हेतु परोसा जाएगा। मैं राला मंडल आने वाले पर्यटकों हेतु आग्रह करता हूं कि प्रकृति से सराबोर होने हेतु, जैव विविधता से साक्षात्कार करने हेतु, वन एवं वन्य जीव के बारे में विविध आयामों को जानने हेतु, बटरफ्लाई एवं जीवाश्म के बारे में ज्ञान प्राप्ति हेतु, शोध करने हेतु यहां पर अवश्य पधारें। निश्चित तौर पर आपको मानसिक शांति, आत्मा की शांति एवं प्रकृति से सराबोर होकर बहुत अंतः प्रज्ञा के तौर पर अति आनंद की अनुभूति होगी।
0: राला मंडल अभयारण्य में सिर्फ ट्रैकिंग या फिर वन क्षेत्र का ही आनंद नहीं लिया जा सकता। जी हाँ, हम जो बात कहने जा रहे हैं उस पर भी आप गौर फरमाइएगा। यहाँ पर आप विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों के साथ साथ प्रकृति का जो आनंद लेते हैं, तो आप ध्यान और योग भी कर सकते हैं। जी, पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन प्राकृतिक अवस्था में यहाँ किया जाता है। यहाँ से आप जैव विविधता की भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्राकृतिक ट्रेल का आनंद, पहाड़ पर चढ़ना इस पिकनिक स्थल का मुख्य आकर्षण है। राला मंडल अभयारण्य में बच्चों के लिए एक आनंद गार्डन भी है और फॉसिल की जानकारी फॉसिल म्यूजियम के द्वारा दी जाती है। डियर सफारी पार्क का भ्रमण, गोल्फ कोर्ट में आप चीतलों और कृष्ण मुर्ग के झुंड का आनंद ले सकते हैं। शिकारगाह की ऐतिहासिक जानकारी आपको प्राप्त करनी है तो आपको ऊपर पहाड़ी पर चढ़ना होगा, तभी आप वहां से जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। राला मंडल अभयारण्य में छोटे बड़े पेड़ पौधे सभी देखे जा सकते हैं और हम भी इन्हें देख रहे हैं। बबूल, बेल, धावड़ा, खेर, रेउंजा, नीम, सफेद सिरस, जंगली गलिया, कंघी, खोखली, छोटा गोखरू, असगंध, राम तुलसी, कांटे वाली चौलाई, गेलेवार, बेजुरा, तेजुला, रत्ती, अस्त्रा, अचार, कचनार, पलाज और न जाने कितने प्रकार के यहाँ पर छोटे बड़े पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, जो कि यहाँ पर आने वाले पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। और देखिए, थोड़ा सा आगे बढ़ते ही सालर, सेमल और केरकर के ये छोटे छोटे वृक्ष दिखाई दे रहे हैं।

0: इस पहाड़ी पर सघन वन क्षेत्र है। यहाँ पर खासतौर से छुईमुई, पुनर्वा, वज्रदंती, मोरनी, बांस, जंगली लाजवंती, अमलतास, करोंदा, तेलिया साग, कोरसा, चिरोटा, चिमेर, जंगली अजवाइन, लाल इंद्रायन, टिंडूरी कंटूरी, अखंड भिंडी, डेला, जंगली जूट, मदार, नागर मोचा, कोमड़ा, जंगली करोंदा, अखरी, अमरबेल जैसी कई प्रजातियां पौधों की पाई जाती हैं। ये प्रजातियां घर में आमतौर पर काम में नहीं आती, लेकिन कुछ ही प्रजातियां वैदिक यानी कि उपचार के लिए जरूर सामने आती हैं। इन्हें देखना, इन्हें समझना अलग ही आनंद देता है। हमारी टीम ने जब पर्यटकों से चर्चा की, उन्हें इन प्रजातियों को देखकर बड़ा ही अच्छा लगा। खासतौर से जंगली लाजवंती, अमलतास, करोंदा तो हमारे शहरों में दिख ही जाता है। अगर बात करें चिरोटा की, चिमेर की और जंगली अजवाइन को देखकर सभी बड़े ही लालायित रहे और रोमांचित भी रहे। राला मंडल सिर्फ ट्रेकिंग के लिए नहीं, यहाँ का जो अभयारण्य है लोग उसे भी देखना चाहते हैं। खासतौर से अगर बात करें काले हिरण की, तो उसे देखना और उसका अपनी गाड़ी के पास आना बड़ा ही लुभाता है। और जो दूसरे जानवर यहाँ पर देखे जा सकते हैं वो है चिनकारा, जंगली बिल्ली। जी हाँ, जंगली बिल्ली, लकड़बग्घा भी कई बार देखने को मिल जाता है। लोमड़ी, सियार तो आम बात है, चीतल, मिड़की और नेवला, सेही और खरगोश यहाँ पर मिल जाते। चूहा, चूहे की क्या कहें, चूहा तो हर जगह मिल जाता है। चूहा, गिलहरी, गोयरा, अजगर सांप, धामन सांप, काला सांप, रसेल वाइपर यहाँ पर हमें दिखाई दे जाते हैं। अगर पक्षियों की बात करें तो धुवन, बुलबुल, हुपो और हरियल यहाँ पर मुख्य रूप से देखे जा सकते हैं। मध्य प्रदेश शासन वन मंडल द्वारा ये जो राला मंडल अभयारण्य है दिन ब दिन विकास कर रहा है और यहाँ पर जीव जंतु बढ़ते ही जा रहे हैं। यहाँ पर गैलरी में हम विभिन्न होलकर राजवंश के वंशजों की तस्वीरें देख रहे हैं और हर तस्वीर के सामने एक ऑडियो सिस्टम है, वो क्या कहता है?
1: होलकर वंश के राजाओं की जो गैलरी है उसके समक्ष एक ऑडियो सिस्टम लगा हुआ है और वो ऑडियो सिस्टम में जो व्यक्ति देखने में जिनको कोई प्रकार की कोई समस्या होती है तो वो उसको बहुत अच्छे से सुन सकते हैं। वो ऑडियो सिस्टम हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में संबंधित राजा महाराजा के बारे में विस्तृत विवरण प्रदान करता है। इसके साथ ही यह विद्यार्थियों हेतु एक थोड़ा सा आकर्षण का केंद्र भी रहता है।
0: संग्रहालय पर जब एक ट्रैक को क्रॉस करते हुए एक बड़ी ऊंचाई तक पहुंचा जाता है तो वहां से पूरा शहर दिखाई देता है और बहुत ही खूबसूरत इंदौर हमें नजर आता है। अब जब इस समय हम संग्रहालय के पास खड़े हुए हैं तो हवा बहुत तेज गति के साथ चल रही है। यहां कैंट क्लब महू को पिंगस्टी किंग की अनुमति प्रदान की जाती थी। मिस्टर बैरन ग्रिविल द्वारा 11 मार्च 1923 को यहाँ एक विशालकाय सुअर और लॉबी के समीप 7 फीट से 10 फीट तेंदुए के शिकार का उल्लेख मिलता है। सन 1928 में महू के जीओसी ने अपने शिकारी जीवन के सर्वाधिक लंबे शेर का शिकार यही किया था। 16 जुलाई 1929 को कमांडर चीफ एवं एजीसी द्वारा राला मंडल में पैंथर शूट का आयोजन किया गया था। 5 जनवरी 1930 को महाराजा तुकोजी राव तृतीय भी राला मंडल की शिकार पार्टी में शामिल हुए थे।

0: मध्य प्रदेश शासन वन विभाग वन मंडल इंदौर राला मंडल अभयारण्य की तरफ से सभी को गाइड करने के लिए गेट पर ही कहा जाता है कि आपको अपने वाहन की जिम्मेदारी स्वयं रखनी होगी। चोरी होती है, किसी भी तरह की टूट फूट होती है, उसके लिए विभाग कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। आप अपने साथ किसी भी प्रकार की ज्वलनशील पदार्थ जैसे कि माचिस, सिगरेट आदि न ले जाएं। वन्य प्राणियों को किसी भी प्रकार की खाद्य सामग्री न खिलाएं। पॉलिथीन बैग्स की बात है, कागज उपयोगी खाद्य सामग्री को अभयारण्य के बाहर ही फेंकें, अभयारण्य में नहीं फेंकें। किसी भी प्रकार का अस्त्र और शस्त्र आप नहीं ले जा सकते। रेडियो, ट्रांजिस्टर, कैमरा ले जाना भी वर्जित है। कोई भी व्यक्ति अभयारण्य में किसी भी वृक्ष, फूल, चट्टान, बैग्स, बाकड़, सीट, नोटिस बोर्ड, कूड़ादान, जो भी यहाँ की वस्तु है और जो भी उस पर बात लिखी गई है उसका पालन करे, उसे नष्ट करने की बिल्कुल भी कोशिश ना करे। अगर कोई व्यक्ति इन्हें क्षति पहुँचाता हुआ दिखाई देगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो आप तो घूमने आए हैं, तो यहाँ पर आकर आनंद लें। ट्रैकिंग का, धुंध का, बादलों का, वन क्षेत्र का, वनस्पतियों का और प्यारे पशु पक्षियों का।
1: राला मंडल अभयारण्य की पहाड़ी के शीर्ष अर्थात लगभग 782 मीटर की ऊंचाई पर स्थित शिकारगाह संग्रहालय का निर्माण होलकर राजवंश के 12वें राजा महाराज शिवाजीराव होलकर द्वारा करवाया गया था और यह निर्माण 1905 में लगभग 65,000 रूपए की लागत से करवाया गया था। वन विभाग द्वारा इस भवन का, जो कि एक बहुत ऐतिहासिक अति महत्वपूर्ण भवन है, इसका जीर्णोद्धार किया गया और यहाँ पर मालवा एवं निमाड़ की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक एवं इको पर्यटन केंद्र जो भी हैं, उनसे संबंधित विस्तृत जानकारी बहुत ही अच्छे सूक्ष्म स्तर पर जाकर वर्णित की गई है, जिसके माध्यम से विभिन्न विद्यार्थियों, शोधार्थियों एवं आने वाले पर्यटकों को होलकर वंश के समस्त राजाओं के बारे में, होलकर साम्राज्य के द्वारा किए गए विभिन्न कार्यों के बारे में, मालवांचल एवं निमाड़ अंचल की संस्कृति के बारे में, यहाँ के आध्यात्मिक केंद्रों के बारे में, यहाँ के विभिन्न सांस्कृतिक आयामों के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है।
0: अगर आप राला मंडल आ रहे हैं तो यहाँ के अभयारण्य तक जरूर पहुँचिएगा।
2: मेरा नाम छत्रपाल सिंह वाथम है, मैं यहाँ सुरक्षा का काम देखता हूँ और हमारे जो मेन गेट पे है वो सारी चेकिंग की जाती है, जैसे कि चिप्स है, सिगरेट, बीड़ी, तो सारा चेक करके उसके बाद हम अंदर जाने देते हैं। उसके बाद सेकेंड चेकिंग हमारी आर्च गेट है, वहाँ होती है, फिर उसके बाद ही हम ऊपर जाने देते हैं। अगर कोई जिद भी करता है, कुछ करता है, तो रिक्वेस्ट करते हैं उससे कि भाई ठीक है, ऐसा मत करो, जंगल है तो हमारे यहाँ प्लास्टिक या ये चिप्स वगैरह खाना अलाउ नहीं है। तो फिर भी अगर नहीं मानते हैं तो फिर हमारे वरिष्ठों को हम सूचित करते हैं, बताते हैं। उसके बाद हमारा शिकारगाह है ऊपर, वहाँ पे हमारा स्टाफ रहता है चेक करने के लिए, तो वो भी चेकिंग करते हैं पूरी तरह से। शिकारगाह वो है होलकर साम्राज्य का, वहाँ म्यूजियम बना दिया है तो लोग म्यूजियम देखने जाते हैं वहाँ।
0: एक बात का आपको बहुत ध्यान रखना होगा, राला मंडल अभयारण्य आपसे निवेदन कर रहा है, कहता है प्रिय मित्र, राला मंडल अभयारण्य में आपका स्वागत है। यहाँ के वन्य प्राणी और पेड़ पौधों की आपसे अपेक्षा है कि अभयारण्य में भ्रमण करते समय आप पूरा आनंद तो लें, आंख और कान चौकन्ने रखें, प्राकृतिक रंगों से मेल खाते परिधान का उपयोग करें, बच्चों और बुजुर्गों का पूरा ध्यान रखें, वन्य प्राणियों से सुरक्षित दूरी बनाए रखें तथा अभयारण्य के जो भी नियम है उनका पालन करें। काला हिरण अब तक पहुंच जाता है, आपकी गाड़ी के पास होता है, आपकी खिड़की के पास होता है, लेकिन उसे छूएगा नहीं। हाँ, वो आपको जरूर छूने की कोशिश करेगा। राला मंडल एक बात और कह रहा है, वो निवेदन करता है अपनी बात में कि हमें छूने की कोशिश नहीं करिएगा, प्लीज हमसे दूरी बनाकर चलिएगा। हमें यहाँ पर खाने पीने को बहुत कुछ मिल जाता है, तो हमारे यहाँ के जो पशु और पक्षी हैं, उन्हें स्पर्श नहीं करना, हमारा पेट भरा हुआ है। हाँ, एक बात का और ध्यान रखना, लेकर जाए सिर्फ मधुर स्मृति, लेकर जाए सिर्फ मधुर स्मृति, छोड़ कर जाए सिर्फ पद चिन्ह।
3: धर्म, संस्कृति और पर्यटन का अनुपम खजाना समेटे मालवा निमाड़ सभी को लुभा रहा है। बेहतर से बेहतर और प्रदेश से सबसे अधिक टूरिस्ट प्लेसेस हैं यहाँ, आप भी आइए और लुत्फ लीजिए। मध्य प्रदेश पर्यटन संस्कृति अध्यात्म विभाग और पर्यटन बोर्ड के प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्री शिव शेखर शुक्ला आपको मालवा निमाड़ के धार्मिक और पर्यटन स्थल देखने के लिए आमंत्रित करते हुए कहते हैं।
4: मध्य प्रदेश पर्यटन और संस्कृति की दृष्टि से बहुत ही समृद्ध प्रदेश है और यहाँ हर कोने कोने में हमारे सामने इतिहास अपनी गाथाएं गाता है और सांस्कृतिक दृष्टि से भी यहाँ की जो संस्कृति है विशेष है। और पर्यटन विभाग और संस्कृति विभाग मिल करके ये प्रयास करते हैं कि हम अपने यहाँ की कला और संस्कृति और पर्यटन की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण स्थान है वो पूरे दुनिया के सामने बेहतर तरीके से पेश करें और लोग यहाँ पर आएं, उसका आनंद लें, यहाँ की समृद्ध संस्कृति से परिचित हों और यहाँ के पर्यटन

0: स्थलों में भी वो आकर के जो सौंदर्य है यहाँ का, अनुपम अप्रतिम सौंदर्य है, उसका लुत्फ लें। यहाँ के जो वाइल्ड लाइफ है जो यूनिक है, हमें टाइगर स्टेट बोला जाता है, चीता स्टेट बोला जाता है, लेपर्ड स्टेट बोला जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा वाइल्ड लाइफ यहीं पे मध्य प्रदेश में विद्यमान है। सबसे ज्यादा जंगलात यहाँ पर है, 30% से ऊपर का एरिया हमारा जंगल से आच्छादित है। पूरे देश में 12% सबसे बड़ा एरिया मध्य प्रदेश में है, यानी हम पूरे देश के लंग्स भी हैं, हृदय तो है ही। तो पर्यटन और संस्कृति विभाग न केवल मालवा निमाड़ बल्कि पूरे प्रदेश की संस्कृति को सबके समक्ष रखता है।
1: राला मंडल अभयारण्य के डियर पार्क में स्थित अवेयरनेस सेंटर में वन्य प्राणियों से संबंधित फिल्म का प्रदर्शन किया जाता है तथा एनिमल मॉडल्स, उनके छायाचित्र, विष्ठा तथा उनके पदचिन्हों को प्रदर्शित किया गया है। मध्य प्रदेश शासन वन विभाग द्वारा अभयारण्य भ्रमण हेतु शुल्क निर्धारित किया गया है। अगर आपको पैदल भ्रमण करना है तो 20 रूपए प्रति व्यक्ति आपको देने होंगे। 4 पहिया वाहन शिकारगाह भ्रमण अगर आपको करना है तो 500 रूपए प्रति ट्रिप होगी। गोल्फ कार्ट से डियर सफारी भ्रमण करना है तो 50 रूपए प्रति व्यक्ति आपको शुल्क देना होगा। तो आ रहे हैं ना आप हमारे राला मंडल अभयारण्य में। राला मंडल पहाड़ी अत्यंत हरितिमा युक्त वन्य प्राणी बाहुल्य क्षेत्र है। नीलगाय, काले हिरण और न जाने कौन कौन से पशु पक्षी आप यहाँ देख सकते हैं। वनस्पतियाँ यहाँ आप देख सकते हैं। और तो और साथ में एक और तोहफा, जी हाँ, तितलियों का एक संरक्षण, एक क्षेत्र जहाँ पर आपको रंग बिरंगी तितलियाँ बड़े ही शांति के साथ फूलों और पत्तियों पर मंडराती हुई दिखाई दे जाएंगी। इस विविधता के साथ आप आइए, जरूर आइए राला मंडल पहाड़ी पर, राला मंडल अभयारण्य पर और आनंद लीजिए यहाँ की प्रकृति का, प्राकृतिक सौंदर्य का।

अभी आप सुन रहे थे रूपक, राला मंडल अभ्यारण्य इंदौर। वाचक स्वर थे सुधा शर्मा और उदित तिवारी के, प्रस्तुति ब्रह्म प्रकाश चतुर्वेदी की।

आकाशवाणी इंदौर से प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं भजन सोपोरी का संतूर वादन। आइए पहले सुनते हैं राग यमन।

पंडित भजन सोपोरी का संतूर वादन इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से। अभी आपने सुना राग यमन और अब पेश है राग मिश्र पीलू।

0: अभी आप सुन रहे थे पंडित भजन सोपोरी का संतूर वादन। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और लंबित मुद्दों के शीघ्र समाधान पर बल दिया। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। श्री मोदी ने टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और जागरूकता अभियानों में एनसीसी कैडेटों तथा माय भारत स्वयं सेवकों की भागीदारी बढ़ाने का सुझाव

0: जवाब दिया। प्रधानमंत्री ने साइबर अपराध और डिजिटल धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए सभी एजेंसियों, बैंकों और डिजिटल प्लेटफार्मों के बीच बेहतर समन्वय तथा जन जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि दूत जैमिसन ग्रीर और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ नई दिल्ली में बैठक की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों की खोज की। उन्होंने राजदूत ग्रीर के नेतृत्व और दोनों पक्षों के रचनात्मक और प्रगतिशील तरीके से वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की भी सराहना की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक आयोजित की। बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमार जुकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉ जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
1: It is really our responsibility.
2: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूंगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
1: रिलेशनशिप इन अ मोर डिफिकल्ट वर्ल्ड।
0: नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि 22 जून को दिल्ली से अमृतसर जा रही एयर इंडिया की एक उड़ान को रनवे निरीक्षण के दौरान के कारण अमृतसर हवाई अड्डे पर कुछ समय तक प्रतीक्षा करने के निर्देश दिए गए थे। मंत्रालय के अनुसार इस दौरान विमान रडार के मार्गदर्शन के तहत कुछ समय के लिए पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर गया था। ये प्रक्रिया पाकिस्तान के हवाई यातायात नियंत्रण अधिकारियों के समन्वय से की गई। बाद में विमान को दिल्ली वापस भेजा गया, जहां वे सुरक्षित रूप से उतरा। मंत्रालय ने बताया कि घटना की सूचना न देने के मामले में संबंधित एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और विमान चालक दल के खिलाफ अंतरिम कार्रवाई की गई है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना के बाद राहत और बचाव अभियान जारी है। हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत की खबर है। घायलों का इलाज सरकारी एसएसकेएम मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में चल रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घटनास्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि कोलकाता नगर निगम घटना की रिपोर्ट तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि हादसे की विस्तृत जानकारी कल विधानसभा में दी जाएगी। गुजरात के भुज क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में आज एआई आधारित स्वचालित ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक का उद्घाटन किया गया। नई व्यवस्था के अंतर्गत ड्राइविंग टेस्ट से पहले वाहन का पंजीकरण, प्रशिक्षण वीडियो देखना, फोटो स्कैनिंग और आरएफआईडी सेंसर लगाना अनिवार्य किया गया है। अधिकारियों के अनुसार इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और पूरी प्रक्रिया अधिक निष्पक्ष बनेगी। ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा है कि अगली सूचना तक भारतीय नागरिक जब तक आवश्यक न हो ईरान की यात्रा न करें। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से कहा है कि वे अपने आसपास की स्थिति पर लगातार नजर रखें और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।